श्रोताओं नमस्कार, हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आज दिन शुक्रवार है। शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 27वीं तिथि, तदनुसार 18 सितंबर सन 2026। हम अपने श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पसंदीदा केंद्र बनने के लिए हर महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच दुनिया को नए और विश्वसनीय विनिर्माण केंद्रों की आवश्यकता है और भारत इस जरूरत को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
1: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
0: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा उपचुनावों में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के नाम और उसके आरक्षित फूल और घास चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर अंतरिम रोक लगा दी है। आयोग ने पार्टी के दोनों प्रतिद्वंदियों गुटों को उपचुनाव में इनका इस्तेमाल नहीं करने का निर्देश दिया है। आयोग ने ममता बनर्जी और अरूप राय के नेतृत्व वाले दोनों गुटों से आज सुबह 11 बजे तक अपने अपने समूह के लिए तीन नाम और तीन मुक्त चुनाव चिन्ह प्राथमिकता के क्रम में देने को कहा है। आयोग इनमें से एक नाम और एक चुनाव चिन्ह को मंजूरी देगा। वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर दो दिन का सम्मेलन आयोजित करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्मेलन में शामिल होंगे। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग विकसित भारत की यात्रा में विकास के परिणामों को मापने के महत्व पर विचार रखेंगे। वहीं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन सुशासन में नई प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा करेंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड आज बेंगलुरु में वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान, दो सीट वाले तेजस विमान और HTT-40 बेसिक ट्रेनर विमान सौंपेगी। कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पवन हंस लिमिटेड को ध्रुव नेक्सट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपेगी। इस समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू उपस्थित होंगे। इन विमानों को शामिल करना स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने और विदेशी स्रोतों पर निर्भरता कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किया है। इसके अंतर्गत 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जारी 36 पृष्ठों वाला सामान्य पासपोर्ट अब जारी होने की तारीख से 5 वर्ष या बच्चे के 18 वर्ष की उम्र पूरी होने तक वैध रहेगा। इनमें से जो अवधि पहले पूरी होगी वही मान्य होगी। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने रूस की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा के दौरान रूसी थल सेना मुख्यालय का दौरा किया। इस दौरान दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को और मजबूत करने, प्रशिक्षण गतिविधियों का विस्तार करने तथा सेनाओं की क्षमता का विकास को और बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। उन्होंने कहा कि देश की ऊर्जा जरूरतें लगातार बढ़ रही हैं और ऊर्जा सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री क्वात्रा ने कहा कि भारत मध्य पूर्व, अफ्रीका, लैटिन अमरीका, यूरेशिया और अमरीका सहित कई देशों से ऊर्जा खरीदता है। एशियाई खेल 2026 में वर्तमान चैंपियन भारतीय महिला क्रिकेट टीम क्वार्टर फाइनल में मेजबान जापान से आज सुबह 10:30 बजे से खेलेगी। हरमनप्रीत कौर भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगी। खेलों का औपचारिक उद्घाटन कल होगा और

0: प्रतियोगिताएं 4 अक्टूबर तक चलेंगी। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने अफगानिस्तान से 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। दिल्ली में कल तीसरे और अंतिम मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 127 रन से पराजित किया। भारत के 221 रन के जवाब में अफगानिस्तान की पूरी टीम 94 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।

आज का चिंतन। महात्मा गांधी ने कहा है, भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम वर्तमान में क्या करते हैं। आइए सुने भक्ति संगीत।

ये विविध भारती है, झरोखा में लीजिए सुनिए हमारे आज दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। अब से थोड़ी देर में यानी दिन के ठीक 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस का भाग 315। 6:45 पर सुनिएगा संगीत सरिता कार्यक्रम में श्रृंखला ख्याल और तरानों की विशेषताएं। इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी आपको सुनवाएंगे गायक और कलाकार हैं डॉक्टर पंडित गोकुलोत्सव महाराज। 7:00 सुनाए जाएंगे भूले बिसरे गीत। 7:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हम हेरा ही प्यार की। 8:15 पर सुनिएगा वंदे मातरम एक जय घोष, लेखक मिलिंद सबनीस, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आप सुनेंगे आज इस श्रृंखला की 46वीं कड़ी। 8:30 पर सुनिएगा चित्रलोक। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेत्री शबाना आजमी पर, प्रस्तुति रमेश गोखले की। श्रोता इसी कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर। दिन में 10:00 पिटारा लाएगा हेलो फरमाइश, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। दिन में 11:00 आप सुनेंगे रंग तरंग। 12:00 समाचारों का होगा। 12:05 पर आप सुनेंगे यादों की महफिल। 1:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरीला सफर। 2:00 वंदे मातरम एक जय घोष, लेखक मिलिंद सबनीस, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। भाग 46 आज आपको सुनवाएंगे। 2:30 पर होंगे सदाबहार नखमे। 3:00 आप सुनेंगे हेलो सहेली कार्यक्रम और शाम 4:00 पिटारा में गीतों भरी कहानी सुनिएगा रिहाई, लेखिका अलका सिन्हा, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। 5:00 आप सुनेंगे छाया गीत। 5:30 पर होगा कार्यक्रम तराने नए पुराने। 6:35 पर सुनिएगा कार्यक्रम संध्या रंजन। 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम में श्रृंखला ख्याल और तरानों की विशेषताएं आप सुनेंगे आज इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी कलाकार गायक डॉक्टर पंडित गोकुलोत्सव महाराज। 7:00 सुनिएगा कार्यक्रम जयमाला। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत आप सुनेंगे अनमोल यादें, फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर से जयंत पात्रिकर की बातचीत का 11वां भाग आपको सुनाएंगे प्रस्तुतकर्ता जुबेर खान। रात 8:00 हवा महल कार्यक्रम में सुनेगा झलकी बीवी ब्यूटी क्वीन, लेखक शरद सिंह और निर्देशन अजीमुद्दीन का है। रात 8:15 पर होगा कार्यक्रम चित्रलोक। 9:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम आपके लिए और 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेत्री शबाना आजमी पर। 10:00 सुनिएगा छाया गीत। 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम ढलती जाए रात। श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे हमारे आज के शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा।

अपने बल का आभास देने के लिए रावण की सभा में अंगद ने पृथ्वी पर जो पैर रोपा तो मेघनाथ समेत अनेक योद्धाओं ने अपनी सारी शक्ति लगा दी, परंतु उसे हिला तक नहीं सके। ये देख स्वयं रावण उठ खड़ा हुआ। जैसे ही वो अंगद का पैर पकड़ने लगा, अंगद बोल पड़े, अरे मूर्ख, मेरा चरण पकड़ने में तेरा कल्याण नहीं, जाकर श्री राम के चरण पकड़। पल भर में रावण के दंभपूर्ण मुखमंडल से कांति विलुप्त हो गई। सकुचाकर वो सिंहासन पर वापस जा बैठा। उसका मुख वैसे ही निस्तेज हो गया जैसे सूर्य के प्रकाश में चंद्रमा का प्रकाश लुप्त हो जाता है। पार्वती को ये वृत्तांत सुनाते हुए शिवजी कहते हैं, हे उमा, जिन प्रभु के भौहों के संकेत मात्र से विश्व की रचना और विनाश होता है, जो एक तिनके को वज्र के समान कठोर और वज्र को तिनके के समान नगण्य बना देते हैं, उनके दूत के प्रण और निश्चय को भला कौन डिगा सकता है। अंगद ने एक बार फिर नीतिपूर्ण वचन कहकर रावण को सद्बुद्धि देनी चाहिए, किंतु उसका कोई प्रभाव न होता देख रणभूमि में उसका वध करने की धमकी देकर श्री राम के शिविर में वापस लौट गए। रात्रि में मंदोदरी ने रावण को फिर समझाने का प्रयास किया। जो श्री राम के छोटे भाई द्वारा खींची गई एक रेखा तक नहीं लांग सका, वो स्वयं जगदीश्वर से किस प्रकार पार पा सकेगा।

0: आजकल इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं संगीत की श्रृंखला ख्याल और तराने की विशेषताएं। उदाहरणों सहित इसे प्रस्तुत किया है प्रसिद्ध गायक गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज ने।
1: संगीत सरिता के समस्त श्रोताओं को गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज का अभिवादन। आमिर खान की गायकी में चैनदारी और विलंबित बढ़त का मौलिक रूप अत्यंत लुभावना है। ख्याल चाहे विलंबित हो या द्रुत, चिंतन का क्रम व चैनदारी बराबर बनी रहती थी। इसी विशेषता ने मुझे उनकी ओर आकर्षित किया। आमिर खान साहब को यह प्रेरणा जहां बहरे अब्दुल वहीद खान से मिली, वहीं कूट तानों व मेरुखंड की प्रेरणा भिंडी बाजार वाले अमान अली खान साहब अमर से प्राप्त हुई। देवास के प्रोफेसर अमानत खान साहब तान कहते कहते सहसा एक स्वर पर ठहर के पुनः तान कहने लग जाते थे। यह उनकी अद्वितीय विशेषता थी। यह अंग आमिर खान साहब को बहुत ही पसंद आया। उन्होंने देवास के रजब अली खान के कूट तानों के साथ अवरोही के तानों के साथ गायकी के अनेक अंग आत्मसात किए। जरब और जवारी बहरे अब्दुल वहीद खान की उन्हें पसंद आई। साथ में छूट कह जाना आमिर खान साहब को बहुत भाया। आमिर खान साहब बचपन में उस्ताद बाबू खान साहब बीनकार के साथ हमारे ग्रैंडफादर गोस्वामी श्री कृष्ण राय जी महाराज बच्चू बाबा के यहाँ आया करते थे। यहाँ उनकी सीट थी, इसलिए उन्होंने वल्लभाचार्य महाप्रभु के पुत्र गोसाई जी के नाम पर एक बंदिश भी बनाई, जिसमें मध्यलय में ख्याल का अंदाज मालूम होता है। तो अब मैं वो बंदिश आपको गाकर सुना रहा हूँ।

केवल गायक होना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु अच्छे रचनाकार होने की आवश्यकता भी है। साथ साथ में हर अंग को गायन में यथोचित स्थान देना चाहिए। पहले गुरुजन शिष्य की साधना और उसकी गायकी के हर छोर हर पहलू पर ध्यान देते थे। गायकी के साथ साथ उसे बंदिशों को कहने का अंदाज सिखाते थे, बंदिश कैसे बनाई जाए इसकी शिक्षा देते थे। इन सब बातों के लिए पेशेंस चाहिए। उस्ताद अमीर खान साहब बहुत अच्छे रचनाकार थे। वे सुररंग तखल्लुस मुद्रा या उपनाम से गाते थे। उनकी एक बड़ी ही सुंदर रचना जो कि ऐतिहासिक होने के साथ साथ उनकी पत्नी का इसमें योगदान लिए हुए है, तो प्रस्तुत है राग यमन कल्याण में वो बंदिश जो मैं आपको गाकर सुना रहा हूं, जिसमें गायकी के अनेक अंग हैं, जैसे बल, पेंच, गमकतान, जरब, जरब से गमकतान, छूट, फिरत, कंपित, अंदोल और मेरुखंड आदि का उज्ज्वल उदाहरण लिए हुए हैं।

0: संगीत की श्रृंखला ख्याल और तराने की विशेषताएं आप संगीत सरिता कार्यक्रम में सुन रहे थे। इसके प्रस्तुतकर्ता थे प्रसिद्ध गायक गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज, हारमोनियम पर पुरुषोत्तम वालावलकर और तबले पर ओमकार गुलवाड़ी ने संगत की थी।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया गांगुली।

0: क्या करें जब अचानक ब्रेन स्ट्रोक आ जाए? कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण? ब्रेन स्ट्रोक आने पर किन बातों का ख्याल रखें? सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
1: तो सटल साइंस कहीं ना कहीं हम पकड़ लेते हैं। अगर ब्रेन के अंदर कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, जैसे कुछ गांठ है, पानी भर गया है, कुछ

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

फिल्म बहार का गीत था, शमशाद बेगम की आवाज में, नगमा निगार राजेंद्र कृष्ण, मौसिकार सचिन देव बर्मन। विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। इस कार्यक्रम के कुछ और नगमे आपको सुनवाएंगे, बस एक छोटे से अंतराल के बाद थोड़ा सा इंतजार।

0: लता मंगेशकर और चितलकर की आवाजों में अलबेला फिल्म का ये गीत था। राजेंद्र कृष्ण की रचना आपने सुनी, श्री रामचंद्र का संगीत था। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम श्रोताओ यहीं संपन्न होता है।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में देवता फिल्म का गीत आपने सुना। गुलजार की रचना थी, राहुल देव बर्मन की तर्ज थी। थोड़ी सी बेवफाई इस फिल्म का गीत है, लता मंगेशकर किशोर कुमार का गाया, गुलजार के बोल खय्याम की तर्ज।

फकीरा फिल्म का दो गाना था किशोर कुमार लता मंगेशकर का गाया गीत और संगीत था रविंद्र जैन का। युगल गीतों का कार्यक्रम हम हेरा ही प्यार के आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। इस कार्यक्रम के कुछ और दख में आपको सुनवाएंगे बस एक छोटे से अंतराल के बाद।

0: मजरूह सुल्तानपुरी की रचना संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। आशा भोसले, आरती मुखर्जी, शैलेंद्र सिंह और अमित कुमार की आवाजों में फिल्म परवरिश का गीत आपने सुना।
1: कि नई नस्लों के हाथों में भी ताबिंदा रहेगा, मैं मिल जाऊंगा मिट्टी में, कलम जिंदा रहे।
2: मैटिनी शो कार्यक्रम में मुलाकात जाने माने शायर आलोक यादव से।
1: मैंने तस्वीर तेरे साथ जो खिंचवाई थी, उम्र भर सिर्फ वही रौनक तन्हाई थी। वक्त के साथ तो रिश्ते भी बदल जाते हैं, दिल में दीवार कहां पहले मेरे भाई थी।
2: शनिवार 19 सितंबर को दिन में 11:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।

0: क्या करें जब अचानक ब्रेन स्ट्रोक आ जाए? कैसे पहचानें ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण? ब्रेन स्ट्रोक आने पर किन बातों का ख्याल रखें? सिरदर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
1: तो सटल साइंस कहीं ना कहीं हम पकड़ लेते हैं। अगर ब्रेन के अंदर कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, जैसे कुछ गांठ है, पानी भर गया है, कुछ पुराना चोट लगा था उसका ब्लीडिंग का असर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हाथ पैर का मूवमेंट, या और एक आपने देखा होगा हम उनके हाथ पैर पे एक मार के देखते हैं, उसको हैमर बोलते हैं जर्क देखने के लिए। तो अगर वो जर्क कुछ चेंज हुए हैं उन पेशेंट को हम बोलते हैं कि आपका एमआरआई करना पड़ेगा।
0: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती का ये कार्यक्रम है हम मेरा ही प्यार की।

फिल्म अवतार का ये गीत आप सुन रहे हैं, किशोर कुमार और लता मंगेशकर का गाया, आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज है। हम हेरा ही प्यार के इस कार्यक्रम की यही है आखिरी पेशकश।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस का नाम और चुनाव चिन्ह निलंबित किया। दोनों गुटों को पश्चिम बंगाल उपचुनाव के लिए नया नाम और चिन्ह चुनने को कहा। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों के लिए यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी जारी की। बिहार, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, केरलम

0: कांग्रेस नाम और पार्टी के आरक्षित फूल और घास चुनाव का चिन्ह इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। दोनों गुटों को आगामी उपचुनाव अलग अलग नामों और निर्वाचन आयोग की ओर से आवंटित चुनाव चिन्हों पर लड़ना होगा। यह व्यवस्था विवाद के अंतिम निपटारे तक लागू रहेगी। आयोग ने कहा है कि दोनों पक्षों की ओर से पेश दस्तावेजों और दावों से पता चलता है कि तृणमूल कांग्रेस में फिलहाल दो प्रतिद्वंदी गुट हैं और दोनों खुद को वास्तविक पार्टी बता रहे हैं। आगामी उपचुनाव से पहले विवाद का अंतिम निपटारा संभव नहीं होने के कारण आयोग ने फिलहाल पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल को लेकर यह अंतरिम व्यवस्था की है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारी समिति को विधेयक के प्रावधानों के बारे में जानकारी देंगे।
2: संसद के दोनों सदनों ने 12 अगस्त को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मंजूरी दी थी। यह विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन से जुड़ा है। इसका उद्देश्य विदेशी अंशदान के इस्तेमाल में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य हैं। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल समिति के अध्यक्ष हैं। लोकसभा से तेजस्वी सूर्या, निशिकांत दुबे, ए राजा और सुप्रिया सुले, जबकि राज्यसभा से हर्षवर्धन श्रृंगला, संजय कुमार झा, प्रफुल्ल पटेल और मेनका गुरुस्वामी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। समिति को शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक अपनी रिपोर्ट सदन में पेश करनी है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कौशलेंद्र।
1: वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर दो दिन का सम्मेलन आयोजित करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्मेलन में शामिल होंगे।
3: सम्मेलन में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग विकसित भारत की यात्रा में विकास के परिणामों को मापने के महत्व पर विचार रखेंगे। वहीं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन सुशासन में नई प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा करेंगे। सम्मेलन में देश के विकास से जुड़ी वित्तीय चुनौतियों और नीतिगत प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। इनमें अर्थव्यवस्था, कृषि क्षेत्र और ऊर्जा क्षेत्र के लिए वित्तीय व्यवस्था पर विचार किया जाएगा। आरजू की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सिद्धार्थ सिंह।
1: हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL आज बेंगलुरु में वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान, दो सीट वाले तेजस विमान और HTT-40 प्राथमिक प्रशिक्षण विमान सौंपेगी।
4: कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम पवन हंस लिमिटेड को ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपेंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इन विमानों और हेलीकॉप्टरों को शामिल किया जाना स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने और विदेशी स्रोतों पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक और कदम है। सरकार एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी डिजाइन, विकास और विनिर्माण को बढ़ावा देने को उच्च प्राथमिकता दे रही है। निशा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने UGC नेट जून 2026 परीक्षा के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षार्थी अपनी उत्तर कुंजी UGC नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन संख्या और पासवर्ड के जरिए देख सकते हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
5: आपको हर खबर से रखें अपडेट, expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन और उनके जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान कल से शुरू हुआ। पहले दिन सेवा दिवस में देश भर में रक्तदान शिविर और आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनका जीवन जनसेवा से राष्ट्र सेवा के मंत्र और निरंतर समर्पण से जुड़ा रहा है। सेवा और सुशासन की इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के इन प्रयासों से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आकाशवाणी समाचार सेवा संकल्प अभियान

0: पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज इसी कड़ी में प्रस्तुत है नक्सलवाद के अंत की दिशा में किए जा रहे प्रयासों पर विशेष रिपोर्ट।
1: छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में नक्सलवाद के अंत के बाद अब बंदूक की गोलियों की जगह एक बार फिर स्कूल की घंटियां सुनाई देने लगी हैं। बस्तर अंचल में सुरक्षा कैंपों को बदलकर शहीद वीर गुंडा धुर सेवा डेरा के नाम से आधुनिक जन सुविधा केंद्र बनाए जा रहे हैं। बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम जैसे आयोजन बदलते बस्तर की तस्वीर पेश करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जहां कभी टेरर था वहां अब टैलेंट को अवसर मिल रहा है।
2: हमने संकल्प लिया कि नक्सलवाद माओवाद को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और आज पूरा देश नतीजा देख रहा है। जहां पर विकास की बात बोल तक नहीं सकते थे, ऐसे क्षेत्रों में हम विकास का संकल्प लेकर आगे बढ़े। बस्तर जैसे इलाकों में बम बंदूक नहीं, बस्तर ओलंपिक्स की धूम है। यानी जहां कभी टेरर था वहां टैलेंट को अवसर मिल रहा है।
1: सरकार की ठोस इच्छा शक्ति का ही परिणाम रहा है कि बस्तर में हजारों की संख्या में माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इन माओवादियों को अब कौशल प्रशिक्षण देकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। बस्तर जिले के ऐसे ही एक आत्मसमर्पित माओवादी लखमू पोयाम ने बताया कि नक्सली संगठन में काम करते हुए उन्हें हमेशा जान का डर बना रहता था, लेकिन अब वे कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के साथ ही सुकून की जिंदगी बिता रहे हैं।
3: अभी तो यहाँ सरेंडर करने के बाद हम लोग यहाँ रहते हैं, अभी अच्छा लग रहा है। उधर रहते समय तो कभी मर जाना है, गोली लगेगा बोल के उधर डर था। अभी यहाँ आराम से खाना है, पीना है, सोना है, काम करना है, सब लोगों के साथ मिलना है, ऐसे अच्छा लग रहा है यहाँ।
1: लखमू पोयाम जैसे सैकड़ों आत्मसमर्पित माओवादियों की यह कहानी बताती है कि बस्तर में नक्सलवाद के अंत के बाद अब विकास का सूर्योदय हो रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रायपुर से मैं विकल्प शुक्ला।
0: भारतीय जनता पार्टी आज पंजाब के पठानकोट से राज्यव्यापी नशा मुक्त पंजाब यात्रा की शुरुआत करेगी। ये यात्रा राज्य की सभी विधानसभा सीटों तक पहुंचेगी और नशे के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन का रूप देने पर बल देगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन यात्रा को रवाना करेंगे। यात्रा 30 सितंबर को जालंधर में समाप्त होगी। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक और तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। उन्होंने कहा कि देश की ऊर्जा जरूरतें आगे भी बढ़ेंगी और ऊर्जा सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री क्वात्रा ने कहा कि भारत मध्य पूर्व, अफ्रीका, लैटिन अमरीका, यूरेशिया और अमरीका समेत विभिन्न क्षेत्रों से ऊर्जा प्राप्त करता है। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने रूस की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा के दौरान रूस के थल सेना मुख्यालय का दौरा किया। इस दौरान दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को और मजबूत करने, प्रशिक्षण गतिविधियों का विस्तार करने तथा सेनाओं की क्षमता विकास को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किया है। इसके अंतर्गत 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जारी 36 पृष्ठों वाला सामान्य पासपोर्ट अब जारी होने की तारीख से 5 वर्ष या बच्चे के 18 वर्ष की उम्र पूरी होने तक वैध रहेगा। इनमें से जो अवधि पहले पूरी होगी वही मान्य होगी। टाटा सन्स ने एन चंद्रशेखरन को 5 वर्ष के एक और कार्यकाल के लिए कार्यकारी अध्यक्ष बनाए रखने का फैसला किया है। टाटा सन्स के बोर्ड ने कल 4-1 के बहुमत से उनके कार्यकाल को बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। हालांकि 66% हिस्सेदारी रखने वाले टाटा ट्रस्ट ने इस मतदान को अवैध बताया है। मौसम विभाग ने आज बिहार, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, केरलम और राजस्थान में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। वहीं उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, कर्नाटक और लक्षद्वीप में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। अगले 2 दिन के दौरान तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरलम, माहे, पूर्वोत्तर के कुछ हिस्से और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी इसी तरह के मौसम की संभावना है। दिल्ली में आज बादल छाए रहने का अनुमान है। और अब खेल खबरों के साथ है शशांक कुमार।
4: भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने अफगानिस्तान से 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला 3-0 से जीत दी है। दिल्ली में कल तीसरे और अंतिम मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 127 रन से हराया। भारत के 221 रन के जवाब में अफगानिस्तान की पूरी टीम 94 रन पर सिमट गई। अभिषेक शर्मा ने शानदार 108 और संजू सैमसंग ने 50 रन बनाए। 30 गेंद में शतक लगाकर अभिषेक T20 में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं।

0: अभिषेक को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। उधर जापान में एशियाई खेलों में वर्तमान चैंपियन भारतीय महिला क्रिकेट टीम क्वार्टर फाइनल में जापान से आज सुबह 10:30 बजे से खेलेगी। हरमनप्रीत कौर भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगी। खेलों का औपचारिक उद्घाटन कल होगा और प्रतियोगिताएं 4 अक्टूबर तक चलेंगी।
1: जम्मू कश्मीर सरकार ने पुंछ जिले के मेंढर इलाके के बेहरी कासब में आधुनिक जनजातीय पर्यटन गांव विकसित करने को मंजूरी दी है। इस परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र की समृद्ध जनजातीय संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
3: धन्यवाद जागृति। सेमिकॉन इंडिया 2026 के उद्घाटन की खबर आज प्रकाशित सभी अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण ने लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दुनिया का भारत पर बढ़ रहा भरोसा, वैश्विक बाजार में पहुंच रही देश की सेमीकंडक्टर चिप। जनसत्ता के शब्द हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार भारत को भरोसेमंद चिप विनिर्माण का केंद्र बना रही है। पंजाब केसरी लिखता है, भारतीय चिप की दुनिया भर में सप्लाई शुरू, दूसरे चरण में लक्ष्य $30.5 मिलियन। अमेरिकी संसद में रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100% शुल्क लगाने वाले विधेयक के पारित होने की खबर को अखबारों ने प्रमुखता दी है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, ट्रंप को मिला 100% टैरिफ वाला हथियार। अमर उजाला लिखता है, टैरिफ पर अमरीका की दो टूक, भारत अपने हित खुद तय करेगा। हिंदुस्तान ने 1 अक्टूबर से जन्म और मृत्यु पंजीकरण के नए नियम की खबर दी है। पत्र लिखता है, पंजीकरण के नियमों को सख्त बनाने वाला कानून 1 अक्टूबर से देशभर में लागू होगा। पंजीकरण में 2 वर्ष से अधिक की देरी होने पर पंजीकरण के लिए प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश आवश्यक होगा। दैनिक भास्कर की विशेष खबर है, पढ़ाई के बाद नौकरी में काम आएगी अपार आईडी, डिग्री देख सकेंगे नियुक्ता, मंत्रालय ने निजता नीति बदली। पंजाब केसरी ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के परीक्षा कार्यक्रमों के जारी होने पर लिखा है, जेई मेन यूजीसी नेट परीक्षा की डेट शीट जारी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रस्ताव को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता दी है। सीसीटीवी की निगरानी में बिके दवा, सरकार लाई प्रस्ताव, फुटकर दुकानों में ही सीसीटीवी अनिवार्य होगा, थोक दवा दुकानों को बाहर रखा गया।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस का नाम और चुनाव चिन्ह निलंबित किया। दोनों गुटों को पश्चिम बंगाल उपचुनाव के लिए नया नाम और चिन्ह चुनने को कहा। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों के लिए यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी जारी की। बिहार, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, केरलम और राजस्थान में आज मूसलाधार बारिश की आशंका। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।
5: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनिस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रिकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए इस श्रृंखला की 46वीं कड़ी।

0: 1942 के आंदोलन में देश में कई जगहों पर प्रति सरकारें स्थापित की गईं। प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के बाद अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, एसएम जोशी, जयप्रकाश नारायण ने भूमिगत होकर आंदोलन को आगे जारी रखा। गुप्त रेडियो केंद्र शुरू किए गए। क्रांति सिंह नाना पाटिल के नेतृत्व में प्रति सरकारें स्थापित की गईं। अब किसी भी परिस्थिति में अंत तक यह आंदोलन जारी रखना ही है। आंदोलनकारियों की इस जिद के कारण ब्रिटिश राज सत्ता को एक के बाद एक झटके लग रहे थे, परंतु जब राज सत्ता की रीढ़ ही सेना और राज सत्ता के विरुद्ध चली जाती है, तब सारे समीकरण बदल जाते हैं। आजाद हिंद सेना को आदर्श मानकर ब्रिटिश फौज के नौसेना और वायुसेना के भारतीय अधिकारियों ने हड़ताल का आह्वान किया। मुंबई बंदरगाह में खड़ी तलवार नामक युद्ध पोत पर से यूनियन जैक उतार दिया गया। नौसेना के अधिकारियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध खुला युद्ध छेड़ दिया। कई महत्वपूर्ण शहरों में वायुसेना के अधिकारी हड़ताल पर चले गए। अंग्रेजों द्वारा कड़ी कार्रवाई की धमकी दिए जाने के बाद भी उन्होंने हड़ताल वापस नहीं ली। नाविक दल के इस संघर्ष में वंदे मातरम शब्द को युद्ध घोष का स्थान प्राप्त था। जिन भारतीय सैनिकों के बल पर अंग्रेजों ने राज चलाया था, उन्हीं भारतीय सैनिकों के विद्रोह के कारण ब्रिटिश सत्ता को अंतिम और सबसे बड़ा झटका लगा।
1: दूसरे विश्व युद्ध के कारण आर्थिक संकट में फंसा इंग्लैंड भारत में इन उग्र आंदोलनों के कारण पूरी तरह घिर गया। भारत को पूर्ण स्वतंत्रता मिलने का समय बिल्कुल निकट आ गया, पर जाते जाते अंग्रेजों ने कुछ साल पहले जो फूट डालने की राजनीति की थी, उसके कटु परिणाम अब दिखने लगे थे। बैरिस्टर जिन्ना के दुराग्रह के कारण मुस्लिम लीग और अन्य जातिवादी संगठनों की हिंसक कार्रवाइयों में भारत को खंडित स्वरूप में ही स्वतंत्रता मिलेगी, ये लगभग निश्चित हो गया था। बेशक 150 साल की अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त होने का आनंद सबसे बड़ा था। 1875 में बंकिम चंद्र ने भारत माता को वंदे मातरम कहकर जो पुकार लगाई थी, वो आज इतने वर्षों बाद फलदायी हो रही थी। भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, ऐसे नारे लगाते हुए बलिदान देने वाले, शहादत को गले लगाने वाले युवाओं का या वंदे मातरम कहते हुए असहनीय अत्याचार सहने वाले सत्याग्रहियों का स्वतंत्र भारत का सपना आज साकार हो रहा था।
0: कुल मिलाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम की अधिकांश घटनाएं वंदे मातरम की साक्षी में ही घटी हैं। वंदे मातरम, इन शब्दों के बिना मानो इस आंदोलन की किसी भी हलचल को पूर्णता मिलना असंभव था। संपूर्ण भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को वंदे मातरम के इस तेजस्वी मंत्र का संबल मिला। मैं माता को वंदन करता हूं, इतना सरल अर्थ वाले इन शब्दों से अंग्रेजों को इतना डर क्यों लगता था? उन पर प्रतिबंध क्यों लगाए जाते थे? उन शब्दों का उच्चारण करने वालों पर लाठी डंडों के साथ बंदूक की गोलियां भी क्यों चलाई जाती थीं? अंग्रेजी राज सत्ता के मन में इतना भय पैदा करने वाली ऐसी कौन सी भावना वंदे मातरम शब्द में छिपी हुई थी?
1: वंदे मातरम, इस शब्द में है धधकती राष्ट्र भावना, इन शब्दों में है मातृभूमि के प्रति ज्वलंत निष्ठा, इन शब्दों में है मातृभूमि के चरणों में लीन होने की शरण भावना, इन शब्दों में है खड्ग की शक्ति।
0: अगस्त 1947 को हमारी मातृभूमि पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त हुई। स्वतंत्रता की पहली किरण के साथ दिल्ली आकाशवाणी केंद्र से पंडित ओंकारनाथ ठाकुर की आवाज में वंदे मातरम पूरे देश भर में सुनाया जा रहा था, और उसी समय मुंबई आकाशवाणी केंद्र से किराना घराने की प्रतिभावान गायिका का दिव्य स्वर गूंज रहा था। गान हीरा हीराबाई बड़ोदेकर अपने मधुर स्वरों में तिलक कामोद राग में स्वयं तैयार की हुई रचना में वंदे मातरम प्रस्तुत कर रही थी।

0: 15 अगस्त 1947, क्रांतिकारी अरविंद घोष अब योगी श्री अरविंद बन चुके थे। आज उनका जन्मदिन था। आज उनके 75वें जन्मदिवस पर उन्हें अपनी भारत माता के स्वतंत्र होने का सपना साकार होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। 1910 के बाद श्री अरविंद क्रांतिकारी कार्यों से योग मार्ग की ओर मुड़ गए थे। फिर भी वंदे मातरम के वे सच्चे अर्थों में प्रवर्तक थे। बंकिम चंद्र ने वंदे मातरम लिखा, पर उसका आशय, उसका महत्व, उसकी चिंगारी भारतीय जनता के मन में पहली बार जगाई होगी तो वो श्री अरविंद ने। वंदे मातरम के दो अंग्रेजी अनुवाद उन्होंने किए ही थे। उसके साथ ही बंकिम चंद्र के उपन्यास आनंद मठ का अंग्रेजी अनुवाद भी उन्होंने शुरू किया, परंतु कारावास के कारण उसमें बाधा आ गई और वो अनुवाद उनके क्रांतिकारी भाई बारिंद्र नाथ घोष ने पूरा किया। बंकिम चंद्र के वंदे मातरम और आनंद मठ की प्रेरणा से श्री अरविंद ने भवानी मंदिर की परिकल्पना की थी। भवानी मंदिर, ये संकल्पना उन्होंने लेख के रूप में युवाओं के सामने रखी और वो आध्यात्मनिष्ठ राष्ट्रवादियों के लिए गीता बन गई। श्री अरविंद ने भवानी भारती इस लेख में राष्ट्र के विषय में जो संकल्पित किया उसे स्पष्ट करते हुए वे लिखते हैं,
1: ये देश जड़ भू प्रदेश नहीं है, वो भगवती शक्ति की प्रतिमा है। पहले की महिषासुर मर्दिनी आज भारत भवानी बन गई है। उसके लिए सर्वस्व का त्याग करने वाले उसके पुत्रों को उसका अभिषेक करने के लिए आगे आना चाहिए। भवानी मंदिर बनाने के लिए ईंट पत्थरों की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रीयता की भक्ति भावना से आकार लेने वाला वो मानस मंदिर होगा।
0: भवानी मंदिर की उनकी परिकल्पना यदि प्रत्यक्ष रूप में साकार हुई होती तो भारतीय सशस्त्र संघर्ष को एक संगठित स्वरूप प्राप्त हो जाता। बंकिम चंद्र के आनंद मठ उपन्यास में सन्यासियों की राष्ट्र भावना से समानता रखने वाला विन्यास इस लेख में है। भवानी मंदिर इस संकल्पना के पूरक के रूप में भवानी भारती नाम से श्री अरविंद ने संस्कृत भाषा में 99 श्लोक लिखकर आदिशक्ति से आर्त प्रार्थना की। दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोकों के देवी महात्म्य में महिषासुर वध के रूपक को श्री अरविंद ने अंग्रेज रूपी असुर का कालिका माता के स्वरूप वाली भारत माता वध करती है ऐसी कल्पना करते हुए प्रस्तुत किया। इन 99 श्लोकों के अंत में समापन करते हुए अंतिम 2 चरणों में वे भारत माता को संबोधित करते हुए कहते हैं,

इसका भावार्थ इस प्रकार है, हे अनंत रूप धारण करने वाली प्रीति, दया, धैर्य, अदम्य शौर्य, श्रद्धा, तितिक्षा और विविध विद्याएं, ये सब तू ही है। हे आर्य, प्रसन्न हो और भारतीयों के हृदय में चिरकाल तक निवास कर। हे प्रचंड तेज पुंज प्रतिमा के समान देवी, अपनी शुभ्र कांति से सागरों और पर्वत शिखरों को प्रकाशित करती हुई स्थिर होकर प्रसन्नता पूर्वक जगत के कल्याण के लिए तू आर्य भूमि में अर्थात हमारे भारतवर्ष में चिरकाल तक निवास कर।

0: आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भरम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।
1: वंदे मातरम एक जय घोष, ये थी इस लघु रूपक श्रृंखला की 46वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनिस, हिंदी अनुवाद संकलन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रिकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रिकर और ममता सिंह, तकनीकी सहयोग किरण बंग और अनुश्री गुप्ता, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।
2: जम्बो जेट जम्बो जेट, लंडन मुंबई प्रवास थेट, जगलो वसलो पुन्ना भेट, जम्बो जेट सोई।
3: मराठी संगीत जगत की एक दिग्गज हस्ती अप्पा वढावकर।
2: रात्रंदीन आम्हा युद्धाचा प्रसंग, रात्रंदीन आम्हा युद्धाचा प्रसंग।
3: विविध भारती के स्टूडियो में लेकर आ रहे हैं अपने जीवन की कहानी।
2: जब परीक्षा दे रहा था तो मेरे पिताजी का निधन हो गया और उस टाइम मेरे घर में वसंत देसाई जी मिलने को आए। 72 से 75 तक मैं वसंत देसाई के साथ काम किया।
3: आज के मेहमान 23 सितंबर शाम 4 बजे और 24 सितंबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर

डेली जब प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक, नई सुबह नए पैगाम लेकर आती है श्रोताओं। आकाश में सूर्य की लालिमा मंद मंद सी बयार और आपके घर आंगन में गूंजती विविध भारती की सुर लहरियां आपकी सुबह को खास बनाती हैं। इन्हीं सुर लहरियों पर आ चुका है कार्यक्रम चित्रलोक आपके रेडियो सेट पर। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

एम टूरस के बोलते संजय लीला भंसाली की तर्ज श्रेया घोषाल स्वरूप खान और साथियों को आपने सुना फिल्म पद्मावत में। आप सुन रहे हैं विविध भारती का कार्यक्रम चित्रलोक। फिल्म 22 डेज।

अरिजीत सिंह की आवाज थी, राज शेखर का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे। जसलीन रॉयल की तर्ज थी, हिचकी फिल्म का ये गीत आपने सुना। विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। इस कार्यक्रम के कुछ और गीत आपको सुनाएंगे बस एक छोटे से ब्रेक के बाद।

सतेंद्र त्रिपाठी की आवाज में योगेश की रचना आपने सुनी। प्रदीप कुंवर का संगीत था। अंग्रेजी में कहते हैं इस फिल्म का गीत आपने सुना। श्रोता विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। आज भारतीय सिनेमा जगत की जानी मानी अभिनेत्री शबाना आजमी का जन्मदिन है। जन्मदिन की उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। शबाना आजमी मशहूर कवि और गीतकार कैफी आजमी और रंगमंच अभिनेत्री शौकत आजमी की सुपुत्री हैं। 1974 में शबाना आजमी ने श्याम बेनेगल की फिल्म अंकुर से फिल्मों में शुरुआत की, जो आगे चलकर समानांतर सिनेमा की एक जानी मानी अभिनेत्री भी मानी गई। यथार्थवादी चित्रण को उन्होंने अपने अलग अलग किरदारों के जरिए सिनेमा के माध्यम से प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने समय के मशहूर अभिनेताओं के साथ सफल फिल्में दी, जिनमें संजीव कुमार, नसीरुद्दीन शाह, अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना भी थे। फिल्म जुनून, निशांत, मंदी, शतरंज के खिलाड़ी, मकड़ी, स्पर्श, अमर अकबर एंथनी, परवरिश, फायर, गॉड मदर, ये उनकी कुछ प्रमुख फिल्मों में से हैं। शबाना आजमी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 5 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 5 फिल्म फेयर पुरस्कारों को भी उन्होंने अपने नाम किया। 1998 में उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया। 2012 में उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। शबाना आजमी जाने माने पटकथा लेखक और शायर जावेद अख्तर की शरीके हयात हैं।

0: स्वप्निल एच डिगे की तर्ज थी। आप सुन रहे थे मनोज यादव का लिखा ये गीत सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में। फिल्म थी इश्क तेरा।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर।

0: एक विराट जीवन की कहानी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
2: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती है।
0: उजाले उनकी यादों की एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
3: चिट्ठी ना कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: जम्बो जेट जम्बो जेट लंडन मुंबई प्रवास थेट जगलो वसलो पुन्ना भेट जम्बो जेट सोई।
0: मराठी संगीत जगत की एक दिग्गज हस्ती अप्पा वढावकर।
4: रात्रंदीन आमा युद्धाचा प्रसंग, रात्रंदीन आमा युद्धाचा प्रसंग।
0: विविध भारती के स्टूडियो में लेकर आ रहे हैं अपने जीवन की कहानी।
4: जब परीक्षा दे रहा था तो मेरे पिताजी का निधन हो गया और उस टाइम मेरे घर में वसंत देसाई जी मिलने को आए। 72 से 75 तक मैं वसंत देसाई के साथ काम किया।
0: आज के मेहमान 23 सितंबर शाम 4 बजे और 24 सितंबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: विविध भारती का ये कार्यक्रम है चित्रलोक। इस कार्यक्रम के कुछ और गीत आपको सुनवाएंगे बस एक छोटे से ब्रेक के बाद।

0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा। इसके अंतर्गत आज सुनिए 25 वर्ष गुजरात से राष्ट्र निर्माण तक। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार केतन त्रिवेदी और सहकारी नीति विशेषज्ञ डॉक्टर ए के अस्थाना। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: नेतृत्व जब विचारों से आगे बढ़कर संकल्प बनता है तो नीतियाँ केवल कागज पर नहीं बल्कि लोगों के जीवन को बेहतर बना देती हैं। साल 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने जब कमान संभाली तो एक नए प्रशासनिक मॉडल की नींव रखी गई। शिकायतों का सीधा समाधान देने वाला स्वागत पोर्टल हो, गांव गांव तक 24 घंटे बिजली पहुंचाती ज्योति ग्राम योजना या फिर प्यासी जमीन तक जल लाती सोनी परियोजना, कन्या केलावणी से बेटियों का सशक्तिकरण, कृषि महोत्सव से किसानों की प्रगति और गरीब कल्याण मेले से अंतिम व्यक्ति का अधिकार, विकास की इसी सोच ने वाइब्रेंट गुजरात और गिफ्ट सिटी के रूप में वैश्विक पहचान बनाई। गुजरात के इन्हीं जमीनी प्रयोगों और अनुभवों को आधार बनाकर आज बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सशक्त और आत्मनिर्भर नए भारत के निर्माण के लिए प्रयासरत हैं। जनसेवा से देश सेवा के इस 25 वर्षों के निरंतर सफर को जानने के लिए पेश है आकाशवाणी की विशेष श्रृंखला का पहला एपिसोड 25 वर्ष गुजरात से राष्ट्र निर्माण तक। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव और आज हमारे साथ दो जाने माने विशेषज्ञ वरिष्ठ पत्रकार केतन त्रिवेदी और सहकारिता एवं नीति विशेषज्ञ डॉक्टर ए के अस्थाना जी। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
3: धन्यवाद जी।
1: केतन जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। 2001 जब नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाली उस समय राज्य भूकंप, सूखे और प्रशासनिक चुनौतियों से गुजर रहा था। एक पत्रकार के तौर पर उस समय गुजरात की सबसे बड़ी चुनौतियां क्या थीं और अगले कुछ वर्षों में सरकार ने किन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी?
2: एक पत्रकार के तौर पर मैंने 7 अक्टूबर 2000

0: एक को जब नरेंद्र भाई ने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली, तब से उनका जो कार्यकाल रहा है आज दिन तक का, उसको बहुत नजदीक से फॉलो किया है। जब गुजरात में नरेंद्र भाई मुख्यमंत्री बन के आए 7 अक्टूबर 2001 को, तब गुजरात भूकंप की छाया से अभी पूरी तरह से बाहर नहीं निकला था। एक रिहेबिलिटेशन और रीबिल्ड करने की एक बहुत बड़ी चुनौती तो सामने थी ही, उसके साथ साथ उसके पहले 1998 और 9 में कच्छ में जो साइक्लोन आया उसका भी काफी गहरा असर था। इनस्टेबिलिटी का, एक अनसर्टेनिटी का एक माहौल पूरी तरह से बना हुआ था जब नरेंद्र भाई ने 7 अक्टूबर को शपथ ली। मुझे अभी भी याद है, इसको गुजराती में कहते हैं अपनो गुजरात आगवो गुजरात, मतलब हमारा गुजरात अग्रसर गुजरात। वो नारा देके उसने एक गुजरातियों को एक व्यापक अपील की थी, जिस नारे से गुजरात के एडमिनिस्ट्रेशन से लेके पार्टी में और इन जनरल गुजरातियों में एक नए आत्मविश्वास का संचार हुआ कि ये बंदा कुछ कर सकेगा, ये बंदा कुछ गुजरात को ध्यान में रखते हुए, उनके पास कुछ विजन है, उनके पास कुछ गाइडलाइंस है, उनके पास एक स्पष्ट नीति और दिशा है। और तब से जो हुआ, कई सारी योजनाएं आई जिसकी हम आगे बात करेंगे, ज्योति ग्राम, स्वागत, कृषि महोत्सव, गरीब कल्याण मेला से लेकर बहुत सारी वाइब्रंट और गिफ्ट सिटी तक कई सारे इनिशिएटिव उनके मुख्यमंत्री के कार्यकाल में लिए गए। जब से वो 2014 में प्रधानमंत्री बने, उसकी एक लंबी इम्पैक्ट भी रही। और एक गुजरात मॉडल जो 2010 के बाद, 2000 स्पेशली 2012 और 13 में जो नेशनली काफी चर्चा में रहा कि गुजरात ने एक डेवलपमेंटल मॉडल पेश किया कि कैसे एक राज्य को डेवलप किया जाता है, और फिर आगे की जर्नी हम सबको मालूम है। लेकिन उसका जो फाउंडेशन है वो शायद 2001, 2 और 3, ये 2-3 सालों में रखा गया था, उसकी नींव है वो इन सालों में रखी गई थी।
1: डॉक्टर अस्थाना, 2003 की बात करते
2: जी
1: हैं, जब देश में लोग
2: जी
1: कंप्यूटर और इंटरनेट सीख ही रहे थे, तब गुजरात में
2: जी
1: स्वागत पोर्टल आया। सीधे
2: जी
1: मुख्यमंत्री का जनता की शिकायतें सुनना और ऑन द स्पॉट 99% से ज्यादा मामले निपटा देना। आधिकारिक आंकड़े
2: जी
1: बताते हैं कि 6,07,299 मामले तुरंत निपटारा कर दिए गए थे। आपसे समझना चाहेंगे कि उस दौर के प्रशासनिक रवैये के बीच स्वागत जैसी योजना किस तरह का सरप्राइज था, और इसने ग्राउंड पर अफसरशाही का जो रवैया है कितना बदला और कैसे बदला।
2: जैसा कि केतन जी ने बताया कि 2001 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री और उस समय के मुख्यमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री ने जब प्रशासन की बागडोर संभाली, उस समय जनता को उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, क्योंकि कच्छ की जनता और गुजरात की जनता जिस त्रासदी से गुजर रही थी, उस समय प्रशासन से उनकी उम्मीद थी कि जनता की जो शिकायतें हैं उनका निवारण तत्कालीन किया जाए, जवाबदारी के साथ किया जाए, और इस पूरे प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता की जरूरत थी। गुजरात में उस समय जो प्रशासन का जो एक ढांचा था, उस ढांचे में कमी ये थी कि जो जनता की शिकायत थी वो प्रशासन तक आते आते कहीं दब जाती थी, और जो शिकायतों का निवारण करने के लिए एक से अधिक एजेंसी की जरूरत होती थी, वहां जनता की शिकायत का निवारण नहीं हो पाता था। तो इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने एक प्रयोग किया कि हम जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए हम तकनीकी का सहारा लेंगे, और इस तकनीकी के सहारा से जो प्रशासन है वो एक स्तर पे, गांव के स्तर पे, तालुका के स्तर पे, जिला के स्तर पे और राज्य के स्तर पे सीधे जनता से जुड़ने का उनको एक व्यवस्था मिला। तो ये जो स्वागत की जो योजना है, ये स्वागत की योजना 2003 में लागू की गई थी, और इस योजना का उद्देश्य था कि जनता की शिकायत, खासकर वो शिकायत जिसका निवारण वर्षों से नहीं हो पा रहा है, उसके निवारण को प्राथमिकता के आधार पे अब सरकार उसका निवारण को दूर करे, उनकी शिकायतों को दूर करे। तो ये जब व्यवस्था लागू की गई थी, जैसे आपने कहा कि अभी तक 99% जनता की शिकायतों का हल मिल चुका है, और इसका प्रमाण इससे मिलता है कि उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी और अभी के हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो ये पहल शुरू की, इस पहल का गुजरात के अंदर जो प्रभाव पड़ा उसका ये आंकड़ा इसका इम्पैक्ट बताता है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यूनाइटेड नेशन ने इसको 2010 में सर्वश्रेष्ठ अवार्ड से, गवर्नेंस के अवार्ड से इसको नवाजा। तो जनता की शिकायतों का हल मिलने लगा, जनता का सरकार के ऊपर विश्वास बढ़ा, सरकार जो है सो सीधे जनता के साथ जुड़ी, और इसका जो प्रयोग जो हुआ, ये प्रयोग जो है सो आज के समय में पूरे देश में इसको

0: अपनाया जा रहा है। और जैसा कि मैंने बताया कि यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस अवार्ड से इसको नवाजा गया है, साथ में इसको ई गवर्नेंस और पारदर्शिता के लिए भी सुशासन का बड़ा अच्छा मॉडल माना गया है। तो ये जो है वो देश के अंदर प्रशासन की जवाबदारी तय करती है और प्रशासनिक ढांचे में भी कहाँ कमी है जिसके कारण जनता की आवाज सरकार तक नहीं पहुंच पाती है, उन बिंदुओं को चिन्हित करती है और तत्कालिक उसका निवारण करती है। तो ये मॉडल जो है सिर्फ गुजरात में इसकी शुरुआत हुई, लेकिन आज देश के दूसरे राज्यों में भी इसको अपनाया जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी इसको मान्यता मिली है। तो
1: जी
0: ये एक गुजरात के तरफ से पूरे देश की बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसका नेतृत्व, इसकी शुरुआत, इसका संचालन और इसका नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था।
1: केतन जी, इतिहास के पन्ने को थोड़ा और पलटें। आपको याद होगा 2000 के शुरुआती सालों में गांव में बिजली का मतलब होता था आ गई तो गनीमत, चली गई तो आदत। फिर आई ज्योति ग्राम योजना, 1100 करोड़ रुपए खर्च हुए और 18,000 से ज्यादा गांवों में 24 घंटे बिजली रहने लगी। एक पत्रकार के नाते जब आप उस समय गांव में जाते थे तो इस एक रोशनी की किरण ने वहां के छोटे कारोबारियों और लोगों की जिंदगी को रातों रात कैसे बदल दिया। अगर कोई दिलचस्प वाकया इस ज्योति ग्राम योजना से कोई जुड़ा हो और आपको याद आ रहा हो तो वो भी हमारे श्रोताओं के साथ जरूर साझा करें।
2: पहले मैं ये जो अस्थाना जी ने कहा स्वागत की हम चर्चा कर रहे थे उसको कड़ी से एक बात कहना चाहूंगा। जो प्रधानमंत्री 2014 में नरेंद्र भाई बने और जो प्रगति प्लेटफॉर्म जो डेवलप किया, हम सबको मालूम है कि देश से जुड़ी हुई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य योजनाओं का एक रेगुलर रिव्यू होता है प्रगति के प्लेटफॉर्म से। मैं मानता हूं कि ये प्रगति एक तरह के उन्होंने मुख्यमंत्री काल में जो स्वागत किया था, हालांकि उसका स्वरूप अलग है, भिन्न है, लेकिन उसका ही एक एक्सटेंशन है कि रिसेंटली लास्ट दिसंबर में ही हमने प्रगति के 50 मीटिंग पूरे होने पर एक कार्यक्रम किया था। तो नरेंद्र भाई एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे कई सारे नए नए उपक्रम के लिए जाने जाते हैं, हमने गुजरात में देखा है। ज्योतिग्राम की जहां तक सवाल है, 2003 में जब ये योजना शुरू हुई उससे पहले गुजरात पानी के साथ साथ बिजली के संकट से काफी जूझ रहा था। गांव में बिजली दे तो एग्रीकल्चर को क्या करे, एग्रीकल्चर को बिजली दे तो रेसिडेंशियल और नॉन कमर्शियल यूजेस है और नॉन एग्रीकल्चर यूजेस है उनको कैसे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करे, ये अपने आप में बड़ी चैलेंज थी। तो ज्योतिग्राम योजना के तहत मुझे याद है कि उत्तर गुजरात के गांव ले लो, सौराष्ट्र के गांव में हम ट्रैवल करते थे तो दिन में चार चार छह छह घंटे बिजली नहीं मिलती थी। इवन इन अ हॉट समर के दिनों में भी दिन में 5-6 घंटे बिजली न होना कितना त्रासदी होता है हम सबको मालूम है। गांव की छोड़ो, जो सेमी अर्बन टायर टू सिटीज है उसमें घंटों तक इलेक्ट्रिसिटी कट रहता था। उस हालात में इस सिचुएशन को सिर्फ कोई एक योजना ने बदला है तो वो ज्योतिग्राम है, क्योंकि उन्होंने क्या किया, ज्योतिग्राम योजना के तहत एग्रीकल्चर फीडर को नॉन एग्रीकल्चर रूरल सप्लाई से अलग कर दिया पूरा। तो उससे ये हुआ कि जो हाउस होल्ड और नॉन एग्रीकल्चर रूरल एक्टिविटीज है उनको 24 आवर 3 फेज बिजली मिलने लगी, और जो एग्रीकल्चर के लिए बिजली चाहिए थी वो बिजली का एक सेपरेट फीडर के जरिए प्रावधान किया गया। जब किसानों की जरूरत हो, किसानों को जब चाहिए बिजली तब उनको बिजली मिले, और जब किसानों को बिजली नहीं चाहिए तब बिजली का कोई वेस्ट ना हो उसका भी ख्याल रखा गया।
1: जी हाँ, ज्योतिग्राम योजना
2: जी
1: के आंकड़े बताते हैं कि लगभग 3 करोड़ से ज्यादा नागरिकों को इस योजना से लाभ हुआ और उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव भी देखने को मिला। संकल्प से सिद्धि के इस सफर में आगे बढ़ते हैं। अगला पड़ाव रहा वाइब्रेंट गुजरात। 2003 में जब पहली बार वाइब्रेंट गुजरात हुआ तो बहुत से लोगों को लगा कि यह सिर्फ एक सरकारी इवेंट है, लेकिन देखते ही देखते गुजरात सिर्फ कपड़ा या केमिकल का गढ़ नहीं रहा बल्कि टाटा नैनो से लेकर बड़ी बड़ी ऑटो कंपनियों का हब बन गया। ये एक राज्य से निकलकर ग्लोबल ब्रांड बनने का टर्निंग प्वाइंट भी साबित हुआ। वाइब्रेंट गुजरात पर चर्चा से पहले आइए सुन लेते हैं ये विशेष रिपोर्ट।
3: गुजरात के विकास की कहानी में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। इसकी शुरुआत 28 सितंबर 2003 को तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई थी। उस समय इसका उद्देश्य था गुजरात की निवेश क्षमता को दुनिया के सामने रखना और राज्य को एक पसंद

0: पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करना। पहले संस्करण में करीब 300 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागी शामिल हुए थे। समय के साथ यह आयोजन एक बड़े वैश्विक मंच में बदलता गया। वर्ष 2019 तक इनमें 135 से अधिक देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। यानी एक राज्य केंद्रित निवेश सम्मेलन से शुरू हुई पहल धीरे धीरे वैश्विक कारोबारी और निवेश मंच का रूप ले चुकी थी। वाइब्रेंट गुजरात की यात्रा में जनवरी 2024 में आयोजित 10वां संस्करण भी महत्वपूर्ण रहा। इसका विषय था गेटवे टू द फ्यूचर। इस संस्करण में निवेश के साथ साथ भविष्य की तकनीक, नवाचार, सतत विकास और वैश्विक सहयोग जैसे विषयों पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री ने इसे गुजरात से आगे बढ़कर भारत के विकास और वैश्विक साझेदारी की दिशा में महत्वपूर्ण मंच के रूप में रेखांकित किया। वाइब्रेंट गुजरात का प्रभाव केवल बड़े निवेश समझौतों तक सीमित नहीं रहा। इस मॉडल के आधार पर क्षेत्रीय स्तर पर भी निवेश और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने की कोशिश की गई है। वर्ष 2025 और 26 में गुजरात के अलग अलग क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंसेस आयोजित किए गए। जनवरी 2026 में कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्र के सम्मेलन में सिरेमिक, इंजीनियरिंग, बंदरगाह और लॉजिस्टिक्स, ग्रीन एनर्जी, पर्यटन, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 11वें संस्करण का आयोजन 10 से 12 जनवरी 2027 तक गुजरात के गांधीनगर में किया जाएगा। इस वैश्विक सम्मेलन में दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष और मंत्री, कॉरपोरेट जगत के नेता, वरिष्ठ नीति निर्माता, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के प्रमुख और शिक्षाविद शामिल होंगे। जनवरी 2027 में होने वाले इस वैश्विक आयोजन का मुख्य फोकस विकेंद्रित क्षेत्रीय विकास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और उभरती तकनीकों और विकसित भारत 2047 के व्यापक राष्ट्रीय लक्ष्य पर होगा।
1: डॉक्टर अस्थाना, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि कोई भी योजना देश में नहीं थी कि कोई एक राज्य इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने के लिए वाइब्रेंट गुजरात जैसा कोई कार्यक्रम करे और देश ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों से वहां कंपनियां आए, इन्वेस्टर्स आए, इन्वेस्ट करें, वहां कंपनी लगाने की बात हो, रोजगार सृजन की बात हो, कैसे देखते हैं? क्योंकि आज का जमाना अलग है। आज से 23 साल पहले 2003 में इस सोच के साथ किसी आयोजन को करना और उसमें सफलता हासिल करना बहुत बड़ी उपलब्धि।
2: जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 2003 में इस तरह की योजनाओं के बारे में सोचना भी अपने आप में दूरदर्शिता का एक घोतक है कि एक दूरदर्शी राजनीतिक व्यक्ति हमारे राज्य को, अभी तो वो देश की कमान संभाल रहे हैं लेकिन उस समय अपने राज्य को किस स्तर पे स्थापित करना चाहते थे, ये उनकी सोच को बताता है। जैसा कि आपको ख्याल होगा कि गुजरात, महाराष्ट्र के साथ गुजरात भी औद्योगिक क्षेत्र में एक सफल राज्य माना जाता है, तो उद्योग धंधा यहाँ के DNA में है। लेकिन ये उद्योग जो है एक क्षेत्र तक सीमित था, जैसे सूरत का कपड़ा उद्योग, सूरत का हीरा का उद्योग या अहमदाबाद का फार्मेसी का उद्योग। लेकिन नरेंद्र भाई मोदी जो है एक विजनरी लीडर थे और उनका शुरू से एक स्वप्न था कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का काम करें। आप सोचिए कि गुजरात राज्य में रह के एक अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पे निवेश को आकर्षित करना एक बहुत बड़ी एक सोच थी, और इसीलिए उस समय कुछ लोग जो उनकी सोच के समक्ष खड़े नहीं रह सकते थे, उन्होंने उनको चैलेंज भी किया और उसका एक अलग दृष्टिकोण से देखा। लेकिन 2003 से लेकर अगर आज तक आप जो वाइब्रेंट गुजरात का सफर देखें, तो 2003 में जहां पर मात्र 300 डेलीगेटों के साथ ये वाइब्रेंट गुजरात शुरू हुआ था, वहां पे आज जो है सो इसकी संख्या 40,000 तक पहुंच गई है। और विश्व का कोई भी ऐसा देश, कोई भी ऐसी बड़ी कंपनी नहीं है जो कि ये वाइब्रेंट गुजरात को अटेंड नहीं करना चाहता है, या वाइब्रेंट गुजरात के द्वारा उसको जो गुजरात के अंदर जो निवेश का मौका मिल रहा है उस निवेश के मौके को वो चूकना चाहता है। जैसे मैंने आपको बताया कि गुजरात के अंदर निवेश करने की बहुत सारी क्षमताएं हैं और इन्हीं क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने गांव-गांव में बिजली पहुंचाई, जल की व्यवस्था की, गुजरात के अंदर जो पोर्ट है उसके सुधारे पे उन्होंने जोर दिया, इसके बाद जो गुजरात के अंदर जो रोड का नेटवर्क है उसके अंदर जोर दिया, प्रशासन के अंदर पारदर्शिता लाई, तो ये सब का जो परिणाम है वो हमें वाइब्रेंट गुजरात के अंदर देखने को मिला। आज के दिन अगर आप बात करें तो वाइब्रेंट गुजरात जो है एक

0: सिर्फ सरकारी योजना नहीं रह के पूरे देश के अंदर ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में, टेक्सटाइल के क्षेत्र में, फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर, केमिकल, टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर, आप किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, हर एक क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं को खोजने की और उसके अंदर निवेश करने का एक बड़ा उचित प्लेटफॉर्म बन गया है। और इस साल से तो इसका 4 चैप्टर शुरू हो गया है, माने अब यह क्षेत्रीय पहल बन गया है। अभी नॉर्थ गुजरात में, साउथ गुजरात में, मध्य गुजरात में और सौराष्ट्र गुजरात में अलग अलग क्षेत्रों में क्षेत्रीय जो व्यवस्था है, जहां पे क्षेत्रीय रोजगार या जो निवेश के अवसर है उसको, संभावनाओं को तलाशने का ये एक पहल बन गया है। जैसा कि अभी आपने बात की कि कच्छ के अंदर जो 2001 में जो भूकंप आया था और उसके बाद नरेंद्र भाई मोदी ने जो कमान संभाला था,
1: जी
0: तो आज कच्छ जो इसका सबसे बड़ा लाभार्थी प्रदेश बना है। आज कच्छ के अंदर आप जाके देखें तो आपको विश्वास नहीं होगा कि यहाँ पे कभी भूकंप आया था। इस वाइब्रेंट गुजरात ने इतनी ज्यादा तरक्की के अवसर खड़े किए हैं।
1: सफर को आगे बढ़ाते हैं, एक और महत्वपूर्ण पड़ाव रहा केतन जी, गिफ्ट सिटी। गांधीनगर में जब गिफ्ट सिटी का विचार आया तो 2008 के आसपास दुनिया वैश्विक मंदी से जूझ रही थी। लोग सोच रहे थे कि गुजरात में सिंगापुर या दुबई जैसा फाइनेंशियल हब कैसे बनेगा। और आज जब हम वहां बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को काम करते देखते हैं तो प्रधानमंत्री के उस विजन को किस तरीके से आंकते हैं आप? फिर वही बात कि एक तरफ वैश्विक मंदी थी और दूसरी तरफ गिफ्ट सिटी का विचार, अपने आप में विरोधाभास जरूर था, लेकिन कह सकते हैं कि वो दूरदर्शिता ही थी जो इसे न सिर्फ मुकम्मल कर पाई बल्कि सफलता के नए अध्याय भी जोड़ पाई।
2: जब गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी, गिफ्ट सिटी, ग्लोबल फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजी हब बनाने का कॉन्सेप्चुलाइज हुआ और GIFTCL इनकॉर्पोरेटेड हुई 21 जून 2007 को, तब से शुरू के दिनों में बहुत लोगों को ये लगता था कि गुजरात अहमदाबाद गांधीनगर के बीच में, जहां आज ये पूरा डेजर्ट जंगल एरिया है साबरमती नदी के किनारे पे, वहां क्या होगा, बड़ी कंपनियां यहाँ क्यों आएगी, जब हमारे पास मुंबई, दिल्ली, चेन्नई जैसे बड़े मेट्रो शहर है उसको छोड़ के, और स्पेशली जब मुंबई नजदीक है और देश का फाइनेंशियल हब है, तो उसको छोड़ के ग्लोबल कंपनियां यहाँ क्यों आएगी, यहाँ ना तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है ना तो कुछ है। तो शुरू में जब नरेंद्र भाई ने ये अपना विजन प्रस्तुत किया तब बहुत सारी दुविधाएं थी, लोगों के मन में सवाल था, लेकिन आज 2026 में यदि आप गिफ्ट सिटी की मुलाकात लोगे तब आपको पता चलेगा कि यहाँ गूगल, माइक्रोसॉफ्ट से लेके बहुत सारी टेक कंपनियां, वर्ल्ड में जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका एक एकम गिफ्ट सिटी में प्रेजेंस है। नरेंद्र भाई खुद एक स्टेट के सीईओ के तौर पे गिफ्ट सिटी का मार्केटिंग कर रहे थे, बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से बातें कर रहे थे, उनको गुजरात आने का न्योता दे रहे थे, जो भी सुविधा उनको चाहिए थी वो सुविधा उपलब्ध कराने का वादा कर रहे थे। 2014 में जब नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री बने तब से जाके उसकी जो स्पीड है डेवलपमेंट की वो काफी हद तक बढ़ी है, और आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो, उनके सबके इंटरनेशनल एक्सचेंज यहाँ काम कर रहे हैं। 2-3 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज, डिकिन से लेके काफी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज अपना कैंपस गिफ्ट सिटी में लगाए बैठी है। तो कुल मिला के ये जो पूरा प्लांड एक फिनटेक सिटी है, वो फिनटेक सिटी उभर के आ रहा है गुजरात और अहमदाबाद में। इनके साथ साथ उनको रेल कनेक्टिविटी मेट्रो के जरिए दी गई है, अलग से प्रावधान किए उनके लिए काफी कुछ। एयर कनेक्टिविटी भी आगे आने वाले सालों में डायरेक्ट गिफ्ट सिटी से देने की एक संभावना भी सोची जा रही है। तो शुरू में केवल एक स्वप्न लगता था, आज वो सबके सामने एक हकीकत बनते हुए हम सब देख रहे हैं।
1: जी बिल्कुल। और वाइब्रेंट गुजरात समिट जब 2024 में आयोजित हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिफ्ट सिटी को लेकर अपने मन के विचार लोगों के साथ साझा किए।
3: गिफ्ट सिटी में हमारे होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच का प्रतिबिंब दिखता है। यहाँ केंद्र, राज्य और IFSC अथॉरिटी मिलकर काम करते हैं ताकि दुनिया का बेस्ट रेगुलेटरी एनवायरमेंट तैयार हो। हमें इसे ग्लोबली कॉम्पिटिटिव फाइनेंशियल मार्केट प्लेस बनाने का प्रयास तेज करना चाहिए।
1: कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर अस्थाना, सौराष्ट्र की थोड़ी चर्चा कर ली जाए यहाँ पर। सौराष्ट्र में पानी की समस्या तो जग जाहिर थी, सूखा और पलायन वहाँ की नियति थी। सोनी योजना में खुली नहरें बनाने की बजाय 1100 किलोमीटर से ज्यादा लंबी अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछाकर 115 बांधों को नर्मदा के पानी से भर दिया गया।

0: समय ये सुनने में और वहां के लोगों को महसूस करने में थोड़ा आश्चर्यचकित जरूर कर रहा था, लेकिन एक पॉलिसी एक्सपर्ट के तौर पर आप क्या मानते हैं, जमीन अधिग्रहण की झंझटों से बचाकर पाइपलाइन बिछाने का ये फैसला जल प्रबंधन के क्षेत्र में कितना बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ?
1: जी, ये नरेंद्र भाई मोदी जी का फिर से एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक कदम और बहुत ही साहसिक कदम था, क्योंकि सौराष्ट्र की जो जिले थे जिसमें राजकोट, जामनगर, मौरवी, भावनगर, सुरेंद्रनगर, अमरेली, जूनागढ़ आता था, इसमें हमेशा पीने के पानी की त्रासदी रहती थी। पीने के पानी के अलावा वहां के जो किसान थे उनको भी अपनी खेती के लिए उचित मात्रा में सिंचाई के लिए पानी का व्यवस्था नहीं हो पाता था। इधर जो साउथ गुजरात और मध्य गुजरात तक जो नर्मदा का पानी आ चुका था, इसका लाभ सौराष्ट्र के क्षेत्र तक पहुंचाना अपने आप में एक चुनौती थी, क्योंकि जब जमीन अधिग्रहण की बात चलती थी तो उस समय बहुत सारे प्रशासनिक दुविधाएं आती थी, बहुत सारे लिटिगेशन आते थे। इसलिए सरकार ने निर्णय लिया कि चूंकि हमें पीने का पानी, क्वालिटी वाला पानी हमें लोगों तक पहुंचाना है, इसलिए वहां पे पाइपलाइन का मदद लिया गया। लेकिन अगर आप उस क्षेत्र के जो भौगोलिक स्थिति की अगर आप एक अवलोकन करें तो ये अपने आप में एक तकनीकी एक चुनौती थी कि कैसे बिना किसी के जमीन का अधिग्रहण किए हुए हम शुद्ध पानी, पेयजल को हम लोगों तक पहुंचाएं। तो ये जो सुनई योजना थी जिसमें 1371 किलोमीटर नहरों को और 115 बांधों को जोड़ा गया और पीने का शुद्ध पानी इन राज्यों तक, इन जिलों तक पहुंचाया गया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन जैसे कि केतन भाई ने भी कहा और आपने भी अपने उद्बोधन में से चिन्हित किया है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का एक उनका कैरेक्टरिस्टिक्स था कि वो हमेशा नई पहल को वो जोड़ देते थे कि कुछ नया करना है। वो तकनीकी को अपनाने में बहुत ज्यादा विश्वास रखते थे और कोई भी काम जो है वो वैश्विक स्तर पे करना चाहते थे कि इसका एक जो इम्पैक्ट हो वो इम्पैक्ट पूरे लोगों तक मिले, पूरे राज्य को मिले, पूरे बड़े भूभाग के लोगों को मिले। तो ये जो लिंक योजना थी जिसके अंतर्गत सौराष्ट्र को जल सुरक्षा दी गई और सौराष्ट्र के क्षेत्रों में पानी पहुंचाया गया, इससे वहां पे कृषि को बढ़ावा मिला, इससे वहां पे ग्राउंड वाटर रिचार्ज हुआ, ग्रामीण क्षेत्रों में नल के द्वारा पीने लायक पानी पहुंचाया गया, तो काफी ज्यादा लोगों को वहां पे फायदा हुआ है।
0: जी बिल्कुल। केतन जी, एक बार फिर थोड़ा पीछे चलते हैं। 2003 गर्मी का मौसम, जून की तपती दोपहरी, मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों और वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के साथ गुजरात के गांव गांव में जाते हैं। लग्जरी गाड़ियों में नहीं, पैदल घूमते हैं और लोगों को ये बताते हैं कि आप अपनी बच्चियों को, बेटियों को स्कूल जरूर भेजें। और जब स्कूल में वो बच्चियां आती हैं तो उन्हें खिलौने, मिठाई, बैग देकर उनका हौसला बढ़ाया जाता है ताकि जो स्कूल का डर था मन में वो डर न रहे। और इससे भी एक कदम आगे बढ़कर उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो उनको उपहार मिला करते थे, गिफ्ट मिला करते थे बतौर मुख्यमंत्री, उनको ऑक्शन में सेल आउट करके जो पैसे आए उससे एक योजना शुरू की और योजना का नाम था कन्या केलावणी योजना। कैसे देखते हैं इस पर्सनल टच को और क्या मानते हैं आप कि इससे जो बेटियों के स्कूल छोड़ने, जिसे ड्रॉप आउट रेट कहते हैं, इसमें जो ड्रास्टिक चेंज आया उसमें कितनी बड़ी भूमिका थी इस पर्सनल टच की?
2: आपने जिस बात का जिक्र किया कि मुख्यमंत्री के तौर पे वो जब कोई फंक्शन में जाते थे और उनको जो उपहार दिया जाता था, वो नॉर्मली ऐसा होता है कि वो सब स्टेट की जो ट्रेजरी है, जो तोशाखाना बोला जाता है, उसमें जमा करवाना होता है। लेकिन आज तक परंपरा यही चलती रही थी कि किसी को कुछ पता रहता नहीं था कि तोशाखाना में क्या हुआ, क्या नहीं, कितनी चीजें आई, उसका बाद में क्या होता है, किसी को कुछ पता नहीं था। ये पहली बार हुआ कि नरेंद्र भाई ने ये सब उपहारों, और जब खुद मुख्यमंत्री अपने को मिले हुए उपहारों को ट्रेजरी में जमा करवाते हैं तो ऑटोमेटिकली मंत्रीज और सेक्रेटरीज भी उसको फॉलो करने लगे, तो बहुत सारी चीजें ये तोशाखाना में आने लगी और उसका एक ऑक्शन होने लगा। चीजें सिंबॉलिक थी लेकिन ऑक्शन में जो बड़े बड़े लोग आते थे वो उनका कोज देख के उनको खरीदते थे कि उनका कोज ये था कि इनमें जो इनकम होगी वो इनकम गर्ल्स एजुकेशन के लिए स्पेंड की जाएगी। नरेंद्र भाई ने लोगों को प्रेरित भी किया कि आप ये उपहार चीजें ऑक्शन में खरीदे, ऊंचे दामों में खरीदे, ताकि ये फंड में ज्यादा रकम आए और वो रकम हम एक कोज के लिए, कन्या केड़वने के लिए हम स्पेंड कर सके। मुझे बराबर याद है कि एक बार जब मैंने उनसे इसी विषय पर साक्षात्कार किया था तब

0: उन्होंने कहा था कि एक गर्ल्स एजुकेशन मेरे दिल को छूता हुआ एक विषय है। मतलब आपने जो पर्सनल टच की बात की वो यही कनेक्ट होती है। उन्होंने कैटेगरी कहा था कि बहुत सारी योजनाएं तो सरकारी तौर पर चलती रहेगी, लेकिन बच्ची को पढ़ाना, बच्ची को स्कूल ले जाना और उसको पढ़ने के लिए प्रेरित करना, उसको बच्ची स्कूल तक आए, क्योंकि ड्रॉप आउट रेशियो बहुत ज्यादा था उस समय, गर्ल्स ड्रॉप आउट रेशियो, तो उनको ज्यादा से ज्यादा एनकरेज करें, वो मेरे लिए मेरे दिल को छूने वाली बात है। उनके दिल से काफी करीब ये विषय था और इसीलिए उन्होंने ये हर साल कन्या केलवनी उपक्रम शुरू किया। गांव गांव जाने लगे, उसका मंत्रियां और बड़े बड़े अफसर भी जाने लगे। नो डाउट उसको फिर गर्ल एजुकेशन के बारे में स्टेट गवर्नमेंट ने काफी सारे बहुत सारे इनिशिएटिव और भी लिए, लेकिन ये उपक्रम था उसके, उसने उसकी नींव रखी। और आपको मैं ये भी बता दूं कि बतौर मुख्यमंत्री उनको 12 साल में जो सैलरी मिली थी वो सारी रकम प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने खुद ने अपने लिए खर्च नहीं किए, वो सारी रकम उन्होंने कन्या केलवनी के लिए डोनेट कर दी थी। तो ये बताता है कि ये विषय उनके दिल से कितना करीब था और वो एक इमोशनल टच दे रहे थे इन उपक्रम को।
1: गुजरात में कन्या केलावणी की
0: बिल्कुल
1: उन्होंने शुरुआत की और जब देश के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी तो इसी सफर को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का भी आरंभ किया जो आज पूरे देश में बहुत लोकप्रिय है। डॉक्टर अस्थाना, थोड़ी चर्चा किसानों की भी कर लेते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि सूखाग्रस्त जो इलाका होता है, जो सूखाग्रस्त राज्य होते हैं, वहां खेती का विकास बहुत मुश्किल है। लेकिन आपको याद होगा 2005 गुजरात ने कृषि महोत्सव का आयोजन किया और वहां हमने देखा कि एसी कमरों में बैठने वाले वैज्ञानिक और पूरी सरकारी मशीनरी चिलचिलाती धूप में सीधा किसानों के खेतों तक पहुंच गई और इस एक पहल ने गुजरात के कृषि विकास दर को डबल डिजिट में पहुंचाने का करिश्मा कर दिया। क्या थी रणनीति और कैसे उसे जमीन पर इंप्लीमेंट किया गया?
2: जी, बहुत ही अच्छा आपने एक प्रयोग जो गुजरात के उस समय के जो मुख्यमंत्री थे श्री नरेंद्र भाई मोदी के द्वारा जो किया गया 2005-06 में, उसका आपने बहुत ही अच्छा जिक्र किया। जैसे मैंने आपको कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री जी का एक पहल रहता था कि कुछ नया किया जाए, कुछ ऐसा किया जाए जिसका इम्पैक्ट बहुत सारे लोगों पर पड़े। उद्योग के साथ गुजरात की कृषि को भी विशेष महत्व दिया गया सरकारी योजनाओं में। और जैसा कि अभी हमने पिछली चर्चा में देखा कि बिजली की कमी के कारण, पानी की कमी के कारण बहुत सारे कृषि जो क्षेत्र थे वहां पे कृषि का सही उपयोग या सही दिशा में उनका बढ़ोतरी नहीं हो पा रहा था। इसलिए सरकार ने एक कार्यक्रम चलाया जिसका मूल मंत्र था कि अब कृषि वैज्ञानिक, कृषि विशेषज्ञ और कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए जितने भी सरकारी महकमे हैं उनके अधिकारी किसानों तक पहुंचेंगे, किसानों के गांव तक जाएंगे, न कि किसान जो है सो इन चीजों का लाभ लेने के लिए दर दर की ठोकरें खाए। तो ये जो सरकार जो है वो जनता के दरवाजे तक पहुंचे, इसके पहल के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में ये एक अनूठा प्रयास था।
1: इस अनूठे प्रयास ने न सिर्फ गुजरात की कायाकल्प की बल्कि उससे प्रेरणा लेकर भारत के कई गांवों जो सूखे से परेशानी में थे उनका भी परिवर्तन हुआ। 25 वर्षों का यह सफर हमें सिखाता है कि जब शासन में विजन हो, नीतियों में स्पष्टता हो और क्रियान्वयन में पारदर्शिता हो तो बड़ी से बड़ी चुनौती को भी प्रगति के अवसर में बदला जा सकता है। गुजरात का ये विकास मॉडल आज केवल एक राज्य का अनुभव नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के विकसित भारत के सपने की सबसे मजबूत रीढ़ है। केतन जी आपका, डॉक्टर स्थाना आपका इस विशेष कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय आकाशवाणी के श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे 25 वर्ष गुजरात से राष्ट्र निर्माण तक। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार केतन त्रिवेदी और सहकारी नीति विशेषज्ञ डॉक्टर ए.के. अस्थाना। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का हमारा पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप का नंबर है 9289094044।
4: अभी आप सुन रहे थे स्पेशल सीरीज जन सेवा से देश सेवा। 100.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस। और दोस्तों अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक और जनसेवा जीवन के 25 साल पूरे होने पर देश में सेवा संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक चलेगा। प्रधानमंत्री मोदी के 25 वर्षों के सार्वजनिक जीवन को देश सेवा, समर्पण और राष्ट्र निर्माण की लंबी यात्रा माना जाता है। इन्हीं 25 वर्षों की निरंतर सेवा काल की जन कल्याणकारी उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने और हर नागरिक को विकसित भारत 2047 के सामूहिक राष्ट्रीय संकल्प से जोड़ने के उद्देश्य से सेवा संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। इसका मकसद प्रधानमंत्री के योगदान और केंद्र सरकार की योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाना है। इस अवसर को सिर्फ उत्सव के रूप में नहीं बल्कि सेवा और जनभागीदारी के संकल्प के रूप में भी मनाया जा रहा है। इस अभियान के तहत व्यापक स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा और इसमें आम लोगों, कार्यकर्ताओं और सामाजिक संगठनों की भागीदारी पर जोर भी दिया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता के साथ लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का भी प्रयास होगा। विद्यार्थियों और युवाओं को भी जोड़ा जाएगा इस अभियान के तहत। स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में विद्यार्थियों के लिए अलग अलग प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। वहीं युवाओं की प्रतिभा और नए विचारों को मंच देने के लिए नवाचार और हैकाथॉन जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य युवाओं को रचनात्मक सोच, तकनीक और राष्ट्र निर्माण से जोड़ना है। एक महीने के इस व्यापक अभियान में अनेकों कार्यक्रमों के जरिए सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, विकास और जनभागीदारी की कहानी समाज के हर वर्ग तक पहुंचाई जाएगी। 25 करोड़ बच्चों के सपनों का भारत, नमो सेवा गाथा, आंगन का उत्सव, कहानी बदलाव की, विकसित भारत संकल्प यात्रा, सेवा ज्योति यात्रा, ऐसी न जाने कितने ही कार्यक्रम होंगे इस एक महीने में। 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा मेरा योगदान कार्यक्रम में हर नागरिक को 25 निर्धारित सेवा गतिविधियों में से किसी एक से जुड़कर समाज के लिए योगदान देने का मौका भी मिलेगा। तो वही आप भी इस जनभागीदारी का हिस्सा बन सकते हैं और आप भी इस अभियान से जुड़ सकते हैं। फिलहाल एक प्यारा सा गीत आप तक पहुंचा रही हूं। 9:45 हो चुके हैं और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस। जुड़े हैं आप म्यूजिकल दिल लगी के इस खूबसूरत सफर में 100.1 मेगाहर्ट्ज़ एफएम गोल्ड के साथ।

दोस्तों शबाना आजमी ने कई नामचीन फिल्मकारों के साथ काम किया है, उनमें से प्रमुख हैं श्याम बेनेगल की निशांत, जुनून, मंडी, सुष्मन और अंतरनाद। इन फिल्मों में उन्होंने काम किया सत्यजीत राय के साथ शतरंज के खिलाड़ी, मृणाल सेन के साथ खंडर, जेनेसिस और एक दिन अचानक, ये फिल्में उन्होंने की। सईद मिर्जा की फिल्म उन्होंने की थी अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, गौतम घोष की पार उन्होंने की थी, सही परांजपे की स्पर्श और दिशा, अपर्णा सेन की पिकनिक और सती, महेश भट्ट की अर्थ उन्होंने की थी। आगे बढ़ते हैं उनके द्वारा अभिनीत फिल्म अवतार के इस गाने के साथ।

दोस्तों, शबाना आजमी द्वारा अभिनीत फिल्मों की एक फहरिस्त पर हम जब नजर डालते हैं तो पता चलता है कि किस किस्म की फिल्में उन्होंने की हैं। 1988 में मैडम सोजार्ट्स का, 1992 में आई थी सिटी ऑफ जॉय, 1993 में इन कस्टडी, 1993 में ही एक और फिल्म आई थी उनकी सन ऑफ द पिंक पैंथर, 1996 में फायर, 1997 में साज,

1998 में अर्थ, 1999 में गॉड मदर, 2002 में उनकी फिल्म आई थी मकड़ी, तहजीब आई थी 2003 में, 2004 में मौनी रागाज, 2005 में 15th पार्क एवेन्यू, इसी साल यानी 2005 में आई थी वाटर बॉर्न, 2006 में उमराव जान, 2007 में हनीमून ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड।

इसी साल यानी 2007 में लायंस ऑफ द पंजाब प्रेजेंट्स, 2008 में उनकी फिल्म आई थी सॉरी भाई, और 2010 में इट्स वंडरफुल आफ्टर लाइफ। शबाना आजमी मटरू की बिजली का मंडोला इस फिल्म में भी नजर आई थी। दोस्तों, शबाना आजमी को 2006 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिल चुका है।

0: आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था अभिनेत्री शबाना आजमी पर। कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए शोक को इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
1: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में, मीठी मीठी बातों में।
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती बेचारा।

0: नमस्ते दोस्तों, आ गई हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आप करते हैं हमें फोन और अपनी पसंद के गाने सुनना चाहते हैं, तो देखते हैं कि आज पहले नंबर पर हमारे कौन श्रोता हैं जो बात करना चाह रहे हैं। कुछ श्रोताओं ने आज गणेशोत्सव पर बात की है, कुछ श्रोताओं ने अभियंता दिवस के बारे में अपनी जानकारी दी है, अपनी बात साझा की है। तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला फोन कॉल्स का। ये है आज का पहला कॉल। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, ममता दीदी नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं दीपक जाधव बात कर रहा हूँ मैडम, बुल्ढाना महाराष्ट्र का।
0: जी बताइए दीपक जी, अपने बारे में जरा जानकारी दीजिए और बुल्ढाना कहाँ पर महाराष्ट्र के किस इलाके में पड़ता है?
1: जी बुल्ढाना विदर्भ में पड़ता है मैडम, अकोला बुल्ढाना जालना जिला के बाजू में।
0: जी जी, तो अपने उस गांव की कुछ खासियत बताइए ना।
1: जी हमारा खेड़ा गाँव है मैडम, छोटा सा, खेती किसानी करते हैं हम। साल किसान के बहुत हाल चल रहे हैं, बारिश नहीं, इधर फसल आने के पहले बारिश गई है।
0: ओ, बारिश नहीं हो रही है और बहुत जगह पे तो बहुत ज्यादा असंतुलित बारिश हो रही है, बाढ़ आई हुई है।
1: जी हमारे इधर नहीं मैडम, फसल नुकसान में इस साल।
0: ओ, तो कौन कौन सी फसल होती है आपके यहाँ?

0: कुएं भी है हमारी तरफ, लेकिन बारिश नहीं होने के कारण उसमें पानी आ रहा है।
1: बिल्कुल, उतना इफरात में पानी तो नहीं मिल पाएगा।
0: हाँ। जी, जमीन की लेवल नीचे गई पानी की।
1: जी अच्छा बताइए, आप आज गाना कौन सा सुनना चाहते हैं?
0: गणेश उत्सव त्योहार चल रहा है, इसी अवसर पर मैं गाना सुनना चाहूंगा, हमसे बढ़कर कौन मूलगा, देवा देवा गणपति देवा।
1: जी जी, तो महाराष्ट्र में तो गणेशोत्सव की बड़ी धूम होती है, तो आपके घर में भी गणपति आते हैं या आपके घर के आसपास?
0: आते।
1: अच्छा,
0: ये आते हमारे गांव में, घर पर तो होता है गणपति, हर एक घर में होता है।
1: और इसी के बहाने लोग एक दूसरे के घर आते जाते हैं ना?
0: जी जी बिल्कुल
1: जी। तो चलिए फिर, आपका हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आपने हमें फोन किया। अब आपकी पसंद का गाना सुनते हैं ये।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश मैम जी, नमस्कार।
0: जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से?
1: मैम तहसील ईसागढ़, जिला अशोक नगर, मध्य प्रदेश से विनोद नारायण कुशवाहा बोल रहा हूँ मैम।
0: जी विनोद कुमार जी, बताइए क्या हाल है मध्य प्रदेश का और आपका क्या हाल है?
1: बस राम जी की कृपा और आपका आशीर्वाद मैडम, बढ़िया है हालचाल। आज मैम हमारी बरसों बाद कॉल लगी है, कोरोना के बाद से आज कॉल लगाए मैम।
0: अच्छा, कोरोना के समय तो हेलो फरमाइश था ही नहीं, बंद हो गया था आज।
1: नहीं, और पहले भी आता था ना मैम अपना प्रोग्राम।
0: जी जी जी, तो चलिए आज लग गया है, तो बताइए अपने बारे में, बताइए क्या काम काज है आपका?
1: जी मैम, हम खेती बाड़ी का काम करते हैं और अपने अभी गेहूं, मक्का और सोयाबीन लगा है और धान भी लगाई हुई है।
0: तो फसल अच्छी है?
1: जी जी बढ़िया है मैम, अभी तो अब आगे देखते हैं कैसे होगी, अभी तो फिलहाल में बढ़िया है, टॉप 10।
0: जी जी, तो बढ़िया। आपका गांव भरा पूरा गांव है, लोग कैसे हैं वहाँ के?
1: जी बहुत अच्छे हैं मैम। मैं थोड़ा हमारे अशोकनगर जिले के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा।
0: बिल्कुल दीजिए।
1: हमारे अशोकनगर जिले में एक गांव है करीला धाम, वहाँ पे रंग पंचमी के दिन बहुत ही बड़ा विशाल मेला लगता है, जो कि अपने पूरे इंडिया में फेमस है और बहुत दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। वहाँ पे जानकी माता जी का मंदिर है और मतलब एक ही दिन में मैम 25 से 30 लाख श्रद्धालु दर्शन करके जाते हैं और अपनी मन मांगी दुआ पूरी होती है।
0: अच्छा, बहुत बढ़िया बात बता।

0: नहीं, आपने अच्छी जानकारी दी है। जो लोग सुन रहे होंगे आपकी बात तो वहाँ जाना चाहेंगे तो जरूर जाएंगे।
1: ठीक है मैम, वो मेले तो बहुत लगते हैं, लेकिन जो राय नृत्य का मेला होता है ना, वो हमारे अशोक नगर में लगता है, जो कि पूरे अपने इंडिया में फेमस है। मेले तो मैम एक से बढ़ एक लगते हैं, लेकिन जो राय नृत्य के लिए जाना जाता है ना, वो सिर्फ अपने करीला धाम अशोक नगर MP में ही लगता है।
0: जी जी, तो मेले में और क्या क्या होता है? मेले में तो बहुत सारी चीजें मिलती है, खरीदारी के लिए लोग जाते हैं, मेल के लिए जाते हैं, तो आप मेला देखने किस लिए जाते हैं? हाँ
1: जी मैम, हम भी जाते हैं, हमारे लोकल में तो हम कभी भी चले जाते हैं, लेकिन जो मेले के समय में जाते हैं वो एक अलग ही बात होती है। और वहाँ की मेन जो अपन पूड़ी निकालते हैं ना, कढ़ाई होती है, तो ऐसी मान्यता है कि वहाँ से हम कढ़ाई लेकर आते हैं तो अब तेल कम जलता है हमें।
0: अच्छा ओके, और क्या क्या चीजें मिलती हैं कढ़ाई के अलावा? और क्या क्या चीजें मिलती हैं भाई? हमारे जो बचपन का मेला था ना, उसमें हमको तो बहुत सारी चीजें मिलती थी, खिलौने मिलते थे, किताबें मिलती थी, गुड़िया गुड्डे मिलते थे, और सबसे बड़ी बात वो जो बुड्ढी के बाल होते हैं ना, जिसको गुलाबी रंग का होता है, वो बहुत सॉफ्ट सा होता है, वो मिलता था, वो खाने हम जाया करते थे। तो आप बताइए अपने मेले का कुछ दिलचस्प अनुभव।
1: मेले का अनुभव ये होता है कि जैसे हम पूरी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ जाते हैं, तो किसी को टिक्की खानी होती है, किसी को चाट खाना होता है, किसी को कुछ गुड्डे गुड़िया खिलौने छोटे बच्चों के लिए लेना होता है।
0: तो टिक्की चाट
1: बचपन की याद है।
0: हाँ, टिक्की और चाट अकेले खाते हैं कि अपने घर वालों को ले जाते हैं साथ में, उनको भी खिलाते हैं, दोस्तों मित्रों को भी खिलाते हैं?
1: मित्रों को भी खिलाते हैं, दोस्तों को भी, सभी बैठकर मिलकर एक साथ में खाते हैं, तो वो आनंद ही कुछ अलग होता है। मैम ऐसे जब साथ में खाते हैं ना, तो बचपन की यादें और भी ताजा हो जाती हैं।
0: जी जी, अब बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: जी मैम, फिल्म का नाम है अग्निपथ, श्री गणेशा देवा, श्री गणेशा देवा।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया। अब बातचीत कर रहे हैं खत्म, और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: परभणी से, सतीश सावे मेरा नाम है और दोस्त का नाम वनरंग मोरे।
1: जी बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं?
2: फिल्म का नाम है लावारिस।
1: जी जी,
2: तो ऐसे वैसे।
1: अच्छा, ये गाना सुनना चाहते हैं जी, अपने बारे में कुछ बताइए और अपने दोस्त जो जिनका नाम लिया उनके बारे में भी बताइए, कैसी है दोस्ती आपकी? कभी दोस्तों के बीच
0: हमारी
1: पटपट नहीं होती है?
0: हमारी पक्की है।
1: पक्की है? अच्छा, कैसे पक्की की दोस्ती? कुछ तकरार नहीं होती कभी?
0: हमारी दोस्ती हमारी 10 साल से है।
1: अच्छा,
2: विविध भारती की दोस्ती वैसा हमारी दोस्ती है।
1: जी जी, अच्छा,
2: जैसा रेडियो मित्र है वैसा हमारा मित्र है।
1: जी, और कुछ कहना चाहते हैं?
2: धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने
2: गणपति बापा की शुभकामनाएं आपको, सबको, जो श्रोता सुनने वाले उनको भी।
1: जी जी, आपको
2: विसर्जन के दिन अच्छा देखभाल करो, बच्चे छोटे छोटे बच्चे है उनके ध्यान दीजिए, क्योंकि आजू बाजू में गाड़े आते हैं।
1: विसर्जन पर ध्यान देने की बात जो कही है आपने, बड़ी सही बात कही है कि उस समय एक जो निजी स्तर पर सोच होती है वो आपको ठीक रखनी चाहिए कि मान लीजिए विसर्जन हो रहा है तो उसमें बच्चों का ख्याल रखें, और कोई बीमार मरीज है तो एम्बुलेंस है जा रहा है तो उसको रास्ता दीजिए, वो अपनी भीड़ से निकाल देना चाहिए ताकि कई बार जान को खतरा होता है तो उनकी जान बच जाए।
2: बारिश तो नहीं गई, गई लंबे बॉडी की तरफ जाना पड़ता है, वहाँ भी थोड़ा ध्यान दीजिए, बच्चे छोटे छोटे बच्चे, गणपति के साथ में ले जाओ, बड़े बड़े को एक दो अंदर उतर सकते हैं पानी में।
1: जी जी बिल्कुल, और अब सरकार की ओर से बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई है कि आपको सीधे पानी में नहीं उतारते हैं, वो बाकायदा जगह जगह कुछ ऐसे गड्ढे भी बनवा देते हैं और वहीं एक सीमा तक जाने देते हैं, सीधे आपको पानी में उतरने नहीं देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया। अब सुनते हैं आपके पसंद का ये गाना।
2: धन्यवाद धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश
1: आदा मैडम
0: जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी मेरा नाम नहीं है, मैं देखिए मैं सेंटर कश्मीर से बात कर रहा हूँ, जिला बड़गाम में हमारा गांव पड़ता है। मैडम जी, आज जब से दोबारा हेलो फरमाइश स्टार्ट हुआ था, आपके साथ दूसरी बार बात कर रहा हूँ ममता जी।
0: जी बहुत शुक्रिया, आपका शुभ नाम क्या है?
1: जी नहीं मलिक, मेरा शुभ नाम है, सेंट्रल कश्मीर के बड़गांव डिस्ट्रिक्ट से आपके साथ बात कर रहा हूँ।
0: तो सबसे पहले तो बड़गांव के बारे में आप जानकारी दीजिए। कश्मीर खूबसूरत वादियों की जगह है, जन्नत का सा नजारा है, तो हमारे श्रोताओं को बताइए बड़गांव के बारे में, वो कैसी जगह है, कहाँ पर?
1: सेंट्रल कश्मीर में, ये जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है ये सेंट्रल कश्मीर में पड़ता है। मैं आपको बताऊंगा, कश्मीर का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है वो हमारे बड़गांव में ही मौजूद है। हमारा जो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट श्रीनगर, वो भी हमारे बड़गांव में भी मौजूद है। और हमारा बड़गाम सूफी शायर के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है। और अच्छी बात यह है कि ये सेंटर श्रीनगर से मुलाल चौक जो हमारे कैपिटल है वहां से मात्र 15 किलोमीटर दूर है।
0: जी,
1: और
0: अच्छा।
1: बड़गाम इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, इसमें बड़े बड़े गांव है, इसलिए इसका नाम बड़गाम रखा था।
0: अच्छा, क्या बात है भाई। तो वहाँ पहाड़ों के बारे में बताइए, कैसी पहाड़ियाँ हैं, बर्फ वगैरह गिरती है क्या?
1: बिल्कुल गिरती है, जहाँ पर मैं रहता हूँ, मैं टूरिस्ट पॉइंट के आसपास रहता हूँ, दूध पथरी एक मशहूर जगह है, उसी के आसपास रहती है, जंगल के किनारे है, बड़े बड़े पहाड़ है और बर्फ भी गिरती है, बहुत ज्यादा बर्फ गिरती है जिस एरिया में मैं रहता हूँ।
0: जी जी, आप क्या करते हैं वहाँ पर?
1: जी मैं बिजनेस करता हूँ, जैसे दीवारों पर पेंट वेंट लगाते हैं, सीपी के जो आइटम होते हैं जैसे बीप कॉक शावर होते हैं, वही बिजनेस में करता हूँ। अपने ही गांव में 2-4 शॉप है हमारे पास और ऊपर वाले की मेहरबानी से हमारा जो कारोबार बहुत अच्छा जा रहा है।
0: क्या बात है, बहुत बहुत दुआएं।
1: इसके अलावा क्रिकेट, और बचपन से लेकर अभी तक क्रिकेट खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्रिकेट देखना मुझे बहुत अच्छा है, मूवी देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बचपन के शौक है।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया, ये तो शौक बहुत अच्छा है, क्योंकि आजकल जो बच्चे हैं छोटे छोटे बच्चे, वो तो अपने मोबाइल के गेम में ही गुम रहना चाहते हैं या फिर कंप्यूटर के स्क्रीन पर, वो खेलना नहीं चाहते, उनको बोला जाए तो भी नहीं जाते, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो अपने बच्चों को भी सिखाते हैं ये खेल वगैरह, इसकी कोई कोशिश करते हैं आप?
1: बिल्कुल करते हैं, क्योंकि आजकल पहले जमाने में नहीं होते, लेकिन आजकल स्कूल के अंदर स्पोर्ट्स टीचर अलग मिलते हैं और सरकार ने भी कदम उठाया तो बहुत अच्छा, इसमें हमारे बच्चों को सबसे ज्यादा फायदा हो, क्योंकि जो आजकल जो नशीली दवा होते हैं, ड्रग्स वगैरह होते हैं, इससे हमारे बच्चे दूर रहते हैं।
0: जी, और दूसरी बात ये कि आपके इलाके में तो खुली वादियां हैं, खुली जगह है, वहाँ खेलने के लिए जगह भी मिलती होगी?
1: बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा।
0: तो कभी बर्फ गिरी हो और आप क्रिकेट खेलते रहे हो, ऐसा कोई अनुभव है?
1: बचपन में हमने खेला है, तो 2-4 बार हमने खेला है,
0: बारिश हो रही
1: है, बर्फ गिरी थी, हमने क्या किया, यहाँ बर्फ जमती है, बहुत ज्यादा जमती है और उस पर पिच लगाना बहुत आसान होते हैं, फिर हम टेनिस बॉल उससे सबसे ज्यादा खेलते हैं उस बर्फ पे। बस उनमें क्या करते हैं, बर्फ को छोटे छोटे बॉल बनाते हैं और एक दूसरे पर फेंकते
0: हैं,
1: बहुत ज्यादा होती है।
0: क्या बात है, ये तो आप बचपन की बात बता रहे हैं, जो टूरिस्ट होते हैं पर्यटक, वो तो अभी जब जाते हैं घूमने के लिए तो वो बड़े भी खेलते हैं ऐसे बर्फ का गोले बना के एक दूसरे पर फेंकते, वही तो खेल का आनंद होता है बर्फीली वादियों में, वो तो बहुत एंजॉय करते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मैंने देखा है, दो चार बार मैंने देखा है।
0: और अब तो उसे वीडियो बनाने के लिए भी ये किया जाता है, खेले जाए ना खेले लेकिन वीडियो जरूर बनाते हैं लोग। अब बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: क्योंकि मैं कश्मीर में रहता हूँ तो मैंने गाना भी वही चुना है, फिल्म का नाम है सिर्फ तुम, संजय कपूर वाली एक मूवी आई थी सिर्फ तुम, उदित नारायण की खूबसूरत आवाज, गाने के बोले पंचेश्वर में गाते हैं, बावरी गुनगुनाते हैं।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अब बातचीत को दे रहे हैं विराम और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश। ममता दीदी नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी मैं डिस्ट्रिक्ट चौराहे सोनारी असम से भाईकन मुंडा बात कर रहा हूँ।
0: भाईकन मुंडा?
1: जी मैम।
0: अच्छा, कौन सी जगह?
1: चौराहे डिस्ट्रिक्ट सोनारी असम।
0: जी जी, जरा उस जगह के बारे में बताइए, आप जहाँ से बोल रहे हैं।
1: जी मैम, यहाँ तो मौसम अभी सुहाना है, अभी तो चारों तरफ हरियाली हरियाली है, धान खेती का ये अभी है ना, और चाय बागान है।
0: चाय बागान देखने में बड़ा अच्छा लगता है दूर दूर से, लेकिन उसकी सुना है कि उसकी पत्तियां काटने में बहुत टाइम लगता है, तो आपने ये काम किया है कभी?
1: हाँ, मैं चाय पत्ती का पहले चाय पत्ती को तोड़ के उसको फैक्ट्री मतलब कारखाने में इसको लेके जाता है, फिर इसको प्रोसेस रहता है मैम वो चाय पत्ती बनाने का।
0: जी जी,
1: उसमें मशीनें डाला जाता है।
0: हाँ,
1: फिर इसके बाद इसको सुखाया जाता है, फिर चाय पत्ती बनके रेडी होता है, फिर इसको पैकिंग किया जाता है, ऐसा है,
0: और लोग फिर चाय का स्वाद लेते हैं।
1: जी जी मैम,
0: स्वाद लेते हैं, तलब भी होती है। वहाँ का एक नृत्य बहुत मशहूर है, आपको पता है कौन सा?
1: यहाँ तो बिहू। हाँ मैम, बिहू तो यहाँ का मतलब बिहू ही तो असम का जातीय उत्सव बोलते हैं ना हम लोग।
0: जी, तो कौन से उत्सव पे नृत्य किया जाता है?
1: मैम देखिए, यहाँ तो बिहू नृत्य, बिहू जो है वो बैसाख महीने में ये होता है मैम, पहला बैसाख से ये महीने भर चलता है।
0: जी जी, तो आप बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: जी मैम, फिल्म का नाम है फूल और अंगार, उसमें गाना है चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे। और मैम आपसे बात करके बहुत खुशी हो रही, पहली बार कॉल लगा है मेरा, बहुत दिन से ट्राई कर रहा था लेकिन आज कॉल लगा है तो खुशी हो रही।
0: बहुत खुशी हमें भी हो रही है। अब बहुत बहुत धन्यवाद कह रहे हैं आपको कि आपने हमें फोन किया। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना चोरी।

0: हेलो।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी नमस्ते
1: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं जी?
0: जी। बेमेतरा छत्तीसगढ़ की हसीन वादियों से योगेश जांगड़े बोल रहे हैं।
1: जी भाई, छत्तीसगढ़ की हसीन वादियाँ मतलब कैसी हैं? वहाँ पर क्या पहाड़ी इलाका है क्या ये? वो तो
0: जो बस्तर और सरगुजा का क्षेत्र है ये वनांचल क्षेत्र है, तो
1: जी, अच्छा
0: पर्वत पहाड़ तो मतलब काफी है, जंगल है, घना जंगल कह सकते हैं। और जब वहाँ घूमने भी जाना होता है तो वो रास्ते में ही इतना मजा आ जाता है कि क्या कहें।
1: बहुत बढ़िया। तो आप वहां के जंगलों के बारे में जरा कुछ बताइए।
0: काफी घना जंगल है और वहाँ जाते हैं तो जो चित्रकूट और तीरथगढ़ का जो जलप्रपात है वो काफी मनोरम है और रास्ते काफी मतलब जैसे सर्पाकार नहीं होते
1: अच्छा
0: उसी तरह से काफी मतलब मुश्किल भी है ऐसा कह सकते हैं,
1: जी,
0: लेकिन
1: तो
0: आनंद भी बहुत आता है। जी
1: छाया दिखती होगी, और वो जो
0: जी
1: एक समय ऐसा लगता है कि अब रास्ता बंद हो रहा है, लेकिन पता चला कि वहां
0: जी
1: से एक रास्ता खुल जाता है। तो जंगलों
0: जी
1: में जाते हुए जो इस तरह से दिखाई पड़ते हैं रास्ते, वो बड़े लुभावने और सुहावने लगते हैं।
0: जी
1: एक वहां सतपुड़ा के घने जंगल कितनी दूर है वहां से
0: बहुत
1: जंगल?
0: दूर है हमारे यहाँ से। हाँ
1: अच्छा, सतपुड़ा के घने
0: जी
1: जंगल पर एक भवानी प्रसाद मिश्र की कविता भी है जो बिल्कुल
0: जी
1: वो दृश्य पैदा करते हैं। वो जैसे सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊंघते अनमने जंगल, याद है आपको ये
0: जी
1: कविता?
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत से तो कविताएं हमने पढ़ी भी हैं और अभी तो आज ये हिंदी दिवस भी मनाए हैं तो काफी अच्छा लगता है संगीत से जुड़ना, कविताओं से जुड़ना।
1: आगे की पंक्तियां कुछ
0: जी
1: याद है भवानी प्रसाद मिश्र की इस कविता के? झाड़
0: नहीं
1: ऊंचे,
0: वैसे तो याद
1: इस
0: नहीं
1: तरह
0: है।
1: से
0: जी
1: कुछ है, झाड़ ऊंचे और नीचे चुप खड़े हैं, आंख भींचे, घास चुप है, काश
0: जी
1: चुप है, मूक शाल पलाश चुप है, बन सके तो धसो इनमें, धस न पाती हवा जिनमें। ऐसे पूरे लगता है कि हवा जंगल में आ रही है, हवा को भी आने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है, मतलब पूरा जंगल का दृश्य उपस्थित किया है। तो
0: बिल्कुल
1: मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने बच्चों को इस तरह की कविताएं बतानी चाहिए, पढ़ानी चाहिए, उन कविताओं के बारे में
0: बिल्कुल
1: बताना
0: बिल्कुल
1: चाहिए, जब खास तौर से जब ऐसे जंगल की ओर, जंगल की सैर के लिए जाते हैं तो, है ना? एक बात और कहनी थी कि ये जो जंगल है, जंगल की खूबसूरती है, इसको बचाए रखने के लिए हम सबको क्या कुछ करना चाहिए?
0: देखिए जंगल तो हमारे राष्ट्रीय संपत्ति है और जो हमारा मानव जीवन ही नहीं मतलब जो हमारा पूरा पृथ्वी जगत कह सकते हैं जिसमें जीव जंतु पेड़ पौधे सारी चीजें आती हैं, तो बचाने के लिए तो यही है कि जंगलों के कटाव को रोके और जो बहुत ज्यादा हम अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए जंगलों का जो काटने का काम कर रहे हैं ये सबसे ज्यादा इनको बचाना जरूरी है।
1: बिल्कुल सही बात है। और नए पौधे रोपने चाहिए, ये नहीं कि बाप
0: बिल्कुल
1: दादा
0: बिल्कुल
1: ने जो लगा दिए हैं, जो पेड़ आम के पेड़ लगा दिए हैं, बस वही आम खा रहे हैं, वही जामुन खा रहे हैं। नए पेड़ भी लगाने चाहिए ताकि जंगल की संपदा हमेशा बनी रहे, हरी भरी बनी रहे, है ना?
0: बचपन बचपन में हमने लगभग 20 पेड़ लगाए थे तालाब के किनारे किनारे
1: जी
0: और वो पेड़ तो आज बहुत वृहद हो गए हैं लगभग 20 से 25 साल के।
1: जी बहुत बढ़िया। और रोज नहीं तो किसी खास मौके पर एक एक पेड़ रोपते रहें तो कितने सारे हो जाएंगे। और क्या काम काज है आपका?
0: हमारा प्रमुख रूप से खेती बाड़ी का काम है।
1: अच्छा, तो कौन सी फसल उपजती है वहां पर?
0: अभी तो धान बहुत आयत है और छत्तीसगढ़ को तो धान का कटोरा भी कहा गया है।
1: बिल्कुल। और वहाँ के चावल बड़े खुशबूदार होते हैं, बड़े सॉफ्ट
0: जी जी
1: और मिठास होती है उनमें। कौन कौन
0: जी
1: से चावल पैदा होते हैं?
0: बासमती ये जो मिठास की अब बात की है वो है और हमारे इलाके में सरना और महमाया ये दो किस्में ज्यादा लगाई जाती हैं।
1: जी, तो अब बताइए आपको गाना कौन सा सुनवाया जाए?
0: फिल्म कलाकार से सुनवा देंगे, नीले नीले अंबर पर चांद जो आए।
1: बहुत बढ़िया बातचीत कही आपने। अब बातचीत को दे रहे हैं विराम और आपको सुनवा रहे हैं आपके पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, मैं हेलो फरमाइश से बात कर रही हूँ।
0: हाँ जी, हेलो फरमाइश में ही आपका फोन लगा है, बताइए आप
1: जी
0: कौन बोल
1: बहुत,
0: रही।
1: मैं नेहा तिवारी छतरपुर से बोल रही हूँ,
0: जी बताइए
1: और
0: नेहा जी।
1: बहुत मशक्कत के बाद मुझे आपका फोन लगा है
0: जी
1: विविध
0: जी
1: भारती में।
0: जी बहुत शुक्रिया कि आपका फोन लगा और स्वागत है इस प्रोग्राम में। बताइए आप छतरपुर से बोल रही ना।
1: जी, छतरपुर से बोल रही हूँ।
0: छतरपुर के बारे में बताइए और नेहा जी अपने बारे में बताइए।
1: जी, मैं एक इंजीनियर हूँ पेशे से,
0: जी
1: और छतरपुर हमारा बहुत ही जो एक विरासत है, चंदेला राजाओं के द्वारा बनाई गई खजुराहो, वो करीब मेरे छतरपुर से 50 किलोमीटर दूर है, जो कि विश्व प्रसिद्ध संरक्षित स्मारक है। और उसके निर्माण में भी बहुत सारे कारीगर इंजीनियर ने योगदान दिया है।
0: देखिए नेहा जी, आप इंजीनियर हैं पेशे से और ये बात बता रहे हैं कि बहुत सारे इंजीनियर्स का योगदान है इस जगह के बारे में। तो जो हम बात कर रहे हैं ना, जिन ध्वनि तरंगों के माध्यम से हम बात कर रहे हैं आपसे, यहाँ भी इंजीनियर का बहुत बड़ा योगदान है। हम तो ये कहेंगे कि अगर इंजीनियर का योगदान नहीं रहे तो ये जहाँ रेडियो जो चैनल है, जैसे रेडियो के प्रोग्राम्स ब्रॉडकास्ट होते हैं, वो फिर कैसे होगा। आप चूंकि पेशे से इंजीनियर हैं तो आप कुछ बोलेंगी, आप कुछ कहेंगी।
1: हम जो देश के महान इंजीनियर और भारत रत्न सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी के जन्मदिन की याद में इंजीनियर्स दिवस मनाया जाता है, और यह भारत रत्न उनके मेहनत को सम्मानित करने के लिए यह दिन तय किया गया था।
0: जी जी
1: श्री विश्वेश्वरैया जी ने कावेरी नदी पर कृष्ण सागर बांध और बाढ़ सुरक्षा जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य किए।
0: जी जी
1: और श्री विश्वेश्वरैया जी के बारे में क्या कहें, उनकी इतनी उपलब्धियां इस आधुनिक भारत को है, इसीलिए उन्हें आधुनिक भारत का विश्वकर्मा कहा जाता है।
0: नेहा जी हमें बताइए कि अब जो जमाना है, बिल्कुल तकनीक का ही जमाना कहा जाता है इसे, और जो नई पीढ़ी आ रही है तकनीक से ही जुड़ी हुई है, तो तकनीक का जो उपयोग भी होता है, सदुपयोग कई बार दुरुपयोग भी होता है, इस पर आप कुछ कहेंगे कुछ।
1: किसी भी चीज के सदुपयोग और दुरुपयोग को ही आप वरदान या अभिशाप कह सकते हैं। तकनीक के क्षेत्र में भी यही है। तकनीक का इस्तेमाल यदि हम अच्छी बातों के लिए, जैसे हम मसलन आजकल की युवा पीढ़ी यूट्यूब रील्स इत्यादि कई चीजों में उसका इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रही है, और कई बार उन्हीं चीजों का बेजा इस्तेमाल हो रहा है। तो यही है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, विज्ञान अभिशाप और वरदान इसी रूप में है,
0: जी
1: इसी तरह से
0: बिल्कुल।
1: तकनीक भी अभिशाप और वरदान इसी
0: जी
1: रूप में है।
0: अच्छा नेहा जी, ये बताइए कि चूंकि आप इंजीनियर हैं तो आपने, और आकाशवाणी में इंजीनियर हैं, तो क्या नई तकनीक आपने लाई है, मतलब आपको क्या लगता है कि इन दिनों नई तकनीक क्या क्या आई है, कुछ परिवर्तन के बारे में बताइए ना।
1: जब मैंने इस विभाग में अपनी सेवाएं देने शुरू की थी, तब एक बहुत ही सारी चीजें मैकेनिकल हुआ करती थी, रिकॉर्डिंग से लेके एडिटिंग से लेके, और मैकेनिकल हुआ करती थी, जो कि काफी वक्त और गुणवत्ता में भी उतनी उत्कृष्ट होने में काफी समय लेती थी। पर नई तकनीक की वजह से, हार्ड डिस्क कंप्यूटर सिस्टम में रिकॉर्डिंग होने की वजह से, और अभी तो हमारे पास AI है, अभी हमारे पास प्रसारण में भी हमारे पास अपना वेब ऐप है, और हमारे पास न्यूज ऑन एयर ऐप है, तो इन सब गुणवत्ता बढ़ने से तकनीक में करीब करीब मैं बता रही हूँ कि 360 डिग्री जो हुआ है, परिवर्तन हुआ है।
0: जी बहुत बढ़िया बात कही। अब बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना सुनवाया जाए।
1: जी, मैं एक इंजीनियर हूँ और मुझे इंजीनियर से जुड़ा एक गाना बेहद पसंद है, जब आओ लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल।
0: क्या
1: ये
0: बात है।
1: थिंकिंग इडियट का गाना है और मुझे बेहद पसंद है।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें फोन किया। अब हम बातचीत को दे रहे हैं विराम और आपको सुना रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।
2: जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, ऑटो को करके गोल, ऑटो को करके गोल, सीटी बजा के बोल, लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, ऑटो को करके गोल, ऑटो को करके गोल, सीटी बजा के बोल।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश दीदी, आपको प्यार भरा नमस्कार। ममता दीदी को प्यार भरा नमस्कार।
0: प्यार भरा नमस्कार आपको भी विविध भारती परिवार की ओर से। बताइए आपका नाम क्या है?
1: जी मैं अशोक कुमार प्रजापति करौता लोहता वाराणसी से।
0: जी अशोक प्रजापति जी, बताइए क्या हाल है, वाराणसी का क्या हाल है?
1: वाराणसी का हाल चाल दीदी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है।
0: वो जो बनारस में गंगा आरती होती है शाम को, उसके बारे में बताइए जरा।
1: जी हाँ, गंगा आरती के बारे में आपने कहा तो दफा सुने, घाट पर हमारे कनम्बे आरती कनम्बे होता है 7 बजे से।
0: हाँ
1: ओ आरती बहुत बढ़िया होता है और दुकानदार और हम लोग समय से पहुंच जाते हैं वहाँ पर, और देखने के लिए तो हम लोग जाइए करते हैं मैम, और बहुत बढ़िया ढंग से होता है और हाथ जोड़ के सभी लोग खड़ा रहते हैं, दुआ मांगते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं।
0: भाई उसकी बड़ी प्रशंसा सुनी है, और वहाँ बनारस की सुबह बड़ी खूबसूरत होती है, जब गंगा जी में जैसे सूरज बिल्कुल उगता है पानी में से, ऐसा दृश्य होता है। तो वो दृश्य हमने तो नहीं देखा, लेकिन लोग बताते हैं। आपने देखा है कभी?
1: जी नहीं कहना, हमने देखा नहीं है, हम तो जाते हैं देखे हैं, ये बात नहीं है समय से। तो
0: हाँ
1: सच बात है कि हम लोग जब जाते हैं, जैसे विश्वनाथ जी गए और गंगा जी घूमने गए, और समय के हिसाब से अगर आरती के समय से हम लोग जाते हैं तो जैसे तर त्यौहार हो गया तो तब ठीक है, पहुंच गया, बड़ा बढ़िया से हम लोग देख लेते हैं।
0: सही बात है। बनारस की चाट बड़ी मशहूर है, बनारस का पान बड़ा मशहूर है। अब हम ही सब बता देंगे, आपको कुछ बताएंगे?
1: जी बनारस के, तो आपने पान के बारे में ये बात कही है ममता दीदी की, हकीकत सच बात है कि हर व्यक्ति के मुंह में जो उम्र हो जाती है, छोटे बच्चे तो नहीं 18 साल से चालू कर लेते हैं पान खाना, और जो पान भी खाएंगे और काम धंधा में अपना व्यस्त रहेंगे।
0: और वहां की गलियां पतली पतली सकरी सकरी गलियां।
1: हाँ ये तो पतली पतली जो गलियां है, जैसे कि कचौड़ी गली में है, और जैसे कि बहुत दूर से कचौड़ी गली में हिलते ही मतलब खोवा मंडी में जैसे एक अजीब सा महक आती है कि हमने कचौड़ी गली आ गया,
0: अच्छा,
1: चलो हमने
0: कचौड़ी गली का नाम
1: कचौड़ी।
0: लिए, सुनिए, कचौड़ी गली का नाम लिए। कचौड़ी गली का एक लोकगीत में भी आ गया है, वो कचौड़ी गली याद है क्या, वो गनवा आपको?
1: मैडम जी
0: हाँ
1: जी जी
0: याद है
1: जी
0: तो सुनाइए जरा।
1: जी नहीं हम गा सकते, हाँ,
0: नहीं गा सकते?
1: नहीं नहीं गाना तो देखिए कचौड़ी पर जो आपने बात कहा है कि गाना आ गया है, तो हमने सुना नहीं है दीदी। देखिए बात जो हकीकत है,
0: हाँ
1: तो कचौड़ी गली जो हम लोग के बाप दादे से सब बहुत सदियों से ये
0: हाँ
1: है, का नाम हम लोग की पैदाइश नहीं हुई थी तब भी कचौड़ी गली, हम लोग जब जानकार हुआ तो हम लोग भी जब बनारस जाने लगे तो बाबू जी से पूछने लगे, पिताजी से, कि ये कचौड़ी गली कौन सा होता है। कचौड़ी हुआ मशहूर है, कचौड़ी इतना अच्छा बनता है स्वाद, हो सकता है शायद विश्वनाथ जी के दुआ है कि कनमरे जय संकट मोचन का, भगवान श्री राम जी का, जो भी है सचमुच है कि कचौड़ी ऐसा नहीं बन
0: कहीं
1: पाता
0: नहीं मिल
1: है।
0: पाता, वो स्वाद नहीं मिल पाता। और जो बनाते हैं उनके हाथ की भी प्रशंसा की जानी चाहिए, कि जो
1: हाँ
0: मनोयोग से बनाते होंगे वो एक अलग तरह का स्वाद होता है, और फिर वो जगह प्रसिद्ध हो जाती है। तो अलग तरह की बात है कि कचौड़ी के नाम से वो गली मशहूर हो गई है। और छोटे शहरों की ये खासियत है कि पान वाली गली और कचौड़ी गली और जो खस्ता दमालू वाली गली, इस तरह से नाम जो मशहूर हो जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। किसी
1: हाँ
0: व्यक्ति के नाम से मशहूर होते हैं, किसी महापुरुष के नाम से जगह वो मशहूर हो जाती है, वो जगह उसकी एक अलग तरह की खासियत होती है ना। और कौन कौन से घाट वहां के मशहूर हैं?
1: हाँ तो जी जैसे कि दशाश्वमेध घाट से 80 घाट, इतना घाटे से सब एक एक घाट जुड़ा हुआ है, सब हम लोग जब जाते हैं ना हम लोग को खुद नहीं पता चलता कि ये घाट तो हमने 10 मीटर चले, फिर 10 मीटर चले, फिर 20 मीटर, सब घाट ही घाट, घाट ही घाट, तो इसीलिए 180 घाट उसको माना जाता है
0: जी
1: कि
0: जी
1: 180 घाट सब जुड़ा हुआ है।
0: बिल्कुल। अच्छा बताइए कौन

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, ममता जी नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से।
0: जी बताइए, उज्जैन के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए हमारे श्रोताओं को।
1: जी बताना चाहेंगे, उज्जैन में बाबा महाकालेश्वर का मंदिर प्रसिद्ध है
0: जी,
1: जो बिल्कुल शीतला नदी के किनारे बना हुआ है। और बताना चाहेंगे, यहाँ पे दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। सिंहस्थ का मेला भी 2028 में लगाया जाएगा यहाँ पर।
0: अच्छा, और आपका क्या काम काज है?
1: हाँ, मैं खेती किसानी का काम करता हूँ ममता जी, और एक भजन गायक भी हूँ।
0: अरे वाह, गायक है, भजन गायक, तो कुछ गा के सुनाइए।
1: हाँ जी, हाँ, उसके पहले मैं बताना चाहूँगा, हमारे 8 लोगों का ग्रुप है, उसमें हम 4 लोग आने वाले हैं। लोग हारमोनियम बजा के ढोलक और एक तबला बजाते हैं।
0: तो आप हारमोनियम बजा के गा लेते हैं कि सिर्फ गाते हैं? हारमोनियम कोई और संगत करता है?
1: मैं गाने का काम करता हूँ।
0: तो ये कुछ गाने के लिए सीखा आपने कि बस ऐसे गाते गाते शुरू हो गए?
1: हाँ, बस कहीं सीखा तो नहीं ममता जी, बस मोबाइल पे या ऐसे जो रिकॉर्ड होते हैं ना, उनको सुन सुन के मतलब सीखे हैं हम 2019 में, जब कोरोना टाइम आया था उस समय पर।
0: अच्छी बात।
1: हाँ
0: है
1: जी, हमारे गुरु जी है, वो हमें सिखाते हैं। निर्गुणी भजन की प्रस्तुति भी हम देते हैं ज्यादातर, और भजन कीर्तन का प्रोग्राम भी करते हैं।
0: जी बड़ा बढ़िया लगता है भाई। अब तो जैसे समय लोगों के पास कम होने लगा है कीर्तन वाला, तो जैसे युग ही खत्म हो रहा है, बहुत कम बचे हैं लोग जो कीर्तन गाते हैं। नहीं तो बाकायदा कीर्तन गाने के लिए बुलाया जाता था लोगों को घरों पर भी।
1: हाँ बिल्कुल, ऐसा तो हमारे इधर भी ममता जी ऐसा ही है, किसी बच्चे का बर्थडे हुआ या कोई धार्मिक फंक्शन होता है ना प्रोग्राम, उन लोग उनके मतलब यहाँ पर हमें बुलाया जाता है।
0: अच्छा,
1: और हर मंगलवार और ऐसा जो मंगलवार के दिन तो हमारा प्रोग्राम फिक्स होता है हमारे मंदिर पर।
0: तो किन कवियों की रचनाएं आप गाते हैं ज्यादातर जो भजन गाते हैं?
1: ज्यादातर तो हाँ बिल्कुल बताना चाहेंगे, ज्यादातर तो हम प्रहलाद सिंह टिपानिया जी के भजन गाते हैं, निर्गुणी भजन। और एक और भजन आते हैं यूट्यूब पर राजू दास जी के, उनके भी मतलब हमने भजन काफी गाए हुए हैं।
0: जी प्रहलाद सिंह टिपानिया तो जब गाते हैं तो लोग मंत्र मुग्ध होकर सुनते हैं। तो अब जरा अपने हुनर के बारे में बताइए, आप जरा गा कर सुनाइए हमारे श्रोताओं को।

0: तारे तू जी ममता जी।
1: जी बहुत बढ़िया आपने गाया, और हमारे श्रोता भी सुन रहे होंगे भाई, जिनके पास ये कला होती है वो बड़े खुश रहते हैं। जब आपका मन थोड़ा बहुत दुखी हो, उदास हो, तो आप गाकर खुद को हील कर सकते हैं, खुद को आप खुश कर सकते हैं ना। तो
0: जी
1: अब
0: बिल्कुल
1: कौन
0: ममता जी,
1: सा
0: और बताना चाहूंगा मैं, उससे पहले बताना चाहूंगा मैं मोबाइल ऐप पे विविध भारती के कार्यक्रम सुनता हूँ, और सखी सहेली हेलो फरमाइश पिटारा के तहत आने वाले सभी कार्यक्रम को सुनता हूँ, और बड़े ध्यान से सुनकर मतलब कुछ ऐसे बातें होती है ना उन्हें नोट भी करता हूँ।
1: जी बहुत बढ़िया, इसी तरह सुनते रहिए। फिलहाल बताइए अभी कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
0: जी फिल्म का नाम है इतिहास, और गाने के बोले जुदा अपने दिलबर से होने लगी है।
1: धन्यवाद, आपने हमें फोन किया और इतनी सारी बातचीत की। अब बातचीत को दे रहे हैं विराम, आपको सुनवा रहे हैं।

0: दोस्तों, ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं के कॉल आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए, उनसे करबद्ध निवेदन है कि वो हमें कृपया अगली बार 2 महीने बाद फोन करें। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार को दिन में 11 बजे से। रिकॉर्डिंग के लिए हमारे टेलीफोन नंबर्स नोट कर लीजिए। हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 2867-0288, दूसरा टेलीफोन नंबर है 4002466। मुंबई का STD कोड है 022, और जब भी आप फोन नंबर डायल करें उससे पहले मुंबई का STD कोड 022 जरूर डायल करें। चलने से पहले आपको ये भी बता दें, आज के इस कार्यक्रम में हमारी रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग सौरभ घारू, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह ने की। तो अब अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश। विविध भारती की फोन इन सर्विस के इस प्रोग्राम का पिटारा आज के लिए हुआ पूरा। पिटारा हर रोज पेश होता है।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग। कार्यक्रम में हम अपने सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप सभी को संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार।

परवरिश फिल्म से ये कव्वाली आप सुन रहे थे लता मंगेशकर, उषा मंगेशकर और सखियों की आवाजें थी। मजरू सुल्तानपुरी की रचना थी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। आप सुन रहे हैं रंग तरंग।

फिल्म बाजार की ये गजल आप सुन रहे थे भूपेंद्र की आवाज में। बशर नवाज की लिखी ये गजल थी, खयाम की तर्ज थी। रंग तरंग कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, देश की सुरीली धड़कन।

मिस्टर सिंह, मिसेस मेहता, इस एल्बम से ये गीत आप सुन रहे थे ऋचा शर्मा की आवाज में। अमिताभ वर्मा के बोल थे, उस्ताद हुसैन खान की ये तर्ज थी।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: क्या करें जब अचानक ब्रेन स्ट्रोक आ जाए? कैसे पहचानें ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण? ब्रेन स्ट्रोक आने पर किन बातों का ख्याल रखें? सिरदर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरोसर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
1: तो सटल साइंस कहीं ना कहीं हम पकड़ लेते हैं। अगर ब्रेन के अंदर कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, जैसे कुछ गांठ है, पानी भर गया है, कुछ पुराना चोट लगा था उसका ब्लीडिंग का असर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हाथ पैर का मूवमेंट, या और एक आपने देखा होगा हम उनके हाथ पैर पे एक मार के देखते हैं, उसको हैमर बोलते हैं जर्ब देखने के लिए। तो अगर वो जर्ब कुछ चेंज हुए हैं उन पेशेंट को हम बोलते हैं कि आपका एमआरआई करना पड़ेगा।
0: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से।

सजना इस एल्बम का गीत है आवाज श्वेता शेट्टी की। यशपाल तनवर के बोल हैं, डीजे मूडी का संगीत।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गड्डी ले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला।

0: संदेश
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती का ये कार्यक्रम है रंग तरंग। बेगम अख्तर की आवाज में ये दादरा।

0: क्या करें जब अचानक ब्रेन स्ट्रोक आ जाए? कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण? ब्रेन स्ट्रोक आने पर किन बातों का ख्याल रखें? सिरदर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
1: तो सटल साइंस कहीं ना कहीं हम पकड़ लेते हैं। अगर ब्रेन के अंदर कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, जैसे कुछ गांठ है, पानी भर गया है, कुछ पुराना चोट लगा था उसका ब्लीडिंग का असर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हाथ पैर का मूवमेंट, या और एक आपने देखा होगा हम उनके हाथ पैर पे एक मार के देखते हैं, उसको हैमर बोलते हैं जर्क देखने के लिए। तो अगर वो जर्क कुछ चेंज हुए हैं उन पेशेंट को हम बोलते हैं कि आपका MRI करना पड़ेगा।
0: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

वादा रहा इस एल्बम में आप सुन रहे हैं बाबू मान की आवाज, गीत और संगीत बाबू मान के, और यही है रंग तरंग कार्यक्रम की आखिरी पेशकश श्रोताओं।

0: ये विविध भारती है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता।
2: आइए सुनते हैं एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश। तो करते हैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत एक खूबसूरत विचार से, जिसे हमें भेजा है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई और सूरज कुमार ढाकसे जी ने। लिखते हैं, ढल जाती है हर चीज अपने वक्त पर, बस एक सच्चा व्यवहार और प्रेम ही है जो कभी बूढ़ा नहीं होता। आप सबका आभार संदेश भेजने के लिए। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी। गांव डांगरी जिला जैसलमेर से बाबूराम जयपाल। ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी। और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मारकंडे, संजय मारकंडे और बेबी किट्टू जी का। वो लिखते हैं, आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी, सादर नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस के पूर्व जो गीत कार्यक्रमों में जवानों उठो, वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों के जीवन पर प्रकाश डाला, वो बेहद सराहनीय और प्रशंसनीय लगा। सबसे बढ़िया मुझे देशभक्ति गीत लगे। आप सबके उम्दा संदेशों के लिए एक बार फिर से मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ। श्रोताओं, जैसा कि आपको पता है, इस सप्ताह हम आपके लिए लेकर आए हैं दुनिया भर की उन मजेदार लेकिन साथ ही साथ गंभीर परंपराओं के बारे में रोचक जानकारियाँ। तो श्रोता मित्रों, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी अजब गजब परंपराओं की। अब तक हमने बात की उन जंगलों की जहाँ लोगों को संदेश दिया जाता है कि जंगल मत काटो, लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे जंगल की जिसे काटना तो दूर कोई छू भी नहीं सकता, लेकिन कैसे, आइए जानते हैं। पिछले दो दिनों में हमने जापान और रूस का भ्रमण किया, आइए अब चलते हैं पूर्वोत्तर भारत के मेघालय में। वहाँ की खासी जनजाति एक अद्भुत पर्यावरण से जुड़ी परंपरा का पालन करती है। वहाँ के कुछ विशेष जंगलों को लाव क्यंटांग कहते हैं। खासी भाषा में लाव यानी वन और क्यंटांग यानी पवित्र होता है, यानी पवित्र वन या जंगल। इसे लेकर एक सुंदर लोक कथा है जो अलग अलग प्रकार से सुनाई जाती है। बहुत पहले की बात है, एक गाँव के किनारे घना जंगल था। ऊंचे ऊंचे पेड़, जंगली फूल, पक्षियों की आवाजें और बीच से बहती छोटी सी जलधारा। गांव के बच्चे उस जंगल को देखकर कहते, ये हमारा जंगल है। लेकिन गांव के बुजुर्ग उन्हें रोक कर कहते, नहीं, ये हमारा जंगल नहीं है, हम तो बस इसके रखवाले हैं। गांव के मुखिया और बुजुर्ग सबको यही समझाते, जंगल हमारा नहीं है, ये प्रकृति का वो वरदान है जिसकी रक्षा के लिए हमें नियुक्त किया गया है। लोक कथा कहती है, एक दिन गांव में एक व्यक्ति को लकड़ी की जरूरत पड़ी। उसने सोचा, जंगल इतना बड़ा है, अगर एक पेड़ काट भी दूं तो क्या फर्क पड़ेगा। वो कुल्हाड़ी लेकर जंगल में पहुंचा। जैसे ही उसने पेड़ पर पहला प्रहार करने के लिए हाथ उठाया, उसे बुजुर्ग की बात याद आई, कुछ लेने से पहले इस जंगल से जरूर पूछना, क्योंकि ये जंगल तुम्हारा नहीं है। उसने कुल्हाड़ी नीचे रख दी। जितने भी लोग जंगल में पेड़ काटने आते, यदि उन्हें अपने बुजुर्गों की बात याद आ जाती तो वे भी अपनी कुल्हाड़ी वहीं छोड़ जाते। समय बीतता गया, एक पीढ़ी

0: बताती है कि वहां एक जंगल को बचाने के लिए हजारों पहरेदारों या वन रक्षकों की जरूरत नहीं पड़ी। बस एक विचार पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा, हम जंगल के मालिक नहीं, रखवाले हैं। और शायद आज हमारी धरती को इसी विचार की सबसे ज्यादा जरूरत है, जो खासी समुदाय के पुराने लोगों ने दिया है। और वो विचार है, ये जंगल हमारा नहीं है, हम जंगल के रखवाले हैं। तो श्रोताओं, आप तो सुविचार भेजते ही रहते हैं, आज सुनिए उमंग कार्यक्रम की ओर से ये सुविचार। आज अगर हम परिवार और आसपास के एक पेड़ को सिर्फ पेड़ न मानकर परिवार का सदस्य मान लें, तो दुनिया और ज्यादा खुशहाल बन जाएगी। अगर ये विचार आज हम धारण कर लें, तो शायद हमारी धरती थोड़ी और हरी हो जाए। शायद आने वाली पीढ़ियां हमें धन्यवाद दें कि हमने उन्हें केवल इमारतें नहीं, एक जीवित धरती भी विरासत में दी है। तो श्रोता मित्रों, कैसी लगी जानकारी पवित्र वन की, जरूर लिखकर बताइएगा। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से श्रोताओं, आज का प्रश्न है, खासी समुदाय के बुजुर्गों और ग्राम प्रधानों का जवानों और बच्चों को जंगल के बारे में दिया जाने वाला मूल संदेश क्या है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, खासी समुदाय के बुजुर्गों और ग्राम प्रधानों का जवानों और बच्चों को जंगल के बारे में दिया जाने वाला मूल संदेश क्या है। आप 8800440559 पर अपने उत्तर हमें भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। और हाँ, ताजा जानकारी के लिए आप इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी CIT NCERT को लगातार फॉलो करें। किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT Books PDF और NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनने या हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों को सुनने के लिए आप NCERT ऑफिशियल यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है शेर और चूहे की दोस्ती। कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम के द्वारा संदेश दिया गया है कि कभी भी किसी को तुच्छ, निकृष्ट और छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कोई भी कभी भी किसी के काम आ सकता है।
1: शेर मतवाली चाल से चला जा रहा था। अचानक उसे एक हल्की सी चीख सुनाई दी। एक चूहे की पूंछ उसके पंजे के नीचे आ गई थी।

0: आप तो जंगल के राजा हैं, मुझे छोड़ दीजिए। देखना एक दिन मैं आपके काम जरूर आऊंगा। हाँ, छोड़ दीजिए।
1: मेरे काम आओगे? ये छोटा सा चूहा, ये भला मेरे क्या काम आएगा? ठीक है ठीक है, जाओ, तुम्हें आजाद किया, जाओ।
0: धन्यवाद महाराज, पर एक दिन मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। हाँ, मदद करूंगा।
2: शेर ने अपना पैर हटाया, चूहा फुदक कर झाड़ियों में चला गया।

एक दिन शिकारी ने शिकार पकड़ने के लिए जाल बिछाया। उस जाल में शेर फंस गया। वो जोर जोर से दहाड़ने लगा।

0: जंगल में रहने वाले हाथी, भालू, हिरण, खरगोश, लोमड़ी, बंदर और अजगर समेत सभी पशु पक्षियों ने दहाड़ सुनी, पर कोई भी शेर की सहायता को नहीं आया।
1: ये कहां फंस गया मैं? अरे कोई तो मेरी मदद करो, मैं जाल में फंस गया हूं, निकालो मुझे यहां से।
0: हाँ, चूहा।

0: जरूर भागा भागा वहां आया।
1: अरे अरे महाराज, आप यहाँ? लेकिन आप चिंता ना करें, मैं आपको अभी इस जाल से आजाद कर देता हूँ।
0: वो अपने पहने दांतों से जल्दी जल्दी जाल कुतरने लगा। कुछ ही पल में सारा जाल कट गया और शेर आजाद हो गया।
2: धन्यवाद धन्यवाद मेरे नन्हे दोस्त, धन्यवाद
1: महाराज।
3: तो साथियों, सुना आपने, हम जिनसे आशा भी नहीं करते वे भी हमारे बहुत बड़े सहायक सिद्ध हो सकते हैं, है ना? तो इसलिए हमें सबका सम्मान करना चाहिए।
4: शेर और चूहे की दोस्ती, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। और अब सुनिए अबला को सबला बनाने वाली अबला। ये कार्यक्रम सुप्रसिद्ध भौतिक और वनस्पति विज्ञानी सर जगदीश चंद्र बोस की पत्नी श्रीमती अबला बोस के जीवन और नारी उत्थान के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के बारे में बताता है।
0: इतिहास में बहुत सारी नायिकाएं ऐसी भी हैं जिन्हें शायद बहुत अधिक स्मरण नहीं किया जाता, जिनका नाम दुनिया के प्रसिद्ध लोगों की सूची में नहीं मिलता, उनकी सराहना में प्रशस्ति गान नहीं लिखे गए और न ही उन्होंने अखबारों की सुर्खियां बटोरी, लेकिन उन्होंने जो कर दिखाया उसकी मिसाल दुर्लभ है।
5: जनस्मृति से भले ही वे नाम धूमिल और विस्मृत हो जाएं, लेकिन इतिहास उन्हें आदर सहित याद रखता है और कभी न कभी उन्हें आभार सहित प्रकट अवश्य कर देता है। ऐसा ही एक नाम है अबला बोस का।
0: उन्नीसवीं सदी का अविभाजित भारत, देश में बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा महिलाओं का सामाजिक बहिष्कार, दहेज जैसी कई स्त्री विरोधी कुप्रथाएं थीं जिन्हें चाहकर भी समाप्त नहीं किया जा सका था। ऐसे समय में प्रादुर्भाव हुआ बंगाल की महान समाज सुधारक, शिक्षाविद, संघर्षशील और नारी अधिकारवादी विदुषी अबला बोस का।
5: उन्होंने महिलाओं की स्थिति सुधारने का बीड़ा उठाया, लेकिन कौन थी अबला बोस? बता दें, वे विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक आचार्य जगदीश चंद्र बोस की पत्नी थीं। जगदीश चंद्र बोस पहले भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने भौतिकी और जीव भौतिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किया।
0: कहते हैं कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। यदि कहा जाए कि महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस की सफलता के पीछे भी उनकी पत्नी अबला बोस का हाथ था तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अबला बोस का जन्म 8 अगस्त 1865 को बरिशाल में हुआ था। बरिशाल तब अविभाजित भारत का हिस्सा था और अब ये बांग्लादेश में है।
5: अबला के पिता दुर्गा मोहन दास ब्रह्म समाज के प्रसिद्ध नेता और समाज सुधारक थे। अबला की माँ ब्रह्ममयी परित्यक्त, विधवा और घरेलू हिंसा के शिकार स्त्रियों के उत्थान के लिए काम किया करती थी। एक दिन की बात है, अबला की माँ ब्रह्ममयी किसी मोहल्ले में रहने वाली मजदूर स्त्रियों का हाल चाल पूछने गई थी। उनके साथ अबला भी थी।
6: पानी ले आ रहा है।
5: कल रात तो फिर भी कर आ गया।
1: क्या बताऊं दीदी, रोज का यही है। हम औरतों की तो हालत बहुत बुरी है दीदी।
5: न कमाता है न धमाता है, ऊपर से झूठ जमाता है
1: दीदी।
5: अरे इनको तो
1: दीदी।
7: अरे आलोका, तुम सब ठीक तो है ना?
1: नहीं दीदी, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है।
5: अरे
1: जिस दिन आप परिवार वालों को समझाने आई थी,
5: हाँ हाँ,
1: उसके बाद कुछ दिन तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन अब फिर
5: क्या?
1: मुझको कहते हैं तू अपने आदमी को खा गई, हमारे साथ नहीं रह सकती, कहीं और अपना इंतजाम कर ले। कल रात मुझे घर से निकाल दिया। मैं कहाँ जाऊँ दीदी, मायके में भी कोई स्वीकार नहीं करेगा।
7: रो मत आलोका। आज तुम नारी रात्रि पाठशाला में ही रुक जाओ, मैं सारी महिलाओं के साथ तुम्हारे घर जाऊंगी। बहनों कल सभी तैयार रहें।
8: जी दीदी।
7: हम सब आलोका के घर चलेंगे।
8: बिल्कुल चलेंगे।
7: आज इसके साथ हो रहा है, कल किसी के भी साथ हो सकता है।
8: जी दीदी।
1: जी दीदी,
8: हम सब तैयार हैं।
0: उन दिनों स्वामी विवेकानंद ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन रॉय, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर और सिस्टर निवेदिता जैसे प्रगतिशील विचारों के प्रभावशाली लोगों के कारण समाज में परिवर्तन आ रहा था। इस कारण ब्रह्ममयी दीदी के नेतृत्व में आलोका जैसी अनेक स्त्रियों के अधिकारों की रक्षा हो सकी।
5: बालिका अबला ने ऐसी बहुत सी घटनाओं को अपनी आंखों से देखा था। वो ऐसे वातावरण और परिवार में पली जहां नारी उत्थान के लिए काम किया जाता था, नारियों को सशक्त, स्वावलंबी और शिक्षित बनाने पर जोर दिया जाता था।
0: लेकिन इसी बीच एक दुखद घटना हुई। वे मात्र 10 वर्ष की थी कि तभी उनकी माता का देहांत हो गया। लेकिन अबला के बाल मन पर उनकी माता की जो छाप पड़ी वो आजीवन उनके साथ रही।
5: प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने बंग महिला विद्यालय और फिर बैथ्यून कॉलेज में दाखिला लिया और फिर मेडिसिन की पढ़ाई के लिए वे मद्रास चली गईं, जिसे अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है।
0: लेकिन सेहत खराब होने के कारण वे बंगाल लौट आईं और कभी वापस चेन्नई नहीं गईं। वापस नहीं जाने का कारण था 23 वर्ष की आयु में उनकी सर जगदीश चंद्र बोस से शादी। ये था वर्ष 1887 का।
5: समय बदल रहा था। व्याख्यान देने और शोध कार्य के लिए उनके पति सर जगदीश चंद्र बोस को अक्सर विदेश जाना होता था, तो वे भी उनके साथ हुआ करती थीं।
0: एक बार की बात है, शोध के सिलसिले में वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए।
5: यूरोप और अमेरिका विदेश यात्राओं के दौरान उन्होंने उन देशों की महिलाओं की सशक्त सामाजिक, आर्थिक और रहन सहन की स्थिति को ध्यान से देखा। अबला बोस ने देखा कि यहाँ स्त्रियों की दशा बहुत उन्नत है। किसी भी कार्यक्षेत्र और विज्ञान प्रयोगशालाओं में भी उन्होंने देखा कि जितने पुरुष कर्मी थे लगभग उतनी ही स्त्रियाँ भी थी।
0: और यहीं से शुरू हुआ उनका आगे का सफर, जिसने एक गौरवशाली इतिहास रच दिया। एक और महत्वपूर्ण घटना ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। 1917 में डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस को नाइटहुड की उपाधि मिली।
5: लंदन का रॉयल एल्बर्ट हॉल लोगों से खचाखच भरा हुआ था। बहुत से देशों के वैज्ञानिक इस अवसर पर निमंत्रित थे।
0: लेडीज एंड जेंटलमैन, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन वेलकम्स यू ऑल एट दिस ओकेजन। We have gathered here to facilitate Dr. Jagdish Chandra Bose, the great scientist from India. Now, I request the President of Royal Society to confer knighthood to Dr. Bose. From today, he will be the esteemed Fellow of the Royal Society. Now, I request him to kindly come on the dais to receive the knighthood. And ladies and gentlemen, it is said, behind every successful man, there is a woman. So now I request the great woman, Lady Bose, his wife, to come on the dais. Give this lady a standing ovation.
5: तब से वे लेडी बोस के नाम से जानी जाने लगी। उस रात डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस अपनी पत्नी अबला बोस के साथ भोजन के बाद बातें कर रहे थे।
9: वाह, सचमुच खाना तो सचमुच बहुत स्वादिष्ट था ना?
1: जी।
9: बैठो। अच्छा एक बात बताओ, आखिर बात क्या है? आज तुम थोड़ी चुप चुप सी लग रही हो।
1: नहीं तो, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं कुछ सोच रही थी।
9: सोच रही थी क्या?
1: मैं सोच रही थी कि यहाँ की स्त्रियाँ कितनी स्वतंत्र और सशक्त हैं। मेरे कहने का मतलब है, यहाँ समाज में उनका बराबर का स्थान है, उनका भी सम्मान उतना ही होता है जितना कि पुरुषों का होता है।
9: बिल्कुल।
1: आपने देखा नहीं, आज आपके नाइटहुड सम्मान के दौरान आपकी पत्नी होने के नाते मुझे कितना सम्मान मिला।
9: हाँ, वो तो है अबला। इसीलिए इन लोगों ने इतनी तरक्की की है।
1: वो तो है। देखिए, मुझे लगता है कि मुझे अपने देश की स्त्रियों की दशा को सुधारने के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए।
9: हाँ।
1: हमें उन्हें शिक्षित और स्वावलंबी बनाने की जरूरत है।
9: बिल्कुल।
1: आपको नहीं लगता?
9: लगता है अबला, बिल्कुल लगता है। ये तो वाकई बहुत अच्छी बात होगी। देखो अबला, तुम जो कुछ भी कर सकती हो जरूर करो। मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें उनकी शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए।
1: हाँ, हमें उनकी शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। शिक्षा ही हमारे देश की स्त्रियों को उनका अस्तित्व दिलाएगी।
9: सही कहा तुमने, मुझे तुम पर गर्व है अबला। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूंगा।
1: मुझे भी तो आप पर गर्व है। आपने विज्ञान में बड़ी साधना की है और अपना आसमान ढूंढ लिया है। अब मुझे अपना आसमान ढूंढना है।
9: बिल्कुल।
1: एक ऐसा आसमान जहां हमारे देश की स्त्रियां उड़ान भर सकेंगी, इज्जत से किसी आजाद परिंदे की तरह।
9: ऐसा ही होगा अबला, बिल्कुल ऐसा ही होगा।

0: फिर क्या था, यूरोप की यात्रा से वापस आकर वे लग गईं अपने अभियान। अशिक्षा और पुरुषों पर आर्थिक और सामाजिक निर्भरता के कारण भारत में उस समय स्त्रियों की दशा दयनीय थी।
1: उन्होंने संघर्ष किया और 1919 में नारी शिक्षा समिति की स्थापना की, जिसका काम प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना करना, उनके लिए पाठ्य पुस्तकों को तैयार करना, मातृत्व बाल केंद्र और विधवाओं हेतु कल्याण केंद्र खोलना था। उनके द्वारा खोले गए व्यावसायिक स्कूलों में विधवा और आर्थिक रूप से कमजोर स्त्रियों को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और चमड़े का काम सिखाया जाता था।
0: इतना ही नहीं, अबला बोस के प्रयासों से कलकत्ता और झारग्राम में महिलाओं के उत्थान के उद्देश्य से महिला शिल्प केंद्र की स्थापना की गई।
1: अबला बोस के प्रयासों को देखते हुए बंगाल महिला शिक्षा लीग ने उन्हें अपना पहला अध्यक्ष बनाया। उनकी मेहनत रंग लाई और बंगाल में स्त्री शिक्षा के प्रति लोगों का नजरिया बदलने लगा। स्कूल जाने वाली बालिकाओं की संख्या बढ़ने लगी।
0: अबला यानी लेडी बोस को बड़ी खुशी होती जब स्त्रियां उन्हें बताती कि शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण लेने से किस तरह उनके जीवन में खुशी आई है।
2: मेरी तो दुनिया ही बदल गई।
3: अरे दीदी, जब से बुनाई का काम सीखा है तब से घर वाला भी बड़ी
2: जो बच्चे हैं ना, जब कमा के ले जाती हूँ।
3: दीदी, जिंदगी इतनी खुशहाल हो गई है कि क्या ही बताऊँ। जब से मैंने वो टोकरी बनानी शुरू की है, घर के कामों में भी बहुत मदद मिल जाती है।
2: देखो मेरा पर्स, ये मैंने ही बनाया है।
3: अरे बहुत खड़ी है, किसी के आगे क्यों मांगना। सही बात है, हमें नहीं मांगना चाहिए किसी से। अब तो हम अपना काम कर रही हैं, अब हम सशक्त बन रही हैं।
2: बिल्कुल।
0: इस समय तक अबला बोस देश की प्रभावशाली महिलाओं के संपर्क में आ चुकी थीं, जिनमें भारत कोकिला, सरोजिनी नायडू, रमाबाई रानाडे, सिस्टर निवेदिता जैसी महिलाएं प्रमुख थीं। उन दिनों देश में महिलाओं को मताधिकार देने की बात चल रही थी। साल 1921 में भारत में पहली बार बॉम्बे और मद्रास में महिलाओं को मताधिकार मिला।
1: अबला ने बंगाल की महिलाओं के लिए आवाज उठाई और 1925 आते आते बंगाल की महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार मिल गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा था,
4: मताधिकार के द्वारा अब बंगाल की महिलाएं भी समानता का अनुभव कर सकेंगी, ये सुनिश्चित कर सकेंगी कि उन्हें सम्मान पूर्वक जीने के लिए किसको चुनना है।

0: सन 1937 में उनके पति श्री जगदीश चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। आचार्य जगदीश चंद्र बोस ने उनसे वादा लिया कि नारी उत्थान के कार्य को वे निरंतर करती रहेंगी। अबला ने महिलाओं के हक में काम करना जारी रखा और उनके हित के लिए अथक प्रयत्न करती रही।
1: अपने जीवन के अंतिम समय में वो दार्जिलिंग में बस गई। 26 अप्रैल 1951 को इस महान महिला अधिकारवादी नेत्री लेडी अबला बोस का निधन हो गया। देश उनके अतुल्य योगदान को श्रद्धा सहित स्मरण करता है और अपना आभार प्रकट करता है।

0: इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो उमंग की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना, अर्षद, कुसुमलता और वीरेंद्र के साथ मुझे यानी विमलेश को अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
2: अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम।
3: सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू,
4: पेंटर बाबू
3: वारिस, और फिर संगीतकार

0: पागल है दुश्मन,
1: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: गदर एक प्रेम कथा।
2: मैं निकला ओ गड्डी लेके
0: पिंजर। दास्तान बेमिसाल संगीत की।
3: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पाव।
0: एक उत्तम जीवन की कहानी। उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे।

एक मूड, एक कैफियत गीत का चेहरा होता है। कुछ सही से लफ्ज जड़ दो, मौजों से धुन की लकीरें खींच दो, तो नगमा सांस लेने लगता है, जिंदा हो जाता है। बस इतनी सी जान होती है गाने की, एक लम्हे की जितनी। हां, कुछ लम्हे बरसों जिंदा रहते हैं। गीत बूढ़े नहीं होते, उनके चेहरों पर झुरियां नहीं गिरती, वो पलते रहते हैं, चलते रहते हैं। सुनने वालों की उम्र बदल जाती है तो कहते हैं, हां वो उस पहाड़ का टीला जब बादलों से ढक जाता था तो एक आवाज सुनाई दिया करती थी,

0: क्या करें जब अचानक ब्रेन स्ट्रोक आ जाए? कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण? ब्रेन स्ट्रोक आने पर किन बातों का ख्याल रखें? सिरदर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरोसर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
1: तो सटल साइंस कहीं ना कहीं हम पकड़ लेते हैं। अगर ब्रेन के अंदर कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, जैसे कुछ गांठ है, पानी भर गया है, कुछ पुराना चोट लगा था उसका ब्लीडिंग का असर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हाथ पैर का मूवमेंट, या और एक आपने देखा होगा हम उनके हाथ पैर पे एक मार के देखते हैं, उसको हैमर बोलते हैं, जर्क देखने के लिए। तो अगर वो जर्क कुछ चेंज हुए हैं उन पेशेंट को हम बोलते हैं कि आपका MRI करना पड़ेगा।
0: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, और आज शबाना आजमी जो जानी मानी अदाकारा हैं उनका जन्मदिन है। विविध भारती परिवार की ओर से हम बधाई दे रहे हैं और उन्हीं के नाम आज का यादों की महफिल कार्यक्रम। ये लिबास फिल्म का गाना है, लता मंगेशकर और सुरेश वाटकर की आवाजें, गुलजार के बोल, राहुल देवर्मन का संगीत।

लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाजों में ये था गुलजार का लिखा गाना, संगीतकार राहुल देवबर्मन और फिल्म थी लिबास। लीजिए अब पेश है अर्थ फिल्म की एक गजल जगजीत सिंह की आवाज में, कैफी आजमी के बोल कुलदीप सिंह की तर्ज है।

0: जम्बो जेट जम्बो जेट लंडन मुंबई प्रवास थेट जगलो वसलो पुन्ना भेट जम्बो जेट सोई।
1: मराठी संगीत जगत की एक दिग्गज हस्ती अप्पा वढावकर।
0: रात्रंदीन आम्हा युद्धाचा प्रसंग, रात्रंदीन आम्हा युद्धाचा प्रसंग।
1: विविध भारती के स्टूडियो में लेकर आ रहे हैं अपने जीवन की कहानी।
0: जब परीक्षा दे रहा था तो मेरे पिताजी का निधन हो गया और उस टाइम मेरे घर में वसंत देसाई जी मिलने को आए। 72 से 75 तक मैं वसंत देसाई के साथ काम किया।
1: आज के मेहमान 23 सितंबर शाम 4 बजे और 24 सितंबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम सुरीला सफर। बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, अब तक तो आपको पता चल ही चुका है कि ये इस प्रोग्राम में हम एक टेक्स्ट यानी इबारत लिखते हैं, उसमें से आपको शब्द और गाने ढूंढने पड़ते हैं। तो चलिए हम इबारत आपको पढ़ के सुना देते हैं आज की, जिन्होंने पढ़ी नहीं है इबारत। उसने डायरी के एक पन्ने पर कोई अफसाना लिखा था, खामोश अफसाना। मेरी निगाहें यानी नजरों ने चुपके से उसे पढ़ लिया था, लेकिन न बोला कुछ। उसकी खामोश आंखें कुछ कह रही थीं। उसकी आंखों में जाने कितने सवाल थे और शायद किसी जवाब का इंतजार भी। मैंने कहा, चुप चुप खड़े हो, जरूर कोई बात है। उसने नजरें फेर ली और मुस्कुराकर डायरी को छुपाकर अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखों ने कहा, हम इंतजार करेंगे, छोटी सी दुनिया पहचाने रास्ते, कहीं तो मिलोगी। हम दोनों की अपनी एक छोटी सी दुनिया थी, जहां शब्दों की जरूरत नहीं थी, बस आंखें थी, इंतजार था और अधूरा अफसाना। फिर हम बिछड़ गए, लेकिन बिछड़ना फिर मिलना जिंदगी का दस्तूर है। एक अजीब शाम जब वो मिला तो जिंदगी खूबसूरत हो गई। अब जरा बताइए दोस्तों, किस मोड़ पर मिला वो, मिला या नहीं मिला, ये आपको पूछना है। आप सभी से ये सवाल है, आंखों से कैसे हुई बातें, दीजिए इन सवालों के जवाब। बोलती हैं आंखें जब हम नहीं बोलते। और आज ये भी बताइए कि डायरी के पन्ने पर आपने क्या कुछ लिखा, और आंखों से कब आप बोलते रहे, किससे आपने आंखों से गुफ्तगू की, और आंखों की भाषा कब आपने समझी। कई बार प्रेम के ऐसे लम्हे आते हैं जब आंखों की भाषा समझ में आती है। कई बार ऐसा लम्हा भी आता है जब माँ आंखों से कुछ कहती हैं और आप डर जाते हैं और उनकी बात आप मान लेते हैं। तो आंखों वाली भाषा कब आपने बूझी, कब आपने बुझाई, और साथ में डायरी के पन्ने पर क्या कुछ लिखा है, जरूर बताइए। चलिए शुरू करते हैं सिलसिला। अब जरा सुनिए गाना और बताइए इसमें कौन है कलाकार।

आपको बताना है फिल्म का नाम। संगीतकार का नाम पता है तो वो भी बताइए। गाना तो आपने बूझ लिया होगा कौन सा गाना है।

हमने आपसे फिल्म का नाम पूछा था, सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया फासले, और कुछ श्रोताओं ने बहुत त्वरित जवाब दिया। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि चलते हैं विविध भारती के सुरीले सफर में, जहां डायरी में लिखे अफसानों की बातें होंगी। क्या होता है जब आपकी डायरी चुपके से पढ़ ले कोई, क्या होता है जब हम आंखों से किसी के भीतर क्या चल रहा है पढ़ लेते हैं, तो नजरों से पढ़ने को किसे कितना इल्म है। तो सुरीले सफर में गीतों के माध्यम से जानते हैं, बिल्कुल जानिए। और हम तो ये कह रहे हैं कि सारे श्रोता अपने दिल की बात बताएं, और बताएं कि आंखों से कौन सी भाषा आपने कही, सामने वाले ने समझ ली, किससे कही, और आपने कब समझी आंखों की भाषा, किसकी, पत्नी की, प्रेमिका की, अपने माँ की, पिता की, भाई की वगैरह। और एक श्रोता ने लिखा है कि आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया, तेरी आंखों की चाहत में गानों के बहुत सारे बोल लिखे हैं। एक श्रोता ने लिखा है अफसाना, नजरें, आंखों, चुप, छोटी, इंतजार, शाम, जिंदगी, हो सकते हैं आज के शब्द। आज के शब्द ढूंढना तो बहुत आसान है और गाने चुनना भी बहुत आसान है। बहुत सारे श्रोता चुन भी रहे हैं और हम उन श्रोताओं के गानों को शामिल भी कर रहे हैं अपनी प्लेलिस्ट में, क्योंकि आज हमने सोचा था कि आपके चुने हुए गानों से ही अपनी प्लेलिस्ट बनाएंगे। एक श्रोता लिख रहे हैं कि आंखों आंखों में बात होने दो, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, वगैरह वगैरह। एक श्रोता ने लिखा है कि डायरी लिखना कितना विशिष्ट होता है, कितना असाधारण, वो भी जब खामोश सा कोई अफसाना डायरी में दर्ज करना हो, श्यामल रातों में जलने वाले दीपक की लौ देखकर प्रेमी का इंतजार करना, कुछ प्रतीक्षा जीवन का आकार ले लेती है, वो समाप्त नहीं होती। प्रतीक्षा में शब्द नहीं होते, वे तो प्रकट होते हैं हवा की थरथराहट से, मोबाइल की हल्की कंपन से। प्रतीक्षा में धीरज नहीं, एक बेचैन ठहराव होता है। बरामदे में बैठी प्रियतमा हर सांझ सड़क की ओर देखती है, वही मोड़, वही पेड़, वही धूल से भरा रास्ता, वो जानती है वो आएगा फिर से। तो इसमें आज की इबारत में हमने बहुत सारे सवाल भी पूछे हैं, इन्होंने जवाब भी दे डाला है कि वो आएगा। हमने ये भी पूछा है कि कब आएगा, कैसे आया और किस मोड़ पर आया, और डायरी के पन्नों में आपने क्या कुछ अंकित किया, गाने के बोल, फिल्म का नाम,

कहानी, कविता या अपनी दिनचर्या या फिर अपनी कोई दुखद बात या कोई बहुत खुशगवार लम्हा बताइए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। फिलहाल बताइए कौन है हीरो हीरोइन।

अनपढ़ फिल्म का गाना था और हमने पूछा था कौन है कलाकार हीरो हीरोइन का नाम। अभी तक श्रोताओं की ओर से बहुत जवाब नहीं आए तो हम इंतजार करेंगे, अगले गाने के बाद आपको बताएंगे सही जवाब। तब तक आप लिख सकते हैं इस फिल्म में कौन थे कलाकार, इसका जवाब आप लिख सकते हैं और हम आपको बता रहे हैं कि आपने क्या लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे डायरी लिखने की आदत तो नहीं पर अपनी पसंदीदा गीतों को विविध भारती से सुन सुनकर नोटबुक पे नोट जरूर करती थी ताकि उन्हें पढ़कर गा सकूं। इस तरह से काफी सारे नोटबुक का कलेक्शन हो गया था और कितने गीत मुजबानी याद भी हो गए। फिर समय के साथ बहुत कुछ बदल गया, अब तो सब कुछ मोबाइल में मौजूद है। तो जरा आज ये जो इबारत है इसमें जो शब्द हैं शब्दों से गाने याद कीजिए जो डायरी में आपने लिख रखे नोट किए हैं गाने के बोल फिल्म का नाम, तो कोई ना कोई गाना तो इसमें होगा, लिखिए और हम उसे अपनी प्लेलिस्ट में शामिल करके आप तक पहुंचाएंगे। आप सभी श्रोताओं से ये अनुरोध है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज के सफर में अफसाने के निगाहों के चुपके से देखने खड़े रहने के एक मोड़ पर मिलना बिछड़ने की इस छोटी सी दुनिया में कभी तो मिलने के खामोशी से आंखों से देखने के गीत एक गुलदस्ते के समान सुनने को मिलेंगे। धन्यवाद, मेरा नाम लिखा है। धन्यवाद तो आप सभी को हम कह रहे हैं कि आप इस प्रोग्राम में शामिल हैं। और हाँ, जो हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं उसके जवाब भी देते चलिए और जो गाने हैं शब्द हैं शब्दों को चुनते चलिए और गाने के बोल लिखते चलिए। अब ज़रा सोचिए कि ये गाना आपने याद किया था आज, मुझे तो अब तक ये गाना नहीं नज़र आया था लेकिन हमने सोचा कि ये गाना बजा कर देखते हैं आप में से कितने लोग इस गाने को सुनते हुए कौन सी बात याद कर सकते हैं। डायरी वाली बात या जो इबारत में हमने सवाल पूछा है कि वो मुलाकात किस तरह से हुई, जो बिछड़ गया राही तो वापस मिला तो कहाँ, किस मोड़ पर, कैसे मिला, कैसे मुलाकात हुई और आंखों से कौन सी बात कही। फिल्म का नाम बूझिए, किसकी है आवाज ये भी बूझिए, दो आवाजें हैं। विविध भारती से किस प्रोग्राम में ये गाना सुना था ये भी बताइएगा।

भाई वाह, लगता है ये गाना हमारे श्रोताओं को बहुत पसंद आया। बहुत त्वरित जवाब आने शुरू हो गए। बड़ी बहन फिल्म का नाम फटाफट लिखा हमारे श्रोताओं ने, और साथ में लता मंगेशकर और प्रेम लता की आवाजें हैं। और बहुत लोगों ने ये लिखा है कि भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में बजता है ये गीत। और एक श्रोता ने लिखा है कि परसों ही तो ये गाना भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में सुना था। और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी यादों की डायरी में निम्नलिखित गीत हैं, प्रेम है, प्रेम पिया, और कोरा कागज था, मन मेरा, मेरे महबूब, वगैरह वगैरह गानों की लंबी फहरिस्त इन्होंने लिखी है। और एक श्रोता ने लिखा है कि जो गाना आपने सुनवाया था, आपकी नजरों ने समझा, अनपढ़ फिल्म का, माला सिन्हा और धर्मेंद्र, ये जवाब बिल्कुल सही दिया है। और ये जवाब एक ही श्रोता नहीं बल्कि बहुत सारे श्रोताओं की ओर से आ चुका है। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, लेकिन इस गाने में चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है, पहली मुलाकात है। तो ये जो चुप की भाषा है, खामोशी की भाषा है, ये बड़ी अहम होती है, महत्वपूर्ण होती है। तो जरा बताइए कि आप कब खामोश रहकर बहुत कुछ कह जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लम्हात हैं हमारी जिंदगी में जब हम कुछ नहीं बोलते लेकिन फिर भी बहुत कुछ बोलते हैं, और नजरें बोलती हैं, आंखें बोलती हैं, आप नहीं बोलते हैं। तो कौन सा ऐसा लम्हा, कौन सी ऐसी घड़ी आई जब आप चुप होकर जवाब देते हैं? कई बार तो कोई करारी बात होती है, कोई ऐसी बात होती है जो दिल दुखाने वाली बात होती है, फिर भी आप चुप रह जाते हैं, लेकिन आपकी वो खामोशी बहुत कुछ कह जाती है।

एक श्रोता ने लिखा है कि डायरी लिखना कितना विशिष्ट होता है, कितना असाधारण, वो भी जब खामोश सा अफसाना डायरी में दर्ज करना हो। ये टिप्पणी पहले आ चुकी है और आप तक पहुंचा चुके हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि पानी पे लिखा खामोश अफसाना जो शबाना दी के लिए, उनकी हिरनी सी बड़ी बड़ी आंखों में उजालों के दिए जलते, एक खूबसूरत से ख्वाब आंखों में पले, मुस्कुराए वो खिलखिला के तो आसमां से चांदनी के नूर बरसने लगते हैं। लेकिन अब बात यहाँ पर हम चुप रहकर जवाब देने की और आंखों की भाषा की, नजरों की बात, तो जरा सुनिए ये गाना और बूझिए

फिल्म थी 20 साल बाद और वहीदा रहमान विश्वजीत थे कलाकार। हमारे श्रोताओं ने ये जानकारी भी दी है और सही जानकारी दी है। वाह, एक श्रोता ने लिखा है वाह मेरा चयनित गीत, ये तो बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। हेमंत कुमार की आवाज़ थी और शकील बदायूनी के बोल थे, हेमंत कुमार का ही संगीत था। गज़ब के बोल थे, ज़रूरत क्या तुम्हें तलवार और खंजर की, तो क्या ऐसी आँखें ऐसी निगाहें आपके इर्द गिर्द भी हैं? जब आप किसी की आंखों की तारीफ करते हैं तो यूं जरा बताइएगा ये भी, आज अपने दिल की बात कह डालिए खामोशी से, नजरों की बात भी कह डालिए खामोशी से। एक श्रोता ने लिखा है कि 20 साल बाद जरा नजरों से कह दो जी, एक सदाबहार क्लासिक है इस गीत को, मशहूर गायक हेमंत कुमार ने मखमली आवाज दी है, इसका संगीत भी उन्होंने तैयार किया था, क्या खूब लिखा है। और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि डायरी लिखना भाव प्रवणता की निशानी है, और बहुत सारे श्रोता ये लिख रहे हैं कि डायरी तो लिखी लेकिन फिल्म के नाम और गीत के बोल लिखे हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। कई बार हमें गाने नहीं याद होते हैं तो उस समय हम डायरी के पन्ने पलट लेते हैं, हालांकि आजकल पन्नों की ओर कौन जाए, मोबाइल के ही नोटपैड में लिख लिया करते हैं, लेकिन नोटपैड भी, मोबाइल का नोटपैड भी एक तरह का डायरी का काम किया करता है। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे तो कमेंट भी खामोश रह जाते हैं, जरा कुछ लिखिए तो सही, खामोश नहीं बिल्कुल बोलते हुए नजर आएंगे। एक श्रोता ने लिखा है कि माँ की आंखें बच्चों को पता चल जाती हैं कि माँ किस मूड में हैं, और टीचर की निगाहें, उसका जिक्र भी तो कीजिए कि टीचर आज किस मूड में हैं। कुछ टीचर बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करती थी।

हुआ करते थे तो उनकी पोशाक पहनकर हम अंदाजा लगाया करते थे कि अरे आज मिस ने ये वाली साड़ी पहनी है, इस दिन तो गुस्सा करती हैं तो आज जरूर गुस्सा करेंगी, ऐसा भी होता था। तो कौन सी आपकी टीचर हैं जिनकी निगाहों से आपको डर लगता था लेकिन अदब बहुत करते थे, उनके प्रति प्रेम भाव स्नेह भाव बहुत होता था। ये आपको अपने अनुभव साझा करने हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि विभिन्न मुल्कों में हर देश की एक निर्धारित सरहद हुआ करती है और उस सरहद के निगहबान आंखें ही होती हैं। यहाँ ध्यातव्य है कि देशो ही द्विविध, और तात्पर्य देश को भूमि के साथ ही साथ आतुर भी कहा जाता है। आतुर तो ये शरीर ही है, प्रणय में फिर ऐसी ही आतुरता देखी जाती है जिसके निगहबानी का भरोसा जब प्रेमियों के बीच पनपता है तभी प्रणय साकार होता है। जरा आसान भाषा में लिख दीजिए भाई ताकि हमारे सारे श्रोता समझ लें ये बात। एक श्रोता ने लिखा है कि आज आंखों की होंगी बातें जिनके बिना जीवन वीराना लगता है। कल्पना कीजिए कि वे कैसे जीते होंगे जिनको ये सुख प्राप्त नहीं होता। आज एक गीत सुनने की तमन्ना है, 1964 की फिल्म है शबनम का गीत, तेरी निगाहों पे मर मर गए हम। चलिए फिर यही गाना सुन लिया जाए। कई श्रोताओं ने इस गाने का जिक्र किया है और बहुत सारे श्रोता बहुत सारे गाने लिख रहे हैं, तो आप अपने गानों की डायरी खोलिए और उसमें से गाने चुनिए। आप जो सुझाव देते रहेंगे वही गाना सुनवाएंगे। सुनिए शबनम फिल्म का गाना, बताइए गीतकार और संगीतकार का नाम। अगली कौन सी फिल्म हो, अगला कौन सा गाना हो, जरा बताइएगा। आंखों की चुप रहने की, खामोशी की, अफसाना की, बहुत जल्द बताइए ताकि हम गाना प्लेलिस्ट में डाल सकें अगली फिल्म का नाम।

0: गीतकार का नाम और संगीतकार का नाम आपको बूझना है।
1: जुल्फों में लेके काली रात चले

0: क्या करे क्या करे क्या करे तेरी निगाहों में।
1: शबनम फिल्म का गाना, मुकेश की आवाज, जावेद अनवर के बोल, उषा खन्ना का संगीत। हमारे सुधी श्रोताओं ने बहुत जल्द जवाब दे दिया, गीतकार और संगीतकार का नाम बिल्कुल सही सही। एक श्रोता ने लिखा है कि हम तो अपने फिजिक्स के टीचर से डरते थे और उनकी आंखें भी बहुत अलग ही, सिर्फ हम ही नहीं सभी बच्चे उनकी आंखों और उनकी उनसे डरते थे। अभी भी याद है वो टीचर हमें। लेकिन एक बात यहां जोड़ना चाहेंगे, टीचर से डर लगे जो स्ट्रिक्ट टीचर होते हैं, लेकिन असल में उनसे आप असली ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। उनके डर से आप बहुत

पढ़ाई कर ले जाते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है, तिरछे नैनो वाली बीबी भोली भाली। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि एक गाना है चुप हो जा अमीरों के, सोने की घड़ी, फिल्म बंदी। और अभी जो हम आंखों की बात कर रहे थे, तो आंखों वाले गाने भी आप सुझाइए, ताकि हम वो गाने हम सुनवा सकें। एक श्रोता ने लिखा है कि पहले मैं जो भी फिल्म का गीत पसंद होता था लिख लेती थी, इस तरह मेरे पसंद के गीतों की डायरी तैयार हो जाती थी। और एक श्रोता ने लिखा है कि हिंदी की क्लिष्टता ही उसकी सुंदरता है। दरअसल हिंदी की क्लिष्टता सुंदरता नहीं कह सकते हैं, बल्कि ललित लालित्य जो होता है वो सुंदरता को निखारता है। शब्दों का लालित्य, भाषा का लालित्य, भाव का लालित्य। एक श्रोता की टिप्पणी है, जब मोबाइल नहीं था तब सखी सहेली में जो गाने बजते थे वो बहुत ही बढ़िया हुआ करते थे, और फिल्म के नाम के साथ गाना हम नोटबुक पे नोट कर लिया करते थे। एक श्रोता ने लिखा है कि वो मिला तो, पर शायद हकीकत में नहीं, बस ख्वाबों में। पर क्या उसे मिलना कहेंगे? कई बार ख्वाबों में मिलना भी तो मिलना होता है। ख्वाब कई बार हकीकत में ढल जाते हैं, और कई बार ख्वाब हकीकत से लगते हैं, हकीकत ख्वाब सा लगता है। एक श्रोता ने लिखा है, अफसाना लिख रही हूँ, चुप चुप खड़े हो, हम इंतजार करेंगे, छोटी सी दुनिया, आंखों आंखों में बात, जरा नजरों से कह दो, वो शाम कुछ अजीब थी, अब बस। बहुत सारे गाने हैं, इतने गाने अगर पढ़कर सुनाऊंगी तो फिर बाकी टिप्पणियों का क्या होगा। लेकिन आप गाने सुझाते रहिए, ताकि हम अपनी प्लेलिस्ट को समृद्ध करते रहें आज के इस प्रोग्राम के लिए। एक श्रोता ने लिखा है कि समय बलवान है, जब मैं स्कूल और कॉलेज में था तब मेरी डायरी में लिखने की अच्छी आदत थी, कवियों की कविताएं, कोटेशंस, अखबारों के अच्छे लेख, देश विदेश के घूमने के स्थलों की जानकारी, जनरल नॉलेज के विशेष, और अपने दिमाग से लिखी खुद की कविताएं। एक चीज आपने नहीं जोड़ा कि अखबार की कतरने भी इकट्ठी की जाती थी। कॉपी या डायरी में अखबार की कतरने बाकायदा कैंची से काटकर उसे चिपका दिया करते थे, और जब डायरी के पन्ने पलटते थे तो वो जानकारी सामने आ जाती थी, और जब कोई खास निबंध या आलेख लिखना होता था तो वो पन्ने पलट लिए जाते थे। आप में से बताइए कितने लोग हैं जिन्होंने डायरी में वो अखबार की कतरने संभाल कर आज भी रखी हैं, और कितने लोग हैं जिन्होंने उस डायरी को ही फेंक दिया या रद्दी में बेच दिया। उस डायरी में ऐसे लगता था कि जान होती थी, प्राण वायु होती थी डायरी। वो डायरी बड़ी अनमोल होती थी कि बड़े होने पर भी उस डायरी की अहमियत, मतलब जब याद आती है तो ऐसे लगता है कि वो डायरी किसी व्यक्ति की तरह है। एक श्रोता ने लिखा है कि किसी के आने का इंतजार भी कितना प्यारा होता है, दरवाजे पर नजर रहती है, हर आहट पर लगता है शायद वही आए हैं, पता नहीं वो कब आएंगे, मगर मन उनकी राह देखना नहीं छोड़ता। इंतजार में एक मीठी सी खुशी होती है, क्योंकि दिल में किसी अपने के आने की उम्मीद जो होती है। अब निगाहों की, आंखों की बातें, और गाना भी वही। फिल्म का नाम है घर। आपको पूछना है कौन है हीरो, कौन हीरोइन। गाने के बोल तो समझ में आ गए होंगे इस इंटरल्यूड म्यूजिक के साथ ही। बताइए कौन है गीतकार और संगीतकार, हीरो हीरोइन का नाम।

घर फिल्म का गाना था किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें थी। गीतकार गुलजार, संगीतकार राहुल देवर्मन। बिल्कुल सही जवाब आया है और हीरो हीरोइन का नाम भी हमने पूछा था, विनोद मेहरा, रेखा। सभी श्रोताओं ने इसका भी जवाब सही दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि अखबार में कुछ नई जानकारी या कोई प्रिय नायक नायिका हो तो अखबार को काट लिया करते थे, अब तो नहीं करते। मेरी बहन तो अभी भी पकवान की रेसिपी काट कर रख लेती है और फ्रिज पर चिपका देती है ना क्योंकि अक्सर यही होता है कि अखबार की कटिंग काट कर फ्रिज पर चिपका देते हैं, लेकिन कई बार भूल भी जाया जाता है कि अखबार की कटिंग रखी है कुछ नया बनाने के लिए, क्योंकि अब मोबाइल है, मोबाइल में गूगल पर जाकर नई नई रेसिपी मिल ही जाती है। एक श्रोता ने लिखा है कि आंख मिली तो दिल धड़का फिल्म नागरानी, फिल्म का अन्य नाम कोबरा गर्ल, संगीत श्रीनाथ त्रिपाठी। इस गाने के लिए अपने शास्त्रीय रागों पर आधारित शैली के बदले चित्रगुप्त की सहायता से उन्होंने अरेबियन शैली का संगीत बनाया था और आशा जी की मौलिक गायन शैली और रागिनी का नृत्य। इस जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। एक श्रोता ने लिखा है कि प्यारी निगाहों से मैं देखता रह गया था कुछ देर जब मैं पहली बार मिला था सगाई से पहले अपनी होने वाली धर्मपत्नी को, जब वो मुस्कुराई तो मैं चुप नहीं रहा और खूब बातें की थी। लेकिन एक चुप की भाषा भी होती है, खामोशी की भाषा भी, जब बोलने से पहले जो भाषा होती है वो होती है आँखों की भाषा, और जब दिल मिलते हैं तब आँखों की भाषा बोलती है बड़ी खूबसूरती के साथ। एक श्रोता ने लिखा है कि आपने टीचर की बात कही तो मैं बता दूं कि बीएड करते समय हमारी उम्र 20-21 की थी और हमारे क्लास में जो लेक्चरर नई नई आई थी वो भी बीएड पास करके टेम्प्ररी बेसिस पर आई थी। बला की खूबसूरत थी, उनकी आंखें बिल्कुल चपल हिरणी सी थीं और वो आंखें बोलती आंखें थीं। एक श्रोता ने लिखा है कि आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज हैं, हिंदी सिनेमा के सबसे खूबसूरत और रोमांटिक गानों में से एक है। इस गीत को गुलजार साहब ने लिखा है। और एक श्रोता की टिप्पणी है कि मैं टीचर को हमेशा सताया करते थे। एक तो अपने भाई बहनों से हम बेहद प्यार करते थे और बचपन में मैं बहुत शरारती थी तो मैं अपनी आंखों से ऐसे इशारे करती थी कि सारे भाई बहन के परिचय फिल्म वाले सीन चालू हो जाते थे। मुझे नैनो वाली ने मतलब ये गाना सुनना चाहते हैं। चलिए अब फिलहाल जो गाना हम आपको सुनवा रहे हैं इसकी भी फरमाइश की है एक तरह से हमारे श्रोताओं ने, बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है, तो ये गाना हम सुनवा रहे हैं। आपको बूझना है फिल्म का नाम और बहुत जल्द बताइएगा क्या है फिल्म का नाम और आवाजें किसकी हैं, किन आवाजों में गाना है और फिल्म का नाम।

बाबुल फिल्म का गाना था, तलत महमूद और शमशाद बेगम की आवाजें थी। हमने यही सवाल पूछा था, कुछ श्रोताओं की ओर से सही जवाब आया है और कुछ श्रोताओं ने कोई

बाबुल फिल्म का गाना था, तलत महमूद और शमशाद बेगम की आवाजें थी। हमने यही सवाल पूछा था, कुछ श्रोताओं की ओर से सही जवाब आया है और कुछ श्रोताओं ने कोई

ये रात फिर ना आएगी। इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में, SH बिहारी के बोल थे। और हमने आपसे पूछा था कौन है हीरोइन और कौन है हीरो, शर्मिला टैगोर और विश्वजीत। हमारे श्रोताओं ने सही जवाब लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि वो शाम बड़ी खूबसूरत थी, जाने पहचाने रास्तों पर चलते हुए अचानक ही वही चेहरा सामने था, बरसों बाद मिले थे, मगर आंखों ने जैसे एक पल में सारी दूरी तय कर ली। उसके हाथ में वही डायरी थी, वही खामोश अफसाना जिसे कभी मेरी नजरों ने चुपके से पढ़ लिया था। उसने कुछ नहीं पूछा, मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में वही पुराना इंतजार था। एक श्रोता ने लिखा है कि वो डायरी थी मेरी, एक मेरी डायरी थी, फिल्मी गीत थे उसमें, और दूसरी डायरी थी जिसमें गजलें लिखती थी, और एकल गायक गायिका को एक रंग के पेन से और युगल स्वरों को दो रंग के पेन से, सामूहिक स्वरों को कई रंगों के पेन से लिखा करते थे। मुझे गीत, खासकर सभी पुराने गीत बहुत पसंद है। एक श्रोता ने लिखा है कि एक बार हुआ यूं कि हमें किसी की बात पर डांट पड़ी कि तुमने ये सही नहीं किया, और हम गुस्सा होकर बैठ गए, आंखों में आंसू भी आए। बुआ जी ने डांटा, उधर से पापा देख रहे थे और इशारे में कह रहे थे छोड़ो ये सब बहन के।

भाई, ये सवाल जवाब का सिलसिला था। बताइए, आप कब मतलब उम्र के किस पड़ाव में ज्यादा सवाल किया करते थे? वैसे बच्चे बहुत सवाल करते रहे हैं, लेकिन आप क्या सही तरीके से अपने बच्चों के जवाब देते हैं ये भी बताइएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप सवालों के जवाब किस तरह से देते हैं। हालांकि ये सवाल जवाब कुछ अलग तरह का था, एक हीरो हीरोइन के बीच सवाल जवाब का सिलसिला है। राजेंद्र कुमार और बी सरोजा देवी, सभी श्रोताओं ने ये लिख डाला है, जबकि मैंने पूछा नहीं था, तो इस बात के लिए आप सभी का शुक्रिया। और ये बात सही लिखी है आपने। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी डायरी 1978 से 82 तक लिखी हुई है, जब कॉलेज फर्स्ट ईयर से ग्रेजुएशन तक के सफर में दिल दर्दे दिल और आर्थिक दुर्दशा से भरी पड़ी है। कभी उठाकर स्याही से लिखा था, पढ़ता हूं तो स्वयं पर हंसता हूं। उम्र के एक पड़ाव पर आकर लगता है कि यह क्या नादानी थी, लेकिन वो बहुत अच्छा समय होता है जब आप अपनी अपनी भावनाओं को कागज़ पर लिख डालते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि बिछड़ना फिर मिलना जिंदगी का दस्तूर है।

इन शब्दों में से गीत आया फिर मिलोगे कभी। एक श्रोता ने लिखा है कि आंखों की बात चली है तो बता दूं कि किसी की आंखों में पल भर के लिए जो दर्द छलका था उस दर्द को आज भी याद करता हूं। और एक श्रोता ने लिखा है कि ये रात फिर ना आएगी के बारे में जानकारी दी है। और सभी श्रोताओं ने लिखा है कि ससुराल फिल्म का गाना था। अब चलिए आगे बढ़े और आपको पूछना है कौन है इसमें हीरोइन और कौन है हीरो। फिल्म है बहू बेगम और आपने कब किसका इंतजार किया और वो आपके इंतजार के बाद भी नहीं आया या नहीं आई।

0: बहु बेगम फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की ये आवाजों में साहिल लुधियानवी के बोल थे, रोशन का संगीत था। और अब प्रोग्राम के आखिर में पेइंग गेस्ट फिल्म का गाना, बूझिए आप कौन है इस फिल्म में कलाकार।
1: शम्मा जलती है जले, हाय हाय हाय।

बाहें मैं की बोतल जैसी बाहें, हाय हाय ये निगाहें, हाय हाय हाय ये निगाहें, कर दे शराबी

0: इशारे ये अदाएं।
1: पेइंग गेस्ट फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। फिल्म में देव आनंद और नूतन होते हैं। इससे पहले जो गाना हमने सुनवाया था, हमने पूछा था कौन है कलाकार, मीना कुमारी और प्रदीप कुमार थे। अब आज का सुरीला सफर बस इतना ही। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनिस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रिकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए इस श्रृंखला की 46वीं कड़ी।

0: में प्रति सरकारें स्थापित की गईं। अब किसी भी परिस्थिति में अंत तक यह आंदोलन जारी रखना ही है। आंदोलनकारियों की इस जिद के कारण ब्रिटिश राजसत्ता को एक के बाद एक झटके लग रहे थे, परंतु जब राजसत्ता की रीढ़ ही सेना और राजसत्ता के विरुद्ध चली जाती है तब सारे समीकरण बदल जाते हैं। आजाद हिंद सेना को आदर्श मानकर ब्रिटिश फौज के नौसेना और वायुसेना के भारतीय अधिकारियों ने हड़ताल का आह्वान किया। मुंबई बंदरगाह में खड़ी तलवार नामक युद्धपोत पर से यूनियन जैक उतार दिया गया। नौसेना के अधिकारियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध खुला युद्ध छेड़ दिया। कई महत्वपूर्ण शहरों में वायुसेना के अधिकारी हड़ताल पर चले गए। अंग्रेजों द्वारा कड़ी कार्रवाई की धमकी दिए जाने के बाद भी उन्होंने हड़ताल वापस नहीं ली। नाविक दल के इस संघर्ष में वंदे मातरम शब्द को युद्ध घोष का स्थान प्राप्त था। जिन भारतीय सैनिकों के बल पर अंग्रेजों ने राज चलाया था, उन्हीं भारतीय सैनिकों के विद्रोह के कारण ब्रिटिश सत्ता को अंतिम और सबसे बड़ा झटका लगा।
1: दूसरे विश्व युद्ध के कारण आर्थिक संकट में फंसा इंग्लैंड भारत में इन उग्र आंदोलनों के कारण पूरी तरह घिर गया। भारत को पूर्ण स्वतंत्रता मिलने का समय बिल्कुल निकट आ गया, पर जाते जाते अंग्रेजों ने कुछ साल पहले जो फूट डालने की राजनीति की थी उसके कटु परिणाम अब दिखने लगे थे। बैरिस्टर जिन्ना के दुराग्रह के कारण मुस्लिम लीग और अन्य जातिवादी संगठनों की हिंसक कार्रवाइयों में भारत को खंडित स्वरूप में ही स्वतंत्रता मिलेगी, ये लगभग निश्चित हो गया था। बेशक 150 साल की अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त होने का आनंद सबसे बड़ा था। 1875 में बंकिम चंद्र ने भारत माता को वंदे मातरम कहकर जो पुकार लगाई थी वो आज इतने वर्षों बाद फलदायी हो रही थी। भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, ऐसे नारे लगाते हुए बलिदान देने वाले, शहादत को गले लगाने वाले युवाओं का या वंदे मातरम कहते हुए असहनीय अत्याचार सहने वाले सत्याग्रहियों का स्वतंत्र भारत का सपना आज साकार हो रहा था।
0: कुल मिलाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम की अधिकांश घटनाएं वंदे मातरम की साक्षी में ही घटी हैं। वंदे मातरम, इन शब्दों के बिना मानो इस आंदोलन की किसी भी हलचल को पूर्णता मिलना असंभव था। संपूर्ण भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को वंदे मातरम के इस तेजस्वी मंत्र का संबल मिला। मैं माता को वंदन करता हूं, इतना सरल अर्थ वाले इन शब्दों से अंग्रेजों को इतना डर क्यों लगता था? उन पर प्रतिबंध क्यों लगाए जाते थे? उन शब्दों का उच्चारण करने वालों पर लाठी डंडों के साथ बंदूक की गोलियां भी क्यों चलाई जाती थीं? अंग्रेजी राजसत्ता के मन में इतना भय पैदा करने वाली ऐसी कौन सी भावना वंदे मातरम शब्द में छिपी हुई थी?
1: वंदे मातरम, इस शब्द में है धधकती राष्ट्रभावना, इन शब्दों में है मातृभूमि के प्रति ज्वलंत निष्ठा, इन शब्दों में है मातृभूमि के चरणों में

0: 15 अगस्त 1947, क्रांतिकारी अरविंद घोष अब योगी श्री अरविंद बन चुके थे। आज उनका जन्मदिन था। आज उनके 75वें जन्मदिवस पर उन्हें अपनी भारत माता के स्वतंत्र होने का सपना साकार होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। 1910 के बाद श्री अरविंद क्रांतिकारी कार्यों से योग मार्ग की ओर मुड़ गए थे। फिर भी वंदे मातरम के वे सच्चे अर्थों में प्रवर्तक थे। बंकिम चंद्र ने वंदे मातरम लिखा, पर उसका आशय, उसका महत्व, उसकी चिंगारी भारतीय जनता के मन में पहली बार जगाई होगी तो वो श्री अरविंद ने। वंदे मातरम के दो अंग्रेजी अनुवाद उन्होंने किए ही थे। उसके साथ ही बंकिम चंद्र के उपन्यास आनंद मठ का अंग्रेजी अनुवाद भी उन्होंने शुरू किया, परंतु कारावास के कारण उसमें बाधा आ गई और वो अनुवाद उनके क्रांतिकारी भाई बारिंद्र नाथ घोष ने पूरा किया। बंकिम चंद्र के वंदे मातरम और आनंद मठ की प्रेरणा से श्री अरविंद ने भवानी मंदिर की परिकल्पना की थी। भवानी मंदिर, ये संकल्पना उन्होंने लेख के रूप में युवाओं के सामने रखी और वो आध्यात्मनिष्ठ राष्ट्रवादियों के लिए गीता बन गई। श्री अरविंद ने भवानी भारती इस लेख में राष्ट्र के विषय में जो संकल्पित किया उसे स्पष्ट करते हुए वे लिखते हैं,
1: ये देश जड़ भू प्रदेश नहीं है, वो भगवती शक्ति की प्रतिमा है। पहले की महिषासुर मर्दिनी आज भारत भवानी बन गई है। उसके लिए सर्वस्व का त्याग करने वाले उसके पुत्रों को उसका अभिषेक करने के लिए आगे आना चाहिए। भवानी मंदिर बनाने के लिए ईंट पत्थरों की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रीयता की भक्ति भावना से आकार लेने वाला वो मानस मंदिर होगा।
0: भवानी मंदिर की उनकी परिकल्पना यदि प्रत्यक्ष रूप में साकार हुई होती तो भारतीय सशस्त्र संघर्ष को एक संगठित स्वरूप प्राप्त हो जाता। बंकिम चंद्र के आनंद मठ उपन्यास में सन्यासियों की राष्ट्र भावना से समानता रखने वाला विन्यास इस लेख में है। भवानी मंदिर इस संकल्पना के पूरक के रूप में भवानी भारती नाम से श्री अरविंद ने संस्कृत भाषा में 99 श्लोक लिखकर आदि शक्ति से आर्त प्रार्थना की। दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोकों के देवी महात्म्य में महिषासुर वध के रूपक को श्री अरविंद ने अंग्रेज रूपी असुर का कालिका माता के स्वरूप वाली भारत माता वध करती है ऐसी कल्पना करते हुए प्रस्तुत किया। इन 99 श्लोकों के अंत में समापन करते हुए अंतिम दो चरणों में वे भारत माता को संबोधित करते हुए कहते हैं,

और विविध विद्याएं, ये सब तू ही है। हे आर्य, प्रसन्न हो और भारतीयों के हृदय में चिरकाल तक निवास कर। हे प्रचंड तेज पुंज प्रतिमा के समान देवी, अपनी शुभ्र कांति से सागरों और पर्वत शिखरों को प्रकाशित करती हुई स्थिर होकर प्रसन्नता पूर्वक जगत के कल्याण के लिए तू आर्य भूमि में अर्थात हमारे भारतवर्ष में चिरकाल तक निवास कर।

इसका भावार्थ इस प्रकार है, हे अनंत रूप धारण करने वाली, प्रीति, दया, धैर्य, अदम्य शौर्य, श्रद्धा, तितिक्षा।

0: सेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भ्रम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।
1: वंदे मातरम एक जय घोष, ये थी इस लघु रूपक श्रृंखला की 46वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनिस, हिंदी अनुवाद संकलन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रिकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रिकर और ममता सिंह, तकनीकी सहयोग किरण बंग और अनुश्री गुप्ता, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। 2:15 होने वाले हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भूटान के विकास संबंधी लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के लिए भारत के सहयोग की पुष्टि की। दोनों देशों ने द्विपक्षीय सहयोग और पारस्परिक महत्व के मुद्दों की समीक्षा की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आज बेंगलुरु में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में भारतीय वायुसेना को LCA तेजस और HTT-40 प्रशिक्षण विमान सौंपेगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में मुकुटबन और गढ़चंदूर के बीच नई रेल लाइन के निर्माण के लिए 493 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में ऑपरेशन सोहन के तहत जैश के 2 आतंकवादियों को मार गिराया। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वास्तविक GDP वृद्धि दर बढ़ाकर 7% की। और जापान में एशियाई खेलों में पहली बार हिस्सा ले रही भारतीय टेग बॉल खिलाड़ी क्विम्सी जोआकिम डिसूजा ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भूटान के विकास संबंधी लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के लिए भारत के सहयोग की पुष्टि की है। भूटान यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर ने भूटान के विदेश मंत्री लिनपो डीएल धुंगेल के साथ द्विपक्षीय सहयोग के सभी आयामों तथा आपसी महत्व के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने भारत भूटान साझेदारी को सुदृढ़ करने में हुई प्रगति की सराहना की। एक रिपोर्ट।
1: श्री जयशंकर और श्री धुंगेल ने कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इनमें मोंगार में 65 बिस्तरों वाला ग्यालसुएन जेत्सुन पेमा मदर एंड चाइल्ड अस्पताल, समद्रुप जोंखार त्राशीगांग राजमार्ग पर जगन्नाथ पुल और भूटान के बुमथांग स्थित राष्ट्रीय पशु प्रजनन केंद्र को भारत से 43 जर्सी गायों को दिया जाना शामिल है। भारत ने भूटान सरकार को 54 इलेक्ट्रिक वाहन भी सौंपे। दोनों मंत्रियों ने 500 किलोवाट की लुनाना पनबिजली परियोजना की आधारशिला भी रखी। बैठक में दोनों पक्षों ने मार्च 2024 में हुए ऊर्जा साझेदारी पर संयुक्त दृष्टिकोण के कार्यान्वयन पर संतोष व्यक्त किया। दोनों देशों ने ऊर्जा सहयोग में हाल की प्रगति का उल्लेख भी किया। भूटान की पनबिजली परियोजनाओं में भारतीय कंपनियों की सक्रिय भागीदारी का स्वागत किया गया और कहा कि इससे दोनों देशों के मौजूदा ऊर्जा सहयोग को और गति मिली है। श्री जयशंकर और श्री धुंगेल ने UPI आधारित सुविधा के चालू होने का स्वागत किया। इससे भूटान के नागरिक भूटान के मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए भारत में डिजिटल भुगतान कर सकेंगे। अंकित कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा है कि पिछले कई दशकों में सेमीकंडक्टर चिप एक छिपे हुए औद्योगिक घटक से आगे बढ़कर आर्थिक क्षमता, तकनीकी परिपक्वता और राष्ट्रीय क्षमता का मापदंड बन गई है। नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर एक सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी देश, चाहे वो कितना ही विकसित क्यों न हो, अकेले चिप का निर्माण नहीं कर सकता। श्री मिश्री ने कहा कि ताइवान दुनिया की करीब 90% सबसे उन्नत चिप का उत्पादन करता है, लेकिन इसके लिए डिजाइन, सॉफ्टवेयर, उपकरण और सामग्री दूसरे देशों से आती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक समारोह में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के विमानों और हेलीकॉप्टरों को भारतीय वायुसेना तथा पवन हंस को सौंपे जाने के कार्यक्रम में शामिल होंगे। 2 हल्के लड़ाकू FOC ट्रेनर विमान तथा पहला हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर HTT-40 बेसिक ट्रेनर विमान वायुसेना को और 4 ध्रुव नेक्स्ट जेनरेशन हेलीकॉप्टर पवन हंस को सौंपे जाएंगे। HTT-40 विमान आधुनिक कॉकपिट से लैस है। ध्रुव नेक्स्ट जेनरेशन हेलीकॉप्टर भारत का पहला स्वदेश निर्मित असैन्य हेलीकॉप्टर है जो उड़ान सुरक्षा मानकों AS4 की आवश्यकताओं को पूरा करता है। एक रिपोर्ट।
2: फुल ऑपरेशन क्लियरेंस प्राप्त LCA तेजस, HTT-40 विमान चालक प्रशिक्षण विमान और ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर का डिफेंस और नागरिक विमानयान क्षेत्र में शामिल होना एक अहम उपलब्धि है। इससे भारत मिलिट्री और सिविल पायलट्स के प्रशिक्षण में आत्मनिर्भरता प्राप्त होगी। देश में ही विमान निर्माण से जुड़े उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। इससे आवश्यक नव उद्योग बढ़ेंगे। विदेशी विमानों के आयात की निर्भरता घटेगी, जिससे विदेशी मुद्रा की बचत भी हो पाएगी। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर दो दिन का सम्मेलन आयोजित करेगा। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और वित्त सचिव भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के सचिव डॉ सौरभ गर्ग विकसित भारत की यात्रा में विकास के परिणामों को मापने के महत्व पर विचार रखेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे के मुकुटबन आदिलाबाद और गढ़चंदूर के बीच लगभग 38 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन के निर्माण के लिए 493 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने बताया है कि नई रेल लाइन एक छोटा और बेहतर रेल मार्ग उपलब्ध कराएगी। इससे यात्रा की दूरी, परिवहन समय और संबंधित लागत में कमी आएगी। ये रेल लाइन मौजूदा वर्धा मानिकगढ़ रेलखंड पर भीड़ कम करने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग भी उपलब्ध कराएगी। इससे मालगाड़ियों का संचालन अधिक सुचारू हो सकेगा। नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा है कि प्रगति मंच से सरकारी परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में उन्होंने सक्रिय शासन की दिशा में प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के बारे में बताया। राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर ने आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के साथ भारत में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आयोजन का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सम्मेलन से भारत की अंतर्राष्ट्रीय साख में वृद्धि हुई है। ये विशेष साक्षात्कार आज शाम 7:10 पर 100.1 MHz पर सुना जा सकता है। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारी समिति को विधेयक के प्रावधानों के बारे में जानकारी देंगे।
4: संसद के दोनों सदनों ने 12 अगस्त को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मंजूरी दी थी। यह विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन से जुड़ा है। इसका उद्देश्य विदेशी अंशदान के इस्तेमाल में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल समिति के अध्यक्ष हैं। समिति को शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक अपनी रिपोर्ट सदन में पेश करनी है। समाचार कक्ष से कौशलेंद्र।
0: उत्तरी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में ऑपरेशन सोहन के तहत जैश के 2 आतंकवादियों का सफाया करने के लिए व्हाइट नाइट कोर की सराहना की है। उधमपुर जिले के मजलटा क्षेत्र में जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के साथ किए गए इस अभियान ने आतंकवाद से निपटने में संयुक्त अंतर एजेंसी समन्वय की मजबूती को दर्शाया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्ष की सार्वजनिक सेवा को समर्पित सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत एक नई और दूरदर्शी पहल सेवा प्रथम नवाचार चुनौती का शुभारंभ किया। महेंद्रगढ़ में पोर्टल के शुभारंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मंच राज्य के छात्रों, स्टार्टअप्स, उद्यमियों, पेशेवरों, शोधकर्ताओं, जमीनी स्तर के इनोवेटर्स और आम नागरिकों को अपने नवीनतम विचारों, प्रौद्योगिकियों, उत्पादों तथा समाधानों को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के प्रयासों से लोगों का जीवन बदल रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से जमीनी स्तर पर हो रहे सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी परिवर्तनों पर चर्चा कर रहे हैं।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू हुए इस अभियान ने झारखंड के सुदूर गांवों से लेकर शहरों तक स्वच्छता को एक जन आंदोलन का रूप दे दिया है। राज्य के 91% से अधिक गांवों को ODF प्लस यानी खुले में शौच से मुक्त घोषित किया जा चुका है, जहां अब ठोस और तरल कचरा प्रबंधन पर विशेष काम हो रहा है। स्वच्छता को हर नागरिक के स्वभाव और संस्कार में शामिल करने का आह्वान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वच्छता केवल एक कार्यक्रम नहीं है, ये हमारे जीवन का हिस्सा होनी चाहिए।
6: साथियों, स्वच्छता कोई एक दिन का काम नहीं है, स्वच्छता तो जीवन जीने का तरीका है। देश में करोड़ों शौचालय बनाए गए, भारत को खुले में शौच से मुक्त कराया गया, सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता के लिए अभियान चलाए गए, सफाई हमारी जीवन शैली का हिस्सा बने, इसके लिए अलग अलग इनिशिएटिव शुरू किए गए।
5: प्रधानमंत्री के इसी विजन की वजह से आज झारखंड के ग्रामीण इलाकों में लगभग 42 लाख शौचालयों के निर्माण से महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। इसके साथ ही राज्य के सुदूर जनजातीय क्षेत्रों में गोवर्धन योजना के तहत कचरे से कंचन और बायोगैस बनाने की पहल से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। स्वच्छ भारत मिशन का सीधा लाभ पाने वाली रांची की ग्रामीण महिलाओं ने इलाके में आए इस बड़े बदलाव पर अपनी खुशी साझा की।
7: मेरा नाम निरुपमा तिग्गा है, मैं नगड़ी प्रखंड के सपारुम गांव की रहने वाली हूं। ये जो योजना है स्वच्छ मिशन भारत का, प्रधानमंत्री हमारे स्वच्छ भारत के तहत जो शौचालय गांव में दिए वो बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं मैं।
8: हमारे सपारुम पंचायत के सपारुम गांव में 540 के लगभग शौचालय बने हैं। पहले तो इस गांव में बहुत शौचालय नहीं रहने के कारण बहुत परेशानियां, बहुत बीमारियां होती थी, परंतु अभी जब से शौचालय मिला है सभी को सुविधा होती है।
5: झारखंड में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत इस साल 5000 से अधिक स्वच्छता लक्षित इकाइयों और कचरा संवेदनशील स्थानों की युद्ध स्तर पर सफाई की गई है। स्वच्छता की इस नई चेतना ने न केवल लोगों के स्वास्थ्य और जीवन स्तर को सुधारा है, बल्कि स्वच्छता से समृद्धि के संकल्प को साकार करते हुए विकसित भारत 2047 की नींव को और मजबूत किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से कर्मवीर के साथ मैं महविश रहमान।
0: भारतीय जनता पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस मामले में चुनाव आयोग के अंतरिम आदेश को सामान्य प्रक्रिया बताया है। इस आदेश में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के दोनों प्रतिद्वंदी गुटों को पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा उपचुनावों के दौरान पार्टी के नाम और उसके चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल न करने का निर्देश दिया गया है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आज कहा कि किसी भी राजनीतिक दल में विभाजन होने पर उसके चुनाव चिन्ह पर रोक लगा दी जाती है। श्री राहुल गांधी के सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में श्री त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस में अतीत में कई विभाजन हुए हैं और इसका चुनाव चिन्ह भी कई बार बदला गया है। भारतीय जनता पार्टी पंजाब ने आज पठानकोट से राज्यव्यापी नशा मुक्त पंजाब यात्रा शुरू की। पार्टी का नारा है नशा मुकाना सारा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लो और अन्य नेताओं ने माधोपुर से यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
9: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: ये आकाशवाणी है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के वास्तविक GDP वृद्धि दर अनुमान को 6% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। एजेंसी ने कहा है कि ये संशोधन पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को दर्शाता है। एजेंसी ने आशा व्यक्त की कि भारत सभी अन्य G20 अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में तेज रफ्तार से बढ़ना जारी रखेगा। घरेलू शेयर बाजार आज दोपहर के सत्र में मामूली बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 176 अंक बढ़कर 74,491 और निफ्टी 40 अंक बढ़कर 23,318 पर कारोबार कर रहा था। जापान में एशियाई खेलों में भारतीय टेक बॉल खिलाड़ी क्विम्सी जोआकिम डिसूजा ने महिला सिंगल्स स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। एशियाई खेलों में भारत की ओर से टेक बॉल में पहली बार हिस्सा ले रही डिसूजा ने जापान की युना साकामोतो को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भूटान के विकास संबंधी लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के लिए भारत के सहयोग की पुष्टि की। दोनों देशों ने द्विपक्षीय सहयोग और पारस्परिक महत्व के मुद्दों की समीक्षा की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आज बेंगलुरु में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में भारतीय वायुसेना को LCA तेजस और HTT-40 प्रशिक्षण विमान सौंपेगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में मुकुट वन और गढ़चंदूर के बीच नई रेल लाइन के निर्माण के लिए 493 करोड़ रूपए की परियोजना को मंजूरी दी। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वास्तविक GDP वृद्धि दर बढ़ाकर 7% की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह।

0: 12 o'clock फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और गीता दत्त की आवाजों में। लिखा था इसे मजरूह सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई ओपी नेगर ने।
1: जंबो जेट लंदन मुंबई प्रवास थेट जगलो वसलो पुन्ना भेट जंबो जेट सोई।
2: मराठी संगीत जगत की एक दिग्गज हस्ती अप्पा वढावकर।
1: रात्रंदीन आम्हा युद्धाचा प्रसंग, रात्रंदीन आम्हा युद्धाचा प्रसंग।
2: विविध भारती के स्टूडियो में लेकर आ रहे हैं अपने जीवन की कहानी।
1: जब परीक्षा दे रहा था तो मेरे पिताजी का निधन हो गया और उस टाइम मेरे घर में वसंत देसाई जी मिलने को आए। 72 से 75 तक मैं वसंत देसाई के साथ काम किया।
2: आज के मेहमान 23 सितंबर शाम 4 बजे और 24 सितंबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: गीतादत्त और हेमंत कुमार की आवाजों में ये था शैलेंद्र का लिखा गाना, संगीत मुकुल रॉय का था और फिल्म थी डिटेक्टिव।
1: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा,
2: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
1: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू,
1: पेंटर बाबू
0: वारिस, और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है,
2: दिल तो पागल है,
0: दुश्मन
3: चिट्ठी न कोई संदेह,
0: गदर एक प्रेम कथा,
4: मैं निकला ओ गड्डी लेके,
0: पिंजर दास्तान बेमिसाल संगीत की,
5: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा,
0: एक उत्तम जीवन की कहानी, उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ। 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: कि नई नस्लों के हाथों में भी ताबिंदा रहेगा, मैं मिल जाऊंगा मिट्टी में, कलम जिंदा रहे।
0: मैटिनी शो कार्यक्रम में मुलाकात जाने माने शायर आलोक यादव से।
6: मैंने तस्वीर तेरे साथ जो खिंचवाई थी, उम्र भर सिर्फ वही रौनक की तन्हाई थी, वक्त के साथ तो रिश्ते भी बदल जाते हैं, दिल में दीवार कहां पहले मेरे भाई थी।
0: शनिवार 19 सितंबर को दिन में 11:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।

0: गुमराह फिल्म का गाना आप सुन रहे थे आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत। हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अनुभव फिल्म का गाना आप सुन रहे थे गीता दत्त की आवाज में। कपिल कुमार के बोल थे, कनू रॉय का संगीत था। इसी के साथ आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है और इसी के साथ अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।

सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम हेलो सहेली के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: हेलो सहेली, कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और श्रोताओं को आरती श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, ये मन भी कैसी अबूझ पहेली सा है ना, जैसे ही किसी प्रिय की भावनाएं इसे छूती हैं, तो दृश्य यानी कि जो सीन है वही का वही रहता है, पर सब कुछ बदल जाता है। अब आंखें केवल देख नहीं रही होती, वो प्रतीक्षा बनकर रास्ता देख रही होती हैं। अब कान केवल सुनते ही नहीं, वो हर आहट पर चौंक भी रहे होते हैं, और मन वो तो जहाँ होता है वहाँ टिकता ही कहाँ है, या तो किसी बीते पल के फूल पर बैठा उसका रस उलीच रहा होता है, या फिर आने वाले पल की कल्पना में डूबा ढेर सारी अनकही बातों की बंधनवार बुन रहा होता है। तो जिस खूबसूरत सफर का हमें था इंतजार, उसकी शुरुआत आज कौन से शहर से हमारी कौन सी सखी करने वाली है, इसका पता करते हैं फोन की इस पहली कॉल से। अरे वाह, इंतजार हुआ खत्म, अब सुनते हैं हमारी पहली पहली कॉलर को और जानते हैं कहां से है हमारी ये सखी। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, कैसी हैं मैडम आप?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। बढ़िया।
1: मैं भी बढ़िया हूँ, मैं भी अच्छी हूँ।
0: तो आप बनती हमारी पहली पहली सखी जिनका कॉल
1: बहुत
0: लगा है।
1: खुशी हो रही हूँ।
0: तो पहले तो आप अपना नाम बताइए।
1: मेरा नाम है सोनी अली अंसारी, मैं यूपी से बोल रही हूँ, गाजीपुर जिले से, मखदुमपुर मेरा गांव का नाम है
0: अच्छा
1: जी। मुझे गाना सुनना है, ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारी। मैं मुझे सखी सहेली सुनना बहुत पसंद है, मेरा बहुत तमन्ना था कि एक बार मेरी कॉल लग जाए।
0: तो आपकी कॉल तो लग गई है, पर आप थोड़ा बहुत अपने बारे में भी तो बताइए। आपका गाना तो हम आपको सुनवाएंगे ही
1: जी,
0: जरूर।
1: मैं कुछ नहीं, मैं बस ऐसे घर पर रहती हूँ, कुछ शेरो शायरी की शौक है, लिखती हूँ
0: लिखती हैं आप?
1: जी।
0: शेरो
1: जी
0: शायरी।
1: मैं
0: एक छोटी सी आप एक लाइन दो लाइन सुना सकती हैं हमें अपनी
1: अच्छा
0: शायरी की?
1: सुनाऊँ?
0: सुनाइए।
1: सुना रही हूँ।
0: बिल्कुल।
1: मेरे खूबसूरत से चेहरे का दीदार कौन करेगा, सुन
0: हाय हाय।
1: रहेगा तो मुझसे प्यार कौन करेगा। कुछ
0: उफ।
1: तो कशिश है मेरी आंखों में, वरना मेरे आंखों को नशा का जाम कौन करेगा।
0: ओह, क्या बात है, क्या बात है, सच में
1: लेकिन
0: बहुत
1: मैं
0: बढ़िया।
1: ना खूबसूरत नहीं हूँ, आगे खूबसूरत नहीं है, लेकिन हो सकता है मेरी जिस सहेली से बात कर रही हूँ मैं, उनकी हो सकती है खूबसूरत।
0: नहीं, आप बहुत खूबसूरत हैं, आपकी बातों से लग रहा है। और मैंने बहुत लोगों को देखा है शायरी करते हैं लेकिन दूसरे की तारीफ करते हैं। आज आपकी शायरी सुन के बहुत अच्छा लगा कि आपने खुद की तारीफ में एक शायरी लिखी है, और सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: तो बताइए, आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: हम अंकिता राजेश तिवारी बोल रहे हैं, नांदेड़ महाराष्ट्र से। हाँ
0: अच्छा, तो बताइए, आज गणपति का उत्सव चल रहा है, तो आप गणपति लेकर आई घर में?
1: हाँ लेकर आए हैं नाम गणपति।
0: तो उनकी सेवा चल रही होगी ना? खूब अच्छा सब।
1: हाँ
0: क्या भोग लगाया आज आपने उनको?
1: आज हमने उकड़ी के मोदक का भोग लगाया। हेलो
0: अरे वाह।
1: सहेली।
0: और बताइए, आप
1: हाँ
0: क्या करती हैं?
1: मैं अभी कॉलेज करती हूँ, बीकॉम।
0: बीकॉम में आप। और
1: हाँ
0: गणपति बप्पा खूब सारी सुख समृद्धि आपके घर में लेकर आए, इसी
1: हाँ
0: ये हम प्रार्थना
1: धन्यवाद।
0: करते
1: हाँ
0: हैं। और बताइए, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आज?
1: देवा और देवा गणपति देवा।
0: अरे वाह,
1: हाँ
0: बहुत
1: वो
0: बहुत
1: गाना
0: प्यारा सा गीत है ये।
1: सुन।
0: तो बहुत अच्छा सा
1: हाँ
0: ये गाना आपके पसंद का हम सुनवाते हैं अभी।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली जी, नमस्ते। मैं
0: नमस्ते। तो बताइए आप जरा पहले अपना नाम और अपने शहर का नाम।
1: जी, मेरा नाम कल्पना मनोहर है और मैं भूलीगांव से बोल रही हूँ,
0: अच्छा,
1: वाशिम से। हाँ
0: वाशिम से। तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। आप बताइए, आप क्या करती हैं कल्पना?
1: जी, मैं आंगनवाड़ी मदद हूँ।
0: अरे वाह, आंगनवाड़ी में आप काम करती हैं, बहुत अच्छी बात। अच्छा ये बताइए कि आपका जो सबसे ज्यादा जो पसंदीदा कार्यक्रम है विविध भारती में, वो कौन सा है?
1: जी वो हेलो पिटारा, हेलो फरमाइश, आज के फनकार, वो सब
0: अच्छा
1: मैं रेडियो रेडियो पे सुनती हूँ।
0: अच्छा ये सारी चीजें आपको सुननी अच्छी लगती है ना?
1: हाँ सब
0: तो और क्या करना अच्छा लगता है रेडियो सुनने के अलावा आपको?
1: जी, मुझे बच्चों को पढ़ाना और
0: यानी बच्चा?
1: ड्राइंग
0: हाँ
1: करना।
0: अच्छा, आप आंगनवाड़ी में काम करती तो आप वहां पर बच्चों को पढ़ाती हैं?
1: हाँ, मेरा बच्चा भी है ना, 6 साल का, मेरे साथ ही पढ़ता है।
0: अच्छा, तो आप उसको भी पढ़ाती हैं, बहुत अच्छी बात है। आप बहुत बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और
1: हाँ,
0: आज कौन सा आप गीत सुनना चाहेंगी आप हमें बताइए।
1: तारों का चमकता चेहरा हो।

0: अंतराल के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम हेलो सहेली में। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: तो बताइए कौन बोल रही हैं आप और कौन से शहर से बोल रही
1: जी मैम नमस्ते, मैं
0: नमस्ते।
1: कानपुर कल्याणपुर से बोल रही हूँ मैम।
0: अच्छा आप क्या करती हैं आप?
1: जी मैम मैं जॉब भी करती हूँ, मेरा बुटीक है खुद का।
0: अरे वाह।
1: जी मैम तो मेरा सारा समय उसी में बीतता है और मैं आपका कार्यक्रम मैम बहुत मतलब मन लगा के सुनती हूँ
0: अच्छा मन लगा
1: अपने काम के जैसे अपने काम में मन लगा के सुनते करते हैं वैसे ही आपका प्रोग्राम भी मन लगा के सुनते, इतना अच्छा लगता है। हेलो सहेली और गीत माला ये सब तो मेरे बहुत ही मतलब पसंदीदा, हम भूल नहीं सकते समय की, ये समय मतलब चालू हो गया तो बस रेडियो चालू होना चाहिए।
0: ये तो सही बात है। और दूसरी चीज ये बताइए आप जो करती हैं आपका ये जो बुटीक चलाती हैं तो उसमें आप मतलब किस तरीके के कपड़े रखती हैं, सलवार
1: जी मैम
0: सूट
1: मैं
0: वगैरह?
1: लेडीज, हाँ मैम जी मैं लेडीज कपड़े तैयार करती हूँ।
0: अच्छा। तो आजकल तरह तरह के कपड़े ट्रेंड में हैं, जैसे गाउन भी चल रहे हैं तरह तरह के, है ना, और
1: जी
0: सलवार
1: मैम
0: सूट तो चल ही रहे हैं, प्लाजो
1: जी
0: वगैरह
1: मैम
0: काफी चल रहे हैं ना।
1: हाँ प्लाजो भी चल रहे, गाउन भी चल रहे, शरारा भी चल रहा है।
0: तो सबसे ज्यादा कौन सा आपको बनाने के लिए मतलब आता है आपके पास ऑर्डर, कि सबसे ज्यादा कौन सी
1: मैम
0: चीज़?

0: इस समय तो सब लोग पैंट ही सूट पहन रहे हैं ज्यादा, और साड़ी की जो ड्रेसें आ रही हैं तो वो साड़ी की ड्रेसें उनको जो पसंद आता है वो अपने हिसाब से सिलवाते रहते हैं।
1: हाँ, आजकल ये भी ट्रेंड में ना कि जो पुरानी आपकी बनारसी तरीके की जो साड़ियां हैं उसके नए नए तरीके से आप शरारे बना सकते हैं ना, या आप
0: हाँ,
1: सूट
0: बहुत
1: सिलवा
0: अच्छी
1: सकते
0: सी
1: हैं।
0: ड्रेसें आ रही हैं, तो वो साड़ी से लेडीज से आजकल अपनी जो साड़ी पुरानी रखी हुई है बनारसी, तो उनसे काफी अच्छी अच्छी ड्रेसें तैयार करवा रही हैं।
1: बहुत बहुत अच्छा आप काम कर रही हैं। तो बताइए आज आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगी?
0: तो मैम, प्रेम पुजारी का गाना है रंगीला रे तेरे रंग में।
1: अरे वाह, बहुत प्यारा सा गाना है, तो चलिए सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: तो आज हम कौन सी सखी से बात कर रहे हैं?
1: हम फरजाना सती शेख बोलते हैं, ऊन पतिया, गुजरात सूरत।
0: अरे वाह, तो बताइए फरजाना जी,
1: हाँ,
0: आप क्या करती हैं?
1: हम घर में ये दो बेटियां हैं, दोनों बेटी की शादी हो गई, एक बेटी को दो बेटी है
0: अरे वाह, क्या बात है।
1: और एक बेटी को एक बेटा और बेटी है। हाँ,
0: यानी आपने अपने कर्तव्य कर लिए हैं पूरे, अब आप आराम से है ना, रेडियो सेट के पास बैठ के गीत सुन सकते हैं
1: हाँ, अब
0: ना।
1: बेटे की शादी हुई है, अभी 5 महीना खत्म हुआ, 6ठा महीना चालू है। हाँ
0: अरे वाह, यानी कि बेटे की भी शादी हो गई, यानी आप घर में बहू भी लेकर आ गई हैं अब, है ना?
1: हाँ बहू भी MP से लाए, मध्य प्रदेश से, यहाँ बुरहानपुर से।
0: आप एक सास के रोल में आ गई हैं
1: चंदन का नाम, उनका नाम भी फिरोजा है,
0: अच्छा,
1: और मेरी बेटी सायरा और सबाना,
0: हाँ बहुत अच्छा, बहुत
1: और
0: मेरा
1: बहू
0: नाम
1: है
0: है।
1: तो नीलोफर और बेटा है तो सब्बीर।
0: अच्छा, तो आप बताइए कि आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: प्यासा सावन का तेरा साथ है तो, हाँ,
0: अरे वाह, बहुत प्यारा सा गाना
1: क्योंकि
0: है, मुझे भी सुनना है
1: मेरी बेटी
0: तो।
1: है ना बिजली वाली,
0: अच्छा,
1: उनको बहुत पसंद है,
0: अरे
1: वो
0: वाह,
1: मोबाइल में रखेगी ना वही गाना रखेगी, उनके पापा के लिए भी मेरे लिए भी अच्छा लगता है उसको।
0: है, अरे वाह, बहुत अच्छी बेटी है आपकी। तो चलिए
1: हाँ
0: आपके साथ साथ मैं भी सुन लेती हूँ ये गीत, मुझे भी बहुत अच्छा लगता
1: जी
0: है।

0: शानू बोल रही हूँ, भोपाल मध्य प्रदेश से।
1: अच्छा शानू जी, आप भोपाल से बोल रही हैं, यानी कि आप मध्य प्रदेश से बोल रही हैं। तो बताइए क्या करना आपको बहुत अच्छा लगता है, पहले तो ये आप मुझे बता दीजिए।
0: जी मुझे, मैं तो घर में ही रहती हूँ और हाउस वाइफ हूँ और बच्चे हैं, बस खाना बनाना यही पसंद है और विविध भारती सुनना मुझे बहुत पसंद है।
1: विविध भारती, विविध भारती पे आपको कौन सा कार्यक्रम है जो बहुत ज्यादा पसंद है?
0: मुझे तो सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, आज की फनकार बहुत अच्छा लगता है, आज के मेहमान, पिटारा के अंतर्गत सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं और सखी सहेली हेलो सहेली भी पसंद है।
1: अरे वाह, बहुत अच्छे कार्यक्रम आपको पसंद है। अब ये बताइए आपके बच्चे छोटे हैं कि बड़े?
0: मेरे दो बच्चे तो बड़े हैं और एक थोड़ा लेट हुआ था तो वो 4 साल का है अभी। और हम अपनी बात भी कहना चाहेंगे विविध भारती, जैसे हमें
1: बिल्कुल,
0: सबकी आवाजें पसंद है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: गाना मुझे रफी साहब की आवाज में सुनना है, रूप तेरा मस्ताना फिल्म का, बड़े बेवफा हैं ये हुस्न वाले।
1: अरे क्या बात है, ठीक है आपकी पसंद का हम ये गीत आपको सुनवा देते हैं।

0: अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का प्यार भरा स्वागत करती हूँ मैं, यानी आरती श्रीवास्तव। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: तो बताइए।
1: नमस्ते।
0: नमस्ते। तो कौन सखी बोल रही है हमारी?
1: जी, मेरा नाम प्रमिला खन्ना है।
0: अच्छा, प्रमिला खन्ना जी।
1: जी, मैं हरियाणा से बोल रही हूँ।
0: अच्छा, हरियाणा से बोल रही हैं आप। तो बताइए, आप क्या करती हैं प्रमिला जी?
1: जी, मैं सिलाई

0: करती हूँ।
1: अच्छा तो बताइए आपके घर में कौन कौन है?
0: मेरे हस्बैंड है और मेरे दो बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है।
1: अच्छा बच्चे आपके छोटे हैं कि बड़े?
0: जी लड़की 13 साल की है, लड़का 11 साल का है।
1: अच्छा यानी बच्चे भी छोटे ही हैं। तो उनके साथ में थोड़ी सी बहुत रहती होगी ना कि उनको भी संभालना, घर को भी संभालना और साथ में सिलाई का काम भी करना, सब कुछ संभाल लेती हैं आप?
0: वैसे तो बच्चे स्कूल में जाने के बाद फिर तो मैं खाली ही रहती हूँ, तो मैं सिलाई का काम कर लेती हूँ।
1: अच्छा आप बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: जी मुझे सोनू निवाल फिल्म का गाना सुनना है।
1: अच्छा बिल्कुल हम सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हॅलो सहेली.
1: अरे मॅम नमस्कार, मी संभाजी नगरचं पाटकर निर्मला कर आहे.
0: अच्छा, आप छत्रपती संभाजी नगर से
1: संभाजी
0: बोल रही
1: नगर.
0: हैं निर्मला
1: हाँ,
0: जी.
1: गाने बहुत अच्छे अच्छे लगते हैं हमारे.
0: आपको गाने अच्छे लगते हैं सुनने?
1: हाँ बहुत अच्छे लगते हैं मुझे.
0: तो
1: एक्चुअली
0: जो भी कार्यक्रम आते हैं उसमें आपको जो भी गाने सुनवाए जाते हैं सब
1: हाँ
0: पसंद है ना आपको?
1: हाँ
0: तो आप बताइए, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: हाँ गणपति का कौन सा गाना सुनाने वाले
0: तो ठीक है, हम
1: मैम?
0: ये प्यारा सा गीत सुनवाते हैं गणपति जी का.

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: तो आप कौन बोल रही हैं पहले तो ये बताइए।
1: मैं साची सूरज चल्ला रहे बोल रही हूँ,
0: अच्छा, और कहाँ से बोल रही हैं?
1: और यवतमाल से।
0: यवतमाल से। साची, आपकी आवाज सुन के ऐसा लग रहा है ना कि आवाज एक छोटी सी बच्ची की है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा
1: हाँ
0: है? तो बताइए, आप पढ़ती हैं
1: हाँ
0: तो आप कौन सी क्लास में?
1: छठी क्लास में।
0: ओ, सिक्स्थ में? अभी आप छठी क्लास में, यानी कि आप बहुत छोटी सी हैं। आपको रेडियो सुनना अच्छा लगता है?
1: हाँ,
0: तो आप रेडियो पे क्या क्या सुनती हैं?
1: मम्मी के साथ सुनती हूँ।
0: मम्मी के साथ सुनती हैं। क्या सुनना अच्छा लगता है? वही जो मम्मी सुनती हैं, या आपको भी कोई अच्छा लगता है प्रोग्राम सुनना?
1: सखी सहेली भी बहुत अच्छा होता है,
0: सके सहेले अच्छा लगता है आपको? जब दो लोग
1: बहुत
0: बातें कर रहे
1: अच्छे
0: होते हैं।
1: अच्छे बातें करते हैं उसमें।
0: बातें करनी अच्छी लगती है आपको?
1: हाँ
0: अच्छा, यानी कि सांची भी अच्छी अच्छी सी बातें करती है ना।
1: हाँ
0: तो आपकी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं स्कूल में?
1: हाँ
0: मुझे लग ही रहा था कि आपकी बहुत सारी फ्रेंड्स होंगी। और आपको क्या करना अच्छा लगता है? गाना अच्छा लगता है कि डांस करना अच्छा लगता है?
1: मुझको गाना
0: गाना अच्छा लगता है। तो चलिए, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं ये तो बताएंगी।
1: आपके मन से कोई भी।
0: ठीक है, फिर मैं अपने मन से सुनवाती हूँ सांची के लिए खास तौर पर ये गीत। अच्छा लगेगा सांची को।
2: लाकर

0: हेलो सहेली,
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
0: अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ये बताइए, आप
1: जी
0: कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: जी मैं श्रीनगर से बात कर रही हूँ, कश्मीर से मैं बोल रही हूँ। मेरा नाम अफरोजा है।
0: अच्छा, अफरोजा जी आप बोल रही हैं कश्मीर से। बहुत ही सुंदर सी, बहुत ही
1: जी
0: अच्छी जगह से आप बोल रही हैं। बहुत अच्छी जगह सच में। तो बताइए आप क्या करती हैं अफरोजा जी?
1: जी बस मैं हाउसवाइफ हूँ, घर का ही काम करती हूँ। दो बच्चे हैं मेरे, घर संभालती हूँ, बच्चे संभालती हूँ।
0: अच्छा,

0: तो बच्चे छोटे हैं?
1: और साथ साथ विविध भारती चलता रहता है, कई सालों से रिश्ता है मेरा विविध भारती से।
0: ये तो सबसे अच्छी बात है आपकी। तो बताइए आपके बच्चे छोटे
1: जी,
0: हैं कि बड़े?
1: मेरी 5 साल की बेटी है और 2 साल का बेटा है।
0: मतलब बहुत परेशान करते होंगे, शैतानी करते रहते होंगे पूरे दिन घर में, है ना?
1: हाँ, अब क्या करें, लेडीज का काम ही यही है अब बच्चों को अच्छी शिक्षा देना,
0: बिल्कुल, अच्छे से उनको पढ़ाना
1: घर
0: लिखाना,
1: संभालना।
0: घर संभालना, सच में।
1: जी,
0: और बहुत बड़ा काम है ये। मतलब आप जॉब करने जाते
1: बहुत ही।
0: हैं, लोगों को
1: हाँ,
0: लगता है
1: और
0: वही चीज बड़ी है।
1: ये काम नजर भी नहीं आता है।
0: जबकि
1: अगर ऐसे
0: सबसे
1: जैसे
0: जरूरी काम है।
1: कि हाँ, अगर कि मर्द लोग जैसे काम करते हैं, उनका काम दिख जाता है, वो ऑफिस संभालते हैं, फिर पता चलता ही नहीं ऑफिस है। घर में जितने काम करेंगे ये नजर ही नहीं आते हैं।
0: ऊपर से कहा जाता है आप करते ही क्या है घर पे, जबकि
1: जी
0: अगर घर पे काम करना पड़ जाए ना तो बस पता चल जाएगा कितना काम होता है दिन भर का पूरा, और साथ ही
1: बहुत
0: बच्चों को भी
1: ज्यादा मैम।
0: संभालना ना, बहुत बहुत बड़ा काम है ये।
1: हाँ
0: आप विविध भारती आप सुनती हैं, तो विविध भारती का कम से कम इतना तो एक योगदान रहता होगा ना कि आपका जो काम है पूरे दिन भर का थोड़ा आसान कर देता होगा, है ना?
1: बहुत ज्यादा, कई सालों से वही मैं बोल रही हूँ, कई सालों से रिश्ता है मेरा विविध भारती से। तो शादी हो गई, बच्चे हो गए, और जब शादी से पहले मायके में
0: हाँ,
1: सुना करती थी,
0: अच्छा,
1: एक भी प्रोग्राम मिस नहीं होता मुझसे। सखी सहेली है, हर कोई एपिसोड सुनती थी मैं, या
0: अरे वाह।
1: पिटारा में जो भी एपिसोड आते हैं, हर कोई प्रोग्राम सुनती थी मैं विविध भारती का।
0: ये तो
1: अभी भी
0: बहुत,
1: सुनती हूँ, लेकिन अब उतना टाइम ज्यादातर नहीं आता है, क्योंकि बच्चे कभी इधर उधर
0: हाँ
1: भाग दौड़ में
0: नहीं,
1: लगा
0: बच्चे छोटे
1: देते
0: हैं, आपने
1: हैं।
0: बताया 5 साल के 2 साल के तो बहुत छोटे बच्चे हैं, इनको तो पूरा वक्त देना पड़ता होगा आपको अपना,
1: बहुत
0: सच में।
1: ज्यादा, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि विविध भारती आज हेलो सलीम में मेरा पहली बार फोन लगा है, इतने सालों से, मेरे
0: हाँ,
1: ख्याल से 20 सालों से,
0: अरे
1: 20 साल के बाद फोन लगा है इस प्रोग्राम
0: क्या
1: में।
0: बात कर रही
1: एक बार
0: हैं।
1: विविध भारती में मैंने बात की है, वो है हेलो फरमाइश।
0: अच्छा, यानी कि आपकी, चलो
1: हाँ
0: बात तो हुई, मुझे ये सुनकर ही बहुत अच्छा लगा कम से कम, क्योंकि 20 साल, इतना लंबा अरसा आपने
1: हाँ
0: सोचिए
1: बहुत
0: लगाया है
1: ज्यादा
0: फोन
1: टाइम है।
0: नहीं, सच में, सच में आप बहुत ही अच्छी हमारी श्रोता हैं, बहुत ही अच्छी, क्योंकि इतना आपने इंतजार किया कॉल लगाने के लिए, तो बहुत बहुत बहुत दिल से आपका शुक्रिया। और अब बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: जी, गाने के बोल है, इस मोड़ से जाते हैं,
0: हाय
1: कुछ
0: हाय, क्या
1: कदम
0: बात है,
1: रहा।
0: बहुत बहुत सुंदर,
1: हाँ
0: बहुत सुंदर गीत है ना, इस मोड़ से जाते हैं, इस मोड़ से जाते हुए काश कभी हम आपसे मिल लें हमारी मुलाकात हो जाए, है ना?
1: हाँ, आप
0: चलिए
1: आइए
0: सुन
1: ना कश्मीर, हमसे
0: बिल्कुल
1: मिलके
0: बिल्कुल
1: जाइए,
0: बिल्कुल, कभी
1: आप
0: आते
1: आइए,
0: हैं,
1: और फिर देख रहे कितनी सुंदर जगह है, हर
0: सच
1: मौसम यहाँ बढ़िया से बढ़िया है।
0: नहीं, कश्मीर का तो खैर नाम ही काफी है। तो चलिए सुनवाते हैं आपकी
1: हाँ
0: पसंद का एक प्यारा सा ये गीत, जो मुझे भी बहुत पसंद है।

0: आज के हेलो सहेली कार्यक्रम का समय पलक झपकते ही तेजी से मुट्ठी में बंद रेत की तरह निकल गया, लेकिन हमारे मन की हथेली पर अपने सुनहरे चमकते निशान छोड़ गया है। और आपकी इतनी प्यारी प्यारी बातों और सुरीले गीतों की पसंद ने हमें बांध लिया और पता भी नहीं चला कि कार्यक्रम अपनी समाप्ति के मोड़ पर आ गया। तो आज की हमारी मुलाकात बस इतनी, चलते चलते आपको जरूरी जानकारी दे देते हैं। आपके कॉल्स की रिकॉर्डिंग प्रत्येक मंगलवार सुबह 11 बजे से 12 बजे तक की जाती है और आप हेलो सहेली कार्यक्रम में इन नंबर्स पर कॉल कर सकती हैं, जो है 400024662 और मुंबई का STD कोड है 022। नंबर एक बार आप फिर से नोट कर लीजिए, 4002-4662 और मुंबई का STD कोड है 022। अब दूसरा फोन नंबर भी नोट कर लीजिए, जो है 2867-0288 और मुंबई का STD कोड है 022, यानी 2867-02-88 और मुंबई का STD कोड है 022। तो इन नंबर्स पर कॉल लगाने के लिए कीजिए बस अगले मंगलवार तक का इंतजार। और हाँ, एक बात और याद दिला दें, हेलो सहेली कार्यक्रम हर शुक्रवार को 3 बजे से 4 बजे तक प्रसारित होता है, तो आपसे आग्रह है कि सुनना भूलिएगा नहीं। और हमारी जिन भी सखियों की कॉल आज नहीं लग पाई, वो बिल्कुल भी निराश ना हो, आप अगले मंगलवार को एक बार फिर से प्रयास कीजिएगा। और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि लगातार किए जाने वाले प्रयास कभी ना कभी कामयाब जरूर होते हैं, और जिन सखियों का प्रयास आज सफल हो गया था, उनसे भी हमारा प्यार भरा आग्रह है कि आप अगले 2 महीने तक कॉल ना लगाएं और अपनी सखियों को अवसर दें अपनी बात कहने का। तो आपको बता दें कि आज का हेलो सहेली का सफर तय किया आपने अपनी सखी आरती श्रीवास्तव के साथ। इस सफर में हमें सहयोग मिला रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल का, और साथ ही संपादन में सहयोगी बनी नम्रता टिकोले। विविध भारती की ओर से हेलो सहेली की प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक। तो अब आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति, नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू वारिस और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है,
1: दिल तो पागल है,
0: दुश्मन
2: चिट्ठी न कोई संदेह,
0: गदर एक प्रेम कथा,
3: मैं निकला ओ गड्डी लेके,
0: पिंजर दास्तान बेमिसाल संगीत की,
4: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पाव,
0: एक उत्तम जीवन की कहानी, उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ। 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी में आज प्रस्तुत है अलका सिन्हा की लिखी कहानी रिहाई, वाचक स्वर मंदाकिनी जोशी का।
2: उसे उम्र कैद की सजा हुई थी, मगर उसके अच्छे चाल चलन के कारण उसे 2 साल पहले ही रिहा कर दिया गया। बरसों बाद आज वो अपने ही घर के सामने अजनबी सा खड़ा था। लंबी सांस भर बहुत संयत मन से उसने कंधे पर टंगे झोले में से चाबी निकाली और ताले में डालकर घुमाई। ताला ढीठ सा अड़ा रहा। इसी दशा में टंगे टंगे ये ताला भी उम्र कैद जितनी लंबी अवधि काट चुका था। यूं दरवाजा जोर से धकेलने पर शायद ताला खोलने की जरूरत ही न पड़ती, मगर ये बात उसके दिमाग में आई ही नहीं। एक आंख बंद कर उसने ताले की मोरी के भीतर झांकते हुए चाबी घुसेड़कर पूरी ताकत से मरोड़ दी। कड़ कड़ की आवाज के साथ कराहता वो ताला आखिर होश में आया तो जैसे नींद से जागकर अविश्वास से पूछने लगा, कौन हो भाई? यहां तो बरसों से कोई आया ही नहीं है। तो क्या ओमी भी कभी आया नहीं मेरे पीछे? वो हल्के से बुदबुदाया। ओमी? कौन ओमी? दरवाजा भी अब तक बूढ़ा हो चुका था और उसकी याददाश्त पहले जैसी नहीं रह गई थी। खैर, उसने दरवाजे को जोर से धकेला तो बरसों की जमी धूल उस पर छिटक कर गिर पड़ी। चलो, किसी ने गले लगाकर स्वागत तो किया। वो हंसा तो धूल मुंह में घुस गई और वो खांसने लगा। भीतर का दृश्य जैसे फ्रीज हुआ पड़ा था। लंबे अरसे से एक ही स्थान पर रखी चीजें पड़ी पड़ी जम चुकी थीं। कुछ साफ नहीं दिख रहा था। हर तरफ पड़ी धूल की मोटी परत से उसका रंग रूप ही बदल चुका था।

मैं किसी गलत घर में तो नहीं आया ना? ये मेरा ही तो घर है ना? किसके सहारे छोड़ गया था मैं अपना घर? उमी? उसने पुकारना चाहा, मगर गहरे निश्वास के साथ आंख, नाक और मुंह में धूल भर आई। हाँ, बाथरूम भी यही है। हाँ, यही तो है बाथरूम। यानी यानी घर तो मेरा ही है। बाकी सब भी धीरे धीरे साफ हो जाएगा। झाड़ू भी मिल गई, रसोई के दरवाजे के पीछे रखी थी, ठीक वहीं जहां हमेशा रहती थी। और इस एक छोटी सी बात ने उसे यकीन दिला दिया कि ये घर सचमुच उसका है। रात होते होते उसने घर को काफी हद तक ठीक कर लिया। यानी ओमी कभी आया ही नहीं मेरे जाने के बाद। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो उसी के भरोसे सब कुछ छोड़ के गया था। वो जरूर यही कहीं छुपा बैठा होगा, नालायक यही कहीं बैठा होगा। उसने ओमी को खोजना चाहा, पलंग के नीचे, पर्दे के पीछे, खिड़की के बाहर, बगीचे में, हर तरफ देख लिया। ओमी कहीं नहीं था। अंधेरा गहराने लगा था। उसने बत्ती जलानी चाही तो तारे कटी हुई मिली। शायद चूहा कुतर गया था। किसी तरह तारे जोड़ी और स्विच दबाया तो बल्ब चनक कर टूट गया। खाने का मन भी नहीं था उसका और खाने को कुछ था भी नहीं। वो वैसे ही अंधेरे में लेट गया, एकटक पंखे को देखता रहा, भीतर ही भीतर ओमी को पुकारता रहा।

आंख खुली तो दिन चढ़ आया था। वो हड़बड़ाकर उठा। ओह, इतनी देर हो गई। मैं तो इतनी देर तक सोता ही नहीं था। अब तक सब जग गए होंगे। उसने दाएं बाएं देखा, फिर उसे याद आया कि वो अपने घर में है, जेल की सलाखों से बाहर। अब तो वो खुद अपनी

ओमी के बिना ये आजादी किस काम की। हाँ, आएगा ओमी, आज जरूर आएगा। आएगा तो उसे क्या खिलाऊंगा। अच्छा चलो बाजार से कुछ सब्जी भाजी खरीद ले आता हूँ। हाँ, आज अपनी पसंद की सब्जियां लाऊंगा। रोज रोज घिया कद्दू खा खाकर रुकता चुका हूँ। और हाँ, नया बल्ब भी तो लाना है। ओमी जरूर कहीं दूर से इस घर पर नजर रखता होगा, जलती बत्ती देखकर दौड़ा चला आएगा। हाँ, उसे क्या मालूम कि मैं समय से पहले ही रिहा हो गया हूँ। जरूरत का सामान खरीद कर वो घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने बड़े चाव से सब्जी बनाई। गोल गोल नरम नरम रोटियां सेकते हुए भीतर ही भीतर ओमी को पुकारता रहा। सोचा पास पड़ोस में पूछूं कि पिछली बार ओमी कब आया था यहाँ, मगर हिम्मत नहीं हुई। बाहर की दुनिया पराई हो गई थी। एक सजा याफ्ता से कौन बात करना चाहेगा। लोग उसे नहीं पहचानते अब, ये भी अच्छा ही है। उसने राहत की सांस ली और खा पी कर सो गया। बत्ती जली ही छोड़ दी। उसे भरोसा था कि बत्ती जलती देखकर ओमी दौड़ता हुआ यहाँ आएगा। नींद में भी वो हर खटके से जागता रहा, पर सुबह हो गई और ओमी नहीं आया। अगला दिन भी बीत गया, फिर एक और रात ओमी नहीं आया। वो हर रात बत्ती जली छोड़ देता, इस उम्मीद में कि उजाला देख कोई तो दौड़ा चला आएगा। लगातार चलता पंखा उसे बरसों पीछे लिए जा रहा था, बहुत पीछे, कॉलेज की गहमा गहमी के बीच। कॉलेज का वार्षिक उत्सव, सजी धजी भीड़ मंच की तरफ देख रही थी। भीड़ उत्साह से ओमी ओमी ओमी ओमी पुकार रही थी। भीड़ में से आवाजें आ रही थी, ओमी ओमी। वो देख रहा है ओमी मंच पर खड़ा है। मंच पर इतनी तेज रोशनी है कि आंखें चुंधिया जाएं। तेज रोशनी में वो ओमी को ठीक से देख भी नहीं पा रहा, मगर वो उसकी आवाज सुन रहा है। वो कह रहा है, दोस्तों आज की ये महफिल किसी खास के नाम, देखता हूँ मेरी आवाज उस तक पहुंचती है या नहीं। महफिल में तालियों की आवाज, सीटियां और उत्साह भर उठता है। ओमी एक तान भरता है और हॉल में सन्नाटा छा जाता है। सबकी धड़कनें रुक गई हैं। वे सांस रोके ओमी का गीत सुन रहे हैं, उसे अपलक देख रहे हैं। और ओमी है कि आंखें बंद कर गा रहा है। मखमली आवाज का जादू हर किसी पर छाने लगा है।

क्या क्या खूब गाते हैं आप। मैं तो खो ही गई थी, मगर ये गीत नहीं था, मेरे दिल की आवाज थी। और आपने क्या कहा कि आप तो खो गई। अरे आप खो जाएंगी तो मैं खुद को कहाँ ढूंढूंगा। अच्छा अपना नाम तो बता दीजिए ताकि ढूंढने में कुछ आसानी हो। जी मेरा नाम गीत है। अरे वाह, आप गीत और मैं गायक, क्या खूब है। अब समझा ये निगाहें क्यों बार बार आपकी तरफ खींची चली जा रही थी। चलिए आप तो बातें बनाते हैं। उसे खूब याद है ओमी और गीत की वो पहली मुलाकात, जिस दिन ओमी के दिल की आवाज गीत तक पहुंची गई। फिर तो वो हर जलसे में ओमी की आवाज के साथ खींची चली आती। यही हाल ओमी का भी था, जब वो गाने लगता तो सबसे पहले उसी की ओर देखता, फिर आंखें बंद कर तसल्ली से गीत में डूब जाता। गीत उसकी जिंदगी थी, इसीलिए तो उसने अपने बैंड का नाम ओम बैंड से ओम गीत बैंड कर दिया था। ओमी के दोस्त उसे गीत का नाम लेकर खूब चिढ़ाते थे, मगर वो चिढ़ता नहीं था, उल्टे एक मीठी मुस्कान उसके होठों पर आ जाती, जैसे कोई अपना सबसे प्यारा राज सुन ले और भीतर ही भीतर खुश हो जाए। उसके दोस्त जानबूझकर उससे बात करते हुए गीत का नाम बीच में डालते हुए दोहरी जुबान में उससे पूछते, ओमी भाई, आज के जलसे में तुम्हारे गीत ने गजब ढा दिया भाई। ओमी हंसकर कहता, यार गीत ने मंच पर ही नहीं, मेरे जीवन के रंगमंच पर भी गजब ढा दिया है। हाँ। वो कुछ देर हंसता मगर फिर संजीदा होकर कहता, हाँ पहले मैं गाता था, अब जिंदगी गाती है। मेरे गीतों के शब्द अब लगे बोलने, जब से सुर पर उन्हें वो सजाने लगी है। दूर कहीं कोयलिया गाने लगी है। उसे संजीदा देखकर दोस्त भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगते। अम्मा यार ये तो सच है, जब से गीत तेरी जिंदगी में आई है, तेरी आवाज में बला का जादू आ गया है, एक नशा सा छा गया है तेरी गायकी में। ओमी एक पल के लिए रुका, जैसे वो इस बात की गहराई को तौल रहा हो, फिर धीरे से अपने भीतर ही बोल पड़ा, हाँ मेरे हर बोल में वो होती है, हर सुर में उसका चेहरा होता है। जब उसकी झुकी हुई नजरों को देखता हूं तो मेरी तान खुद ब खुद ऊपर उठती चली जाती है। सब जानते थे कि ओमी और गीत एक दूसरे के लिए बने हैं, ये जोड़ी कुछ अलग ही है। ये बात अब किसी से छुपी नहीं थी। जलसों में लोग ओमी का गाना सुनने आते थे, मगर कनखियों से गीत को भी देखते रहते। ये अनूठी संगत थी, सुर और शब्द की, आवाज और अर्थ की।

उधर गीत की सहेलियां भी कहां कम थी, हर वक्त उसे ओमी के नाम की मीठी झिड़कियां देती रहती। ए गाता तो ओमी है मगर भाव तेरे चेहरे पर होते हैं, ऐसा कैसे होता है गीत? देख अभी भी तेरा चेहरा कैसा सिंदूरी हो गया है। हायो रब्बा, ओमी को देखते ही ये तो किसी दूसरी दुनिया में जा पहुंचती है। उनकी बातें सुन गीत एक पल के लिए चुप हो जाती, फिर धीरे धीरे जैसे मन में सांस लेते सपने को शब्द देती भी बोल पड़ती। हाँ सच में ओमी जब तान भरता है ना तो जाने मुझे क्या लगता है, जैसे जैसे मैं इस दुनिया में हूं ही नहीं, किसी और ही दुनिया में हूं। हाँ जैसे मैं बादलों की पालकी पर जा बैठी हूँ और ओमी की तान के साथ साथ ऊपर उठती जा रही हूँ, ऊपर और ऊपर, पता नहीं कितने ऊपर। सहेलियां एक दूसरे को देखने लगती और गीत बोलती रहती, और पता है जब भीड़ तालियां बजाती है, जब सारा हॉल उसकी आवाज की जादूगरी से गूंज उठता है, तो मेरे भीतर कुछ उमड़ने लगता है, जैसे जैसे कोई नदी बरसों से शांत बह रही थी और अचानक अचानक उसमें बाढ़ आ गई हो, और मैं उस बाढ़ को रोकना नहीं चाहती, बस बस उसमें बहती रहना चाहती हूँ। गीत तू तो बनी ही उसके लिए है रे, यूं ही तो तेरा नाम गीत नहीं पड़ा। गीत अपनी सहेलियों के चूहल में खो जाती और कहती, माँ ने संगीत सीखा था और प्यार से मुझे गीत कहकर बुलाया करती, गीत तो बस मेरे पुकारने का नाम था। मगर जब ओमी मुझे गीत कहकर बुलाता है ना, तब सच मानो मेरे कानों में संगीत गूंजने लगता है, मुझे मुझे अपना नाम सच्चा लगने लगता है, जैसे जैसे सालों से ये नाम उसी की आवाज का इंतजार कर रहा था, वो मुझे पुकारता है और मेरे भीतर एक झनकार सी बज उठती है, जैसे किसी ने सितार की मिजराब को छू दिया हो। हाँ ऐसा लगता है मुझे। और सच में ऐसा ही था, ओमी की आवाज में गीत थी और गीत की सांसों में ओमी का सुर, दोनों एक दूसरे में इस तरह घुले थे कि अलग करना मुश्किल था, जैसे नदी में समाया आसमानी रंग, दोनों एक दूसरे के लिए समर्पित थे बिना कहे बिना जताए। ये प्रेम शोर नहीं करता था, ये बजता था धीरे धीरे मीठे मीठे सुर।

उसे अच्छी तरह ध्यान है कि कॉलेज में इस जोड़ी की कितनी चर्चा थी। वो अचानक सोच में पड़ जाता है और खुद से ही पूछ बैठता है, पता नहीं दोनों कैसे होंगे, कहाँ होंगे। जरूर दोनों ने शादी कर ली होगी, शायद इसीलिए यहां आना कम हो गया होगा। क्या पता, कहीं कहीं शहर छोड़कर तो नहीं चले गए होंगे। काश काश कोई ओमी को ये बता दे कि मैं समय से पहले ही घर आ गया हूं। काश काश कोई ओमी को बता दे। वो करवट बदलता है, उसके भीतर बेचैनी है। कैसे वो अपनी बात ओमी तक पहुंचाए, पता नहीं ओमी कहाँ है, क्या पता। कब से उससे बात नहीं हुई, हर रात यही सब सोचते हुए करवटों में बीतती है उसकी। अधनींदी सी हालत में वो बीते वक्त की परछाइयों को पकड़ने के लिए दौड़ता रहता है। बीती जिंदगी की यादें उसके भीतर शोर मचाती रहती हैं, जबकि सामने अजब सा सन्नाटा रहता है। वो उस कागज की तरह था जिस पर कुछ लिखकर मिटा दिया गया हो। न उस कागज पर लिखे को पढ़ा जा सकता था, न वो ऐसा कोरा था कि जिस पर कुछ नया लिखा जा सकता हो। बिखरी बिखरी यादें उसके जहन में आती जाती रहती। वो फिर जा पहुंचा उसी जलसे में जहां ओमी गाना गाकर उठा था और भीड़ उसे घेरे खड़ी थी। ओमी हर किसी से बात कर रहा था, मगर उसकी आंखें उधर कोने में खड़ी गीत की तरफ देखे जा रही थीं। गीत भी उसे ही देख रही थी और खुश हो रही थी कि कितने फैन थे उसके इर्द गिर्द। वो दूर से ही उनकी गिनती कर ही रही थी ताकि ओमी को बता सके। इतनी देर में उधर से मोहित बैंड के कलाकार गुजरने लगे। उसके पास से निकलते हुए उसके सिंगर मोहित ने ऊंची आवाज में कहा, हीरे और पत्थर में फर्क करना सीख ले गीत, हीरा भी मैं हूं और हीरो भी मैं ही। मोहित की बात पर उसके साथियों का ठहाका गूंज उठा। गीत ने भले ही उसकी बात पर लापरवाही से कंधे उचका दिए, मगर ओमी इसे हल्के में नहीं ले पाया। वो भीड़ का दायरा तोड़कर मोहित की तरफ बढ़ा। उसके फैन भी उसके पीछे पीछे हो लिए और देखते ही देखते बैट बल्ले निकल गए। अचानक ओमी ने देखा कि गीत को मोहित के साथियों ने घेर लिया था। ओमी सब कुछ भूलकर उस चक्रव्यूह में दाखिल हो गया, जिससे बाहर निकलने के लिए गीत भरपूर कोशिश कर रही थी। ओमी के पीछे उसके दोस्त भी आ गए। भीड़ में पता नहीं कौन किस पर हावी था। चीख पुकार के बीच गोली चलने की आवाज आई और कुछ ही देर में सायरन बजाती एम्बुलेंस आ पहुंची थी और गीत को जिसमें चढ़ाया जा रहा था। उसके कपड़े खून में भीगे हुए थे, कातर नजरें ओमी को ढूंढ रही थीं। गीत बेआवाज उसे पुकार रही थी। ओमी महसूस कर रहा था कि अगर गीत को कुछ भी हो गया तो उसकी तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी। ओमी मन ही मन गीत को पुकार रहा था। हाँ, मन ही मन गीत को पुकार रहा था।

एम्बुलेंस के बजते हूटर की तेज आवाज से उसकी नींद उचट गई और वो ख्यालों की दुनिया से बाहर आ गया। अच्छा हुआ कि उसकी नींद टूट गई। वो उस घटना को सपने में भी दोहराना नहीं चाहता था। उसने अपनी आंखें कस कर मूंद ली। वो जीवन के उस प्रसंग को पूरी तरह नकार देना चाहता था जिसके बाद उसकी जिंदगी बदल गई थी। मगर आंखें बंद कर लेने पर वो दृश्य और साफ साफ दिखने लगता था। आखिर वो उठकर बैठ ही गया, सोने की जबरन कोशिश छोड़ दी और खिड़की से बाहर देखने लगा। बाहर अंधेरा था, मगर उसकी चेतना में वो दृश्य जस का तस कैद था, जिसे वो कभी दोहराना नहीं चाहता था। उसका ऐसा अतीत जिससे उसका वर्तमान इस तरह चिपका था कि उसे कभी अलग ही नहीं किया जा सकता था। यही वो पल था जहां से बदल गई थी उसकी दुनिया, वो दुनिया जो ओमी की दिलकश आवाज से गुलजार थी, वो दुनिया जिसमें गीत की मासूमियत भरे प्रेम का दरिया छलकता रहता था। मगर उस दिन सब कुछ बदल गया था। भुलाने की लाख कोशिशों के बावजूद उस दिन की घटना उसके जहन में कब्जा करके बैठी थी। उसे अच्छी तरह ध्यान है कि मोहित के एक साथी ने पिस्तौल निकाल ली और ओमी की ओर घुमा दी। बचने की कोशिश में ओमी बगल घूम गया और गोली उसके पीछे खड़ी गीत के सिर पर लग गई। ओमी ये देखकर अपना आपा खो बैठा और उस व्यक्ति पर झपट पड़ा। हाथापाई में पिस्तौल छिटक कर दूर जा गिरी। ओमी तूफान की तरह पिस्तौल की ओर लपका। वह सोच की सुरंग में गहरे जा घुसा था कि अचानक बरामदे में जलती बत्ती गुल हो गई। शायद बिजली चली गई थी, लेकिन पंखा चल रहा था। हो सकता है बल्ब फ्यूज हो गया हो, पूरी रात जलता रहा था। अब इस अंधेरे में ओमी उसे कैसे ढूंढ पाएगा, वो बेहद परेशान हो गया ये सोचकर। ऐसा ही परेशान वो उस दिन भी था जब ओमी पिस्तौल उठाने लपका था। वो जानता था कि इस वक्त अगर ये पिस्तौल ओमी के हाथ लग गई तो वो सारी दुनिया तहस नहस कर डालेगा, तांडव मचा देगा। उसने बिना एक पल गंवाए ओमी से पहले खुद वो पिस्तौल अपने हाथ में उठा ली और ओमी को गीत का ध्यान रखने का इशारा किया, जिसे खून से लथपथ हाल में एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाया जा रहा था। जीवन में आया ये कल बीत कर भी नहीं बीता और उसे आज भी उसी तरह उद्वेलित कर रहा था। उसने कुछ पल के लिए अपनी आंखों को जोर से भींच लिया, जैसे वो आगे की घटना को रोक देना चाहता हो, ताकि वक्त वहीं थम जाता और वो न होता जो हुआ।

वो दोबारा बिस्तर पर लेट जाता है, सोने की कोशिश करने लगता है, मगर उसे लगता है कि तब से आज तक वो नींद में ही तो जीता रहा और इसी अवस्था में इतने बरस गुजार दिए। वो करवट बदलता है और साथ ही दृश्य बदलता है। वो देखता है उसके हाथ में पिस्तौल है और पुलिस उसे पकड़ कर लिए जा रही है। ओमी उसे रोकना चाहता है, उसके पीछे पीछे आ रहा है, मगर वो ओमी को रोक देता है। तो गीत का ध्यान रख, बाकी सब मैं संभाल लूंगा, वो ओमी को देखकर बुदबुदाता है। ओमी दौड़कर एम्बुलेंस में जा बैठता है। उसके बाद कोर्ट कचहरी, पेशी पर पेशी, हर पेशी पर ओमी आता है, पीछे की बेंच पर बैठता है, खामोश बेबस। वो ओमी को देखकर भी नहीं देखता कि कहीं पुलिस को ओमी पर किसी तरह का शक न हो जाए। उसे कुछ याद नहीं कौन उसकी वकालत करता है और वकालत में क्या क्या कहता है। वो बस खामोशी से सबकी दलीलें सुनता रहता है, न किसी का समर्थन करता है न विरोध। उसकी चुप्पी को हामी समझा जाता है और उसे उम्र कैद की सजा हो जाती है। ओमी दूर से उसे जेल जाता देखता रहता है। ओमी की आंखों से झांकते सवालों और उसमें तैरती अंतहीन बेबसी को अनदेखा कर वो जेल की सलाखों में कैद हो जाता है।

हर रात यही कहानी कई कई तरह से उसकी आंखों में घूमती रहती है। हर रात वो बीच नींद में जाग जाता और फिर यादों का अंतहीन सिलसिला चल पड़ता। प्याज के छिलकों की तरह एक के बाद एक घटनाओं का सिलसिला उसे मथता रहता। वो याद करने लगता कि जेल जाते वक्त ओमी ने धीरे से उससे कहा था कि वो उसका इंतजार करेगा, उसके पीछे इस घर का ख्याल रखेगा। वह यह सब कतई दोहराना नहीं चाहता। वह उस सारी कहानी को भूल जाना चाहता है। उस रात भी इसी कोशिश में लगा था कि दिमाग में छपी इस दर्दनाक इबारत को किस तरह मिटाया जाए कि अचानक कहीं दूर से उसके कानों में कोई आवाज सुनाई पड़ती है, एक मीठी तान, ऊंची तान, सुरीला आलाप। अरे अरे, ये आवाज तो ओमी की है। हाँ, ओमी की ही तो है, 100% ओमी की। हाँ, ये ओमी ही है, ओमी ही है। वो हड़बड़ाकर बिस्तर से उठता है। मैं जानता था ओमी जरूर आएगा। मैं जानता था वो जरूर आएगा, इसीलिए तो बत्ती जला रखी थी मैंने। हाँ, मगर कहाँ कहाँ, बल्ब तो फ्यूज हो गया था, पर ओमी तक मेरी आवाज पहुंच गई होगी। देखा, अंधेरे की टोह लगाता ओमी आ ही गया मेरे पास। मैं आया, बस तुरंत आया। आता हूँ, दरवाजा खोलता हूँ ओमी, आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, कहता हुआ वो दरवाजे की तरफ लपका। चिटकनी खोलने की जल्दबाजी में हाथ दीवार से टकराकर छिल गया, मगर उसे सुध कहाँ थी। उसने जल्दी से दरवाजा खोला, आगे पीछे झांका, वहां कोई दिखाई नहीं दिया। ओमी ओमी ओमी, जरूर तू मेरे साथ मस्ती कर रहा है, यही कहीं छुपा होगा तू बाहर, है ना? कहाँ है ओमी? ओमी कहाँ है तू? कहाँ छिपा है ओमी? देख, सामने आ जा, कहाँ है? वो दरवाजे से बाहर निकल आया, सीढ़ियों की तरफ लपका, मगर वहां भी कोई नहीं था। कुछ पल को वो मायूस तो हुआ, मगर फिर अपनी बेवकूफी पर खुद ही हंस पड़ा। अरे, आवाज तो उधर खिड़की की तरफ से आ रही थी और मैं यहाँ दरवाजा खोलने आ गया। वो खुद पर ही हंसने लगा और दौड़कर घर के पिछवाड़े में बगीचे की तरफ दौड़ा। उसके भीतर का कौतूहल देखते ही बनता है। जिस पल का वो इतनी रातों तक जगकर इंतजार करता रहा, आखिर वो सफल हुआ। हड़बड़ी के बावजूद वो दबे पांव घर के पिछवाड़े की तरफ बढ़ता है। बेतरतीब लताओं का जाल उसे किसी जासूसी फिल्म का आभास दे रहा है। अंधेरे उजाले के बीच हर पेड़ के पीछे कोई साया छुपा सा लग रहा है। वो धीमी आवाज में पुकारता है ओमी को, ओमी, ओमी, ओमी, मगर कोई उत्तर नहीं मिलता। ओमी, वो फिर पुकारता है, इस बार थोड़ी तेज आवाज में पुकारता है, ओमी, सुन रहे हो ओमी? पीछे की तरफ हल्की सी सरसराहट मालूम पड़ती है। वो हौले से घूमकर देखता है, मगर ओमी कहीं नहीं दिखता। अलबत्ता एक बिल्ली जरूर झाड़ियों से निकलकर दूसरी तरफ भाग जाती है। वो मायूस हो जाता है, उसकी आंखें सुनसान सड़क को टटोलती हैं, मगर दूर दूर तक कोई नहीं दिखता। अंधेरा और घना होने लगता है, इतना घना कि जिसमें परछाई भी दिखाई न पड़े। आखिर वो ओमी को कहां से देख पाता? वो लौटकर कमरे में आ जाता है, गहरी सांस भरकर वापस बिस्तर पर लेट जाता है।

0: अगली सुबह जब वो सोकर उठा तो धूप की तेज किरण आंखों पर पड़ रही थी। वो बहुत व्याकुल था। अब वह और सब्र नहीं कर सकता था। उसे ओमी को खोजना ही था और ये काम वो अकेला नहीं कर सकता था। उसे किसी के मदद की जरूरत थी। वो उठकर पड़ोस में जाने को बढ़ा। हाँ, हो न हो, वे जरूर बता पाएंगे कि मेरे पीछे यहाँ कोई कभी आया था। और वो कहाँ रहता है, मैं जाकर पड़ोस में पूछ लेता हूँ। मगर दरवाजे पर दस्तक देने से पहले वो ठिठक गया। किसी ने चेताया कि अब वो क्या करने जा रहा है। वो सोचने लगा कि पड़ोसी को अपने बारे में क्या बताएगा, और ये भी कि वो इतने सालों तक कहाँ रहा और आज अचानक कैसे आ गया, और ओमी को क्यों ढूंढ रहा है। वो एक सजा याफ्ता मुजरिम था। ये जानकर पास पड़ोस के लोग पता नहीं उसके साथ कैसे पेश आए। हो सकता है उससे डरने लगे, अपने बच्चों को भी उससे बचकर रहने की हिदायत दे डाले। ऐसे में उसकी सहायता कौन करता। वो बहुत असहाय हो गया। फिर उसे ध्यान आया कि जेलर साहब उसे बहुत मानते थे। वो जेलर साहब की ओर जाने को लपका। सोचने लगा, क्यों ना जेलर साहब से ही मदद ले लूं। हाँ, उनकी वजह से ही तो मेरी सजा 2 साल कम हो गई और मैं जेल से छूटकर बाहर आ गया। हाँ, वो बहुत समझदार हैं, जरूर कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। हाँ, जेलर साहब के पास जाता हूँ, वहीं जाता हूँ मैं। वो सोचता है कि जेलर साहब कितने भले और मददगार हैं, वे जरूर उसकी सहायता करेंगे। वह याद करता है कि बिना उसके कुछ कहे ही जेलर साहब ने उसकी फाइल मंगाई थी और उसकी रिहाई के लिए अपील की थी। जेलर साहब भी एक ऐसे इंसान थे जिनसे वो अपने मन की बात कह सकता था और वही कोई रास्ता भी सुझा सकते थे। बस फिर क्या था, वो जल्दी से तैयार होकर जेल की तरफ निकल पड़ा।
1: ओए

0: क्या हुआ, घर में मन नहीं लगा? जेलर साहब ने पूछा। वो सीधा मुद्दे पर आते हुए बेचैनी भरे स्वर में कहता है, साहब ओमी से मिलवा दो ना। ठीक है, मिलवा देंगे, पर ये ओमी है कौन? साहब जी, वो मेरे साथ ही रहता था, बहुत अच्छा गाता था, अरसा हो गया उसकी आवाज सुने। वो मेरे साथ यहां भी आया था मुझे जेल तक छोड़ने। उसने वादा किया था साहब कि वो मेरे घर का ध्यान रखेगा। जेलर साहब सोच में पड़ गए, कौन हो सकता है, क्योंकि उनके रहते तो कभी कोई इससे मिलने आया नहीं। खैर, जब ये जेलर साहब इस जेल में आए, तब अन्य मुजरिमों की तरह इसकी भी पिछली कहानी से जेलर साहब पूरी तरह नावाकिफ थे। हाँ, उसके स्वभाव की नरमी से जरूर जेलर साहब को प्रभावित किया था और उन्होंने उसकी समय पूर्व रिहाई की अपील भी लगाई थी। अपील करते समय ही उन्होंने उसकी फाइल पढ़ी थी और जाना था कि ये हत्या के जुर्म की सजा भुगत रहा है। उन्हें तब भी विश्वास न हुआ था कि ये व्यक्ति किसी का कत्ल कर सकता है। खैर, जेलर साहब ने अर्दली से कहकर उसकी फाइल मंगवाई थी कि शायद उसमें ओमी का कुछ पता ठिकाना मिल सके। अर्दली फाइल लाकर देता है। जेलर साहब उसकी फाइल पलटते हैं कि अचानक खट से एक तस्वीर फाइल से नीचे गिरती है। जेलर साहब से पहले वो लपक कर तस्वीर उठा लेता है और चहक उठता है, साहब जी, साहब जी, साहब जी, यही तो है ओमी। हाँ साहब जी, यही है ओमी, इसी को तो ढूंढ रहा हूँ मैं। इसे ढूंढ दो साहब जी, इसे ढूंढ दो साहब जी, इसके बिना मेरी रिहाई का कोई मतलब नहीं है साहब जी। इसे ढूंढ दो, इसे ढूंढ दो साहब जी, इसे ढूंढ दो, इसे ढूंढ दो साहब जी, इसे ढूंढ दो। जेलर साहब सोचने लगे कि फोटो फाइल से निकली है तो इसमें इसके बारे में भी जरूर कुछ लिखा होगा। वो फाइल के पन्ने पलटने लगते हैं। शिवेंद्र ओंकार उर्फ ओमी को दफा 302 के जुर्म में आज तारीख। जैसे जैसे वे फाइल पढ़ते जा रहे थे, सारा रहस्य खुलता जा रहा था। जब उसे यहाँ लाया गया था और रिकॉर्ड के लिए जो तस्वीर खींची गई थी, ये वही तस्वीर थी, यानी ओमी और कोई नहीं, वो खुद था। जेलर साहब समझ चुके थे कि लंबे समय तक जेल की जिंदगी जीते जीते वो खुद को ही पहचान नहीं पा रहा था। अपने कॉलेज के ओम गीत बैंड का वो सिंगर, हिंदुस्तानी और पाश्चात्य संगीत का फ्यूजन, जिसके गाने की खासियत थी, जिसकी ऊंची तान और दिलकश आवाज के कितने ही दीवाने थे, वो और कोई नहीं, खुद ही था ओमी। जेलर साहब फाइल पलट रहे थे और महसूस कर रहे थे कि एक समय में वो कितना हसमुख और हाजिर जवाब हुआ करता था, कितना खूबसूरत, कितना सुदर्शन युवक, मूछों की हल्की धारी, चमकदार आंखों वाला वो युवक, संगीत की धुन पर थिरकता, आवाज के आरोह अवरोह पर झूमता ओमी एक जिंदा दिल इंसान था। उसकी दिलकश आवाज को सुनने भीड़ उमड़ आती थी। ओमी, ओमी, ओमी, ओमी, हर तरफ उसके नाम की धूम मची रहती थी। ऐसे ही म्यूजिकल कॉन्सर्ट में अपने प्रतिद्वंदी मोहित बैंड के लोगों के साथ उसका झगड़ा हुआ। हाथापाई, जानलेवा हमला, जिसमें इसकी गोली से गीत नाम की युवती की मौत हो गई। उसके बाद से ही ये अवसाद में चला गया, ऐसे गहरे अवसाद में कि इसने खुद को बचाने की कोशिश करना तो दूर, बल्कि खुद की उसकी हत्या का इल्जाम अपने सिर ले लिया। उसके वकील ने कहना चाहा कि ये गोली बचाव के दौरान गीत को लगी थी, मगर शिवेंद्र ओंकार उर्फ ओमी अब जीना ही नहीं चाहता था। जेलर साहब समझ रहे थे कि ओमी यानी वह खुद ही खुद को माफ नहीं कर पा रहा था और उसने अपने लिए ये उम्र कैद की सजा चुनी थी। जिस तरह सभी कैदी अपनी रिहाई के दिन गिनते रहते थे, इसने कभी भी जेल से बाहर निकलने का सपना नहीं देखा, यही उसकी दुनिया थी। मगर जब जेलर साहब की मदद से उसकी रिहाई हुई, तब वो खुद ही दो हिस्सों में बट गया। वो खुद की पिछली जिंदगी को थर्ड पर्सन होकर देखता रहा और खुद को ही खोजता रहा। उसके नाम के अक्षर कैदी नंबर में तब्दील हो गए। उसके भीतर का ओमी जेल की ऊंची दीवारों में दफन हो गया। उसकी आवाज की खनक लोहे की सलाखों में गुम हो गई। जेलर साहब पूछना चाहते थे कि ये कैसी और किसकी रिहाई थी, क्योंकि जिसे कैद किया गया था वो रिहा होने से बिल्कुल अलग था। कैद तो किया था एक मशहूर सिंगर को, जिसकी लरजती आवाज के कितने ही दीवाने थे, मगर जिसे रिहा किया गया, ऊंची तान लेना तो दूर, वो तो किसी से दबी जुबान में भी बात नहीं करता था। चुपचाप हुक्म की तामील करना उसे बाकी कैदियों से अलग करती थी। हंसने गाने से तो उसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, उसकी कोई पसंद नापसंद नहीं थी। अब वो किसी से नहीं लड़ता था, किसी से नहीं उलझता था, कोई बहस नहीं, उसमें न तो किसी तरह की जिद थी न उत्तेजना। कैद के इन लंबे वर्षों में वो एक निहायत तटस्थ व्यक्ति हो चला था, एकदम शांत और निर्विकार। अनजाने में या आत्मरक्षा में वो खुद अपनी प्रेमिका की हत्या का कारण बन गया था। इस आत्मग्लानी में घुल घुल कर उसकी जिद पानी हो गई थी और वो अपने भीतर ही भीतर खामोश होता चला गया। रिहाई के बाद अचानक वो गुमशुदा शख्स ओमी उसके भीतर उभरने लगा था और ये व्यक्ति दो बिल्कुल मुख्तलिफ शख्सियतों में बट गया था। जेलर साहब महसूस कर रहे थे कि वो मल्टीपल डिसऑर्डर का शिकार हो चुका था, यानी एक ही व्यक्ति में अलग अलग किरदारों को जीना। वो खुद को खुद से अलग करके देख रहा था, कुछ हद तक आउट ऑफ बॉडी जैसा एहसास। ये तुम्हारी ही तस्वीर है, समझे? तुम ही ओमी हो, शिवेंद्र ओंकार उर्फ ओमी। सुना तुमने? समझे कुछ? तुम ही हो वो ओमी। जेलर साहब ने उसकी तस्वीर उसे वापस लौटाते हुए कहा। वह कुछ समझ नहीं पाया कि जेलर साहब क्या कह रहे हैं। वो अबूद सा जेलर साहब का मुंह ताकने लगा। फिर वो अकबकाकर कुर्सी से उठा और उस फोटो को लेकर कमरे में लगे आईने के सामने खड़ा हो गया। कभी वो उस तस्वीर वाले कमसिन चेहरे को देखता तो कभी आईने में बड़ी अपनी अधपकी दाढ़ी को। जेलर साहब कह रहे थे कि ये दोनों चेहरे उसी के हैं, मगर उन दोनों में कुछ भी तो एक जैसा नहीं था। वे दोनों शख्स एक कैसे हो सकते थे? वह पूरी तरह कंफ्यूज हो गया था, खुद से पूरी तरह अनजान। वो सोच रहा था, क्या कह रहे हैं जेलर साहब? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं ही ओमी हूं। क्या कह रहे हैं जेलर साहब? पता नहीं, पता नहीं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा।
1: कभी

गीतों भरी कहानी। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अलका सिन्हा की लिखी कहानी रिहाई। वाचक स्वर मंदाकिनी जोशी का था, संपादन सहयोग सौरभ घारू का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे राघवेंद्र सिंह नेगी।

0: ये है विविध भारत।
1: FM 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं। आइए सुनते हैं युवाओं के लिए दैनिक कार्यक्रम युवाणी।

हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ खुश और स्वस्थ होंगे। साथ ही कभी बारिश तो कभी धूप के मौसम में अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान दे रहे होंगे, और देना भी चाहिए क्योंकि हमारा स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। इसलिए अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान दीजिए और साथ ही सुनते रहिए अपना वन ऑफ द डेली यूथ प्रोग्राम युवाणी, जो लेकर हाजिर है आपके रेडियो हम सफर एकता। तो साथियों, हर बार की तरह आज भी करेंगे ढेर सारी बातें चर्चा से जुड़ी, साथ में सुनेंगे प्यारे प्यारे सॉन्ग्स भी। और फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है आज दिन है शुक्रवार, और शुक्रवार को होता है हमारा खास क्रम रोजगार सूचना, जिसमें मैं आपको दूंगी इस हफ्ते रोजगार से जुड़ी जानकारी, जिसके लिए आप जुड़े रहिए अपनी रेडियो हम सफर के साथ।

साथियों, आप सुबह घर से निकलते हैं तो रास्ते में कई जगह सड़क पर कूड़ा फेंका हुआ दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं तो कुछ सार्वजनिक स्थान पर दीवार गंदी होती है। कई जगह पे कोई जरूरतमंद को मदद का इंतजार रहता है और कहीं कई गलत चीजें देखते हैं, लेकिन क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं या पल भर रुक कर सोचते हैं, इस समाज में मेरी भी तो कई जिम्मेदारी है और समाज की जिम्मेदारी को निभाना ही एक सच्चे नागरिक का फर्ज है। फ्रेंड्स, समाज सिर्फ सरकार, प्रशासन या किसी संस्था से नहीं बनता। समाज हमसे बनता है, आपसे बनता है, मुझसे बनता है, हम सबकी छोटी छोटी जिम्मेदारियों से बनता है। जब हम सामाजिक गतिविधियों की बात करते हैं तो हमारे सामने अक्सर बड़े बड़े कार्यक्रमों की तस्वीर आती है, जैसे स्वच्छता अभियान, रक्तदान, वृक्षारोपण या किसी जरूरतमंद की सहायता। लेकिन सामाजिक गतिविधियां केवल इतनी ही नहीं, अपने आसपास सफाई रखना समाज

सामाजिक जिम्मेदारी है। सड़क पर कूड़ा न फेंकना भी सामाजिक जिम्मेदारी है। बुजुर्ग व्यक्ति की मदद करना, किसी जरूरतमंद बच्चे को पढ़ाई में सहायता देना भी सामाजिक गतिविधि है। पेड़ पौधे की देखभाल करना, पानी बचाना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना और दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना, ये सभी हमारी सामाजिक जिम्मेदारी और व्यवहार का हिस्सा है। और अगर हम ये सोचकर ये सारे काम नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे साथ नहीं हो रहा है तो हम दूसरों की मदद क्यों करें? तो ये जब हमारे साथ कोई घटना घटेगी तो कोई और हमारी मदद कैसे करेगा? दोस्तों, इस बात को ना सोच के हमें हर व्यक्ति की मदद इस बात करनी चाहिए, एक इंसानियत के नाते और हमारे सामाजिक कर्तव्य के नाते। फ्रेंड्स, सामाजिक जिम्मेदारी के लिए हमेशा कोई बड़ा मंच जरूरी नहीं। कई बार समाज के लिए हमारी रोजमर्रा की छोटी सी आदत होती है। अचानक किसी आपदा के बाद लोगों को जो जान मान का नुकसान होता है, ऐसे लोगों की मदद करना भी हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है। और आज दुनिया में कई लोग बिना स्वार्थ के अपनी जिम्मेदारी निभाते भी हैं, तभी तो ये दुनिया चल रही है। साथियों, पर समाज की हर गतिविधि सकारात्मक नहीं होती। आज हमारे समाज सामने वास्तविक दुनिया के साथ साथ डिजिटल दुनिया भी है, इसलिए हमें सामाजिक कार्य करना चाहिए लेकिन पूरी सतर्कता से, और जिन्हें हमारी जरूरत हो उनकी मदद भी करनी चाहिए। साथ ही लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझाने में जागरूक भी करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी बातें इस विषय से जुड़ी, जो बस यहीं तक। अब चलिए चलते हैं म्यूजिकल वर्ल्ड में और सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: तकार का पैनल तैयार किया जा रहा है। इसके लिए ओबरा परिक्षेत्र में निवास करने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।
1: अभ्यर्थियों का चयन स्वर परीक्षा यानी ऑडिशन और स्क्रीनिंग समिति के संस्तुति के आधार पर किया जाएगा और सफल अभ्यर्थियों का नाम पैनल में शामिल किया जाएगा।
0: ध्यान रहे, यह स्थायी और नियमित रोजगार नहीं है। आकाशवाणी ओबरा अपनी कार्यक्रमगत आवश्यकता के अनुसार ही पैनल में शामिल अभ्यर्थियों को समय समय पर कार्य हेतु आमंत्रित करेगा। प्रत्येक असाइनमेंट के लिए प्रसार भारती के नियमानुसार मानदेय देय होगा।
1: आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी की आयु 28 अगस्त 2026 को 18 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय अथवा महाविद्यालय से इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
0: आवेदन शुल्क ₹118 निर्धारित है। शुल्क ऑनलाइन अथवा नेट बैंकिंग के माध्यम से PBBC ऑफ इंडिया प्रसार भारती आकाशवाणी वाराणसी के खाते में देय होगा।
1: आवेदन पत्र के साथ शुल्क जमा करने की रसीद संलग्न करना भी अनिवार्य होगा।
0: इच्छुक अभ्यर्थी सोमवार से शुक्रवार प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में आकाशवाणी ओबरा कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं और पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन 28 सितंबर 2026 शाम 5 बजे तक कार्यालय में जमा कर सकते हैं।
1: और यदि आप व्यक्तिगत रूप से आवेदन जमा करने में असमर्थ हैं, तो आवेदन पत्र डाक द्वारा भी भेज सकते हैं। पता इस प्रकार लिखें: स्वर परीक्षा युववाणी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी ओबरा जिला सोनभद्र, पिन कोड नंबर है 231219।
0: तो जुड़िए आकाशवाणी ओबरा से,
1: दीजिए अपनी आवाज को नई पहचान।

वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों जरा कल्पना कीजिए, दो लोग हैं, दोनों एक ही कार्यालय में काम करते हैं, दोनों की जिम्मेदारियां एक जैसी हैं, दोनों सुबह समय पर पहुंचते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं और अपने काम को पूरी ईमानदारी से पूरा करते हैं। लेकिन महीने के अंत में जब दोनों की तनख्वाह आती है तो पता चलता है कि एक दूसरे से कम वेतन मिलता है। अब सवाल उठता है, क्यों? साथियों, क्या मेहनत कोई लिंग होता है? क्या प्रतिभा की कोई सीमा होती है? क्या जिम्मेदारी निभाने की क्षमता महिला और पुरुष के लिए अलग अलग होती है? और इसी सवाल को दुनिया के सामने मजबूती से रखने के लिए मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस। दोस्तों, किसी व्यक्ति की मेहनत का मूल्यांकन उसके काम से होना चाहिए, न कि उसके महिला या पुरुष होने से। फ्रेंड, समान वेतन का अर्थ केवल ये नहीं कि दोनों लोगों को बिल्कुल एक जैसी राशि मिले, इसका व्यापक अर्थ है समान या समान मूल्य वाले काम के लिए पारिश्रमिक तय करते समय लिंग के आधार पर भेदभाव न किया जाए। किसी कर्मचारी का वेतन उसकी योग्यता, अनुभव, जिम्मेदारी, काम की प्रकृति और प्रदर्शन जैसे उचित आधारों पर तय हो सकता है। इसलिए इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2019 में प्रस्ताव पारित किया था और 18 सितंबर 2020 को मनाया जा गया था। साथियों, ये दिन महिलाओं और पुरुषों के बीच आय के अंतर को उजागर करता है और अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे संगठनों के माध्यम से निष्पक्ष पारिश्रमिक को वकालत करता है। दोस्तों, आज महिलाएं शिक्षा, विज्ञान, चिकित्सा, प्रशासन, खेल, सेना, कला, व्यवसाय, तकनीक और लगभग हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना सक रही हैं। वो घर की जिम्मेदारी निभाने के साथ साथ कार्यस्थल पर भी अपना योगदान दे रही हैं। फ्रेंड्स, वेतन व्यक्ति की मेहनत, समय, कौशल और योग्यता का आर्थिक मूल्य भी दर्शाता है। जब किसी व्यक्ति को उसके काम के उचित मूल्य के अनुसार भुगतान मिलता है तो उसके भीतर आत्मविश्वास बढ़ता है। उसे लगता है कि उसकी मेहनत को पहचाना जा रहा है और जब किसी के साथ बिना उचित कारण आर्थिक भेदभाव होता है तो इसका असर केवल उसकी आय पर नहीं बल्कि उसके आत्मसम्मान, भविष्य की आर्थिक सुरक्षा और निर्णय लेने की स्वतंत्रता पर भी पड़ता है।

लिए समान वेतन की बात केवल पैसों की बात नहीं, बल्कि ये बात है सम्मान की, जो हर किसी को बराबर मिलना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी बातें इस विषय से, जो बस यहीं तक। अब चले चलते हैं किसी और विषय के साथ।

दोस्तों, कल यानी 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस से एक खास अभियान की शुरुआत हुई, स्वच्छता पखवाड़ा 6.0, जो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक मनाया जा रहा है। इस अभियान के शुभारंभ तो पहले ही हो चुका है। इस अभियान की शुरुआत अप्रैल 2016 में हुई थी। यह अभियान भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। एक राष्ट्रीय अभियान है जिसका उद्देश्य देश में साफ सफाई और स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाना है। फ्रेंड्स, स्वच्छता पखवाड़ा एक ऐसा अभियान है जो हमें केवल अपने घर को साफ रखने की बात नहीं करता, बल्कि अपने आसपास, अपने विद्यालय, अपने कार्यस्थल, अपने गांव और अपने शहर, अपने देश को स्वच्छता की जिम्मेदारी का एहसास दिलाता है। जिस प्रकार हम अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, उसी प्रकार हमें अपने देश, अपने आसपास की सफाई को भी साफ सुथरा रखना चाहिए और स्वच्छता का ध्यान देना चाहिए। ये जिम्मेदारी सिर्फ सरकार प्रशासन की नहीं, बल्कि देश के हर नागरिक की है, क्योंकि ये देश हम सबका है, तो जिम्मेदारी भी हम सबकी बनती है। दोस्तों, इसलिए ही अपने आसपास साफ सफाई रखिए और लोगों को भी इस चीज के लिए जागरूक करिए। कूड़ा हमेशा डस्टबिन में डालिए, चाहे आप रास्ते में हो या अपने घर पर हो, या अगर कोई रास्ते में कूड़ा इधर उधर फेंक भी रहा है तो आप उसे उसकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाइए। फ्रेंड्स, इन्हीं बातों के साथ हमारे इस विषय पर बातें बस यहीं तक। अब चलिए चलते हैं म्यूजिकल वर्ल्ड में और सुनते एक प्यारा सा गीत।

0: गाइए गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।

वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों, कहा जाता है हम जैसा खाते हैं सचमुच वैसा ही बनते हैं। क्या ये बात सच है? दोस्तों, सुबह उठते ही अगर आपके सामने दो चीज़ें रखी जाएं, एक तरफ ताज़ा फल, अंकुरित अनाज और पौष्टिक नाश्ता, और दूसरी तरफ गर्मा गर्म समोसा कचौरी या पैकेट वाला स्नैक, तो आपका हाथ सबसे पहले किसकी तरफ जाएगा? शायद स्वाद जीत जाए। लेकिन क्या जो चीज़ हमें स्वाद देती है वो हमेशा हमारे शरीर को सुरक्षित रखती है, हमें स्वस्थ रखती है? यही सवाल आज की हमारी चर्चा का आधार है। फ्रेंड्स, जैसा अन्न वैसा मन। हम जो खाते हैं उसका असर हमारे पेट पर ही नहीं पड़ता, हमारी ऊर्जा, हमारी कार्य क्षमता, हमारी रोग विरोधक क्षमता और लंबे समय में हमारा स्वास्थ्य भी हमारे भोजन की गुणवत्ता से जुड़ा होता है। दोस्तों, भोजन का सबसे पहला उद्देश्य है हमारे शरीर को ऊर्जा देना। लेकिन शरीर को केवल ऊर्जा ही नहीं, उसे प्रोटीन, विटामिन, खनिज, फाइबर्स, स्वस्थ वसा और पर्याप्त नींद भी चाहिए। अगर हम रोज केवल पेट भरने पर ध्यान दें और यह न सोचें कि हमारे शरीर को वास्तव में क्या चाहिए, तो धीरे धीरे हमारा खान पान में असंतुलन आ सकता है। इसलिए हमेशा हमें अपने खान पान का विशेष ध्यान देना चाहिए। फ्रेंड्स, हमें स्वाद पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जो चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं, हमें स्वादिष्ट लगती हैं, हमें उन चीज़ों पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। हमें घर हमारे खाने में सबसे ज़्यादा पौष्टिक भोजन होना चाहिए, जैसे दाल, सब्जी, फल, दही, दूध, अंकुरित अनाज, चना, मूंगफली, मौसमी खाद्य पदार्थ और अलग अलग तरह के अनाज। जरूरत केवल इतनी है कि हमारी थाली में विविधता को संतुलन हो। हम जितना अधिक प्राकृतिक और कम संस्कृत भोजन को अपना दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, उतना ही बेहतर संतुलन बनाना आसान रहेगा। स्वस्थ खान पान का अर्थ है हमारी अपनी पसंद की हर चीज़ छोड़ दें, ये नहीं, बल्कि हमें हर चीज़ खानी चाहिए, लेकिन एक समय सीमा के अनुसार। जैसे हम अगर कभी कभी फास्ट फूड खा सकते हैं, लेकिन उसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा नहीं बना सकते, इससे सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, हमें सोच समझ कर अपने

स्वास्थ्य के लिए जो सही है उसी भोजन को खाना चाहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम जब सुरक्षित रहेंगे तो हमारा मन सुरक्षित रहेगा, हम सही अच्छा सोच सकेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में आगे बढ़ सकेंगे। फ्रेंड्स, इन्हीं बातों के साथ इस विषय पर बातें बस यहीं तक। अब चले चलते हैं अपने आज के खास क्रम की ओर, जो है रोजगार सूचना, जिसमें हमारी आज की जानकारी है। फ्रेंड्स, MPESB प्राइमरी एंड सेकेंडरी टीचर्स का ऑनलाइन विज्ञापन जारी हुआ है। इसका आवेदन 21 शुरू हो चुका है और 5 अक्टूबर तक भरा जाएगा। बाकी की जानकारी आपको इसकी वेबसाइट पर मिल जाएगी। इसकी वेबसाइट है esp.mp.government.in। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी इस विषय पर बातें बस यहीं तक। चलिए चलते हैं म्यूजिकल वर्ल्ड में और सुनते एक प्यारा सा गीत।

दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज के कार्यक्रम यहीं तक। अपना ख्याल रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए और अपनी रेडियो फ्रेंड एकता को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

अभी हमारे युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युवाणी। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए ग्रामीण महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम घरनी।

सब बहिन लोगन के राम राम। और बताएं बहिन लोगन का हाल समाचार बाप सब लोगन का। उम्मीद बा कि आप सब लोगन स्वस्थ और मस्त हुई हैं। बहिन तीज त्योहार देखा बितला के बाद घर परिवार के बर बिरामी में ही दिन बीत जात बा। आज देखा हम आवत रहनी बैठकी में तो देखनी है कि रामदेव मौसी पेड़े के नीचे बैठ के बीड़ी पियत रहनी है। तो हम उनके देख के रुक गईनी और समझौले का प्रयास करे लगनी कि शायद हमरे समझौले से वो बीड़ी पियल छोड़ दें। पर वो अपन परेशानी ही लगनी बतावे कि परेशानी के कम करे के खातिर वो बीड़ी पियेनी। पर ये हम लोगन का सोच बिल्कुल भी गलत बा कि नशा करे से परेशानी कम हो जाला, बल्कि नशा नाश करला। नशा करे से शरीर का नाश होला, जैसे लीवर खराब होवल, कैंसर, टीबी, हार्ट फेल, मुंह का में परेशानी और साथ में घर के भी नाश होवला। जैसे 100 रुपया अगर हम कमात हैं तो वो 50 रुपया के नशा कर ले तो 50 रुपया में घर का खर्चा करें कि पढ़ाई लिखाई बच्चों का कराएं कि दवाई करें। इससे बचपन भूखा रह जालन, परिवार के तकलीफ हुई उनकर गलत रास्ता पर जाए से मजबूर हुई है वो। और बहुत सा लोगन नशा करके गाड़ी भी चलावलन, जे कि बहुत ही गलत काम बा। नशा करे से गाड़ी चलावे से अपने साथ कई लोगन का जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो सकेला। ऐसे हाथ जोड़ी निहोरा बा कि सब जे भी कोनो एक भी प्रकार के नशा करत हो वो छोड़े का प्रयास करें। जैसे गुटखा के तलब अगर लगे तो देखा लौंग, इलायची, तुलसी का पत्ता, सौंफ इत्यादि खाएं तो नशा छोड़े में मदद मिलेला। अबे आज नशा के छोड़े का प्रयास करल जाए और प्रयास करल जाए कि नशा छोड़ के स्वस्थ जीवन, खुशहाल जीवन जियल जाए। अबे बातचीत तो होबे करी और लेकिन एक मन मनसायन अगर हम लोगन सुनल जाए तो का पूछे के है तो एक भोजपुरी फिल्म के गीत बा, फिल्म के नाम बा बंधन टूटे ना। तो एक गीत हम लोगन सुनल जाए और फिर आगे बात बत कही करल जाए।

0: गीत बहन देखा, बहन लोगन देखे, हम लोगन सुनल गई और गीत सुन के मन हो गई एकदम फरीच। तो देखा अब आवे जानकारी की बात करल जाए। आप लोगन के पता है ना कि सरकार द्वारा कई योजना हम लोगन के खातिर चलावल जा रहल बा, तो जेकर लाभ हम सब लोगन लेत हैं। ऐसने एक योजना बा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के खातिर मुफ्त सहायता योजना। ई योजना में देखें अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के खातिर भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा मुख्य रूप से नया सवेरा नाम का योजना चलावल जा रहल बा। ई योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर अल्पसंख्यक छात्रों के प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी के खातिर मुफ्त कोचिंग और वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ई योजना का मुख्य लाभ का है इहो जानल जाए। देखें निःशुल्क कोचिंग अपन देखें जैसे इंजीनियरिंग मेडिकल ला जैसे पढ़ाई का कोर्स का जो एंट्रेंस परीक्षा और यूपीएससी और एसएससी बैंकिंग रेलवे जैसे सरकारी नौकरियन का परीक्षा के खातिर मुफ्त कोचिंग देवल जाला। कोचिंग फीस छात्र का पूरी कोचिंग फीस सरकार द्वारा सीधे सूचीबद्ध कोचिंग संस्थान के ही देवल जाला। और मासिक वजीफा अगर आप कहाँ जानल जाए तो स्थानीय छात्र और बाहर से आवे वालन छात्र के पढ़ाई के खर्च के खातिर प्रति महीना वजीफा भी देवल जाला। पात्रता का ई योजना का लाभ लेवे का इहो जानल जाए। छात्र अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय से होवे के चाहिए, जैसे मुस्लिम सिख ईसाई जैन और पारसी। और देखा है एक और शर्त बा पारिवारिक आय। छात्र के पारिवारिक व कुल वार्षिक आय देखा 6 लाख या उससे कम ही होवे के चाहिए। शैक्षणिक योग्यता का हो इहो जानल जाए। देखा छात्र के पास संबंधित परीक्षा के खातिर आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जैसे 10वीं पास या 12वीं पास होवे के चाहिए। वही लोगन देखे बात बात कही तो होते रही, जहाँ से हम लोगन तन मन दोनों स्वस्थ रहे चलिए वहाँ चलल जाए, यानी कि रसोई की ओर। सफलता का कहानी स्वादिष्ट एवं पौष्टिक भोजन टिफिन में श्रीमती देखा अन्नपूर्णा श्रीवास्तव जी जवन की गृहिणी हैं, उनकर बातचीत देखा संजू सिंह बहिन से होत बा। तो हम तक हम तक बिना देर के लिए चले इनकर हम लोगों ने जानकारी सुनल जाए कि के प्रकार से ई भोजन स्वादिष्ट बनावे लेन और टिफिन के माध्यम से जन जन तक पहुंचावे लेन।
1: श्रोताओं नमस्कार। श्रोताओं सभी को खाना पसंद है ना, खासकर घर का बना खाना। लेकिन कुछ लोग घर के बने खाने को बहुत याद करते हैं, क्योंकि वे अपने घरों से दूर रह के अपने सपनों को पूरा करने के लिए पढ़ाई लिखाई और काम कर रहे हैं, इसलिए उन्हें घर का खाना नहीं मिल पाता। होटल पर या फिर कुछ भी खाकर समय बिताते हैं। साथ ही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो घर पर रहकर भी कई अन्य परेशानियों के कारण घर पर खाना नहीं बना पाते। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने सपनों को पूरा लोगों को खाना टिफिन के जरिए खिलाकर पूरा कर रहे हैं या कर रही हैं। ये लोग टिफिन सेवा के रूप में लोगों को घर जैसा खाना बनाकर खाना उपलब्ध करा रही हैं। ऐसी ही एक महिला आज हमारे बीच में है जो घर बैठे ही टिफिन सेवा का व्यवसाय शुरू करके अपना उद्यम चला रही हैं। लोगों को किस तरह का व्यंजन बनाकर टिफिन सेवा दे रही हैं और लोगों की क्या प्रतिक्रिया मिलती है, और भी बहुत सारी बातें करेंगे श्रीमती अन्नपूर्णा श्रीवास्तव जी से, जो कि हमारे बीच में हैं। तो चलिए बातचीत करते हैं। श्रीमती अन्नपूर्णा श्रीवास्तव जी, सबसे पहले तो आपको हमारा नमस्कार है।
2: आपको भी हमारा नमस्कार है।
1: देखें जैसा आपका नाम वैसा ही आपने अपना कार्य शुरू किया है अन्नपूर्णा जी। अन्नपूर्णा का अर्थ होता है भोजन प्रदान करने वाली, है ना? तो सबसे पहले अन्नपूर्णा जी आपसे बातचीत के माध्यम से ये हम जानना चाहेंगे कि आपने ये टिफिन सेवा सर्विस का व्यवसाय जो शुरू करने का विचार बनाया है, इसको कैसे आपके मन में आया कि हमको ये काम शुरू करना चाहिए?
2: मुझे खाना बनाने में बहुत अच्छा लगता था
1: जी।
2: जैसे मम्मी को देखते थे बनाते हुए, तो तरह तरह का खाना बनाती थी वो, तो हमें भी शौक लगा, खुद से भी कुछ कार्य करना चाहते थे
1: जी जी,
2: और फिर टिफिन बनाने का ही कार्य को मैंने चुना। एक महिला के तौर पर मतलब मेरे ऊपर बहुत घर की और परिवार की जिम्मेदारी भी थी, जिसकी वजह से मतलब बाहर भी जाकर कोई कार्य नहीं कर पा रहे थे, जाकर भी नहीं, और खाना बनाने का शौक भी था
1: जी जी।
2: इसलिए मैंने इस कार्य को चुना, और घर का भी कार्य हो सके और बाहर का भी मतलब कुछ कार्य भी कर ले, तो इससे टिफिन को कार्य को मैंने चुना। इस कार्य को महिलाओं को सुरक्षित और आत्मनिर्भर भी बनाता है।
1: बात तो बिल्कुल सही है। अच्छा, आप अपने ग्राहकों को किस तरह का भोजन उपलब्ध कराती हैं?
2: मुझे जैसे मतलब ग्राहकों को ऑर्डर देते हैं, जैसे शाकाहारी हुआ या मांसाहारी, सभी प्रकार के भोजन को बनाते हैं। इसको बढ़ाने के लिए मतलब व्हाट्सएप ग्रुप को मतलब उसको ऐड किए हैं, जिससे बाहर के गए हुए जो भी और भी लोग हैं, और जो जिस दिन भी मतलब कोई स्पेशल थाली बनता हो या कुछ भी, उसको सजा के उसको व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देते हैं। अच्छा। और जिसको जिसको मतलब डिमांड रहता है वो उसको देख कर उसको ऑर्डर करते हैं।
1: तो अन्नपूर्णा जी, आपके ग्राहक इस समय कितने हैं? आपके टिफिन के जरिए खाना आप उनको उपलब्ध कराती हैं?
2: 50 हैं।
1: तो ये प्रतिदिन वाले हैं या फिर कभी कभी वाले हैं?
2: उसमें कुछ मतलब डेली बेस पे भी हैं, कुछ कभी कभी वाले भी हैं। मतलब के परिवार वाले कोई चले जाते हैं या उनके पत्नी चली जाती हैं, माँ नहीं रहती, माँ अकेले रहती है, पापा अकेले रहते हैं।
1: अच्छा।
2: तो लोग डिमांड करके मतलब ऑर्डर दे देते हैं कि इतने दिन के लिए मेरे पापा को खाना आप दे दीजिए या मम्मी को दे दीजिए।
1: अच्छा, जो ये भोजन उपलब्ध कराती है अन्नपूर्णा जी, तो ये कितनी दूरी तक के ग्राहक होते हैं जो इसका लाभ लेते हैं?
2: ज्यादा दूर पे नहीं, जैसे यहाँ पे ओबरा के अंदर में ही जितने रहते हैं, जैसे TTI होगा, बैंक हुए और कॉलोनी में हुए, और जैसे घर पे जिससे जो होटल होटल में ऑर्डर होता है।
1: अच्छा।
2: जो आते हैं लोग बाहर से।
1: आप जो अपने ग्राहकों को भोजन उपलब्ध कराती हैं, तो उसकी गुणवत्ता और स्वच्छता का कैसे ध्यान रखती हैं?
2: मेरी रिस्पांसिबिलिटी यही है कि जो ग्राहकों को स्वस्थ खाना खिलाए, इसके लिए टिफिन में जैसा खाना देती हूँ, स्वास्थ्य के लिए भी और खाने में भी अच्छा हो, और खाना बनाते समय भी सफाई का पूरा ध्यान देते हैं, और उसमें भी जैसे मतलब हम जो भी रखे हैं अपने अंडर में उनका भी सफाई ध्यान देते हैं, बर्तन भी साफ रहे।
1: बिल्कुल। कौन टिफिन ले जाता है?
2: मेरे हस्बैंड।
1: तो उनके कपड़ों का भी स्वच्छता का ध्यान रखना। और कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि आपके यहाँ जैसे अचानक से कोई ग्राहक आ जाते हैं, तो वो भी तो देखते ही होंगे कि आपके यहाँ किस
2: तरह
1: आते
2: हैं। एक बार देख के जाते हैं तो खाने का मांग करते हैं।
1: अच्छा।
2: दो लोगों को मैंने रखा है, मैं सारा काम खुद करती भी हूँ लेकिन उन लोगों से भी करवाती हूँ, मेरे पति भी मेरी हेल्प करते हैं।
1: अच्छा अच्छा, जो लक्षित आपके ग्राहक हैं किस तरह के हैं? जैसे कि नौकरी पेशा लोग हैं या फिर छात्र छात्राएं हैं, किस तरह के आपके ग्राहक हैं ज्यादातर?
2: मेरे टिफिन सर्विस में ज्यादातर तो नौकरी बेस पे भी हैं, और जैसे ज्यादातर ओल्ड एज मम्मी पापा लोग होते हैं, ज्यादातर परिवार के ही लोग लेते हैं।
1: जी, तो बुजुर्ग लोग देखें, बहुत सारी चीजों का भी हमको ध्यान रखना पड़ता है, जैसे उनकी
2: ज्यादातर लोग तो बीमार ही रहते हैं, उसमें तो उनको देखना पड़ता है। कोई शुगर पेशेंट रहता है तो उनको हरी सब्जी का डिमांड रहता है, कोई कुछ टाइम से टाइम पहुंच जाए खाना। पहले से लोग बता देते हैं कि इतने दिन में हमको दवाई खाना है, हमको इतने दिन में खाना पहुंचा दीजिए।
1: अच्छा।
2: और गर्म खाना पहुंचता है उन लोगों के लिए।
1: जी, तो सुबह शाम दोनों समय?
2: हाँ।
1: अच्छा, आपके टिफिन में एक समय में क्या क्या होता है खाने में?
2: एक समय में टिफिन में 4 रोटी, चावल, दाल, सब्जी, सलाद, और जो पापड़ डिमांड करता है तो पापड़ जाता है, नहीं तो कोई लोग ज्यादा डिमांड नहीं करते हैं पापड़ का।
1: अच्छा, ये प्रतिदिन वाले जो लोग हैं उनके लिए अलग अलग व्यंजन बनाती हैं या फिर एक ही जैसा?
2: एक ही जैसा बनता है, डिमांड पे तो नॉनवेज बनता है।
1: अच्छा।
2: नहीं तो ज्यादातर सादा ही खाना बनता है।
1: सादा खाना, जैसे सब्जी में अलग अलग?
2: ज्यादातर हरी सब्जी बनती है।
1: तो प्रतिदिन अलग अलग सब्जियां बनाती हैं?
2: हाँ।
1: अच्छा अच्छा, इसके साथ ये भी बताएं कि नए ग्राहक आप कैसे बनाती हैं?
2: मैं ग्राहकों को सारे ऑर्डर को पूरी ठीक प्रकार से पूरा करती हूँ, और खाना बहुत अच्छा भी लगता है, और जिसे वो दूसरों को मुंह से बताते हैं वो हमें कॉन्टेक्ट करते हैं।
1: अच्छा, तो आप अपना संपर्क नंबर यहाँ भी बता दें, ताकि अगर जैसे आपकी बातें जो हमारे माध्यम से हो रही है और उसे अगर हमारे श्रोता सुन रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आपके टिफिन सेवा सर्विस का वो जरूर लाभ लेना चाहेंगे।
2: मेरा मोबाइल नंबर 9125538920।
1: अच्छा अन्नपूर्णा जी, शुरुआत में लोगों को अपने टिफिन सर्विस व्यवसाय को कैसे आपने अवगत कराया, और अब इसके प्रचार प्रसार के लिए किन तरीकों का उपयोग करती हैं आप?
2: मेरे टिफिन के लोगों को खाना पसंद बहुत आता है, जिससे अन्य लोगों को बताते हैं, जिससे अन्य नए ग्राहक भी बनते हैं, और कुछ तो पैम्पलेट के द्वारा, कुछ तो फोन से भी मतलब लोग बता देते हैं, और जिससे मैंने मतलब व्हाट्सएप ग्रुप को भी बनाया है, जिससे दूसरे लोगों को अवगत होता है।
1: देखिए अन्नपूर्णा जी, अब तो आपका ये रोज का काम हो गया है, तो आप अपने निजी जीवन और इस कार्य के बीच संतुलन कैसे बनाती हैं?
2: मेरे परिवार के लोग मेरे कार्य में मेरी बहुत मदद करते हैं, जिससे मुझे अपने निजी कार्य और टिफिन के कार्य को करने में बहुत सरलता होती है। जैसे सुबह मैं 5 बजे उठ जाती हूँ, जिससे दिन भर के निजी कार्य को करने में
1: अपना नहाना धोना
2: और भी सब, क्या घटा क्या बढ़ा, मतलब राशन में क्या घटा है, मतलब एक साथ लेने में मतलब बचत भी हो, उसके लिए मैं एक साथ ही मतलब राशन लेके रख लेती हूँ, जैसे कि दाल हो गया, चावल हो गया, हल्दी, नमक, सब मसाला मसाला
1: जी,
2: और आपका हरी सब्जी तो रोज ही लेते हैं क्योंकि ताजी सब्जी लोगों को देना होता है।
1: जी बिल्कुल, ताजा खाना मिलेगा तो निश्चित तौर पे लोग पसंद करेंगे और ज्यादा लोग जुड़ेंगे। अच्छा, किसी भी कार्य को शुरू करने में तमाम दिक्कतें और चुनौतियों से भी जूझना पड़ता है। इसकी शुरुआत आपने की थी तो भाई कुछ न कुछ परेशानियां भी आई होंगी।
2: प्रारंभ में इस कार्य को करने के लिए मेरे परिवार वाले मुझे मना ही कर रहे थे, मुझे भी डर लग रहा था कार्य चल पाएगा या नहीं, लेकिन आज यही कार्य मेरी पहचान बन गई है।
1: अच्छा, ये बताएं कि आप अपने ग्राहकों को जब टिफिन देती हैं तो उनकी प्रतिक्रिया या फिर खाने को लेकर के कोई शिकायतें भी आती होंगी तो उसको कैसे संभालती हैं आप?
2: मैं कोई बहस ना करके, मतलब अगर कोई मेरी गलती हो तो पैसे ना भी लेती हूँ।
1: अच्छा।
2: और उसको सही से मतलब कोशिश करती हूँ कि फिर कोई शिकायत ना आए
1: दोबारा। तो किस तरह की शिकायत आती है?
2: कभी मान लीजिए कि तेल ज्यादा हो गया, कभी नमक ज्यादा हो गया, मसाला ज्यादा हो गया, मतलब इसी तरह कि हल्के मसाला में चाहिए, केवल आलू नहीं बनाइए, तो मतलब इसी तरह से।
1: अच्छा जी, अन्नपूर्णा जी, देखिए इस स्वाद भरे व्यवसाय की दुनिया ने आपके जीवन में जो बदलाव लाए हैं ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके लिए। आगे आपका इस व्यवसाय से क्या और उम्मीदें हैं और क्या इसके लिए करना चाहेंगे?
2: इस कार्य को तो मुझे आत्मनिर्भर बनाया, मुझे एक नई पहचान भी दी है, लेकिन हम तो यही सोच रहे हैं कि अगर ये कार्य अच्छा चल गया तो मैं एक होटल भी खोलना चाहूंगी।
1: अच्छा, तो उसके लिए कुछ योजना आपने बनाया है?
2: हाँ, मतलब एक समूह लोन भी लेके, मतलब उसको लिए, फिर उसको पूरा भी किए, फिर दोबारा अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर और बड़ा लोन लेके उसको।
1: अच्छा, जो आपने लोन लिया उसका किस्त आपने जमा
2: पूरा
1: कर दिया?
2: हो गया उसी से।
1: अच्छा,
2: टिफिन के ही बेस से पूरा हुआ
1: जी। तो अन्नपूर्णा जी, ये हम जानना चाहेंगे कि जो टिफिन आप देती हैं तो एक टिफिन का कितना पैसा आप लेती हैं?
2: 100 रुपए।
1: अच्छा, तो जो प्रतिदिन वाले ग्राहक हैं उनसे मंथली में लेती हैं या फिर प्रतिदिन का लेती हैं, या फिर जो जैसे कभी कभी वाले हैं तो मुझे तो लगता है कि वो डेली दे करके पैसा।
2: और जो मंथली बेस पे है तो उनका तो हम उसका रजिस्टर मेंटेन किए हैं तो उसका नोट होता है।
1: अच्छा, फिर वो महीने में ही अपना
2: मंथली
1: पैसा देते हैं
2: वो।
1: जी अन्नपूर्णा जी, बड़ी ही अच्छी बातें आपसे जानने सुनने को मिली। अच्छा, अब बातचीत के आखिर में अन्य महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी जो अपना खुद का कुछ व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं?
2: मैं सभी महिलाओं को यही कहूंगी कि औरतों को आत्मनिर्भर बनना बहुत ही आवश्यक है
1: जी,
2: और अपने पैर पे होना ही चाहिए, किसी और के भरोसे ना रखे, अपने खुशियां या अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर बनना बहुत जरूरी है।
1: जी अन्नपूर्णा जी, तो श्रोताओं, आप हमारे साथ थी श्रीमती अन्नपूर्णा श्रीवास्तव जी जो हमारे बीच में थी। श्रोताओं, आपसे हम भी ये कहना चाहेंगे, खासकर सभी महिलाओं से, कि यदि आप भी ऐसा करना चाहती हैं तो बेझिझक अपने हुनर को निखारें। शुरुआत छोटे स्तर से ही कर सकती हैं और अपने परिवार के सहयोग से आप भी अपना व्यवसाय जिसमें आपकी रुचि हो उसे करके और आगे बढ़ा करके अन्नपूर्णा श्रीवास्तव जी की तरह नाम कमा सकती हैं और आत्मनिर्भर बनके दूसरों के लिए प्रेरणा बनकर उभर सकती हैं। और अन्नपूर्णा श्रीवास्तव जी, इस स्वाद भरे बातचीत के लिए और आकाशवाणी ओबरा के स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।
0: हम लोगों के भी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती अन्नपूर्णा श्रीवास्तव जी के, जो उनकी इतनी बढ़िया गृहिणी हैं और अपने साथ साथ अपने देखा इतना लोगों के पेट भी भरते हैं स्वादिष्ट पौष्टिक भोजन के द्वारा। पहले लोगन हम लोगन जैसे अभी बहन बतौलिन कि हम लोगन के खुद से अपने पैर पे होवे के चाहिए, चार पैसा कमावे के चाहिए, तो बिल्कुल सही कहानगी रहल कि अपन पैसा देखा अपन ही होला और साथ में अगर हम अपने पति से या अपने घर में के हुई मन से दूसरे कदम से कदम मिला के चार पैसा कमात हैं तो हम लोगन के घर की स्थिति जो ना मतलब बहुत बढ़िया तरीके से चली आगे और बाल बच्चों के भी पढ़ावे में सहयोग मिली। और देखा हम लोगन के तो हाथ में बा बहन की, हम लोगन गृहिणी हैं तो घर में बढ़िया बढ़िया भोजन बनावल हम लोगन के ही हाथ में बा, अपने परिवार के तरीका से स्वस्थ रखे के बा, उनकर का खाना पीना है, सुबह के नाश्ता में का है, दोपहर के में भोजन में का है, तो इस सब पे भी हम लोगन बहुत ध्यान देवे के जरूरत होला। जैसे अगर हम लोगन देखें सुबह में अपने बच्चों के देवल चाहते हैं तो अंकुरित चना दे दें, मूंग दे दें, उनमें प्याज टमाटर नींबू हरा मिर्चा बना में डाल के अपन चाट मसाला डाल के अगर हम लोगन बना के अपने बच्चों के चाहे घर में केहू के भी चाहे हम खुद भी खाते हैं तो हम लोगन का प्रोटीन का जौन भी हम लोगों के शरीर में कमी बा वो बहुत जल्दी पूरा हो जाला। और अंकुरित चना खाए से हम लोगन के शरीर में कहल जाला कि जो तरह तरह का बीमारी होला उससे भी हम लोगन बच जाइला। साथ में देखा अगर दोपहर में हम लोगन आवल जाए तो दोपहर में देखा कहल जाला थाली का नियम बा कि चार रंग होवे के चाहिए, सफ़ेद चावल दही होवे के चाहिए, हरा साग सब्जी होवे के चाहिए, पीला देखा दाल होवे के चाहिए और लाल में देखा सलाद होवे के चाहिए। जैसे देखा रोटी अगर हम लोगन खाते हैं तो गेहूं और चना के मिक्स रोटी खाएं, अपन दाल चावल जो है दही हरा सब्जी अचार अपन जोन ये सब सलाद बा एक एक खाए से भी हम लोगन के शरीर में जोन भी पौष्टिकता का कमी बा वो पूरा होला। और खाली दाल चावल ही हम लोगन अगर खाना में खाते हैं या रोटी सब्जी ही खाते हैं तो देखा कुछ ना कुछ प्रोटीन या विटामिन कहीं ना कहीं हम लोगन के शरीर में कमी हुई। ये नाते देखा दोपहरिया में कहल जाला कि पूरा थाली हम लोगन के भोजन करे के चाहिए, यानी कि चार रंग अपनी थरिया में जरूर हुए के चाहिए। साथ में देखा सांझी के जब समय होला तो देखा बहुत बहन लोगन का अपन मन होला कि पकौड़ी खाल जाए, लेकिन पकौड़ी की जगह पे क्योंकि वो देखा काहे कि वो तेलहा होला, तेल शरीर में देखा कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसान करेला, ओकरे जगह पे देखा भुना चना है, अपन सत्तू का शरबत है, गुड़ मूंगफली है, ये सब खाए से हम लोगन का शरीर स्वस्थ रहला। और देखा है कहल जाला ना कि ये अपन जवान बा स्वाद खोजला, तो स्वाद भी हम लोगन के ही हाथ में होला कि के तरीका से स्वाद बढ़ावल जाए और स्वाद बनावल जाए। और हम लोगन अपन गृहिणी हैं तो गृहिणी की तरह से अपन बाल बच्चों के भी देखभाल हम लोगन के हाथ में बा। और देखा है यही बात ही पे हम तो कहो कि श्रीमती अन्नपूर्णा श्रीवास्तव जी की देवल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना बढ़िया आप बतौली ना, और उनका धन्यवाद ऐसे नहीं एक मन फेर के द्वारा अगर हो तो का पूछे के है भोजपुरी फिल्म बा भैया हमार के कवल एक गीत बा, तो हम तो कहब ना कि चलें फिल्म के गीत सुनल जाए।

पहले लोगन देखे, हम लोगन गीत सुनल गई और गीत रहल भोजपुरी फिल्म भैया हमार का, तो बहुत बढ़िया रहल, मन भी एकदम खुश हो गई। बहन लोगन चला चलाओ तो आप लोगन से एक बात कहल चाहे कर, देखा परोपकार का भावना ही भगवान का सच्ची पूजा होला। मंदिर में देखा घंटा बजावल, अगरबत्ती दिखावल, ये पूजा के तरीका है, पूजा नहीं होला। पूजा तब पूरा होला जब हम लोगन केहू के कारण, बिना कोनो कारण केहू के पेट भरी, आँख से आंसू पोछी, ये हम लोगन के पूजा हो कहला। और तुलसीदास जी भी ये कहले रहलन कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यानी कि दूसरे का भला करे से जैसन कोनो धर्म नहीं होला, और दूसरे के दुख देवे जैसन कोनो पाप नहीं होला। और यही बात के साथ ही हम कहब कि अपन एक कार्यक्रम यही समेटल जाए, फिर मुलाकात हुई, बढ़िया बढ़िया बात हुई। तो अपने गुलाबो बहन के दें इजाजत, सब बहन लोगन के राम राम।

अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण महिलाओं के लिए कार्यक्रम घरनी, आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से हम बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप हमारे आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से रिले भोजपुरी में समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ हम वेद प्रकाश पाठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव आज लखनऊ में एगो महत्वपूर्ण बैठकी कैले। बैठकी में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण के रोकथाम के लेके चर्चा कैल गई। बैठकी के दौरान प्रदेश सरकार की ओर से प्रदूषण रोके बदे कैल जा रहल उपाय आ आवे वाला कार्ययोजना का समीक्षा कैल गई। केंद्रीय मंत्री बैठकी में भइल चर्चा के बारे में मीडिया के पुरहर जानकारी देने।
1: जो हमारा एनसीआर क्षेत्र है जिसमें उत्तर प्रदेश के 8 जिले आते हैं, विशेष रूप से नोएडा, हापुड़, गाजियाबाद, हमारे जो मेरठ, बुलंदशहर, जो बड़े जिले हमारे आते हैं, इन जिलों में हमने आज 4-5 विषयों को लेकर के समीक्षा करी। पहला व्हीकल पॉल्यूशन को लेकर, व्हीकल पॉल्यूशन को लेकर जो ओल्ड व्हीकल है उनको निदान किया जाए, नई ईवी पॉलिसी में बसों की हमने समीक्षा करी, उसके साथ ही प्रदूषण सर्टिफिकेट की अनिवार्यता के विषय पे हमने करी, एग्रीगेटर वाहन है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा करी, और व्हीकल पॉल्यूशन को लेकर के क्या और प्रभावी कार्य किए जा सकते हैं उसकी समीक्षा। दूसरा, इस क्षेत्र में आने वाला जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है उसमें हमने देखा है कि 80% इंडस्ट्रीज ने ओसीएम्स और एपीडी जो है, एयर पॉल्यूशन डिवाइसेज जो है, वो लगा ली है। शेष बची हुई इंडस्ट्री के लिए भी कार्य समीक्षा के लिए काम किया है। तीसरा जो विषय है डस्ट पॉल्यूशन, तो मैकेनाइज क्लीनिंग के लिए और डीप क्लीनिंग के लिए आज कार्य योजना बनी है, उस पर भी जो कार्रवाई की गई है उस पर चर्चा की गई है। फिर जो दो नए रूल्स हम लोग लेकर आए हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा स्टेक होल्डर कंसल्टेशन और उसके कार्यक्रम के लिए उत्तर प्रदेश में ट्रांसपोर्ट विभाग के द्वारा, अर्बन हाउसिंग सोसाइटी के द्वारा, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा एक स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कार्यक्रम को जो बनाने का प्रयास किया गया उसकी भी चर्चा हम लोगों ने विस्तार से करी।
0: विदेश मंत्रालय पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिया हो। एकरे तहत 15 बरिस से कम उम्र के लइकन के जारी 36 पन्ना वाला सामान्य पासपोर्ट अब जारी भइले के तारीख से 5 बरिस चाहे लइका के 18 बरिस के उम्र पूरा भइले ले वैध रही। एहमे से जवन अवधि पहले पूरा हुई वह मान्य हुई। सज्जो ब्रजमंडल के सतही मथुरा के भरसाना में श्री राधा रानी के जन्मोत्सव राधा अष्टमी श्रद्धा भक्ति या उत्साह के साथ मनावल जा रहा हो। राधा अष्टमी त्योहार में शामिल होके बदे देश विदेश से लाखों श्रद्धालु ओजा पहुंचल। हमें हमरे मथुरा प्रतिनिधि बतौले कि बिहने भिनही 4 बजे श्री राधा रानी को पंचामृत से अभिषेक कैल जाई। श्रद्धालुओं के भारी भीड़ के देखत बरसाना के लाडली जी मंदिर में कड़ी सुरक्षा इंतजाम कैल गैल बा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सेवा आ सुशासन के दृष्टिकोण से प्रेरित होके सरकार बरिस 2047 ले विकसित भारत के लक्ष्य पौले की दिशा में काम कर रहा हो। यह मौका पर हमनी के सेवा संकल्प अभियान का खास श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। प्रस्तुत बा पीएम स्वनिधि योजना के लेके एगो खास रिपोर्ट।
2: 2020 में शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना का उद्देश्य रेहड़ी पटरी विक्रेताओं

0: अपने कारोबार को बढ़ाने और आगे विस्तार देने में मदद करना है। इस योजना के अंतर्गत अगस्त 2026 तक 78 लाख से अधिक विक्रेता 19,171 करोड़ रुपए मूल्य से अधिक के ऋण प्राप्त कर चुके थे। वाराणसी जिले के इस योजना के लाभार्थी राज सोनकर बताते हैं,
1: मैंने बैंक से 3 बार लोन लिया था, उसका हमें बेनिफिट मिला, एक बार 10,000, एक बार 20,000, एक बार 50,000, उससे हमें बेनिफिट मिला था। खेला पट्टी के लिए ये लोन पास होता है कि आगे अपना व्यवसाय में मदद मिले लोगों को, इसके लिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: एक अध्ययन के अनुसार 2023 से 2025 के बीच औसत वार्षिक कारोबारी आय में लगभग 20% की वृद्धि हुई है। 95% लाभार्थियों के लिए स्वनिधि उनका पहला बैंक ऋण था। पीएम स्वनिधि योजना विक्रेताओं को ऋण, डिजिटल क्षमता और विकास के अवसर उपलब्ध कराकर उन्हें औपचारिक पहचान वाले स्ट्रीट उद्यमियों के रूप में आगे बढ़ने में मददगार साबित हो रही है। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
2: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी UGC नेट जून 2026 परीक्षा का अंग्रेजी, वाणिज्य आ समाजशास्त्र विषय के आखिरी उत्तर कुंजी जारी कर दिए हैं। परीक्षार्थी अपन उत्तर कुंजी UGC नेट के आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन संख्या आ पासवर्ड के जरिए देख सकें। समाचार पूरा भइल, नमस्कार।
3: FM 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। खोए हुए व्यक्ति के संबंध में सूचना सुनिए। पुलिस अधीक्षक कार्यालय सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार देव कुमारी पुत्री रामकेश भारती निवासी ग्राम पिपरी सुनवानी थाना अनपरा जनपद सोनभद्र उत्तर प्रदेश जो दिनांक 29/7/2026 से लापता है। हुलिया इस प्रकार है, उम्र 29 वर्ष, लंबाई 5 फीट, गोरा रंग, लंबा चेहरा, इकहरा मजबूत जिस्म, लंबे काले बाल, पहनावा हरे रंग का सूट है। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया अपने निकटतम थाने अथवा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र को सूचित करें। श्रोताओं, खोए हुए व्यक्ति के संबंध में एक और सूचना सुनिए। पुलिस अधीक्षक कार्यालय सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार सहनाज परवीन पुत्री शमीम अहमद निवासी ग्राम देवाटन थाना कोन जनपद सोनभद्र उत्तर प्रदेश जो दिनांक 15/7/2026 से लापता है। हुलिया इस प्रकार है, उम्र 20 वर्ष, लंबाई 5 फीट 2 इंच, गोरा रंग, गोल चेहरा, कद काठी औसत, आसमानी रंग का सूट व लाल रंग का सलवार, पैर में हवाई चप्पल। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया अपने निकटतम थाने अथवा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र को सूचित करें। सूचना समाप्त हुई।

श्रोताओं, आइए आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों से आपको अवगत करा दें। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करंट अफेयर्स कार्यक्रम। श्रोताओं के ईमेल्स, फरमाइशी ईमेल्स पर आधारित कार्यक्रम म्यूजिक गैलरी लेकर हम हाजिर होंगे रात्रि 10:00। कार्यक्रम सुगम संगीत का समय होगा रात्रि 8:30 का। पुराने हिंदी फिल्मी गीतों को लेकर हम हाजिर होंगे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत के अंतर्गत रात्रि 9:15 पर। कार्यक्रम सबरस आप सुनेंगे शाम 7:31 पर। कार्यक्रम लोकगीत का समय होगा शाम 7:05 का और फिल्म संगीत कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 6:50 पर।

0: सब पंचन के राम राम।
1: नंदू भैया आपके भी राम राम।
0: आपके भी राम राम बतासा बहन।
1: और देखे काल बाबा विश्वकर्मा भगवान के पूजा पाठ बढ़िया से भर, और आज देखे लोग विसर्जन के ले जात बा बाबा से। देखे हम लोगन के यही कामना बा भैया कि अपना पीछे सबका जीवन में काम उनकर सुचारू ढंग से बढ़िया से चलत रहे और सबका जीवन खुशहाल बनल रहे।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और देखे खुशहाल जीवन के साथ साथ देखे एक चीज और देखल जला बता सा बहिन कि खुशहाल जीवन तब समझ में आवला, चाहे घर हो, परिवार हो, समाज हो, देश हो, मतलब जहाँ पर एक समानता के बात शामिल समझ में आवे।
1: भैया देखा जैसा आप कहल चाहत हुआ कि देखा भगवान सबके आंख नाक कान मुंह देले हुआ, सोचे समझे के बुद्धि विवेक सबके देले हुआ, चाहे पुरुष होके या महिला। बस भगवान देखा नर और नारी बना के भेजलन, बाकी कोनो भेद ना कैलन भगवान।
0: बिल्कुल
1: जी।
0: बिल्कुल।
1: अब देखें हम लोगन अपना बुद्धि विवेक के सही प्रयोग करे के बजाय ढेर दिमाग लगावे में का होला ना कि अपने आप के ही तुलना करे लागेला जा दूसरा से, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होके के चाहिए।
0: एकदम एकदम आप सही कहत हुआ। और देखें अपन समाज में जवन ये पहले से चला आल रहे कि भैया पुरुष प्रधान जौन बा देश बा, पुरुष प्रधानता के जौन बात होते रहे, देखें कहीं न कहीं अब ई एके जौन बा हटा के अब समानता वाला जौन बा बात एकदम अपने समाज में हर जगह करे के चाहिए। कहे से कि देखें अब कौनो ऐसा क्षेत्र न बचल बा बतासा बहिन जौने में कि अपन बहिन लोग घरेतीन लोग के समानता न दिखत होके।
1: बिल्कुल नंदू भैया। और सबके समान अधिकार हर तरह से कानून में भी मिलल बा, समान वेतन का भी अधिकार मिलल बा, चाहे महिला हो या पुरुष।
0: बिल्कुल। और हम देखत है कि आज जौन अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस के रूप में आज के जौन 18 सितंबर के जौन मनावल जाला,
1: बिल्कुल
0: आप चर्चा में भी शुरू से हैं।
1: बिल्कुल भैया देखा, और ए तथ्य के उजागर करेला जो 18 सितंबर है आज का दिन, आज का तारीख अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस, देखा महिला लोग पुरुष के अपेक्षा अधिक काम करेली, चाहे घर परिवार के बात होके ओके संभालने के साथ साथ बाहर नौकरी भी करेली। देखें जब स्थिति महिला और पुरुष के आप में अपने आप में अंतर जोन दर्शावेला, ई कहीं ना कहीं भेद के दर्शावेला। और ई आज का जोन तारीख है ये दिवस सितंबर में मनावे के कारण ये बा भैया कि साल में प्रतिवर्ष जोन 18 सितंबर के मनावल जाला, इस समय तक पुरुष उतना देखा होला का कि महिला लोगन जोन बा ना कि हर साल मतलब ए समय तक माने सितंबर के महीना तक पुरुष उतना कमा चुकल होने और जबकि महिला नहीं कमाली, मतलब होला का कि पूरा साल उनके काम करे के पड़ा, जहाँ नौकरी करेली तब जाके वो पैसा समान दिखाई देला पुरुष के। मने ये देखा भेदभाव काहे खातिर, जबकि काम उतने बा, मेहनत उतने करे के बा, और मतलब वही पद पर महिला भी काम करती है पुरुष भी काम करती
0: है। यही से देखें कहल जाला ना कि मतलब एक गाड़ी के दो पहिया है,
1: एक साथ चले के चाहिए,
0: एक साथ दोनों पहिया चलाला बतासा बहन। लेकिन अब इस सोच के बदले के हुई अपन समाज में उनके भी, जैसे कि अगर आप सोचत हैं कि भैया हम अगर बाहर जाके कमा सकीला, नौकरी कर सकीला, व्यापार कर सकीला, व्यवसाय कर सकीला,
1: सब कुछ बुद्धि विवेक सब भी कुछ
0: अपन काम कर सकीला, उनके भी वो काम में उतने समानता दिहल जाए जितना कि आप अपने के हकदार समझत हो।
1: बिल्कुल। और ये आज के जो दिवस बा भैया, ओकर उद्देश्य भी यह बा कि समान मूल्य के काम के खातिर पुरुष और महिला के बीच असमान वेतन के वैश्विक मुद्दा के बारे में जागरूकता बढ़ावल जाए, और सबके सरकार से या फिर हितधारक लोगन जे भी बा उनसे आग्रह करना बाई है कि समान मूल्य के काम पर समान वेतन भी मिले।
0: एकदम सही बात बा। और देखें कार्यस्थल लैंगिक समानता और महिला लोगन के जो सशक्तिकरण बा, ऐसे देखें बढ़ावा मिली और कहीं
1: हमें वेतन पारदर्शिता भी दिखाई दी भैया।
0: बिल्कुल दिखाई दी। और सामान्य मूल्य के जो आप काम के चर्चा करते हैं वो हो जाए, और लैंगिक वेतन समानता के जो बात

0: आप कर ले उहो जोन बा आप समाप्त होई तो कहीं न कहीं जोन बा आज के दिन हर पंच भैया लोगन के ई बात समझे के होई,
1: और
0: ई बात
1: भैया
0: जाने के
1: बिल्कुल
0: होई।
1: बिल्कुल। और देखा आज के थीम, मतलब आज जो अंतरराष्ट्रीय समान वेतन दिवस मनावल जा रहा बा, प्रतिवर्ष कुछ न कुछ थीम, कुछ न कुछ विषय दिहल जाला सबके खातिर। और देखा ए वर्ष का जो थीम बा भैया, वो देखा इक्वल पे फॉर वर्क ऑफ इक्वल वैल्यू फॉर एवरी वन एवरीवेयर। मतलब कि समान मूल्य के कार्य के खातिर समान वेतन हर केहू के लिए और हर जगह, माने जहां भी काम करे होके के चाहिए विषय बा भैया।
0: एकदम आप सही कहते हैं। और देखें बातचीत तो अपन होते रही, लेकिन हम तो कह कि आव जानल जाए जानकारी क्रम में कि सम आपके जो जानकारी बा आज
1: भैया पंचायती में तो देखा हर रोज कुछ न कुछ नया रहबे करेला। आज के पंचायती में भी जानकारी हम लोगों के बातचीत से जुड़ल बा कि श्रमिकन के हक खातिर न्यूनतम मजदूरी रमेश कुमार यादव अधिवक्ता हुआ दुद्धी सोनभद्र के भोला भैया उनसे बातचीत करिए, साथे देखे मन फेर भी बा। और
0: उससे पहले हम कहब कि हमें कुछ संदेश सुन ले,
1: एक बात पहले जानकारी मतलब सुनल जाए, संदेश पहले सुन लिया जाए।
2: सत्यनिष्ठा अपनाए, भ्रष्टाचार मिटाए, मिलकर भारत को विकसित राष्ट्र बनाए। सत्यनिष्ठा से समृद्धि एनटीपीसी रिहंद द्वारा आयोजित त्रैमासिक जागरूकता अभियान के अंतर्गत जनहित में प्रसारित।
1: तो देखे हम लोगन संदेश सुन लीजा नंदू भैया। और अब देखा जानकारी के बात होता तो देखा जो जानकारी का विषय है श्रमिकों का हक न्यूनतम मजदूरी, रमेश कुमार यादव अधिवक्ता दुद्धि सोनभद्र के हुआ उनसे भोला भैया का बातचीत करत हुआ, चला सुनल और गुनल जाए।
0: आवो सुन जाए।
3: श्रोताओं, 18 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह भी वक्तव्य है, लोगों में बातचीत चलती रहती है कि समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए, वेतन में भेदभाव नहीं, प्रगति का यही उपाय सही।

श्रोताओं, 18 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह भी वक्तव्य है, लोगों में बातचीत चलती रहती है कि समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए, वेतन में भेदभाव नहीं, प्रगति का यही उपाय सही।

0: के नाम से जाना जाता है,
1: हम्म,
0: ये हमेशा प्रयासरत रहता है। जैसे ही उनके पास किसी भी तरह की असमानता का या लैंगिक भेदभाव का या मजदूरी कम दिए जाने का मामला जाता है तो वह त्वरित संज्ञान लेते हैं।
1: जी,
0: पहले कुछ ऐसा था ग्रामीण क्षेत्रों में या कृषि क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के लिए, या जो सेठ महाजन होते थे, कुछ
1: हाँ,
0: कंपनियां होती थी
1: जी
0: जो अपने यहाँ काम कराती थी, तो उनकी ये मानसिकता होती थी कि पुरुषों को अगर हम वेतन 300 रुपये दे रहे हैं
1: हाँ
0: तो महिलाओं को 200 या 250 वो
1: जी
0: अपने मन से निर्धारित कर देते थे।
1: हाँ
0: और
1: हाँ हाँ हाँ
0: चूंकि महिलाएं भी शुरुआत में क्या था कि महिलाएं घर से काम करने के लिए कम निकलती थी, तो लोगों को ये सोचा जाता था कि चलिए ये आ गया है किसी, बस इसको तो बुलाया नहीं गया है,
1: हाँ हाँ
0: तो
1: हाँ
0: कम अपना मजदूरी पर भी ये
1: जी
0: तैयार
1: जी
0: हो जाएगा।
1: जी
0: तो उस तरह की चीजें थी, लेकिन फिलहाल आप देखेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी उसकी समान मजदूरी है।
1: हाँ हाँ हाँ
0: अभी आपने देखा जैसे मनरेगा एक एक्ट बनी थी जिसका अभी 1 जुलाई से जी राम जी नाम रख दिया गया है, उसमें भी जो मजदूरी बनाई गई है वो चूंकि अकुशल श्रमिक होते हैं
1: जी
0: तो उसकी अकुशल श्रमिकों की जो मजदूरी है उसको बढ़ा दी गई है, और उसमें एक समान ही वेतन मिलता है, मजदूरी मिलता है, बल्कि उसमें जो कुशल कारीगर होते हैं
1: हाँ
0: उसकी कुछ मजदूरी बढ़ के दी जाती है।
1: जी,
0: तो ऐसा नहीं है, जो कंपनियां हैं, तमाम ऐसे फैक्ट्री हैं, कारखाने हैं, उनके यहाँ भी पुरुष महिलाओं के लिए समान वेतन का प्रावधान है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इसमें भी 3 ग्रेड में लोग बांट दिया है, कुशल, अर्धकुशल
0: अकुशल
1: और अकुशल।
0: जी
1: तो इसमें निर्धारित अपना है, उसी के अनुसार जो है कि उनका मानदेय मिलना होता है।
0: हाँ, ये श्रम विभाग इसको निर्धारित करती है कि जो मजदूर अकुशल है उसकी मजदूरी कम से कम इतना से इतने के बीच में होनी चाहिए,
1: हाँ
0: जो अर्धकुशल है
1: हाँ
0: उसकी मजदूरी होनी चाहिए, जो कुशल है
1: हाँ
0: उसकी भी मजदूरी एक निर्धारित की गई है। जैसे
1: जी,
0: आप अभी किसी कंपनियों में काम कर रहे हैं और वह जो कारखाना है या फैक्ट्री है वह उसकी एक जोखिम के हिसाब से उसकी मजदूरी को वो तय करते हैं कि हमें कितना मिलना चाहिए। अभी अगर आप सामान्य औसत भी देखेंगे
1: हाँ
0: तो जो मजदूरी का औसत है कम से कम 700 रुपये से लेकर के 900 रुपये तक जो प्रतिदिन का मजदूरी है ये आपके फैक्ट्रियों में कारखानों में ये तय है, क्योंकि सरकार ने यह तय किया है कि किसी भी लोगों की जो मजदूरी है
1: जी
0: यदि महीने में देखा जाए
1: हाँ
0: तो 18,000 24,000 से कम नहीं होना चाहिए,
1: जी
0: कम से
1: जी
0: कम उसको 24,000 रुपये मजदूरी
1: मिलना
0: मिलना
1: चाहिए।
0: चाहिए, क्योंकि जो महंगाई का दौर है उस दौर में उसके हिसाब से उसके जो श्रम का जो कास्ट है उसको तय की जाती है।
1: तो श्रमिकों के जैसे तरह तरह के दिक्कतें भी आने की संभावनाएं होती हैं, जैसे अपने गए मजदूरी करने, वहाँ किसी प्रकार की घटना दुर्घटना हो गई, तो ऐसे स्थिति में क्या कुछ ध्यान देना होता है और कहाँ से उनको सूचना देना होगा कि
0: देखिए,
1: हम
0: मैं
1: जी
0: मजदूरों के लिए अधिकार बने हुए हैं, और जो श्रम का ये पंजीयन होता है
1: जी
0: जिसको श्रम पंजीयन विभाग बोला जाता
1: हाँ
0: है,
1: हाँ हाँ हाँ
0: हर मजदूरों का वहाँ पे एक रिकॉर्ड होता है,
1: जी
0: उसकी एक कार्ड बन के मिलती है ताकि उसको जो है पहचान हो सके, और जहाँ भी वो काम कर रहा है तो उसके काम के बारे में अगर उसको कार्यस्थल पर कोई भी परेशानी होती है
1: जी
0: तो तत्काल वह श्रम विभाग के हेल्प नंबर पर सूचना दे सकता है, स्थानीय पुलिस को सूचना दे सकता है, जिसको लेकर त्वरित उसको संज्ञान लिया जाता है।
1: जी
0: और
1: हाँ
0: इसको लेकर के आप हर साल देखिए भारत में ही देख लीजिए, हर जगह सेमिनार होते रहते हैं, चर्चाएं होती रहती है, मजदूरों के अधिकारों को जगाया जाता है
1: बिल्कुल
0: कि आप
1: बिल्कुल
0: जागरूक रहिए, जागरूक ग्राहक का आप तमाम ऐसे अखबारों में टीवी वगैरह पर भी एड देखते रहते हैं
1: हाँ हाँ
0: कि आप
1: हाँ
0: जागरूक बनिए, अपने अधिकार को जानिए।
1: जी
0: तो किसी भी अगर मजदूरों के साथ कहीं भी काम कर रहा है वो, चाहे वो सरकारी संस्थान हो, प्राइवेट हो, कंपनी हो, या होटल हो, रेस्तरा हो, क्योंकि वह जैसे आप किसी भी होटल में देख लीजिए, रेस्तरा में देख लीजिए, जो बड़े बड़े लान हैं उसमें अगर 7 से अधिक 5 से अधिक मजदूर लगे हुए हैं तो एक क्या होता है, छोटा एक कारखाना हो जाता है,
1: हाँ,
0: उसके नियम बदल जाते हैं, कहीं एक दो मजदूर है तो उसको आप मजदूर कह सकते हैं कि चलिए वो काम कर रहा है,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: लेकिन जैसे बड़ी संख्या में जहाँ लोग रह रहे हैं काम कर रहे हैं तो एक छोटा सा कारखाना का रूप ले लेता है,
1: बिल्कुल
0: तो उसको अधिकार जो है उसको बढ़ जाते हैं, और उसकी रजिस्ट्रेशन श्रम विभाग में करा करके जो सरकार की तमाम ऐसी योजनाएं चल रही है उसका भी वो लाभ ले सकते हैं।
1: तो चूंकि बहुत, हालांकि प्रत्येक कंपनियां हैं या जो भी स्थान पर कोई

0: काम हो रहा है तो श्रमिकों को चेताया जाता है कि किस प्रकार से आना है, किस प्रकार अपने से सुरक्षित रहना है, तो इसके लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे? चूंकि कोई ऊपर से भारी सामान न गिर जाए, सर पर चोट हिल ना हो जाए, इस सब के लिए क्या कुछ करना चाहिए श्रमिकों को?
1: देखिए, हर जगह पे कहीं भी कोई भी काम यदि हो रहा है तो सबसे पहले तो उसकी जो वहाँ पे जिम्मेदारी होती है सेफ्टी मैन होता है उसका
0: जी,
1: जो सुरक्षा का वो गार्ड होता है,
0: हाँ।
1: सुरक्षा के लिए एक जिम्मेदार व्यक्ति होता है, उसको ये देखना रहता है कि लेबर पूरी तरह से उपकरणों से लैस है कि नहीं है
0: जी,
1: उसके हेलमेट हैं, पूरे जूते हैं, ग्लव्स हैं, क्योंकि जोखिम भरा कोई भी काम कराने का अधिकार किसी भी कंपनी को, किसी भी व्यक्ति को नहीं है।
0: हाँ हाँ हाँ
1: क्योंकि श्रम की सुरक्षा, श्रमिकों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए उसको सबसे पहले ध्यान दिया जाता है कि उसकी सुरक्षा का ध्यान हम रखें। अगर कोई भी कंपनी द्वारा, फैक्ट्री द्वारा, कारखाना द्वारा या कोई भी किसी भी तरह का संस्थान द्वारा इस तरह से असुरक्षित यदि मजदूरों से काम कराया जा रहा है तो उसकी सूचना वो स्थानीय पुलिस को, श्रम विभाग को,
0: जी
1: अगर उस बिना विरोध किए भी चाहता है तो गोपनीय रूप से भी पत्र लिख करके वो दे सकता है कि हमको यहाँ पर सुरक्षा उपकरण मुहैया नहीं कराई जा रही है,
0: अच्छा
1: हमारे
0: अच्छा
1: जीवन को खतरा है।
0: हाँ हाँ
1: तो तत्काल श्रम विभाग उसको

0: मजदूरों से काम कराया जा रहा है तो उसकी सूचना वो स्थानीय पुलिस को, श्रम विभाग को,
1: जी
0: अगर उस बिना विरोध किए भी चाहता है तो गोपनीय रूप से भी पत्र लिख करके वो दे सकता है कि हमको यहाँ पर सुरक्षा उपकरण मुहैया नहीं कराई जा रही है,
1: अच्छा
0: हमारे
1: अच्छा
0: जीवन को खतरा है।
1: हाँ हाँ
0: तो
1: हाँ
0: तत्काल श्रम विभाग उसको

0: पहर में ही नहीं पूरे दिन जो है हवादार स्थान पर रखें। पानी एक साथ ज्यादा पिलाने की बजाय अगर साफ पानी हर समय उपलब्ध रहेगा तो पशु को जब जरूरत रहेगा तब अपने हिसाब से पी लेगा। और दूध देने वाले पशुओं में एक विशेषकर ध्यान देने की बात है कि उनके खाने और पानी पीने में कमी होने पर उनके दूध की मात्रा है वो कम हो सकती है। और अंत में किसान भाइयों हम आपसे कहना चाहेंगे कि ऐसे मौसम में क्या होता है कि सिर्फ बाहर से देख कर लौटने के बजाय अगर किसान भाई सुबह के समय 10 से 15 मिनट तक फसल के अंदर जाकर पौधों को फूलों को नई पत्तियों को ध्यान से देखेंगे तो आपको आभास होगा कि उसमें क्या कमी है। और किसी भी समस्या का शुरुआत में पहचान होने पर क्या होता है कि उसका नियंत्रण आसान होता है और कम खर्चीला भी होता है। और इन सब चीजों का किसान भाई ध्यान देके अपना कृषि कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से जो उनका मौसम जनित नुकसान होने वाला है उसमें जरूर कमी आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपनी फसल को मौसम के अनुसार संभालते रहें। जय जवान, जय किसान।
1: बिल्कुल
2: बताता है
1: हाँ आनंद भैया।
2: देखा मौसम के तो जानकारी किसान भैया लोग पंच भैया लोगन के हो गिला, लेकिन जहाँ तक बात होला कि हमेशा अपन बैठकी में पंचायती में होला कि भैया वो सब फसली के बात करा या वानगी के बात करा, मतलब खेती बाड़ी गुरुवारी तर तरकारी एकरे बात तो फिर आप सफल किसान या सफल पंच भैया कहल जा
1: बिल्कुल
2: सकला।
1: विविधीकरण अपनौला से देखा तमाम तरह के फायदा भी हो जाला। और विविधीकरण में देखा अगर हम लोग और बांस के बात करल जाए तो भैया बांस से भी तमाम तरह का अचार बा, सब्जी बा, और भाई देखा बांस का तो का कहानी
2: अचार
1: बा।
2: सब्जी तो एक अलग बात बा बता साहब, एहन ओकर तो बात मत करा, लेकिन विश्व बांस दिवस बा आज और बांस जानला ना कि भैया एक ऐसा चीज बा कि आपके जीवन से लेकर के अंतिम क्षण तक आपके साथ देवे वाला
1: मने
2: बा।
1: जियते लकड़ी मोते लकड़ी देख तमाशा लकड़ी
2: बिल्कुल
1: का।
2: बिल्कुल। और कहीं न कहीं और ये भी जान ला कि अपन आर्थिक स्थिति में जोनबा हमेशा आपके साथ खड़ा रहला, चाहे भैया अपन कौनो भी स्थिति में देख ला उ रहे, तो एक बात ई जान ला कि ए समय की स्थिति बा कि बांस लगा के करा कमाई और ऐसन चलल उपाय, आ घर के खर्चा तो चलबे करी भैया खलैता बिगन।
1: वाह भैया, तो देखा सफलता के कहानी में बांस की खेती बनल आय का अच्छा माध्यम। जमुना प्रसाद यादव से अपन भोला भैया बातचीत करत हुआ, का कुछ करत हुआ, हम तो कहते चलो जानकारी सुनल जाए।
2: और सुनल जाए।
3: किसान भाइयों बहनों, जिस तरीके हम लोग खेती करके अपना अच्छा अनाज उत्पादन करने का काम करते हैं, कुछ ऐसे भी भूमि होते हैं जो हम लोग के फसल उत्पादन के योग्य नहीं होते हैं। अगर फसल उत्पादन के योग्य हैं बावजूद भी कृषि के साथ साथ अन्य कार्य जैसे वानिकी की बात आती है उसके माध्यम से भी हम लोग अच्छा खासा मुनाफा ले सकें, इसके लिए तमाम तरह के योजनाएं चलाई जाती है और लोग करते भी हैं। अब जैसे पेड़ पौधे लगाना, उसके द्वारा फल प्राप्त करना और शहद उत्पादन, मछली पालन, मुर्गा पालन, तमाम चीज़ें हैं इस प्रकार के। लेकिन इसके बावजूद भी जो जाने अनजाने में हर त्योहारों में लगभग हम लोग जो है कि बांस के बर्तन का प्रयोग करते हैं, लेकिन बांस उत्पादन करने के तौर तरीका बहुत कम जान पाते हैं। ऐसे ही लगा दिया जाता है और फिर उसमें से कैसे उसका लाभ लें इसका जानकारी कम कर पाते हैं, बल्कि जो बांस के कारीगर हैं उनके द्वारा इसका कुछ उपयोग और बना करके उसका उपभोग करने के भी काम करते हैं। लेकिन हम लोग जो खेतिहर हैं, किसान भाई हैं, बांस का उत्पादन करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके लिए आज हम सोनभद्र जनपद अंतर्गत मेरपुर ब्लॉक के बनवासी सेवा आश्रम गोविंदपुर में हैं, यह जानने के लिए कि बांस के खेती हम लोग कैसे करें। तो मुलाकात हो रही है बागवानी की देख रेख करने वाले यमुना प्रसाद यादव जी, आप भाई जी के नाम से भी जाने जाते हैं। और निश्चित रूप से अब बात बत कही कि साथ हम लोग जानेंगे कि कितना बृहद रूप में बांस की खेती किए हैं और करने क्या कुछ तौर तरीका है, इसका संरक्षण कैसे करें, इन विषयों पर बातचीत होगी। तो यमुना प्रसाद यादव जी, आपका रेडियो कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। इस उद्देश्य भी कि ये सब लोग तो खेती करता है लेकिन आप बांस
1: जी
3: की खेती कर रहे हैं, तो कैसे ये खेती की जाती है बांस का और इसका देख रेख। जी
4: बांस की खेती, बांस का मुख्य चीज है लगाने का समय,
3: जी
4: और लगाने का समय इसका जो है एक नक्षत्र होता है, जब शुरू पानी बरसता है तो मृगडाह नक्षत्र,
3: जी जी मृगडाह जी
4: और मिगडाह में जो भी बांस लगता है।

0: उसको जब लगा देंगे तो मरने की संभावना कम होती है उसमें।
1: अच्छा।
0: वो मुख्य नक्षत्र वो बांस के लिए ही है,
1: हाँ हाँ
0: और पानी उसमें, पानी का सुखाव नक्षत्र में बहुत तेजी से होता है,
1: जी
0: कुआं
1: जी
0: तालाब
1: हाँ
0: नलकूप सूख जाते हैं, लेकिन बांस के लिए वो नक्षत्र बहुत उपयोगी है, उसमें ही बांस लगाना चाहिए हमको अधिकतर
1: अच्छा। तो
0: है। वो 15 दिन का ही नक्षत्र होता है, ऐसे लोग तो
1: हाँ
0: लगाते रहते हैं, लेकिन मुख्य चीज से आप जितना कोशिश करें
1: जी।
0: उस नक्षत्र में ही लगाते रहिए।
1: ये बांस चूंकि सुन रहे हैं कि आप बहुत लगाए, कितना बांस लगाए हैं?
0: हम तो बांस लगाए थे करीब जो है 4,000-4,500 के आसपास, लेकिन
1: अच्छा
0: मेरा जो है अनुमान है कि 3,000 तो हमने गिन के रखा है,
1: अच्छा अभी
0: लेकिन
1: बचे हैं
0: बचे हैं
1: तो पिछले बार लगाए थे। हाँ
0: पिछले बार, अब इस साल भी लगाए हैं कुछ, तो उसका तो हम नहीं मान रहे हैं कि 500-600 लगाए हैं,
1: अच्छा अच्छा
0: 3,000
1: अच्छा
0: पिछले साल का बांस मेरा जिंदा है।
1: हाँ तो ये इसका बीज आया था कि कैसे?
0: नहीं, पौधा हम देहरादून से मंगाए थे। हाँ,
1: देहरादून से।
0: देहरादूनी बांस है
1: तो ये
0: ये।
1: कौन बांस? देहरादूनी बांस है।
0: हाँ, ये जो है 10-12 ठो ही होगा,
1: अच्छा
0: और सीधा ऊपर जाएगा, इसमें जो है वो फैलेगा
1: कनखा नहीं
0: तो
1: रहेगा,
0: कनखा नहीं रहेगा,
1: शाखा नहीं
0: लंबा नहीं,
1: रहेंगे।
0: लंबा लंबा गांठ है।
1: अच्छा तो इसको लगाने में क्या सावधानी बरतते हैं?
0: लगाने में बहुत विशेष कोई सावधानी नहीं है, इसको खाद पदार्थ नहीं चाहिए, आप
1: अच्छा
0: दे सके तो दीजिए, कोई बात नहीं, और
1: हाँ
0: नहीं है तो कोई बात नहीं है,
1: अच्छा
0: मेड़ पर भी लगा सकते हैं, खेत
1: हाँ
0: में भी लगा सकते हैं,
1: हाँ हाँ
0: जो
1: हाँ
0: खराब खेत में लगा दीजिए,
1: अच्छा
0: झाड़ी में भी
1: उसमें भी
0: लगा,
1: पकड़ लेगा।
0: हाँ झाड़ी में भी लगा दीजिए,
1: वाह ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है।
0: बंधा है
1: हाँ
0: बंधे में लगा दीजिए, मेढ़ में लगा दीजिए, करार में लगा
1: अच्छा,
0: दीजिए,
1: मिट्टी भी जबरदस्त पकड़ता है,
0: हाँ पकड़ता है,
1: जिसे अगर बंधा फूटे उठे के डर होए
0: हाँ तो उसमें भी
1: तो
0: पानी
1: उसमें
0: का
1: जो है कि
0: बहाव भी
1: वो
0: रोकता है,
1: पानी बहाव
0: और
1: रुकेगा
0: इसका
1: मिट्टी।
0: जड़ ऊपर में बहुत ज़्यादा फैलता है, तो
1: जी
0: अगर
1: जी
0: छोट मोट
1: जी
0: बंधा है फूटने का सम है तो उसको लगा दीजिए, तो वो जबर कर देगा उसको।
1: तो इसका गड्ढा खुदाई कब करते हैं?
0: गड्ढा खोदाई तुरंत, हमने तो तुरंत खोदा
1: अच्छा
0: और तुरंत पौधा आया और तुरंत हमने लगा दिया,
1: हाँ
0: लेकिन हमारा मारा बहुत कम
1: तो
0: है।
1: वहाँ से कैसे मंगाना हुआ?
0: वहाँ से देहरादून से जो है वो मंगाए थे, वो आए थे लोग तो दिए थे पौधा, तो कहे कि हम लोग यहाँ के बांस दे दे रहे हैं आपको, इसको लगाइए।
1: और किसान लगाना चाहेंगे तो मिल जाएगा
0: हाँ
1: लोगों
0: मिल
1: को?
0: जाएगा,
1: अच्छा
0: वहाँ से भी मिल जाएगा,
1: तो ये लगाने के लिए मान लीजिए तुरंत गड्ढा खोदे लगा दिए।
0: हाँ लगा दिया, पहले भी गड्ढा किसान खोद सकते हैं।
1: हाँ। तो इतना बांस क्या होगा?
0: ये बांस जो है, देखिए हमारे पास बांस का बहुत बिक्री है,
1: अच्छा
0: यहाँ के जो धरिकार परिवार हैं
1: हाँ
0: हमारे यहाँ से खरीद के बांस ले जाते हैं,
1: अच्छा
0: और बांस का तो जो आप जानते हैं कि अनेक प्रकार के वस्तु बनते हैं,
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
0: हैं सूप हुआ,
1: हाँ।
0: दौरी हुआ, टोकरी हुआ, ओड़ा हुआ, वोड़ी हुआ,
1: अरे
0: देहात
1: खेत
0: में
1: से लेकर जो छप्पर तक
0: बेना
1: के बात
0: हुआ,
1: किया जाए।
0: और छप्पर बनाना, घर बनाना, ये सारे चीज़
1: घुरान करना, टाटी
0: घोड़ान
1: बनाना
0: करना, सब
1: है।
0: कुछ में मुख्य चीज़ है कि बांस के लकड़ी आपको जो गाड़ियों में जो करंट पैदा करता है उसमें भी बांस का लकड़ी लगता है,
1: अच्छा।
0: जितना भी गाड़ी दुनिया में चल रहे हैं
1: जी जी जी
0: बिना बांस के लकड़ी को नहीं चल सकता,
1: वाह भाई
0: जब
1: वाह,
0: चाबी मारते हैं तो करंट वही पैदा होता है वहीं से।
1: क्या बात है। तो अब बताइए इतना बहुमूल्य चीज़ जो है कि, तो मतलब इस प्रकार से ये घर से ही सब जो है कि उठ
0: हाँ
1: जाएगा,
0: घर से ही
1: एक
0: उड़
1: तो
0: जाए
1: अगल
0: कहीं,
1: बगल, लेकिन अगर कंपनी से बातचीत हो तो वो ले जा सकते हैं
0: बांस
1: लोग।
0: का कागज भी आपका बन रहा है,
1: हाँ बांस के कागज बन रहा
0: कागज
1: है।
0: भी बन रहा है, पेपर कई गो, ये जो है भोज पेपर जो भोज पत्र बनता था वो बांस
1: जी
0: का ही
1: जी
0: है,
1: जी जी जी
0: इस तरह से पुराने पत्ती से भी बांस का बहुत उपयोग है, आज भी जो है बांस उसी तरह से है। आज जो है बांस का कटान इतना तेजी से हो गया कि बड़े बड़े पहाड़ों में बांस नहीं है,
1: नहीं है
0: सब
1: बिल्कुल।
0: ठेकेदार काट के कहाँ
1: हाँ
0: कहाँ
1: हाँ
0: भेजती
1: हाँ
0: है। तो हम लोग अगर अपने खेत में न करें, अपने गाँव में न करें, 10 पौधा न रखें,
1: जी
0: 10 कोठी,
1: जी
0: तो हमारा काम अब नहीं चलने वाला
1: हमारा
0: है,
1: भी काम नहीं चलने वाला। अगर बिजनेस के तौर पर करें तभी भी हो
0: तभी
1: सकता है।
0: तभी भी
1: तो ये आप कह रहे हैं कि कितना, 8-10 हो पाए, 12 मतलब
0: हाँ
1: एक
0: दस
1: एक कोठी,
0: बारह
1: एक
0: दस
1: कोठी।
0: बारह
1: अच्छा
0: उसी राह ऊपर जाएगा, उसमें बजेगा नहीं,
1: हाँ
0: और लंबा लंबा करीब 1.5 फीट 2 फीट पर गांठ है उसका।
1: अच्छा। तो ये तो और अच्छा है कि
0: हाँ
1: मतलब
0: अच्छा
1: जिसे
0: है,
1: चिड़ने में कोई
0: हाँ
1: दिक्कत
0: हाँ
1: नहीं
0: कोई
1: है,
0: दिक्कत नहीं
1: और
0: है,
1: मोटाई के भी बहुत अंतर नहीं रहेगा,
0: नहीं मोटा
1: जितना
0: है,
1: जड़ तरफ उतने
0: हाँ
1: ठिकारी
0: सेम
1: तरफ
0: मोटा भी
1: हैं।
0: थोड़ा मोड़ा अंतर पड़ेगा,
1: जी जी
0: लेकिन
1: जी
0: बांस
1: जी
0: भी बहुत बढ़िया है, अभी आपको दिखाएंगे भी हम।
1: जी जी जी नहीं, ये तो बहुत अच्छा चीज़ है। तो ये अगर बेचना, एक बांस कितना में बिक जाता है लगभग?
0: 150,
1: एक बांस 150 में।
0: हाँ 150
1: अब अगर
0: इसमें
1: एक कोठी में जो है कि आपके 12 बांस हैं तो
0: तो
1: बारह
0: 12 डेढ़ 18 2,000
1: डेढ़
0: मानिए,
1: 2,000 के तो एक में मिल जाए।
0: हाँ एक
1: एक
0: कोठी में
1: तरीके के आपके जो अनुभव की 3,000 पौधा अभी जी रहा
0: तीन
1: हमन,
0: तीन हजार पौधा
1: तो आप
0: है,
1: समझ जल जाए कि बहुत मुनाफा है।
0: हाँ बहुत मुनाफा है।
1: तो अगर इसको लोग चाहें तो लगा
0: हाँ
1: सकते
0: थोड़ा
1: हैं।
0: यह है कि भाई अपना देख रेख करना पड़े।

0: लोग
1: हाँ,
0: खाते हैं
1: अब
0: उसको।
1: देख रेख की बात आती है, तो देख रेख कैसे करें?
0: भाई रखाई हुआ देख रेख करने के लिए या तो झाड़ी झूपर रख दें, गाय गोरू गर्मी में छोटा पौधा ना खाएं, उसका थोड़ा रखवारी कर दें।
1: जी जी
0: पानी
1: जी
0: के तो कोई संभावना नहीं है कि आपको पानी देना है, दे सके तो अच्छा है
1: अच्छा
0: गर्मी में,
1: हाँ
0: और नहीं दे
1: हाँ
0: तो कोई बात नहीं।
1: तो ये कौन कौन चीज़ से नुकसान होता है?
0: पशु भी खा लेते हैं इसको,
1: हाँ
0: पशु तो तेज खाते हैं,
1: जी जी
0: और
1: जी
0: लोगों ने काट के ले जाता है,
1: काट के ले
0: तैयार
1: जाता
0: हो
1: है।
0: जाता है,
1: जी
0: गांव के
1: जी
0: लोग
1: जी
0: काट लेंगे
1: जी
0: अपने
1: जी
0: काम के
1: जी
0: लिए,
1: जी जी
0: कोई डंडा के लिए, कोई लाठी के लिए,
1: हाँ भाई,
0: समझदार
1: सुंदर
0: के लिए।
1: सुंदर बांस है तो भाई,
0: हाँ
1: सुंदर लोगों के तो ऐसा आदमी देखा ला
0: हाँ
1: कि जो अच्छा वस्तु हो तो कर
0: अब
1: ज्यादा
0: हम लोगों को
1: आकर्षण।
0: गांव में तय होता था कि छाता पहले नहीं था, तो
1: हाँ
0: बांस के जो है छतरी बना के हम लोग भी
1: बिल्कुल
0: चलते
1: बिल्कुल,
0: थे,
1: मौलायनों के पतई से
0: महिलाओं
1: छा
0: के
1: करके
0: पति थे, और
1: हैं।
0: घर खेती में काम करने वाले, रखवाली करने वाले बांस का ही छप्पर बना लेते थे, ताट वो बीन के दौरी
1: जी
0: बीन
1: जी
0: के
1: जी जी
0: काट के
1: मचान बना के
0: मकान बना के
1: हैं,
0: रहते, भी जो
1: वही
0: है
1: पर टीना बांध
0: टीना
1: के
0: प्लास्टिक
1: पिट्टे की
0: जो
1: जो है
0: भी
1: कि
0: कर दें बीन देते
1: हाँ
0: थे, ते भी जो है बहुत उपयोगी है बांस का।
1: नहीं, ये तो है बहुत उपयोगी
0: और
1: है। और
0: हम
1: सबसे
0: लोग
1: अच्छी खुशी की बात यह है कि इतना अधिक मात्रा में आप यहाँ बांस लगाए
0: हाँ
1: हैं,
0: अधिक मात्रा में लगाए हैं।
1: और निश्चित रूप से जो लाभ की बात कही जाए तो कितना साल में तैयार हो जाएगा?
0: बांस जो है अभी पिछले साल 2 साल है, वो तो पौधा थोड़ा सा ज़्यादा समय लेता है, लेकिन तीसरे साल निकलना शुरू हो जाएगा ये जो है पूरा कली,
1: हाँ अच्छा, तीसरे साल मतलब
0: जो
1: वो
0: कली
1: जो
0: मोटा
1: करील
0: मोटा कली
1: करील
0: आ
1: करील
0: जाएगा।
1: निकलेगा।
0: हाँ जो कि पौधा है हमारा,
1: हाँ हाँ
0: और
1: हाँ
0: जब जड़ लगाएंगे आप उसका
1: जी,
0: तो जड़ जल्दी तैयार होता है।
1: जड़ की तो लगातार अगले साल से निकलने
0: हाँ
1: लगेगा,
0: निकलना लगेगा,
1: और जो पौध लाएंगे तो
0: वो
1: दो
0: थोड़ा
1: तीन साल
0: लेट करता
1: लगेगा।
0: है, लेट करता है, 3 साल
1: जी जी
0: लगभग।
1: जी जी
0: इस तरह से बांस का है, और
1: तो ये
0: कम
1: है,
0: लागत में।
1: तो इसका वही अब वहीं पर हम लोग बातचीत करना चाह रहे थे।
2: तो नंदू भैया
3: देखा ही रहल अपन बांस के जानकारी देत, और बड़ा बढ़िया रहल इनके सफलता के कहानी, जमुना
2: बांस
3: प्रसाद
2: के,
3: यादव
2: हाँ
3: भैया के,
2: बिल्कुल सफलता
3: स्वयं
2: की
3: भोला भैया
2: कहानी,
3: के साथ रहल। अब
2: बिल्कुल।
3: हमरे
2: और
3: हाथ में देखे बाजार भाव के पाती भी लग गेल बा, पूर्णवासी चौहान भैया जोन बा
2: जान ले जा भैया,
3: तो देखें कुंतल में बा आलू 1200, आ टमाटर 3200, मूली 3000, पालक 2000, नेनुआ 1700, भिंडी 1200, लौकी 1500, करेला 3000, गोल वाला बैगन 4000, लंबा वाला 2800, परवल 4500, कुंदरू रहल 1700, बंडा रहल 2500, सूरन 4000, अदरक रहल 10000, लहसुन 12000, मरचा 3200, धनिया 10000, प्याज 4000, फूल गोभी रहल 2500, और पत्ता वाला 2200 रुपया, ये रहल अपन सैकड़ा में, नींबू रहल 500 रुपया सैकड़ा, कुंदरी रहल 1200 रुपया कुंतल।
2: बिल्कुल। तो देखें ऐसे ही हम लोगन जानकारी अपने पंचायती में शामिल करत रह ले जा, अगले भी पंचायती में कुछ नई जानकारी के साथ जुटल जी,
3: तो
2: लेकिन
3: चलो
2: चलो चलाओ
3: चलाओ,
2: तो ये
3: हम
2: कह
3: यही कहब
2: भैया।
3: कि नशा से आर्थिक सामाजिक नुकसान होला, बचे के चाही, तो चलल जाए
2: बिल्कुल
3: तो सब
2: बिल्कुल
3: पंचन के
2: राम
3: राम
2: राम।
3: राम।

अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण भाइयों के लिए कार्यक्रम ग्राम जगत आकाशवाणी के हम ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत और कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवाते हैं केके की आवाज में सईद कादरी के लिखे इस गीत को। संगीत दिया है प्रीतम ने। फिल्म है गैंगस्टर।

कार्यक्रम फिल्म संगीत का अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं श्रेया घोषाल और उदित नारायण का गाया हुआ। फिल्म है कृष और शब्द रचना है नासिर फराज के, संगीत राजेश रोशन का है।

0: गाइए गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।
3: इसी के साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी के हम ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम लोकगीत, और आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनाते हैं विदेशी के गाए कुछ लोकगीत। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इनका गाया ये देवी गीत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा से प्रसारित कार्यक्रम लोकगीत, और इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं विदेशी के गाए कुछ लोकगीत। तो आइए अब सुनवाते हैं इनका गाया ये देशभक्ति गीत।

विदेशी के गाए इसी पारंपरिक गीत के साथ ही लोकगीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप हमारे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।

आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल लखनऊ समेत देश के 45 स्थानों पर आयोजित 20वें रोजगार मेले को वर्चुअली करेंगे संबोधित। केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने NCR में वायु प्रदूषण को लेकर की बैठक। सरकारों, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग और स्थानीय निकायों के बीच बेहतर समन्वय पर दिया जोर।

0: प्रदेश को भूजल स्रोतों की गुणवत्ता और स्थिति की निगरानी में देश भर में मिला पहला स्थान। 45,361 स्रोतों की जांच पूरी कर हासिल किया 94.39% का लक्ष्य। और मथुरा में कल श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा राधा अष्टमी का पर्व। देश विदेश से आए श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए किए गए व्यापक इंतजाम। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल लखनऊ समेत देश के 45 स्थानों पर आयोजित 20वें रोजगार मेले का वर्चुअली शुभारंभ करेंगे। इस दौरान विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में भर्ती हुए युवाओं को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रोजगार मेले को वर्चुअली संबोधित करेंगे। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह मौजूद रहेंगे। नवनियुक्त उम्मीदवार भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में शामिल होंगे, जिनमें राजस्व विभाग, रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग तथा रक्षा मंत्रालय शामिल हैं। वहीं प्रदेश सरकार की ओर से कल लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में 818 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 21 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे, जबकि शेष 797 अभ्यर्थियों को विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण की रोकथाम को लेकर बैठक की। बैठक में एनसीआर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से किए जा रहे उपायों, अब तक हुई प्रगति और आगामी कार्य योजना की समीक्षा की गई। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि बैठक में विशेष रूप से एनसीआर से जुड़े जनपदों में प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों पर की जा रही कार्रवाई की समीक्षा की गई। साथ ही केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CQM और स्थानीय निकायों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया गया।
2: एयर पॉल्यूशन को लेकर के सभी नगर निगम जो NCR के हैं, उधर हमने विस्तृत कार्य योजना तैयार कराई है। पिछले दिसंबर से अभी तक लगभग 30 से ज्यादा बैठकों का आयोजन किया है, और अब राज्य अनुसार जो सिटी स्पेसिफिक प्लान है उस पर भी कार्यवाही की गई है। पिछले दिनों NCR के जो 63 छोटे छोटे शहर आते थे नगर निगम, उनके भी जो पंचायत के जनपद के अध्यक्ष हैं, पंचायत अध्यक्ष हैं, नगर पालिका के चेयरमैन हैं, नगर निगम के मेयर हैं, उनके साथ हमने विशाल बैठक करी, और अभी हमने निर्देशित भी किया है इसके लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाए।
0: प्रदेश में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा संकल्प अभियान के तहत प्रदेश में सेवा संकल्प महोत्सव 2026 आयोजित किया जा रहा है। इस महोत्सव में केंद्र सरकार की प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं और देश प्रदेश में हुए सकारात्मक बदलाव की कहानी को सरल और संगीतपूर्ण नाटक के माध्यम से शहरों और गांवों तक पहुंचाया जाएगा। प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि प्रत्येक विधानसभा में कम से कम 30 स्थानों पर नुक्कड़ नाटक कराए जाने का प्रस्ताव है, जिसमें 10 विशिष्ट स्थलों, 98 जनपद स्तरीय स्थलों और 826 ब्लॉक स्तरीय स्थलों पर थीम पर आधारित रंगोली बनाई जाएगी। इसी क्रम में हापुड़ में सेवा संकल्प अभियान के तहत मेरे सपनों का भारत चित्र सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके अलावा स्वच्छता अभियान और सघन वृक्षारोपण भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। आकाशवाणी समाचार सेवा संकल्प अभियान पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज जानेंगे कि कैसे वक्फ कानून में 2025 में किए गए संशोधन ने वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को पारदर्शी बनाकर वक्फ संपत्तियों को संरक्षित करने के साथ ही उनके दुरुपयोग पर रोक लगाई है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 में सरकारी जमीन पर किसी भी दावे की जांच अब जिलाधिकारी से वरिष्ठ अधिकारी द्वारा की जाएगी, और पहली बार हाई कोर्ट में अपील का प्रावधान भी खोला गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वक्फ कानून में किए गए संशोधन को मुस्लिम समाज के हित में उठाया गया कदम बताया।
4: मैं देश की संसद को सर्व समाज के हित में, मुस्लिम समाज के हित में एक शानदार कानून बनाने के लिए

0: बधाई देता। अब वक्त की पवित्र भावना की भी रक्षा होगी और गरीब पसमंदा मुसलमान महिला बच्चे सबके हक भी महफूज रहेंगे।
1: उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली दैदी ने कहा कि वक्फ कानून में संशोधन से मुस्लिम महिलाओं और यतीमों का सशक्तिकरण हुआ है।
2: वक्फ संपत्तियों के और बेहतर संरक्षण और बेहतर रखरखाव और खास करके आम जनता को जो बेनिफिशरीज हैं औकाफ के महिलाएं हैं यतीम हैं बेवा हैं उनके लिए जो है इसके अंदर जो है बहुत अच्छी एक सोच रख के इसको जो है इसमें संशोधन किया गया।
1: वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 लागू होने के बाद वक्फ संपत्तियों का संरक्षण बढ़ा है और आम जनमानस को इससे फायदा पहुंच रहा है। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। भूजल स्रोतों की गुणवत्ता और स्थिति की निगरानी को लेकर किए जा रहे परीक्षण कार्य में उत्तर प्रदेश ने देश में पहला स्थान हासिल किया है। पेश है एक रिपोर्ट।
4: जांच के अंतर्गत राज्य और जिले स्तर की प्रयोगशालाओं से प्रदेश भर में भूजल स्रोत, भूमिगत व ओवरहेड टंकी समेत पानी के अन्य स्रोतों की पड़ताल की गई है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में 48,055 भूजल स्रोतों के परीक्षण का लक्ष्य निर्धारित किया था, जिसके मुकाबले प्रदेश में 45,361 स्रोतों की जांच पूरी कर ली गई है। यह कुल लक्ष्य का 94.39% है। राज्यवार रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के बाद पंजाब दूसरे और आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर है। यूपी जल निगम ग्रामीण प्रबंध निदेशक योगेश कुमार ने कहा कि भविष्य में भी प्रदेश में सभी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का प्रयास जारी रहेगा। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
3: मथुरा में राधाष्टमी का पर्व कल श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस मौके पर देश विदेश से श्रद्धालुओं के मथुरा पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कल भोर में राधा रानी की पावन जन्मस्थली बरसाना श्री लाडली जी का मुख्य जन्मोत्सव मनाया जाएगा। आयोजन के दौरान श्रद्धालुओं की भारी संख्या के मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मथुरा SP ग्रामीण सुरेश चंदावत ने बताया कि बरसाना क्षेत्र को 7 जोन और 20 सेक्टर में बांटा गया है।
5: इस बार दो रास्ते, जो एक जो श्री जी गेट से कटारा पार्क होकर के सुदामा चौक तक जा रहा है और दूसरा रास्ता हम लोगों ने इस बार प्रारंभ किया है जो पीली कोठी से और ये लाडो गेट होकर के सुदामा चौक की तरफ जाएगा। इन दो रास्तों से श्रद्धालुओं को हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। कुल 38 होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं और 11 प्रेशर पॉइंट है जहाँ पर हम लोगों ने 3 शिफ्ट में भारी पुलिस बल लगाया है।
3: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने UGC नेट जून 2026 परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षार्थी इसे UGC नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल लखनऊ समेत देश के 45 स्थानों पर आयोजित 20वें रोजगार मेले को वर्चुअली करेंगे संबोधित। केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने NCR में वायु प्रदूषण को लेकर की बैठक। सरकारों, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग और स्थानीय निकायों के बीच बेहतर समन्वय पर दिया जोर। उत्तर प्रदेश को भूजल स्रोतों की गुणवत्ता और स्थिति की निगरानी में देश भर में मिला पहला स्थान। 45,361 स्रोतों की जांच पूरी कर हासिल किया 94.39% का लक्ष्य। और मथुरा में कल श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा राधा अष्टमी का पर्व। देश विदेश से आए श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए किए गए व्यापक इंतजाम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
6: APJ अब्दुल कलाम का कथन है, लक्ष्य के प्रति एकाग्र समर्पण लक्ष्य को पाने का एकमात्र साधन है।

FM 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सबरस। कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवाते हैं अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू का गाया ये गीत। गीत को लिखा है समीर ने, संगीत नदीम श्रवण का है, फिल्म है जान की कसम।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा से प्रसारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सबरस, अपनी रेडियो हम सफर रुखसार नाज के साथ। और आइए कार्यक्रम का अगला गीत अब हम आपको सुनवाते हैं, उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति का गाया हुआ। फिल्म है दिल है बेताब, गीत लिखा है के वर्मा ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: गाइए गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
3: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
4: हेलो,
2: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
3: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
2: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
3: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
2: ओनली ऑन AIR ओबरा।
5: और आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनवाते हैं हम आपको, कुमार सानू और अलका याग्निक का गाया हुआ। धुन तैयार किया है अनु मलिक ने और इस गीत को लिखा है समीर ने। फिल्म है मेला।

0: नमस्कार, यदि आप रेडियो प्रस्तुति और एंकरिंग में रुचि रखते हैं और अपनी आवाज के माध्यम से श्रोताओं के बीच अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, तो आकाशवाणी ओबरा आपको दे रहा है एक सुनहरा मौका।
1: आकाशवाणी ओबरा द्वारा युववाणी कार्यक्रम के लिए असाइनमेंट अर्थात समनुदेशती आधार पर कंपेयर एवं अंतरवार्ताकार का पैनल तैयार किया जा रहा है। इसके लिए ओबरा परिक्षेत्र में निवास करने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।
0: अभ्यर्थियों का चयन स्वर परीक्षा यानी ऑडिशन और स्क्रीनिंग समिति के संस्तुति के आधार पर किया जाएगा और सफल अभ्यर्थियों का नाम पैनल में शामिल किया जाएगा।
1: ध्यान रहे, यह स्थायी और नियमित रोजगार नहीं है। आकाशवाणी ओबरा अपनी कार्यक्रमगत आवश्यकता के अनुसार ही पैनल में शामिल अभ्यर्थियों को समय समय पर कार्य हेतु आमंत्रित करेगा। प्रत्येक असाइनमेंट के लिए प्रसार भारती के नियमानुसार मानदेय देय होगा।
0: आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी की आयु 28 अगस्त 2026 को 18 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय अथवा महाविद्यालय से इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
1: आवेदन शुल्क ₹118 निर्धारित है। शुल्क ऑनलाइन अथवा नेट बैंकिंग के माध्यम से PBBC ऑफ इंडिया प्रसार भारती आकाशवाणी वाराणसी के खाते में देय होगा।
0: आवेदन पत्र के साथ शुल्क जमा करने की रसीद संलग्न करना भी अनिवार्य होगा।
1: इच्छुक अभ्यर्थी सोमवार से शुक्रवार प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में आकाशवाणी ओबरा कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं और पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन 28 सितंबर 2026 शाम 5 बजे तक कार्यालय में जमा कर सकते हैं।
0: और यदि आप व्यक्तिगत रूप से आवेदन जमा करने में असमर्थ हैं, तो आवेदन पत्र डाक द्वारा भी भेज सकते हैं। पता इस प्रकार लिखें: स्वर परीक्षा युववाणी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी ओबरा जिला सोनभद्र, पिन कोड नंबर है 231219।
1: तो जुड़िए आकाशवाणी ओबरा से,
0: दीजिए अपनी आवाज को नई पहचान।
2: कार्यक्रम सबरस का अगला गीत अब हम आपको सुनवाते हैं, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी फिल्म से। इसके लिए अपनी आवाज दी है अलका याग्निक ने, शब्द रचना राहत इंदौरी के हैं, धुन अनु मलिक का।

0: आकाशवाणी के हम ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ एक ऐसी शिक्षिका हैं जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में अपने गवर्नमेंट स्कूल में, जिसकी वो प्रिंसिपल हैं, वहाँ पर बच्चों में पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं के प्रति जागृति पर बहुत बहुत बढ़ावा दिया है। और साथ ही साथ उन्हें अभी 5 सितंबर को टीचर्स डे के दिन राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है, नेशनल टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मंजरी वी महाजन जी हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी में मंजरी जी, और सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत बधाई जो आपको पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
3: धन्यवाद
2: मंजरी जी। आपने बहुत कहे कि व्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दिया है। अगर हम खास तौर से प्रकृति की बात करें, एनवायरनमेंट की बात करें, पर्यावरण के प्रति जो आपने एक संवेदनशीलता दिखाई है और अपने विद्यालय के द्वारा बच्चों में भी उसके प्रति जागरूकता को बढ़ावा दिया है, हमें बता सकती हैं कि कौन सा आपको सबसे प्रमुख पहलू लगता है?
3: मैम, हमने एकेडमिक्स के साथ साथ एनवायरमेंटल एजुकेशन पर बहुत फोकस किया है और बच्चों को प्रकृति के साथ जोड़ने की कोशिश की है, क्योंकि मेरा मानना है कि जो अध्ययन होता है वो मात्र किताबों से ही नहीं होता। जब हम प्रकृति में जाते हैं तो मुझे लगता है कि बच्चे और ज़्यादा अच्छे से सीख सकते हैं।
2: और प्रकृति हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए, भविष्य के लिए भी बहुत
3: जी बिल्कुल
2: इम्पोर्टेंट है उसका संरक्षण। तो आप हमें बता सकते हैं कि एक जो बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है वेस्ट मैनेजमेंट का,
3: जी,
2: उस दिशा में आपने क्या क्या, कौन कौन सी पहल है जो आप हमें शेयर करना चाहेंगी ताकि हमारे जो श्रोता है वो भी उससे प्रेरणा ले सके?
3: हमारे स्कूल में विद्यार्थियों ने वेस्ट के ऊपर बहुत काम किया है, वेस्ट सेग्रीगेशन के ऊपर, वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर। जैसे हम वेस्ट को सेग्रीगेट करते हैं, जो वेट वेस्ट होता है उसे हम कंपोस्टिंग के लिए डाल देते हैं, और जो ड्राई वेस्ट होता है, खासकर जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, उसे कैंपस से इकट्ठा करके या सराउंडिंग से इकट्ठा करके हम पंचायत में डिपॉजिट करा देते हैं। तो इस तरह से वेस्ट को मैनेज
2: करने की। तो वेट वेस्ट जब आप कह रही हैं,
3: जी,
2: तो वेट वेस्ट में थोड़ा सा अगर हमें विस्तार से बता सके कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो वेस्ट वेस्ट में आती हैं?
3: वेट वेस्ट में आ जाता है जैसे किचन वेस्ट होता है, वेजिटेबल पील्स हैं, और गार्डन वेस्ट है, लीव्स हैं, फॉलन लीव्स हैं, ट्विग्स हैं, ये सब वेट वेस्ट में आ जाते हैं।
2: So, जो भी बायोडिग्रेडेबल आइटम्स हैं, सो इनको आप कह रहे हैं कि इनको एक जगह आप इकट्ठा करते हैं। तो जो आपने कंपोस्टिंग की बात करी, थोड़ा हमें सरल शब्दों में समझा सकती हैं कि कंपोस्टिंग क्या है और क्यों आप कंपोस्टिंग पर इतना बल दे रहे हैं?
3: कंपोस्टिंग में क्या है कि जो वेट वेस्ट होता है इसको हम एक वर्मी कंपोस्ट यूनिट में डाल देते हैं। बच्चे काम करते हैं, हमारे टीचर्स भी उनको गाइड करते हैं, मैं खुद बच्चों के साथ लग जाती हूँ, और साथ में अर्थवॉर्म्स डाले जाते हैं, प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, और कुछ दिनों के बाद ये जितना भी वेट वेस्ट होता है ये कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो कंपोस्ट बनती है उसे हम यूज कर लेते हैं किचन गार्डन में, हर्बल गार्डन में, या एज पॉटिंग मिक्स। तो ये तो बहुत बेनिफिशियल है, कंपोस्ट हमें आराम से फ्री में मिल जाती है, तो इसलिए हम इसको प्रमोट कर रहे हैं।
2: तो इससे आपको लगता है कि जो बच्चे हैं, जो आते हैं, आपके जो छात्र हैं, उनमें भी एक अवेयरनेस पैदा होती है कि हम किस तरह से कूड़े से भी वैल्यू निकाल सकते हैं?
3: जी बिल्कुल। एक्चुअली उन्होंने पहले बुक्स में पढ़ा था कि कंपोस्टिंग होती है, वर्मी कंपोस्टिंग करते हैं, ये प्रोसेस है, लेकिन जब वो खुद करते हैं तो फिर उनको ज्यादा अच्छे से नॉलेज मिलता है, और मैंने देखा वो इंटरेस्ट भी लेते हैं। वो पूछते भी हैं, मैम कितना टाइम लगेगा इसे बनने में, अब ये बन गई अब इसका क्या करेंगे? तो मैंने देखा वो इंक्विजिटिव बनते हैं जब हम उन्हें ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करते हैं।
2: तो जैसा आप कह रही थी कि एकेडमिकली तो ये सब चीजें सिखाई ही जाती है, डेफिनेशन क्या है, लेकिन यहाँ पर आप एक प्रैक्टिकल उनको वो एक्सपीरियंस दे रहे हैं जिसको वो आगे चलकर अपनी पूरी जिंदगी में उसको अपना सकते हैं।
3: बिल्कुल।
2: जी, और एक और जो पहलू है पानी का, पानी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक संसाधन है, उसके प्रति एक संवेदनशीलता किस तरह से आपने उसमें क्या कार्य किया है ताकि उसके जल का जो एक मूल्य है कि जल का संरक्षण करना कितना जरूरी है इसको बच्चे समझ पाए।
3: इसके लिए बच्चों को गाइड किया जाता है कि वो वाटर को वेस्ट ना करें, टैप्स को बंद रखें और अननेसेसरली वाटर वेस्ट ना किया जाए। इवन जो वेस्ट वाटर होता है, जैसे जो टैप से आ रहा है, उसको हमारी कोशिश रहती है कि उसको यूज़ करें, हम रीयूज़ करें फ्लावर बेड्स के लिए। और स्कूल में सोक पिट लगाया गया है, वाटर स्टोरेज टैंक्स हैं जिनमें हम वाटर को स्टोर कर लेते हैं, रेन वाटर को, और जब ज़रूरत होती है तो प्लांट्स के लिए उनको हम यूज़ कर लेते हैं वाटरिंग के लिए।
2: सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है
3: जी
2: उसके लिए आपने काफी
3: जी
2: कार्य किया है।
3: जी
2: सो बता सकती हैं कि प्रैक्टिकल जमीनी तौर पर क्या क्या क्या, क्या है?
3: रेन वाटर को हार्वेस्ट किया जाता है, मैंने अभी आपसे बताया, स्टोरेज टैंक में हम उसे इकट्ठा कर लेते हैं रेनी सीजन में। और जैसे जैसे फिर सीजन चेंज होता है, वाटर स्केयरसिटी होती है, तो वहां से हम पानी निकाल कर प्लांट्स को दे देते हैं।
2: सो आपको लगता है कि इससे बच्चों में एक अवेयरनेस पैदा होती है कि ये अपने घर जाके अगर जब बताते हैं बाकी लोगों को कि इस तरह से हमारे स्कूल में हो रहा है तो पूरा जो वो कम्युनिटी है उसमें भी इस तरह के फिर एफर्ट्स और लोग भी करते हैं?
3: बिल्कुल, बच्चे घर जाकर बताते हैं, मदर्स को बताते हैं, तो जब हमारी स्कूल की मीटिंग्स होती हैं, पीटीएम्स होती हैं, तो मैंने देखा जो मदर्स आती हैं वो हमें बताती हैं कि हमारे बच्चे तो हमें भी घर में कूड़ा नहीं फेंकने देते, इधर उधर कहते हैं इसके इसको प्रॉपरली सेग्रीगेट करो, मम्मा नलका मत चलाओ ऐसे, हमें स्कूल में सिखाया गया है कि पानी वेस्ट नहीं करना है। तो मैंने देखा कि ये जो हम स्कूल में सिखाते हैं वो घरों तक पहुंच ही जाता है किसी ना
2: जी।
3: किसी तरह से।
2: सो आप हमारे जो श्रोता सुन रहे होंगे और जो बच्चे भी और बच्चे सुन रहे होंगे और छात्र सुन रहे होंगे उनके लिए बता सकती हैं कि जो ये प्लास्टिक्स है ये कितना हार्मफुल है और इसको अलग से जब हम वेस्ट सेग्रीगेशन करते हैं उस पर इतना बल क्यों दिया जाता है?
3: प्लास्टिक जो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो जब हम इसे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के साथ डाल देंगे तो जो बायोडिग्रेडेबल है वो तो डिग्रेड हो जाएगा, लेकिन ये डिग्रेड नहीं होगा, ये एनवायरनमेंट में कई इयर्स तक ऐसे ही रहता है। तो इसको सेग्रीगेट करना बहुत जरूरी है ताकि हम इसको सेग्रीगेट करें और इसको फिर प्रॉपरली मैनेज कर सकें, रिसाइकल कर
2: जी,
3: सकें।
2: तो ये रिसाइकल की जो आप बात कर रही हैं, सिंगल प्लास्टिक यूज, हमने सुना भी है कि हिमाचल प्रदेश में इसके बारे में काफी ज्यादा एक जागरूकता है कि जो प्लास्टिक जैसा आप कह रही हैं कि जब वो हमारे जलाशय में जाता है या
3: बिल्कुल।
2: कहीं भी जाता है तो उससे क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, तो इसके बारे में आप इसको रिसाइकल करने के या अपसाइकल करने के क्या आपके एफर्ट्स हैं?
3: एक तो ये है कि मेरे एरिया में बरसात में बहुत ज्यादा रेन्स होती हैं, तो हमने देखा कि जो वेस्ट इधर उधर पड़ा होता था वो पानी से बहकर सारा ही कोई सड़क के किनारे वाटर रिजर्वॉयर्स में अक्सर हमने देखा, वो हमें दिखाई देता था। तो मैंने फिर अपने बच्चों को मोटिवेट किया कि देखो बच्चों, किस तरह से हमारी जो ये बावड़ी है, हमारे स्कूल के पास कुछ बावड़ियां हैं, तो वहां बहुत प्लास्टिक बॉटल्स इकट्ठी होती थी। तो मैंने बच्चों को गाइड किया और दिखाया कि देखें आप किस तरह से जो प्लास्टिक है ये खराब कर रहा है इनको, तो बच्चे भी थोड़े से उनमें अवेयरनेस आई और फिर हमने इसके ऊपर काम करना शुरू किया कि एटलीस्ट हमारे जो सराउंडिंग्स में प्लास्टिक वेस्ट है, सिंगल यूज प्लास्टिक है, हम इसे इकट्ठा करें और फिर इसे पंचायत में दे दें।
2: जी
3: इसके साथ ही एक और बताना चाहूंगी, जो प्लास्टिक रैपर्स होते हैं, ईटेबल्स के जो रैपर्स होते हैं, तो हम इनको भी इकट्ठा करते हैं, मेरे स्कूल के स्टूडेंट्स और हम सब टीचर्स मिलकर सराउंडिंग से, और वो हम एक पुणे बेस्ड एनजीओ है वहाँ पर डोनेट कर रहे हैं, और वो जो एनजीओ है वो इनको अपसाइकल करती है। तो हमारा ये भी इनिशिएटिव है कि
2: अपसाइकल का थोड़ा सा हमें अगर बता सके क्या
3: अपसाइकल
2: मतलब
3: में
2: है?
3: ये है कि जो हम वेस्ट रैपर्स उनको भेजते हैं, वो एनजीओ उनको कटिंग वटिंग करके उनसे कुछ प्रोडक्ट्स बना लेती है, जैसे बैग्स बना लेगी, कोस्टर्स बना लेगी, तो इस तरह से वो एनजीओ जो है वो इनको रीयूज कर रही है।
2: बिल्कुल, सो वेस्ट टू वेल्थ जो हम कहते हैं कॉन्सेप्ट।
3: जी बिल्कुल।
2: सो आप कह रहे हैं कि आप बच्चे इन्वॉल्व रहते हैं, उनके साथ मिलके ये सारा कार्य किया जाता है, कितना चैलेंजिंग होता है बच्चों को प्रेरित करना? क्योंकि स्कूल का एक इमेज कई बार होता है कि वहां आप गए, आपने पढ़ाई करी, एग्जाम दिया, लेकिन ये जो एक एडिशनल डायमेंशन है कि एनवायरमेंट के प्रति इस तरह की जागरूकता और इस तरह के प्रैक्टिकल जमीनी स्तर पर प्रयास करना, उसके लिए प्रेरित करना बच्चों को कितना चैलेंजिंग होता है, और ताकि उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी उनको उत्साहित करें।
3: मेरे लिए बड़ा चैलेंज ये था कि मैं जिस स्कूल में काम कर रही हूँ वो रूरल एरिया का स्कूल है, तो जिसकी वजह से वहाँ पर जियोग्राफिकल कंडीशंस तो डिफिकल्ट हैं ही, इसके साथ अवेयरनेस की बहुत कमी है, तो स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, ज़्यादा अवेयर नहीं होते, डिजिटल उनमें नॉलेज नहीं है इतना, डिजिटल डिवाइड है उनको, ना इंटरनेट फैसिलिटीज अच्छी चलती हैं, कई बार उनके पास फोन्स नहीं होते, जिसकी वजह से उनको इन चीज़ों का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो इस वजह से मुझे ज़्यादा चैलेंजेस रहे उनको समझाना, उनको ये इम्पोर्टेंस बताना कि वेस्ट को मैनेज करना क्यों इम्पोर्टेंट है। लेकिन धीरे धीरे हमने प्रयास किए, टीचर्स ने प्रयास किए, मैंने खुद

0: क्या आपके ऐसे प्रयास थे जिनके लिए आपको सम्मानित किया गया?
1: इसी वर्ष 5 जून को एनवायरनमेंट डे वाले दिन हमें हमारे स्कूल को एनवायरनमेंट लीडरशिप का अवार्ड मिला और इसमें हमें 50,000 का प्राइज मिला है। और ये जो अवार्ड है ये हमारे प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने हमें ये अवार्ड दिया। और पिछले वर्ष भी इसी दिन 5 जून को ही हमें वेस्ट वॉरियर का अवार्ड मिला था, वो भी हमें हमारे जो माननीय सीएम हैं उन्हीं से मिला था। तो दोनों ही बार हमारे स्कूल को ये सम्मान मिल चुका है और ये सम्मान मिला है जो हमने सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस यूज की हैं स्कूल में उसके लिए।
0: तो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस क्या है, थोड़ा सा आप और विस्तार से बता सकती हैं?
1: सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस वो प्रैक्टिसेस हैं जिनकी वजह से हम पॉल्यूशन को कम कर सकें और हमारी जो आने वाली जनरेशन्स हैं उनके लिए हम क्लीन एंड ग्रीन एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकें।
0: जी, आपने क्लीन एंड ग्रीन एनवायरनमेंट की बात करी, तो आपका जो कैंपस है उसमें भी आपने एक कहें कि एक छोटे लेवल पर, माइक्रो लेवल पर इसको अडॉप्ट किया है?
1: जी बिल्कुल, खूब सारे प्लांट्स लगाए गए हैं, किचन गार्डन है, हर्बल गार्डन है और मैंने तो नेस्ट भी इंस्टॉल करवाए हैं। और उनमें जो बर्ड्स हैं वो जब नेस्टिंग सीजन होता है तो आकर रहते हैं, मेरे बच्चे जो हैं स्कूल के वो उनको देखते हैं, मुझे बताते हैं, मैम आज उस नेस्ट में एक हमने स्पैरो को जाते देखा, फिर कोई कोई और बच्चा आता है वो कहता है मैम हमने वहां से निकलते हुए देखा। तो
0: अच्छा
1: मुझे अच्छा लगता है कि बच्चे भी ये चीजें नोटिस करते हैं, खुश होते हैं। और
0: जी, बिल्कुल। एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है हमारे जीवन का, सभी का, जो भी लिविंग बीइंग है, वो है खाना। और खाने में भी प्रकृति में हमें तरह तरह के खाने उपलब्ध हैं, तरह तरह के खाद्य पदार्थ उपलब्ध हैं। और अब जिस तरह का जो एक रिवाइवल हो रहा है, पुराने जो मोटे अनाज थे, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि जो ट्रेडिशनल फूड्स हैं उसके बारे में एक इंटरेस्ट, जागरूकता फैलाने की तरफ भी आपका कोई प्रयास है?
1: हमारे स्कूल में भी जब हम फूड फेस्टिवल्स लगाते हैं बैग फ्री डेज वाले दिन, तो उसमें जो है मिलेट रेसिपीज को प्रमोट किया जाता है, ट्रेडिशनल फूड्स को प्रमोट किया जाता है।
0: आपने फूड फेस्टिवल की बात करी, उस संदर्भ में आपने जो बैग फ्री डे की बात करी, ये क्या कॉन्सेप्ट है?
1: बैग फ्री डेज होते हैं, ये गवर्नमेंट के निर्देश हैं, हमें साल में 10 बैग फ्री डेज होते हैं और इन डेज वाले दिन बच्चे जो हैं 6 से 8 तक के जो स्टूडेंट्स हैं वो बिना बैग के स्कूल में आते हैं,
0: अच्छा, बिना
1: बिना
0: किताबों के,
1: किताबों
0: बिना
1: के आते हैं। और इसका मकसद ये है कि बच्चों को बियॉन्ड द बुक्स लर्निंग कराई जाए। तो उस दिन हम बच्चों को इसी तरह से छोटी छोटी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कराते हैं और उन्हें सिखाया जाता है बिना बुक्स के।
0: जी
1: क्योंकि मैम मैं ये कहना चाहूंगी कि जो नॉलेज होता है वो बुक से ही नहीं मिलता। कई बार एक हमारे कैंपस में जो प्लांट लगा है वो इटसेल्फ एक बुक बन जाता है, कई बार बारिश की बूंदें बुक्स बन जाती हैं, तो कई बार बीज से निकलता हुआ पौधा भी एक बुक बन जाता है। तो
0: जी
1: ये कोशिश रही है हमारी कि हम बच्चों को बियॉन्ड द बुक्स और बियॉन्ड द क्लासरूम टीचिंग कराएं।
0: तो ये जो आप 10 बैग फ्री डेज बता रही हैं, जिसमें आप कह रही हैं कि बियॉन्ड द बुक्स, जो किताबी जो एक शिक्षा है उसके बियॉन्ड आपके प्रयास होते हैं, तो उसमें किस तरह की, क्या कोई प्रदर्शनी लगाते हैं या कोई एक्टिविटीज, थोड़ा सा अगर हमें बता सके?
1: इन डेज वाले दिन हमने बहुत बार बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट एग्जीबिशंस लगाई हैं जहां पर बच्चों ने वेस्ट मटेरियल से कुछ आर्टिकल्स बनाए होते हैं, डेकोरेटिव आइटम्स या कोई भी यूजफुल आइटम्स, तो उनकी एग्जीबिशंस लगाई जाती हैं स्कूल में। इसके साथ ही एक और बताना आपको चाहूंगी कि मेरे एरिया में एक ग्रास होती है जिसे बग्गड़ ग्रास कहते हैं। तो बहुत साल पहले जो लोकल लोग होते थे वो इस ग्रास से प्रोडक्ट्स बनाते थे, जैसे बैठने के लिए लोकल भाषा में कहते हैं बिन्ने बनाते थे, ब्रूम्स बनाते थे। लेकिन अब मॉडर्नाइजेशन की वजह से ना ये जो आर्ट है ये अब खत्म हो रहा है। तो मैंने अपने बच्चों को इससे जोड़ने की कोशिश की है, तो बैग फ्री डेज वाले दिन ही मैं जो लोकल आर्टिसंस हैं उनको स्कूल में बुलाती हूँ, वो बच्चों को सिखाते हैं स्टिचेस लगाना कि किस तरह से इस ग्रास से प्रोडक्ट बन सकता है। और अब जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो बना रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर आइटम्स बनाने लगे हैं, जैसे पेन स्टैंड्स बनाते हैं या वॉल हैंगिंग। तो मैंने देखा कि इस आर्ट के लिए उनमें अब इंटरेस्ट आ गया है।
0: सो एक आर्ट के साथ साथ आपको लगता है कि आगे चलकर शायद उनके लिए एक व्यवसाय भी कुछ बच्चों
1: बिल्कुल
0: के लिए बन
1: जी
0: सकता है,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि जिस तरह से अभी जो सरकार है खासकर
1: जी
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह का एक कहें कि

0: प्रोत्साहन दिया जा रहा है हमारी जो ट्रेडिशनल वेल्थ है उसको, चाहे वो हमारे हैंडीक्राफ्ट्स हों. तो आपको लगता है कि जो ये इनिशिएटिव है ये आगे चलकर बच्चों को बहुत लाभान्वित भी कर सकता है?
1: बिल्कुल करेगा, ये स्किल डेवलपमेंट उनकी हो रही है और आगे जाकर वो इसको एज ऑक्यूपेशन भी अडॉप्ट कर सकते हैं।
0: तो आप कोई ऐसे कोई एग्जाम्पल्स बता सकती हैं कि जो बच्चों ये बहुत जिन पे इम्पैक्ट हुआ हो, जो भी आपके ये खास आप जो कदम उठा रही हैं आउट ऑफ यू नो द आउट ऑफ कैरिकुलम, उससे जो उनको इम्पैक्ट हुआ हो, कोई ऐसे कोई आपके पास उदाहरण हो जो बच्चे बहुत उससे प्रेरित हुए हों?
1: बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया है
0: अच्छा.
1: और जो मैंने देखा उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत इम्प्रूव हुई हैं, क्योंकि जब हम उन्हें एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करते हैं तो हम उनके व्यूज़ लेते हैं, तो वो अब एक्सप्रेस करना सीख गए हैं। और मैंने कई बार देखा, मैं कई बार गुजर रही होती हूँ तो पीछे से आपस में बात कर रहे होते हैं कि सपोज़ किसी ने टॉफ़ी पकड़ी है तो वो दूसरा कहता है इसे मत फेंकना, तो क्यों ले आया स्कूल, ये तो अलाउड नहीं है। तो तब मैंने देखा कि थोड़ा उनमें है कि हमें ये काम नहीं करना है और रैपर्स और इन सबको इधर उधर नहीं फैलाना है।
0: मंजरी जी, एक और चीज है कि जिस तरह की अभी प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं या जो एक ग्लोबल वार्मिंग की जो एक संकट है पूरे विश्व के सामने, आपको लगता है कि इसके बारे में भी एक लोकलाइज लेवल पर भी जागरूकता फैल रही है इन प्रयासों से, और एक एक जो कहते हैं कि जिम्मेवारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की हम सबकी एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम प्रकृति का जहां तक हो सके संरक्षण करें, वो बहुत जरूरी है?
1: जी बिल्कुल ज़रूरी है, और ख़ासकर जब हम बच्चों को इसके लिए गाइड करते हैं तो वो जिस स्टेज से गुजर रहे हैं वो इस स्टेज में सीखेंगे वो ताउम्र उनके साथ रहेगा। तो मुझे लगता है कि एज टीचर्स हमारा ये बहुत रोल है कि हम बच्चों को प्रॉपरली गाइड करें और उन्हें एनवायरनमेंट के साथ जोड़ें।
0: ये जो एनवायरनमेंट के साथ जोड़ने का आपका प्रयास है बच्चों का, ये कौन सी कक्षा से शुरू होता है?
1: हमारे पास 6th ऑनवर्ड्स स्टूडेंट्स हैं 12th तक, तो बस जब से वो आ जाते हैं हमारे पास तो हमारा प्रयास रहता है कि अब हम इनको थोड़ा थोड़ा गाइड करना शुरू कर दें।
0: सो आपको लगता है कि अब जो आप कहें कि उत्साह सब बच्चों में पैदा हो गया है, या एक स्टेज होती है शुरू में आपको लगता है कि थोड़ी रेजिस्टेंस होती है और फिर धीरे धीरे ये उत्साह बढ़ता है?
1: धीरे धीरे बढ़ता है, एकदम से तो नहीं, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं जब 6th में आते हैं, लेकिन जब वो धीरे धीरे फिर स्कूल में डेली इन्वॉल्व होते हैं एक्टिविटीज में, सीखते हैं, तो फिर वो उनको उसकी आदत पड़ जाती है।
0: मंजरी जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर हम ब्रॉडली बात करें, व्यापक तौर पर बात करें, पूरे देश की बात करें, आप अपने एक्सपीरियंस से अगर बता सकें, स्कूल्स कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं बच्चों को, ये जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का एक बहुत बड़ा मुहिम है जो पूरे विश्व के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं बच्चों को?
1: स्कूल्स का तो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, टीचर्स का, हेड्स का, क्योंकि अभी मैंने आपसे बात की कि हमारे बच्चे उस स्टेज से गुजर रहे होते हैं जिसमें जो वो सीखते हैं वो पूरी उम्र उनके साथ रहता है। तो टीचर्स का बहुत रोल है, हेड्स का रोल है कि उनको प्रॉपरली गाइड करें और एनवायरनमेंट के साथ जोड़ने की कोशिश करें, बच्चे जाहिर है सीखेंगे।
0: इसमें एक्टिविटीज में उनको इन्वॉल्व करना जरूरी होगा, किस तरह से उसको इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है?
1: इसमें उनको एक्सपीरियंशियल लर्निंग होनी चाहिए, एक्टिविटी
0: ओके.
1: बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, क्योंकि जब बच्चे को इन्वॉल्व किया जाता है तो मुझे लगता है तब वो ज़्यादा सीखता है। ऐसे हम उसे पढ़ाएंगे, बुक से पढ़ाएंगे, तो शायद वो इतने डेप्थ में नहीं जाता, तो उनको
0: ओके.
1: इन्वॉल्व जितना करेंगे तो वो ज़्यादा
0: मतलब
1: अच्छा,
0: कोलैबोरेटिव
1: बिल्कुल
0: अप्रोच रहना
1: कोलैबोरेटिव अप्रोच रहनी चाहिए, कम्युनिटी को इन्वॉल्व करते हुए,
0: जी.
1: कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व किया जाना चाहिए बीच में।
0: मंजरी जी, इको फ्रेंडली एक अप्रोच डेवलप करने के लिए आपके स्कूल में क्या इको क्लब है, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? क्या है उसका प्रमुख पहलू?
1: जी हमारे स्कूल्स में इको क्लब्स ऑपरेट करते हैं, तो हमारे स्कूल में भी इको क्लब है, इको फ्रेंडली एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए। तो ये जो इको क्लब है इसकी मैं खुद इंचार्ज हूँ, मैंने इसे अपने पास रखा है ताकि मैं बच्चों के साथ कनेक्टेड रहूँ और बच्चों को एनवायरनमेंट कॉन्शियस बना सकूँ।
0: इको फ्रेंडली एक्टिविटीज जो आप कह रही हैं, वो क्या एक्टिविटीज मेन है?
1: वो एक्टिविटीज़ यही हैं कि किस तरह से हम वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, सिंगल

0: यूज प्लास्टिक को डिस्करेज कर सकते हैं, वेस्ट सेग्रीगेशन कर सकते हैं, प्लांटेशन ड्राइव्स इसमें आ जाती हैं, और इस तरह से ग्रीन प्रैक्टिसेस, क्लीनलीनेस, ये सब वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर स्टोरेज, वाटर को कैसे वेस्टेज, वाटर वेस्टेज को कैसे रोक सकते हैं, ये सब इसके अंडर आ जाती है, इको फ्रेंडली
1: जी,
0: एक्टिविटीज
1: जमीनी तौर पर इन एक्टिविटीज को एक्चुअली बच्चे जो हैं वो करते हैं आपके
0: वो करते हैं। बिल्कुल
1: गाइडेंस में।
0: बिल्कुल करते हैं।
1: मंजरी जी, मैं आपको बहुत बहुत मुबारक फिर से देना चाहूंगी पर, और राजकीय स्तर पर तो ऑलरेडी आपका जो काम है उसको अप्रिशिएट किया गया है बहुत बड़े वे में, और आप ये कार्य करते रहें, और आपको बहुत बहुत आगे के लिए भी हमारी बेस्ट विशेस हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।
0: जी धन्यवाद,
1: जी धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
3: FM 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी का गाया ये गीत फिल्म हाथ की सफाई से। गीत लिखा है गुलशन बावरा ने, संगीत कल्याण जी आनंद जी का है।

0: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: ताना, हाँ मैं हूँ बीवी का दीवाना। अरे तो क्या हुआ,

अभी आप सुन रहे थे नौकर वीवी का फिल्म से ये गीत, किशोर कुमार और निशि कोहली की आवाज़ में, शब्द रचना अनजान के थे, संगीत बप्पी डायरी का था। इसी के साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। पेशे खिदमत है गैर फिल्मी नगमों का कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम सुगम संगीत में आइए सबसे पहले सुनते हैं जगजीत सिंह को।

नजर मिला। अनूप जलोटा के गाए इसी गजल के साथ ही सुगम संगीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी के हम ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। समाचारों के लिए आइए आपको लिए चलते हैं हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने में सहयोग जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की, सऊदी अरब पर हमले की निंदा की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 2 सीट वाला तेजस और STT-40 प्रशिक्षण विमान भारतीय वायुसेना को सौंपे। निर्वाचन आयोग ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंदी गुटों को अलग अलग नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित किए। सरकार ने बड़े उपभोक्ताओं के लिए चीनी भंडारण सीमा 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन की। और एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम जापान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के प्रयासों में निरंतर सहयोग और समन्वय की प्रतिबद्धता दोहराई है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में जारी घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने ऊर्जा, रक्षा, प्रौद्योगिकी

0: निवेश और स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने पर भी चर्चा की। राष्ट्रपति नाहयान ने भारत की सफल ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने भागीदारी और भारत की अध्यक्षता में ठोस परिणाम प्राप्त करने में यूएई के सहयोग और साझेदारी की सराहना की। श्री नाहयान ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने सऊदी अरब की संप्रभु क्षेत्रीय सीमा में हुए हमलों की निंदा की है। श्री जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा कमजोर करते हैं और बाब अल मंदब जल डमरू मध्य से आवागमन की स्वतंत्रता के लिए भी खतरा है। पाकिस्तान नौसेना के एक पोत और भारतीय युद्धपोत आईएनएस कोलकाता के बीच हुई टक्कर के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने इस मामले में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया का संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के दावों को खारिज करता है।
1: हमने अपने द्वारा दर्ज कराए गए विरोध पर पाकिस्तान का जवाब देखा है। हमने वे लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हैं। पाकिस्तान पक्ष को एक बार फिर से यह सलाह दी गई है कि किसी भी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए उनके सभी सैन्य इकाइयों को उचित सावधानी बरतने और दोनों पक्षों के बीच संबंधित समझौतों के प्रावधानों का सम्मान करने की जरूरत है। इस घटना में आईएनएस कोलकाता को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आर्थिक और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने नेपाल में हाल में आई बाढ़ में जान माल के नुकसान पर शोक व्यक्त किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा के व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ बैठक की है। दोनों नेताओं ने भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। बैठक में दोनों पक्षों ने आर्थिक समझौते को शीघ्र पूरा करने की प्रतिबद्धता दोहराई। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में हुई। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने समिति के सदस्यों को विधेयक के प्रावधानों की जानकारी दी। बैठक के बाद श्री जायसवाल ने कहा कि बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई और सदस्यों ने कई सवाल पूछे। समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने आज बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान तेजस और हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर HTT-40 प्रशिक्षण विमान सौंपे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समारोह में उपस्थित थे। इस अवसर पर HAL ने भारतीय वायुसेना को पवन हंस लिमिटेड को 4 ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपे। HAL ने भारतीय वायुसेना को पहला HTT-40 प्रशिक्षण विमान भी सौंपा। रक्षा मंत्री ने इस विमान का नाम अंकुर रखा है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज देश ने 3 प्रमुख उपलब्धियां हासिल की हैं।
3: आज हम एक साथ 3 इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स के साक्षी बने हैं। पहला इंडिजनसली डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन सिविल हेलीकॉप्टर को DGCA द्वारा टाइप सर्टिफिकेशन प्रदान कर हैंडओवर किया गया है। दूसरा LCA फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस यानी FOC ट्रेनर के अंतिम बैच को इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर किया गया है। और तीसरा 40 बेसिक ट्रेनर सीरीज प्रोडक्शन का पहला एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर किया गया है।
0: निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंदी गुटों को अलग अलग नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए हैं। इससे ममता बनर्जी और अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुटों को नए नामों से उपचुनाव लड़ने की अनुमति

0: मिल गई है। अरूप रॉय के नेतृत्व वाली गुट का नाम लोकतांत्रिक तृणमूल कांग्रेस और चुनाव चिन्ह लिफाफा है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट का नाम ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और फुटबॉल खिलाड़ी चुनाव चिन्ह है। दोनों गुट अब अगले महीने की 6 तारीख को नंदीग्राम और रेजी नगर में होने वाले उपचुनाव अपने नए नामों और चिन्हों के साथ लड़ सकेंगे। त्रिपुरा राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी नगर पालिका और नगर पंचायत चुनावों के लिए मतदान केंद्रों की मसौदा सूची जारी कर दी है। इस सूची में 784 मतदान केंद्र हैं। मतदान केंद्रों की अंतिम सूची 25 सितंबर को प्रकाशित होगी। सरकार ने बड़े उपभोक्ताओं के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। ये छूट इस शर्त पर दी गई है कि मौजूदा 15 दिन की सीमा से अधिक चीनी की मात्रा केवल अग्रिम प्राधिकरण योजना और टैरिफ दर कोटा के अंतर्गत आयातित चीनी से ही प्राप्त की जानी चाहिए। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि खुले बाजार से चीनी की खरीद के लिए भंडारण सीमा केवल 15 दिन की खपत तक ही सीमित रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग में एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है। नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया में श्री वैष्णव ने कहा कि भारत ने 10 वर्ष में 85,000 सेमीकंडक्टर डिजाइन इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि 4 वर्ष में 70,000 इंजीनियरों को पहले ही प्रशिक्षित किया जा चुका है। श्री वैष्णव ने कहा कि सेमीकॉन इंडिया में एक ही देश की लगभग 30 कंपनियां विभिन्न पवेलियनों में भाग ले रही हैं।
1: वेरी गुड रिस्पॉन्स,
2: काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। गोलमेज बैठकों में कई देशों ने बड़े प्रतिनिधि मंडल के साथ भाग लिया है। जापान और सिंगापुर के पवेलियन में 30 से अधिक कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। दक्षिण कोरिया और कई यूरोपीय देशों की कंपनियां भी इसमें शामिल हैं। इनमें नीदरलैंड और स्वीडन प्रमुख हैं। इससे आगे की संभावनाएं काफी अच्छी नजर आ रही हैं।
3: लुक्स लाइक इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड जर्नी अहेड।
0: प्रधानमंत्री जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के प्रयासों से लोगों के जीवन को बदल रहा है। आकाशवाणी समाचार सेवा संकल्प अभियान पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज जानेंगे कि कैसे इस दृष्टिकोण को नीति आयोग के प्लेटफॉर्म के माध्यम से कार्यान्वित किया गया है।
4: नीति आयोग ने 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के माध्यम से योजना आयोग का स्थान लिया। इसे वित्तीय आवंटन करने वाली संस्था के बजाय एक नीति निर्माण संस्था के रूप में तैयार किया गया है। नीति आयोग 3 प्रमुख माध्यमों के जरिए काम करता है। शासी परिषद, प्रधानमंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एक मंच पर लाती है। स्टेट सपोर्ट मिशन के तहत नीति आयोग की टीमें राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करती है। वहीं आकांक्षी जिला कार्यक्रम मापे गए परिणामों के आधार पर जिलों की रैंकिंग करता है और इन परिणामों को सार्वजनिक करता है। वर्ष 2017 में नई दिल्ली में नीति आयोग की तीसरी गवर्निंग काउंसिल शासी परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस मंच के माध्यम से केंद्र और राज्य एक टीम के रूप में मिलकर काम कर रहे हैं।
5: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति बदलते वैश्विक परिदृश्य में देश के भविष्य को तैयार करने को, देश को सशक्त करने का एक बहुत ही उचित मंच है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां राज्य और केंद्र सरकार मिलकर देश के लिए नीतियां तैयार करते हैं, नीतियों को लागू करने के लिए सामूहिक प्रयास करते हैं।
4: आकाशवाणी समाचार से बातचीत में नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा कि नीति आयोग का गठन सहकारी संघवाद को मजबूत करता है और केंद्र राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को रणनीतिक और तकनीकी सलाह प्रदान करता है।
6: नीति आयोग का लक्ष्य है कि भारत में ट्रांसफॉर्मेशन लाए और ये जो हमारे देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के साथ मिलके एक कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म करे, उसमें कोऑपरेशन भी करे, कॉम्पिटिशन भी करे और आउटकम बेस्ड मॉनिटरिंग करे। अब ये थिंक टैंक की तरह काम करता है।
4: नीति आयोग भारत सरकार की प्रमुख नीति थिंक टैंक और केंद्र राज्य संवाद के मुख्य मंच के रूप में कार्य करता है। मजबूत राज्य अब मजबूत राष्ट्र की स्पष्ट नींव बन चुके हैं। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.news

0: newsonair .gov.in और हमारी newsonair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय जनता पार्टी की पंजाब इकाई ने आज पठानकोट जिले से राज्यव्यापी नशा मुक्त पंजाब यात्रा का शुभारंभ किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने माधोपुर से यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा का समापन 30 सितंबर को जलंधर में होगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद विजय जुलूस नहीं निकालने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने छात्र संघ चुनाव के दौरान लिंगदो समिति की सिफारिशों के बार बार उल्लंघन को देखते हुए ये निर्देश दिए। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान आज संपन्न हो गया। मतगणना कल होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। विद्यार्थी एनटीए की वेबसाइट पर अपना परिणाम देख सकते हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कोहाट जिले में आज एक मस्जिद के पास हुए धमाके में 15 लोगों की मौत हो गई। घटना में 50 से अधिक लोग घायल हुए हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार घटनास्थल पर बचाव कार्य चल रहा है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का अनुमान 6% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। एजेंसी ने कहा कि यह संशोधन पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती दर्शाता है। एशियाई खेलों की महिला क्रिकेट स्पर्धा में आज भारतीय टीम ने जापान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने हरफनमौला प्रदर्शन और स्पिनर श्री चरणी की शानदार गेंदबाजी के दम पर भारत ने जापान को 8 विकेट से हराया। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों से सेंसेक्स में आज कोई खास बदलाव नहीं हुआ, जबकि निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स में 20 अंक की गिरावट देखी गई और ये 74,295 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 76 अंक की बढ़त के साथ 23,346 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया एक डॉलर के तुलना में 8 पैसे बढ़कर 95.88 रुपए पर बंद हुआ।
0: मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, केरलम, माहे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पूर्वोत्तर के कुछ भागों में कल तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने में सहयोग जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की। सऊदी अरब पर हमले की निंदा की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 2 सीट वाला तेजस और HTT-40 प्रशिक्षण विमान भारतीय वायुसेना को सौंपे। निर्वाचन आयोग ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों को अलग अलग नाम और चुनावी चिन्ह आवंटित किए। और एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम जापान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashwani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. India and UAE reaffirm their commitment to continue cooperation in promoting regional security and stability. UAE President dials Prime Minister Narendra Modi. New Delhi expresses deep concern over escalating security situation in Red Sea region, condemns attack on Saudi Arabia's sovereign territory. Hindustan Aeronautics Limited hands over twin-seater Tejas and HTT-40 trainer aircraft to Indian Air Force. Election Commission allots separate names and electoral symbols to rival factions of Trinamool Congress. Government relaxes sugar stock holding limit for bulk consumers from 15 to 30 days. And in Asian Games, Indian women's cricket team storms into semi-finals, beating hosts Japan by 8 wickets in quarter-final. And now the news in detail. India and UAE have reaffirmed their commitment to continued cooperation and coordination in efforts to promote regional peace, security and stability. Prime Minister Narendra Modi today received a telephone call from President of the United Arab Emirates,

सत्यनिष्ठा अपनाएं, भ्रष्टाचार मिटाएं, मिलकर भारत को विकसित राष्ट्र बनाएं। सत्यनिष्ठा से समृद्धि NTPC रिहंद द्वारा आयोजित त्रैमासिक जागरूकता अभियान के अंतर्गत जनहित में प्रसारित।

अभी आप सुन रहे थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बनाई हुई धुन पर राजेंद्र कृष्ण के लिखे इस गीत को। इस गीत के लिए अपनी आवाज़ दी थी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने। फिल्म थी इंतकाम। इसी के साथ ही भूले बिसरे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब समाचार होंगे।
1: FM 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम म्यूजिक गैलरी।

आपको दिल से सलाम करते हैं, खुशी का हर एक लम्हा आपके नाम करते हैं। ये माना कि आपसे दूर हैं हम, मगर याद तो सुबह, दोपहर और शाम करते हैं। श्रोताओं, इन्हीं पंक्तियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं आपके अपने पसंदीदा और फरमाइशी ईमेल्स पर आधारित कार्यक्रम म्यूजिक गैलरी में। और आज आपके ढेर सारे ईमेल्स के साथ मैं हाजिर हूँ आपकी रेडियो हम सफर रुखसार नाज। और अब बिना देर किए शामिल करते हैं कार्यक्रम में ये पहला मेल। ये मेल आया है गांव शोभापुर बाईपास मेरठ से, और इसे हम तक भेजा है दिग्दर्शन गौड़, कविता, कर्ण, शक्ति, रिया, जया और दर्शन भाई ने। इन्होंने सुनना चाहा है दो रास्ते फिल्म से ये गीत। तो आइए इनकी पसंद पर सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, अगर आप भी अपनी फरमाइश के गीत आकाशवाणी ओबरा से सुनना चाहते हैं तो नोट करें हमारा ईमेल आईडी। हमारा ईमेल आईडी है akashvanioBRA@gmail.com।

और कार्यक्रम में अब हम शामिल कर रहे हैं ये अगला ईमेल। ये आया है टोरोवाल जिला नवा शहर पंजाब से, और इसे भेजा है गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रियम थांदी, वेमी वामिका वाड़ी थांदी। इन्होंने सुनना चाहा है सेहरा फिल्म से ये गीत, और इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने। आइए सुनते हैं ये गीत।

स्वच्छता कार्यक्रम में अगली फरमाइश हम शामिल कर रहे हैं और ये फरमाइश आई है ग्राम दुल्हापुर जिला मुरादाबाद से और हमारे श्रोतागण हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह। इनकी फरमाइश पे आइए, सुनवाते हैं हम आपको गर्व फिल्म से ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अब हम शामिल कर रहे हैं यह फरमाइश, और इस फरमाइश को करने वाले हमारे श्रोतागण हैं बालकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, प्रहलाद, राजेंद्र वर्मा, संजय, आशु वर्मा। और ये इनका मेल आया है ग्राम बठेना पाटन, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। इन सभी ने सुनना चाहा है महुआ फिल्म से ये गीत। इस गीत के लिए अपनी आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी ने।

दिल ने फिर याद किया। जी हाँ, अगली फरमाइश इसी फिल्म के गाने के लिए आई है और इस गीत को गाया है मोहम्मद रफ़ी ने। सुनना चाहा है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने। आइए सुनते हैं इनकी पसंद पर ये गीत।

श्रोताओं, अपनी फरमाइश हम तक भेजने के लिए नोट करें हमारा ईमेल आईडी। हमारा ईमेल आईडी है akashvaniobra@gmail.com, यानी akashvanioBRA@gmail.com।

कार्यक्रम में अगला मेल शामिल कर रहे हैं ग्राम बिटोडा भोयर, तहसील मंगरूल पीर, जिला वासिम पश्चिमी विदर्भ से, और इसे हम तक भेजा है योगी राज मस्के, श्रीहरि मस्के, इंदुमती मल्हार, कविता मोहन, विशाल कुशल, गोपाल श्याम, गोविंद मस्के। इन सभी की फरमाइश है महबूब की मेहंदी के फिल्म के इस गीत को सुनने की। तो आइए सुनते हैं।

0: श्रोता, ये मेल आया है बक्सर बिहार से और भेजने वाले हमारे श्रोतागण हैं शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, सुनीत, रमेश साहू। इन्होंने सुनना चाहा है बंटी और बबली फिल्म का ये गीत।
1: दिन दिन दिन दिन दिन दिन दिन

कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, हम तुम्हारे हैं सनम फिल्म से ये गीत, और इसे सुनना चाहा है गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य और परमानंद आर्य ने। आइए इनकी पसंद पर सुनते हैं ये गीत।

हमारा ईमेल आईडी है akashvaniobra@gmail.com। यानी akashvaniobra@gmail.com। श्रोताओं, हमें आपके फरमाइशी मेल्स का बेसब्री से इंतजार रहेगा। और अब आज इसी के साथ आज का ये म्यूजिक गैलरी कार्यक्रम समाप्त करने की अपने रेडियो हम सफर रुखसार नाज को दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि। अभी आप म्यूजिक गैलरी कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के प्रयासों में निरंतर सहयोग और समन्वय की प्रतिबद्धता दोहराई है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में जारी घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने ऊर्जा, रक्षा, प्रौद्योगिकी, निवेश और स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने पर भी चर्चा की। श्री नहयान ने भारत की सफल ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। उन्होंने युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की भागीदारी और भारत की अध्यक्षता में ठोस परिणाम प्राप्त करने में यूएई के सहयोग और साझेदारी की सराहना की। श्री नहयान ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने सऊदी अरब की संप्रभु क्षेत्रीय सीमा में हुए हमलों की निंदा की है। श्री जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा कमजोर करते हैं और बाब अल मंदब जल डमरू मध्य से आवागमन की स्वतंत्रता के लिए भी खतरा है। पाकिस्तान नौसेना के एक पोत और भारतीय युद्धपोत आईएनएस कोलकाता के बीच हुई टक्कर के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने इस मामले में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया का संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के दावों को खारिज करता है। सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने आज बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान तेजस और हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर HTT-40 प्रशिक्षण विमान सौंपे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समारोह में उपस्थित थे। इस अवसर पर HAL ने भारतीय वायुसेना को पवन हंस लिमिटेड को 4 ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपे। रक्षा मंत्री ने इस विमान का नाम अंकुर रखा। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज देश के 3 प्रमुख उपलब्धियां प्राप्त की हैं।
2: आज हम एक साथ 3 इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स के साक्षी बने हैं। पहला, इंडिजनसली डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन सिविल हेलीकॉप्टर को DGCA द्वारा टाइप सर्टिफिकेशन प्रदान कर हैंडओवर किया गया है। दूसरा, LCA फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस यानी FOC ट्रेनर के अंतिम बैच को इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर किया गया है। और तीसरा, 40 बेसिक ट्रेनर सीरीज प्रोडक्शन का पहला एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर किया गया है।
1: निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंदी गुटों को अलग अलग नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए हैं। इससे ममता बनर्जी और अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुटों को नए नामों से उपचुनाव लड़ने की अनुमति मिल गई है। अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुट का नाम लोकतांत्रिक तृणमूल कांग्रेस और चुनाव चिन्ह लिफाफा है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट का नाम ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है और चुनाव चिन्ह फुटबॉल खिलाड़ी है। दोनों गुट अब अगले महीने की 6 तारीख को नंदीग्राम और रेजीनगर में होने वाले उपचुनाव में अपने नए नामों और चिन्हों के अंतर्गत लड़ेंगे। सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 15 दिनों से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। यह छूट इस शर्त पर दी गई है कि मौजूदा 15 दिनों की सीमा से अधिक चीनी की मात्रा केवल अग्रिम प्राधिकरण योजना और टैरिफ दर कोटा के अंतर्गत आयातित चीनी से ही प्राप्त की जानी चाहिए। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि खुले बाजार से चीनी की खरीद के लिए भंडारण सीमा केवल 15 दिनों की खपत तक ही सीमित रहेगी। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के लिए आज मतदान संपन्न हो गया। चुनाव के लिए कुल 1000 EVM का प्रबंध किया गया था। विश्वविद्यालय छात्र संघ के लिए 20 उम्मीदवार मैदान में थे। वोटों की गिनती कल नॉर्थ कैंपस स्थित विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स स्टेडियम परिसर में होगी। इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद जीत का कोई जुलूस नहीं निकाला जाएगा। एशियाई खेलों की महिला क्रिकेट स्पर्धा में आज भारतीय टीम ने जापान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा के हरफनमौला प्रदर्शन और स्पिनर श्री चरणी की शानदार गेंदबाजी के दम पर भारत ने जापान को 8 विकेट से हराया। अब भारत का सामना 20 सितंबर को बांग्लादेश से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: FM 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के
0: 11 बजकर 5 मिनट हुए हैं। अब संपन्न होती है हमारी आज की सभा। कल सुबह 5 बजकर 50 मिनट पर हम अपने कार्यक्रमों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।